ओम शांति। बाबा हम सभी को श्रेष्ठ स्वमानधारी बनाने आए हैं। आते ही याद दिलाया, बच्चे तुम बहुत रॉयल कुल के हो, तुम ब्राह्मण कुल की महान आत्माएं हो, तुम देव कुल की महान आत्माएं हो, तुम प्रभु पालना में पलने वाले हो। स्वमान जगाया हम सबका। और बाबा कहते हैं कि जितनी ऊंची दृष्टि से मैं तुम सबको देखता हूं, तुम भी अपने को वैसी ही ऊंची दृष्टि से देखो। जरा विचार करें, बाबा हमें किस महान दृष्टि से देखता है। वे देखते हैं कि ये वही हैं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, ये वही हैं जिनके दर्शनों के लिए भक्त लंबी भीड़ लगाते हैं, ये वही हैं जो कभी सृष्टि के हीरो एक्टर रहे हैं। बहुत ऊंची दृष्टि है बाबा की। ये मेरे नैनों के नूर हैं, ये वही हैं जिन्होंने मेरे स्वर्ग को दो युग तक संभाला, निष्कंटक रखा।

निर्विघ्न रखा अटल अखंड साम्राज्य किया, हम अपने स्वमान को जगाएं। जिसके पास स्वमान नहीं होता उसके अंदर हीन भावनाएं रहती हैं, वो सदा दूसरों की ओर प्यासी नजरों से देखते हैं, वो चाहते हैं हमें दूसरे कुछ दें, वो मांग भी करते हैं, धन की मांग भी करते हैं, मान सम्मान की मांग भी करते हैं। लेकिन जो स्वमान में रहते हैं, मान सम्मान तो उनके पीछे परछाई की तरह आता है, उनके जीवन में तो बहुत रॉयल्टी आ जाती है, उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है, उनके छोटे विचार भी सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। तो अपने इस ज्ञान और योग के यात्रा में आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें अपने श्रेष्ठ स्वमान को पहचानना है, उसे स्वीकार करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि बचपन से ही मनुष्य के अंदर कुछ हीन भावनाएं रही, उसका जन्म गरीबी में हुआ, उसको बार बार असफलता मिली, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार नहीं थे, उनसे लोगों ने दुर्व्यवहार किया, उनको नीचा दिखाया, तो उनका स्वमान जाता रहा। लेकिन अब उस सब को भूलकर हम अपने श्रेष्ठ स्वमान को याद करें। मनुष्यों ने हमें स्वमान भले न दिया हो, लेकिन इस समय तो स्वयं भगवान हमें स्वमान दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। हम उसके ईश्वरीय नशे में रहा करें और पुरानी बातों को संपूर्ण रूप से विराम लगा दें। जो कुछ भी हुआ, हीन भावनाएं चाहे कैसी भी रही, अब बहुत अच्छी तरह स्वमान का चिंतन करेंगे। चिंतन परम आवश्यक है। पहला कदम होता है स्वीकार करना, दूसरा कदम होता है उसका चिंतन करना। मान लो बाबा ने हमें स्वमान दिया, तुम वही हो जिनके मंदिरों में पूजा हो रही है, हम इसे स्वीकार करें। स्वीकार इसलिए करें कि जो हमें कह रहा है वो हमारे आदि मध्य अंत को संपूर्ण रूप से जानता है, हम तो भूल गए हैं। दूसरा है हम इसका चिंतन करें, देखें, विचार करें, कितने महान हैं हम ऐसे पूजनीय थे कि हमारे मंदिरों में हमारे चेहरों पर भी अब तक दिव्यता और तेज झलकता है, ये पूजनीय पद हमने कैसे प्राप्त किया था। स्वयं भगवान जब धरा पर आए तो हम उसके कार्यों में सहयोगी बने थे, हम पवित्र बने थे, इसलिए हम पूज्य बन गए। चिंतन करेंगे तो जिनके दर्शनों से ही भक्त प्रसन्न हो जाते थे वो मैं हूँ, तो मेरा चेहरा कितना दिव्यता से भरपूर, कितना महान होना चाहिए। तो आज सारा दिन हम ये अभ्यास करेंगे, मैं इष्ट देव देवी हूँ, हीरो एक्टर हूँ, इस सृष्टि की महान आत्मा हूँ। और योग अभ्यास करते हुए अपने को मस्तक सिंहासन पर बैठा हुआ स्वराज अधिकारी आत्मा, बहुत तेजस्वी आत्मा देखेंगे। ये देह अलग है, मैं अलग हूँ, मैं स्वराज अधिकारी हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ, मन बुद्धि को मेरे आदेश का पालन करना ही है। अपने मन को बार बार कहेंगे तुम शांत हो जाओ और बुद्धि को आदेश देंगे, हे मेरी बुद्धि तुम स्थिर रहो, स्वच्छ हो जाओ, बिल्कुल दिव्यता से भरपूर हो जाओ, क्योंकि तुम्हें अब बाप समान बनना है। ओम

0: अरे भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप? जिसे आप जानते भी नहीं, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और अब वीडियो कॉल रिसीव करने जा रहे थे। किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। आपका सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा प्राइवेट या लॉक्ड रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति की वीडियो कॉल कभी ना उठाएं। कोई भी व्यक्ति आपके प्राइवेट फोटोग्राफ्स या वीडियोस को लीक करने की धमकी दे या ब्लैकमेल करे तो बिना किसी डर या संकोच के तुरंत पुलिस का संपर्क करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ।
1: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। हम जब किसी कार्य को उच्च आकांक्षाओं से आरंभ करते हैं तब हमारा लक्ष्य हमारे सम्मुख होता है। हमारी दृष्टि साफ तौर पर अपने लक्ष्य को देख रही होती है। उस समय हमारी नस नाड़ियां आदि सभी संस्थान बहुत सशक्त होते हैं, परंतु जब हमारा मन अस्थिर होता है तो पहले हमारा पैर पीछे पड़ता है और तब हमें संदेह होता है कि क्या हम ठीक मार्ग पर चल रहे हैं। हम जितने महान साहस का कार्य कर रहे हैं, क्या उतनी शक्ति और सामर्थ्य भी हम में है? यही कमजोरी की, दुर्बलता की आवाज है। इस अंतर ध्वनि को हम जितना अधिक ध्यान से सुनते हैं, यह ध्वनि उतनी ही ऊंची होती जाती है और अंत में इसी ध्वनि के कारण जो हमें पीछे खींचती है, हम अपना कार्य बंद कर देते हैं। जरा सोचिए कि यह कितनी दयनीय स्थिति है। हम ईश्वर द्वारा दी हुई शक्तियों को भी दुर्घटना का शिकार होने देते हैं, इसीलिए वह कार्य रूप में आगे बढ़ नहीं पाते जिस रूप में हम बढ़ना चाहते हैं। मैं नहीं कर सकता, असफलता के इस विचार ने ही कई तेजस्वी व्यक्तियों को कहीं का नहीं छोड़ा, उन्हें नपुंसक बना दिया। इसी प्रकार के गिरे हुए विचारों ने ही अनेक प्रतिभाशाली स्त्री पुरुषों को आत्महत्या के लिए बाध्य कर दिया। उत्साहहीनता के कीटाणु महामारी के रोगाणुओं के समान होते हैं। इनसे बचिए, उनसे दूर रहिए। उत्साहहीन व्यक्तियों से मिल मिलाप रखना भयंकर है। जो व्यक्ति अपने जीवन में असफल रहे हैं, जिन्हें अपने कार्यों के संबंध में ही पता नहीं, कोई लेखा जोखा नहीं, उनसे मिलना खतरनाक है। निराशावादियों से मत मिलो। वे लोग यह नहीं जानते कि उत्साह एवं महत्वाकांक्षाओं की तरंगे हमें ईश्वर की ओर ले जाती हैं। मनहूस वातावरण में रहने वाले लोगों से मिलने और उनके साथ उठने बैठने से आपका मस्तिष्क भी नाकारा और निषेधात्मक हो जाएगा। फिर आप भी अपनी शक्तियों के प्रति संदेह के गुण गाने में उनके स्वर में स्वर मिलाने लगेंगे और तब आपका आगे बढ़ना रुक जाएगा। यदि आप निरंतर इस प्रकार के वातावरण में रहें तो आपकी महत्वाकांक्षाएं नष्ट हो जाएंगी। मूर्ख लोग ही मूर्खों की संगति करते हैं और सफल व्यक्ति सफल व्यक्तियों से ही मिलना चाहते हैं। जिस प्रकार पक्षी अपने साथी पक्षियों के झुंडों में ही उड़ते रहते हैं, मृग मृगों के साथ ही विचरण करते रहते हैं, गायें झुंड में ही चरना पसंद करती हैं, घोड़े घोड़ों के साथ खुश रहते हैं, यदि आप भी सफलता की कामना करते हैं और मिलते जुलते भी सफल व्यक्तियों से हैं तो आपकी सफलता में संदेह नहीं रहेगा। इसके विपरीत यदि आप असफल व्यक्तियों से मेल जोल रखेंगे तो आपके कदम असफलता की ओर बढ़ेंगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि जैसा संग वैसा रंग। तो हम जिस प्रकार का रंग अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो वैसा ही संग अपने जीवन में उतारें। ताकि अच्छे संग का अच्छा रंग लगे।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

सदा उत्साही मनोवृत्ति धारण करनी चाहिए। इस मनोवृत्ति के द्वारा आप अपनी महत्वाकांक्षा की ओर बढ़ते जाएंगे। इससे आपका अपने प्रति उत्साह बढ़ेगा। यदि आपने निराशात्मक मनोवृत्ति अपना ली तो आपकी शक्तियां क्षीण होने लगेंगी। साहस के बिना आपकी गति मंद पड़ जाएगी और एक दिन बिना पेट्रोल की कार की भांति ठप हो जाएगी। जब आपका मन निरुत्साहित होता है तब आप अपनी महत्वाकांक्षा की विपरीत दिशा में चल रहे होते हैं। तब आप उस लक्ष्य को, उस पदार्थ को अपने से दूर कर रहे होते हैं जिसकी आपको चाह होती है। उस समय आप अपने विरोधियों को आमंत्रित कर रहे होते हैं। आप उस समय उन सब पदार्थों को और आकृष्ट कर रहे होते हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं, जिन्हें आप बिल्कुल अपने पास नहीं आने देना चाहते। आप प्रकृति के इस नियम को तो जानते ही हैं कि जो वस्तु आपके मन में भरी होगी उसे ही आप बड़े वेग से अपनी ओर आकृष्ट करेंगे। यदि आपका मन दरिद्रता के भय से भरा है तो आप बड़ी तेजी से दरिद्रता को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। वह आपको अवश्य ही प्राप्त भी होगी। इसके विपरीत यदि आपका मन विश्वास, आशा और अधिकारपूर्ण योग्यता से भरा हुआ है तो आपके सब भंडार भर जाएंगे। आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। आशा अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्तिशाली वस्तु है और आशा को मन में संचित भी किया जा सकता है। हम चाहें तो आशा को बढ़ा भी सकते हैं और चाहें तो घटा भी सकते हैं। मानव को नष्ट होने से बचाने के लिए आशा ही अंतिम आधार है। जब तक आपके मन में आशा जीवित है आपको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। मनुष्य कितना भी रोगी क्यों न हो परंतु यदि उसमें आशा है तो उसके रोग युक्त शरीर में एक रोग निरोधक शक्ति है। मानव जीवन एक जहाज है, उसका कप्तान आशा है। जीवन रूपी जहाज से आशा रूपी कप्तान को हटा दो तो जलयान सागर तल में समाधि ले लेता है। आशा में कर्म करने की इतनी शक्ति है कि अनुमान लगाना भी कठिन है। सभी जानते हैं कि बलवती आशा वाले मनुष्य ही

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट। वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मुखाकृति से ही प्रायः यह पता चल जाता है कि वे कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनका भी पता चल जाता है कि जो जीवन को वास्तविक रूप में जी रहे हैं, और उनका भी बड़ी सरलता से पता लग जाता है कि जो विवशता से जीवन को ढो रहे हैं, जिन्हें इस संसार में कोई आशा नहीं रह गई है, निराश लोगों की मनहूस शक्लें ही सब कुछ बता देती है। उनके विचारों का ढिंढोरा उनकी सूरत ही पीटती रहती है।

उत्साहहीनता हमारे जीवन को सबसे बड़ा धोखा देती है। इसी के कारण हमारे मन में यह विश्वास जम जाता है कि हम अयोग्य हैं या हमें योग्यता की कमी है, जबकि मनुष्य में योग्यता का अथाह भंडार भरा होता है। इस उत्साहहीनता से हमारे मन में नाना संदेह भर जाते हैं। जब हम कोई विशिष्ट महान कार्य करने लगते हैं, तब यह निरुत्साहित करने वाली प्रवृत्ति हमें उसे करने से रोकने लगती है। जो व्यक्ति उत्साहहीनता का शिकार हो जाता है, उसकी जो दुर्दशा होती है, उसका वर्णन करना कठिन है। पहले तो उस व्यक्ति के मन में कार्य आरंभ करने की क्षमता ही नहीं रहती, उसके बाद उसकी बची कुची शक्ति भी समाप्त हो जाती है, जो कार्य करने के लिए नितांत अनिवार्य होती है। उत्साह की कमी हमारी उन्नति के पथ में सबसे बड़ी बाधा है। अतएव सदा अपने पर विश्वास रखो, हर समय उत्साह से भरे रहो। एक नवयुवक ने एक प्रख्यात विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली। उसके अनंतर वह नौकरी खोजने लगा। कई महीनों तक उसे नौकरी न मिली। वह निराश हो गया। उसमें स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था। उसने विश्वविद्यालय की शिक्षा भी अपने प्रयत्नों से, अपने श्रम से धन जुटाकर पूरी की थी, और अब उसके पास कुछ भी पूंजी शेष न थी। पैसे समाप्त हो जाने के कारण उसे 2 दिन से खाना भी नहीं मिल पाया, और किराया न दे पाने के कारण उसे निवास का कमरा भी छोड़ना पड़ा था। वह कई रातें बाग में बेंच पर सोया। बेंच पर वह सोता तो क्या था, करवटें बदलते हुए रात काटता था। उससे यह अनुभव होने लगा कि उसके लिए धरती और आकाश सब उलट गए हैं। उसे अपना जीवन ही बेकार होने लगने लगा। वह नौकरी के लिए जहां भी जाता, नौकरी न मिलती। अंत में निराश होकर उसने नौकरी ढूंढना ही छोड़ दिया। उससे लगा कि उसके भविष्य में प्रकाश की एक भी रेखा नहीं बची। उसे इस भय ने जकड़ लिया कि वह निकम्मे और बेकार लोगों की श्रेणी में धकेल दिया गया है। उसके वस्त्र फटने आरंभ हो गए। अब उसकी ऐसी दशा हो गई थी कि वह भले वेश में किसी के सम्मुख न जा सकता था। प्रथम तो वह कहीं जाने का उत्साह ही न जुटा पाता था। जो कहीं जाता भी तो उसे धिक्कार कर बाहर निकाल दिया जाता। अनेक प्रयत्नों से अंत में उसे एक रद्दी के होटल में बर्तन मांजने की नौकरी मिल गई। इससे उसकी रोटी तो जैसे तैसे चलने लगी, लेकिन सोने के लिए अब भी उसके पास बाग में पड़ी बेंच का ही सहारा था। इस नवयुवक के जीवन में आगे क्या होता है, जानने के लिए सुनते रहिए सुप्रभात।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन।
2: तो आइए अब हम जानते हैं कि उस नवयुवक ने आगे क्या किया। एक रात वह इसी दुर्दशा में बेंच पर लेटा हुआ था कि अकस्मात उसे एक नवीन दृष्टि प्राप्त हुई। उसे आसमान में मोटे मोटे अग्नि जैसे लाल अक्षरों में दिखाई दिया, भागो नहीं, दुनिया को बदलो। सारी रात वह सो न सका। व्याकुलता से वह प्रभात होने की प्रतीक्षा कर रहा था। प्रभात होते ही उसने अपने मन में यह बात पुनः दोहराई, भागो नहीं, दुनिया को बदलो। वह उठा और नदी किनारे गया। वहां जाकर उसने हाथ मुंह धोकर खूब अच्छी तरह दाढ़ी बनाई। उसके बाद वह एक मोची के पास गया और मीठी बातें करके उसे अपना मित्र बना लिया। उससे बूट पॉलिश मांगकर अपने हाथों से उसने बूटों को चमकाया। तब मन में दृढ़ संकल्प के साथ नौकरी की खोज करने लगा। रात्रि को प्राप्त हुई चेतना और नवीन दृष्टि उसके लिए रक्षा कवच का सा काम कर रही थी। अब वह किसी कार्यालय में जाता तो उसका स्वागत होता था। अब वह चोर नहीं लग रहा था। उसके वस्त्र विशेष अच्छे नहीं थे, पर उसके मुख पर आत्मविश्वास की झलक थी, आशा की चमक थी। वह जो कुछ कहता था उससे भी आत्मविश्वास झलकता था। सौभाग्य से उसे उसी दिन नौकरी मिल गई। नौकरी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी वह चाहता था, इच्छा करता था, लेकिन फिर भी काफी अच्छी थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वह अपनी समस्या को सुलझाने में सफल हो गया था। उसने वह महान और महत्वपूर्ण पाठ पढ़ लिया था जो अपने पर विश्वास करना सिखलाता है, जो अपनी शक्तियों पर भरोसा करना सिखलाता है। उस रात्रि में प्राप्त हुई वह दृष्टि ही उसके लिए सफलता का मंत्र हो गई। इस युवक का कथन है कि उसकी उन्नति का कारण वही दृष्टिकोण है, अपने पर विश्वास करो। आज वह नवयुवक इतने ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित है कि उसे देखकर ईर्ष्या होती है। उसके बाद वह कभी भी निराशा से त्रस्त नहीं हुआ, कभी उसके मन पर निराशा का आक्रमण ही नहीं हुआ। कभी भी उसने निषेधात्मक विचारों को अपने मन में स्थान नहीं दिया और कभी उसने अपने उत्साह को क्षीण नहीं होने दिया। आप भी यदि चाहें तो इसी आशा, आकांक्षा और अपने आत्मविश्वास रूपी मूल मंत्र से संसार को अपनी उन्नति से चकित कर सकते हैं। संतों महात्माओं का कहना है, अपने को जानो। इसमें थोड़ा परिवर्तन करके हम यह कह सकते हैं, अपनी शक्तियों को जानो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जो कहता है मैं यह काम कर सकता हूँ वह वास्तव में कर सकेगा। इसके विपरीत कई लोगों के बारे में हम कह सकते हैं, उसने कार्य को आरंभ करने का साहस ही नहीं किया, नहीं तो आगे आप समझ सकते हैं। सचमुच अगर हम हिम्मत के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो निश्चित तौर पर हम उस कार्य में अवश्य ही सफल होते हैं। बस जरूरत है आत्मविश्वास और पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी लगन के साथ उस कार्य में जुटे रहने की। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में रेडियो मधुबन पर

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। स्वास्थ्य को सहज बनाने की मुहिम इतनी कठिन नहीं है। अनेक लोग ये सोचते हैं कि स्वास्थ्य साधना एक कठिन साधना है, खासकर तब जब स्वास्थ्य व्यक्ति को देता है, तब उस स्वास्थ्य में वापस लौट आने के लिए, खोए हुए स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने के लिए बड़ी मशक्कतें करनी पड़ती है। बेहतर तो यही होगा कि अगर हम अपने स्वास्थ्य को खराब होने ही न दें। सहज स्वास्थ्य कार्यक्रम में हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने और बिगड़े हुए स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए क्या आसान उपाय किए जा सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी, जो भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में इनका लंबा अनुभव है। पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं और भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्र आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर इनके परिवार के अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ लेने के और स्वास्थ्य लाभ देने के इस क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिए हैं। आइए आज बातचीत करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, हम पिछली कड़ी में बात कर रहे थे कि व्यक्ति वाष्प स्नान यानी स्टीम बाथ लेता है तो उसके क्या फायदे होते हैं और कब कब इसे करना चाहिए, ये बात समझ में आती है। आजकल ये एक शब्द जो प्रचलन में आता है, लोग स्पा ट्रीटमेंट्स इत्यादि के लिए जाते हैं और वहां पर ये स्टीम बाथ लेके आते हैं, और प्राय युवाओं में भी बड़े शहरों में ये चीज देखने को मिलती है। स्पा में जाके ऐसे वापस निकलते हैं वहां से जैसे वो तरोताजा होके नव तरुण बनकर बाहर आ रहे हैं, ऐसा आभास वो लोगों को बताते भी हैं। और खासकर सोशल मीडिया पे ऐसे रील्स और इत्यादि पोस्ट जब देखते हैं तो लोगों को लगता है कि वाह, सही में इतना फायदा करता है। आजकल इस स्टीम और स्पा

0: में जो ट्रीटमेंट्स मिल रही हैं, जो वेलनेस चीजें कहते हैं लोग, उसमें स्टीम के साथ एक और चीज कही जाती है, वो है सोना। तो आज मैं सोना में गया था। जब पहली बार मैंने सोना शब्द सुना था, मैंने बोला सोना सोना क्या होता है, या तो ये सोने का सोना है या सोना चांदी वाला सोना है। बोलते नहीं नहीं तुम नहीं जानते ये सोना क्या होता है, तो ये क्या है इसके बारे में थोड़ा बताएं।
1: ओना बात का जो आविष्कार है वो फिनलैंड में हुआ था, क्योंकि वहां पर माइनस में टेम्परेचर रहता था। और इसमें क्या है, एक बंद कमरे में, लकड़ी के कमरे में पत्थर को गर्म किया जाता था, और उस पत्थर से जो गर्मी में निकलती थी उससे आप उस कमरे में बैठते थे और आपका पूरे शरीर को गर्मी लगती थी। जहां टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है, वहां इसका प्रयोग शरीर से पसीना निकालने के लिए किया जाता था। अब मॉडर्न युग में लकड़ी का चेम्बर बनता है और उस कमरे में पत्थर रखे जाते हैं, और उस पत्थर को एक किसी भी गर्मी के स्रोत से गर्म किया जाता है। तो सौना एक ड्राई हीट रूम है, जबकि भाप नहान एक गीली हीट देने की प्रक्रिया है। तो सौना हमेशा एक कमरे में दिया जाता है, एक चेम्बर में दिया जाता है, और इसके भी अधिकतर लाभ वही हैं जो भाप नहान से होते हैं, और ये विदेश में ज्यादा प्रचलित है। और अब ये धीरे धीरे इसका प्रचलन हमारे पूरे भारतवर्ष में हो रहा है।
0: जैसे आप सोनावाद के बारे में ये बात कह रहे थे कि भारत में इसका प्रचलन कम है, हम भारत में एक ट्रॉपिकल देश में रहते हैं, एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां हमारे देश में ज्यादातर हिस्सों में गर्मी तो होती ही है, सर्दी गर्मी के मौसम होते हैं, मगर ज्यादातर हिस्सा ऐसा होता है जहां पर व्यक्ति दिन भर में तापमान ठीक ठाक रहता ही है, व्यक्ति को पसीना आता ही है। क्या ये जो स्टीम बात के बारे में तो हमने डिटेल में सुना, ये सोना बात में जब हम वास्तविकता में गर्मी में हैं तो ऐसे समय पर सोना बात लेने की क्या कोई आवश्यकता है? अक्सर लोग कहते हैं कि भैया बाहर तो सोना बात चल रहा है जब गर्मी के दिन होते हैं, तो क्या इसे एक चिकित्सा के रूप में जो समझा जाता है वो क्या इसकी सही समझ है, वो बात समझ में आए?
1: देखिए, इतने सवाल में एक लाइन बोला कि जब बाहर ही सोना बना हुआ है तो हमें सोना लेने की क्या जरूरत है। तो ये बना उनके लिए है जो अपने शरीर से पसीना नहीं निकाल पा रहे हैं, दूसरा उनके लिए जिनका पसीना कम आ रहा है और उनको उसका फायदा जल्दी चाहिए। जैसे हमें पानी उबालना होता है और अगर हम उसको ढक दें तो वो जल्दी उबल जाएगा, इसीलिए एक बंद कमरे में जब बहुत गर्म है तो जल्दी पसीना आपका निकलेगा, आपका जल्दी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, जल्दी आपके जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, वो खुलेंगे। तो जो फायदा आपको 15-20-25 मिनट में मिलने वाला है वो आपको 5 मिनट के अंदर ही मिल जाएगा। ऐसे देश में इसका आविष्कार हुआ जहां पे टेम्परेचर माइनस में रहता है, तो वहां पसीना निकल ही नहीं रहा है, तो पसीना निकाला कैसे जाए। मैं भैया फिनलैंड के जो कैपिटल है हेलसिंकी घूमने गया था, और वहां हर होटल में सोना बात था। और लोग ये बोलते हैं कि जितनी फिनलैंड की पॉपुलेशन है उससे ज्यादा वहां पे सोना बात है, क्योंकि हर व्यक्ति ने अपने घर में बना रखा है, छोटा सोनावाद, बड़ा सोनावाद, होटल में 3-4 सोनावाद है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जितने नागरिकों की जनसंख्या है उससे ज्यादा तो वहां सोना बात है, और वो इसलिए है क्योंकि वो अपने शरीर से पसीना निकालने में इसका प्रयोग करते हैं।
0: अब एक और चीज मैं समझना चाहता हूं डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि वहां पर विदेश में इन चीजों का इस्तेमाल है, तो आज जो भारत में इसका प्रचलन बढ़ रहा है, लोग फिटनेस सेंटर्स में या वेलनेस क्लिनिक्स वगैरह में इन सब चीजों को दिखा रहे हैं कि भाई ये सोना करने जा रहे हैं, तो इसका सही इस्तेमाल समझा जाए, जैसे आपने स्टीम बाथ के लिए कहा था कि भाई हमें स्टीम बाथ लेना है तो हमें कैसे लेना है ये पता होना चाहिए, ऐसे ही क्या सोना बाथ लेने जाने से पहले भी हमको पता होना चाहिए कि भाई क्या तरीका है, कैसे सोना लिया जाता है?
1: पानी पी के जाना चाहिए, उतनी देरी रहना चाहिए जितनी देर आपको सरदर्द या कुछ घबराहट न महसूस हो रही हो। अगर आपको चक्कर आने लगे, घबराहट होने लगे, तो तुरंत बाहर आना चाहिए और ठंडे पानी से नहाना चाहिए। फिनलैंड में, रशिया में, और इवन अभी मैं कजाकिस्तान गया था, वहां तीनों जगह पहले सोना लिया और उसके बाद उन्होंने दरवाजा खोला और दौड़ते ही बर्फ में गड्ढा कर रखा था उसमें एक डुबकी लगाई। तो ये अपने बॉडी को टेम्परेचर शॉक देने की वजह से है जिससे टॉक्सिन्स जल्दी बाहर आए। लोग कहते हैं इसको करने से इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है, मगर आप अगर सिर्फ सोना लेंगे और स्टीम लेंगे और उसके बाद ठंडे पानी से भी नहा लेंगे तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। तो लेने के लिए पानी पीजिए, जितना आप अगर ले सकते हैं उससे एक मिनट कम ही ली और निकलने के बाद फिर से थोड़ा सा पानी पीजिए और ठंडे पानी से नहाइए। यही सावधानियां आपको अपने लिए रखनी चाहिए।
0: जैसा आप ये कह रहे थे, ये अनेक चीजें हम मीडिया में भी देखते हैं, कहीं टीवियों पर, कहीं सोशल मीडिया पर भी हम देखते हैं कि लोग, जैसे ध्रुवीय प्रदेशों के लोग हैं जो ऐसे ठंडे देशों में रहते हैं, वो अचानक से मतलब एक दिन सारे लोग पानी में, ठंडे पानी में नहाने जा रहे हैं, तो वो देख के ऐसा लगता है बाप रे इनको ठंड नहीं लगने वाली, ऐसे कैसे कर रहे हैं। ये बात समझ में आती है कि ऐसा करने से ये जो शॉक आप कह रहे थे टेम्परेचर का जो अंतर है उससे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, आपने बात कही। ये बात हम बेहतर तरीके से समझें कि जब आप कहते हैं कि इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, तो यहाँ तो लोग अक्सर ये कहते थे कि नहीं नहीं बाहर नहीं जाओ ठंड नहीं लग जाएगा आपको, अभी भी नहा है, ये नहीं करो वो नहीं करो, अनेक चीजें ऐसे सुनने को मिलती हैं। ऐसे में इसकी सही अंडरस्टैंडिंग क्या है, सही समझ क्या है, कैसे ये काम करता है?
1: भैया जब हम गर्मी में रहते हैं तो हमारा रक्त संचार हमारी त्वचा की तरफ आता है, क्योंकि वो हमारे शरीर के जो जो पसीने की ग्रंथियां हैं उनको ज्यादा काम कराता है। और पसीना क्या है? पानी ही है जो हमारी त्वचा पे आता है, वो हमारी त्वचा को ठंडा करता है और त्वचा को बचाने का काम करता है गर्मी से। अच्छा, जब रक्त संचार बढ़ता है तो हमारी मांसपेशियों के अंदर ज्यादा रक्त जाता है, वो पूरे डीप क्लीनिंग करता है, पूरी मांसपेशियों के अंदर लबालब रक्त भरता है, तो सारे टॉक्सिन्स को निकाल के वो त्वचा पे लाता है, जो पसीने के साथ वो बाहर चले जाते हैं या उन टॉक्सिन्स को ब्लड के थ्रू मूव करा के उसमें से सारे टॉक्सिन निकाल देता है। अब हम जैसे ही ठंडे में जाते हैं तो जो रक्त जो ऊपर त्वचा में चल रहा है वो तुरंत वापस अंदर जाता है, तो जिस वेग से वो त्वचा के ऊपर दौड़ रहा है वो उससे ज्यादा वेग से हमारे जो कोर है, हमारे शरीर का जो बीच का हिस्सा है, उसमें वापस जाता है। तो जब वो जाता है तो और सारे टॉक्सिन्स को खींच के अपने साथ लेके जाता है और एकाएक बॉडी को लगता है यार ये क्या हो गया, इतनी ठंडक से इतनी गर्मी में क्यों हम चले गए। वो शरीर में जो हमारे रक्त है वो इम्यूनिटी सेल्स को हमारे शरीर में हमारा बोन मैरो ज्यादा छोड़ता है, तो इससे हमारी इम्यूनिटी बेटर हो जाती है। अब जो आपने पूछा कि गर्मी में घर के बाहर मत जाओ या ठंडक में बाहर मत जाओ हवा लग जाएगी, आपने कहा हम लोग एक ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं और हमारे लिए एक्सट्रीम वेदर चेंजेस हमारी एक अच्छाई है हमारे देश की कि हम चारों ऋतुओं का यहाँ पे आनंद ले सकते हैं, ठंड भी है, गर्मी भी है, बहुत बारिश भी है और पतझड़ भी है। तो जब हम चारों ऋतुओं का मजा लेते हैं तो हमारा बॉडी भी एक छोटे टेम्परेचर के बीच में अपने आप को मेंटेन करने की आदत डाल लेता है, इसीलिए एक्सट्रीम टेम्परेचर का जब चेंज आता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए घर वाले कहते हैं बहुत धूप में मत निकलो क्योंकि तुम बीमार पड़ जाओगे, बहुत ठंड में बाहर मत निकलो तुम बीमार पड़ जाओगे। दूसरी चीज, व्यक्ति अब एक आर्टिफिशियल क्लाइमेट में रहने लगा है, जैसे जो हमेशा एक टेम्परेचर मेंटेन करके रख रहा है, ना वो पूरी तरह से वर्जिश कर रहा है, ना वो स्वास्थ्य प्रिय भोजन कर रहा है, तो वैसे ही इम्यूनिटी खराब है। तो इसीलिए जब वेदर चेंज आता है तो आदमी बीमार ना पड़ जाए, इसीलिए घर के लोग कहते हैं कि अपने आप को बचा के।
0: जैसे ये बात समझ में आती है कि आज हम इस धारणा को लेकर चल रहे हैं, ये जो सिस्टम्स बने हुए हैं स्टीम बाथ के, सोना बाथ के इत्यादि चीजों का, अब सोना तो एक ऐसी चीज है, जैसे आपने स्टीम बाथ के लिए कहा कि ये तो घर में भी हम कर सकते हैं कि भाई घर में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सोना तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो भारतीय परिवेश में स्वाभाविक रीति से अवेलेबल हो, क्या इसके लिए भी कोई घरेलू उपाय है कि भाई घर में हम सोना जैसा कुछ करके उसका लाभ लें या कहीं और ही जाना चाहिए?
1: जैसे भैया भाप का चेंबर बन रहा है, अब बहुत सारी इंडियन कंपनीज और विदेशी कंपनियां भी आपके कमरे में एक टेलीफोन बूथ जितना बड़ा कमरा बना देती हैं जिसमें आप भाप ले सकते हैं, या आप सोना का कमरा भी उतना बड़ा आपके घर में बना सके। जो रेगुलर इसका इस्तेमाल करें प्लीज उनको ही अपने घर में इसको लगवाना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने मरीजों को देखा जो घर जाके बहुत सुंदर सुंदर जैकूजी लगवा लेते हैं, वाटर प्रेशर मसाजर अपने घर में लगवा लेते हैं, स्टीम रूम बनवा लेते हैं, सोना रूम बनवा लेते हैं और उसका इनॉग्रेशन करते हैं और एक दो दिन इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उसका इस्तेमाल कभी नहीं होता और उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने इष्ट मित्रों को दिखाने के लिए होता है और भीड़ में बात करने के लिए होता, अरे मेरे घर में भी सोना है, मेरे घर में स्टीम रूम है, और ये बोला था कभी किसी संडे को आना साथ में लिया जाएगा, और वो कभी नहीं होता। तो आप घर में जरूर लगा लें अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, अगर आप रेगुलर नहीं इस्तेमाल करते तो कहीं भी जाके इसको ले सकते हैं। और अब भारत में मुंबई दिल्ली कैलकटा हर बड़े शहर छोड़िए हर छोटे शहर के भी होटल्स में एक स्टीम रूम बन चुका है, और बहुत सारे स्पा और सेंटर जिम वाले भी अपना एक स्टीम रूम और सोना रूम बना चुके हैं। तो आप इसका इस्तेमाल किसी एक योग्य व्यक्ति के देखरेख में इसका इस्तेमाल करें, और ज्ञानी व्यक्ति होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं जो कह दे अरे अरे आप बैठ जाइए आपका वजन कम हो जाएगा, और पता चला उसने पूछा ही नहीं कि आप बीपी के मरीज हैं कि आपके लिए ठीक है कि नहीं। जिनको एपिलेप्सी है, सीजर्स आते हैं, जिनको मिर्गी का दौरा पड़ता है, उनके लिए एकदम मना है, ये सब नहीं लेना चाहिए। तो एक योग्य व्यक्ति की देखरेख में ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए,
0: यानी एक सही परामर्श के साथ जो एक वेल ट्रेन्ड पर्सन है जो क्लिनिकली या स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्ञान रखता है उसके साथ मिलकर ये करना फायदेमंद हो सकता है। अब आखिरी चीज मैं ये पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब की, बहुत सारे लोग स्टीम बात और सोना बात इन शब्दों को सुन रहे हैं, और जैसे आपने कहा कि अभी वो एक दिखावे की चीज बन गई है, बहुत सारे लोग उसे एक स्टेटस सिंबल के रूप में कहते हैं कि आज मैं सोना जा रहा हूं और आज मैं स्टीम बात लेके आया, और ये चीजें ऐसे बताते हैं, मगर एक व्यक्ति को नॉर्मल कोर्स में कितने समय पर इन चीजों का लाभ लेना चाहिए? अगर जैसे हम जाते भी हैं कहीं कहीं स्पा में जाते हैं या कोई इन चीजों को ट्रीटमेंट कराने जाता है, उसके लिए पैसे भी लगते हैं, तो व्यक्ति सोचता है कि भाई क्या ये अनिवार्य सी चीज है या इसका घर में भी कोई पर्याय निकल सकता है कि उससे भी हम काम चला सकें?
1: ये कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ है वो उसको ले सकता है। आप इसको हफ्ते में एक बार भी ले सकते हैं, महीने में चार बार भी ले सकते हैं, महीने में छह बार भी ले सकते हैं, महीने में आठ बार भी ले सकते हैं, पर अगर आपको जरूरत है तो बिना जरूरत के आप इसको हफ्ते में एक बार ही इस्तेमाल करिए। जो स्टीम बात और सोना बात दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, सोना बात ड्राई हीट है और स्टीम बात वेट हीट है। एक में सिर्फ गर्मी है और दूसरे में नमी के साथ गर्मी। सोना बात का टेम्परेचर या उसका तापमान ज्यादा रहता है, करीब 70 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके करीब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है उस कमरे का टेम्परेचर, और जबकि भाप नहान में ये करीब 40 से 50 डिग्री के बीच में ही रहता है। तो जिनको ज्यादा परेशानियां हैं उनको सोना नहीं लेना चाहिए। जिनको ज्यादा मतलब घबराहट होती है, ब्लड प्रेशर की परेशानी, उनके आंख में कोई परेशानी है, तो उनको सोना तो एकदम नहीं लेना चाहिए। वो भाप नहान ले सकते हैं मगर कम समय के लिए। अच्छा, और इसको लेने से पहले पानी पीना चाहिए और निकलने के बाद नहाना चाहिए। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए। सोना महीने में एक बार बहुत अच्छा है, भाप महीने में 3 से 4 बार बहुत अच्छा है हमारे देश के लिए। अगर आप बहुत ठंडे देश में रह रहे हैं तो वहां सोना ज्यादा लेते हैं लोग बनस्पत भाप के।
0: अब ये एक ऐसी चीज है जो आपने उदाहरण के साथ प्रस्तुत किए हैं तो समझ में आती है बात। ये भारत में और कई ऐसे देशों में इन चीजों का प्रचलन देखने को मिलता है या लोग सुनते हैं इन चीजों के बारे में, जहां पर लोग कहते हैं कि हॉट स्प्रिंग्स हैं, लोग कहते हैं कि वहां प्राकृतिक रूप से गर्म पानी निकलता है और पानी से भाप निकलता हुआ नजर आ रहा होता है, और लोग समझते हैं कि भाई वहां पर अगर आप गए हुए हैं तो वहां पर स्नान करना चाहिए, खासकर ऐसे शहर जो इन हॉट स्प्रिंग्स के आसपास हैं तो लोग रेगुलरली वहां जाना पसंद करते हैं। क्या ये जो फायदे आपने अभी गिनवाए, ये जो हॉट स्प्रिंग्स में स्नान करने इत्यादि लोग जाते हैं, क्या उसका भी यही फायदा होता है, खासकर जैसे ट्रॉपिकल कंट्रीज में, थाईलैंड में, मलेशिया में, जापान में, और यहाँ भारत में भी हम उत्तराखंड में अनेक जगहों पर, यहाँ मुंबई में भी अनेक जगहों पर ऐसे हॉट स्प्रिंग्स के बारे में सुनने को मिलता है, ये क्या है, ये भी क्या सिमिलर सी बेनिफिट्स देते हैं?
1: ये नॉर्मली सल्फर स्प्रिंग इनको बोला जाता है, और जो सबसे फेमस, जो सबसे ज्यादा फेमस सल्फर स्प्रिंग हम लोगों ने देखा है वो बद्रीनाथ में है, जहाँ उतनी ऊंचाई पे भी गर्म पानी निकल रहा है, और एक लोगों ने अपना वो बनाया है कि पहले उसमें स्नान करते हैं और फिर बद्री विशाल का दर्शन करते हैं। ये दोनों से अलग है, ये भापनाहन से भी अलग है और सोनाबाद से भी अलग है, क्योंकि आप इसमें गर्म पानी में नहा रहे हैं, और हमने जैसे मैंने पहले बोला था कि गर्म पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, उसके बाद वो पानी भाप बन जाता है, तो इसका टेम्परेचर पहली बात तो उससे कम है। दूसरी चीज, किसी भी कम्युनल स्नान में थोड़ा सा सफाई के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे आप नहा रहे हो, कैसे दूसरे वहां पर स्नान कर रहे हैं। इसके फायदे स्टीम बाथ और सोना बाथ से त्वचा के लिए थोड़े से कम है, क्योंकि ये आपकी त्वचा में, जो कहा जाता है कि सल्फर एंटीसेप्टिक का काम करता है, इसीलिए वो बहुत सारी त्वचा के रोगों में आपको अच्छा करता है, और गर्म से नहाने से पक्का थोड़ा सा आपका जो तेल है शरीर का सेबेशियस ग्लैंड से वो जरूर निकलेगा, थोड़ा सा स्वेट ग्लैंड से वो जरूर निकलेगा, बट ये स्टीम बाथ और सोना बाथ से एकदम अलग है, ये जैसे कि आप गर्म पानी में लेटे हुए हैं वैसा अनुभव है और कुछ नहीं।
0: बहुत ही खूबसूरत आज की ये चर्चा रही, जैसे आपने कहा कि गर्म पानी के कुंड में लेटे हुए हैं, मुझे जगजीत सिंह की गजल में वो बीच में एक जोक सुनाते हैं कि एक सरदार जी 3 स्विमिंग पूल बना लेते हैं घर पे, एक गर्म पानी का स्विमिंग पूल, एक ठंडे पानी का स्विमिंग पूल, और तीसरा पूल होता है जिसमें कोई पानी नहीं होता। तो किसी ने सरदार जी से पूछा, सरदार जी गर्म पानी और ठंडे पानी का तो समझ में आता है, ये जो तीसरा जो खाली है इसमें पानी भी नहीं है, ये किस लिए? उन्होंने कहा, देखो सर्दियों के दिन में जब गर्म पानी में नहाने का दिल करे तो गर्म पानी में, गर्मियों के दिन में जब ठंडे पानी में नहाने का दिल करे तो ये ठंडे पानी में, और जिस दिन नहाने का दिल ना करे तो उस दिन ये खाली पूल में। और मैं जब भी जगजीत सिंह जी गजल के बीच में ये चीज सुनाते थे मैं खूब हंसता था, मैंने बोला गजल जैसी चीज के बीच में भी हास्य को कैसे ले आते हैं।
1: भैया प्राकृतिक चिकित्सा में उष्ण नहान एक इलाज है जिसमें गर्म पानी के टब में एक व्यक्ति को लेटाया जाता है, और ये स्लीप डिसऑर्डर्स में और इम्यूनिटी के डिसऑर्डर्स में इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है, और ये एक नॉर्मल से टब में सर बाहर निकाल के व्यक्ति को इसमें 10 से 15 मिनट तक पूरे शरीर को लेटाया जाता है। जो भाप नहान नहीं ले सकते हैं, जिनका बीपी बहुत फ्लक्चुएट करता है, उनको उष्ण स्नान देने की कोशिश की जाती है, और दूसरा आर्थराइटिस की महिलाएं या पुरुष जिनके सब जोड़ टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं उनमें उष्ण स्नान का बहुत अच्छा रोल है। जिनके बहुत ज्यादा जोड़ों में दर्द होता है उसमें इसमें थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट या मैग्नीशियम सल्फेट डाल के लिटाया जाता है जिससे उस जोड़ों में सूजन कम हो जाए और दर्द कम हो जाए, और जिन व्यक्तियों को नींद की समस्या बहुत ज्यादा रहती है उसमें इसको इस्तेमाल करके उससे लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो सल्फर स्प्रिंग का जो मजा आदमी लेता है वो हमारे प्राकृतिक चिकित्सालय में, या जो हॉट स्प्रिंग का मजा लेता है वो हमारे यहाँ एक तालाब तो नहीं है मगर एक टब जरूर है जिसमें हम उसको लेटा कर उसको वो थोड़ा सा मजा दे सकते हैं।
0: बहुत ही खूबसूरत आज की ये चर्चा रही है डॉक्टर साहब, बातों बातों में कितनी सारी नई चीजों पर आज जानकारी मिली है। वक्त कहता है कि यहाँ पर विदा लेना होगा वरना सवाल और भी हैं। दोस्तों आप बताइए कि स्टीम बाथ और सोना बाथ के बीच के अंतर को आपने समझा, सोना बाथ किस लिए लिया जाता है, उसके फायदे क्या हैं, वाष्प स्नान यानी स्टीम बाथ के फायदे क्या हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज हमें जानकारी हासिल हुई है। इन चीजों का सही लाभ लेने के तरीकों के बारे में भी आज डॉक्टर साहब ने हमें सही जानकारी दी है। आज इसी मोड़ पर लेते हैं विदाई, कल फिर होगी मुलाकात सहज स्वास्थ्य में। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से डॉक्टर राहुल मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब।
1: धन्यवाद।
0: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। अपने स्वास्थ्य को सही बनाए रखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो मनुष्य अपने घर में कर सकता है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी, उसे स्वस्थ रखने के लिए भी हम चीजें कर सकते हैं। स्टीम बात या सोना बात लेने के तुरंत बाद ठंडे पानी से नहाने की बात क्यों कही जाती है, ये भी बात समझ में आती है। तो दोस्तों इसी मोड पर कहते हैं अलविदा, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

हाय, मैं हूँ शबाब साबरी और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर स्वागत करते हैं आप सबका। हैप्पीनेस इंडेक्स की इस श्रृंखला में बहुत सी बातें सामने आई हैं और अगर पिछली कड़ी को देखें तो याद आता है कि हमने बात की थी कि क्या एंटर

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। हैप्पीनेस इंडेक्स को देखते हुए इन दिनों हम अपनी श्रृंखला पर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सी बातें समझ में आई और बहुत से सवाल अभी भी बचे हैं, क्योंकि हम पूरे मैकेनिज्म को समझ रहे हैं। हम वो खुशी जिसके लिए हम हर कुछ कर रहे होते हैं उसे क्रिएट कैसे करते हैं, और अगर हम देखें तो जवाब एक छोटा सा आ रहा है कि हम खुद क्रिएट करते हैं। सिचुएशन कुछ भी हो रही हो, लोग कुछ भी कर रहे हों, हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। अब ये अगर इतना आसान है तो फिर हम अभी तक क्यों नहीं कर पा रहे थे। ऐसी बहुत सी बातें हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज भी इसमें आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। अगर पिछली कड़ी को देखते हैं, पूरा मैकेनिज्म हम ले रहे हैं कि अभी तक एक्चुअली देखा जाए, मेरा पूरा जीवन, हम विश्व में भी देखते हैं, हर कोई काम कर रहा होता है खुशी के लिए। मतलब हर चीज़ के लिए, बड़ी से बड़ी चीज़ हो जाती है बेसिकली, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी हैप्पी, यू नो, एंड आई कैन डू सो मच, आई कैन डू सो मच फॉर एवरी वन एल्स ऑल्सो बिकॉज इट वॉज गिविंग मी हैप्पीनेस। लेकिन आपसे जब हमने इस पूरी श्रृंखला में बात की है तो एक बात जो सामने आती है कि ये तो मेरी अपनी क्रिएशन है। अगर ये इतना ही आसान है, क्योंकि बहुत से सवाल अब आने शुरू हो गए हमारे पास लोगों के, अगर ये मेरी अपनी ही क्रिएशन है, सो व्हाई आई हैव बीन ट्राइंग सो मच।
1: लाइक यू सेड, आई कैन डू सो मच फॉर हैप्पीनेस। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर हैप्पीनेस, यू हैव टू बी हैप्पी। सी, डूइंग और बीइंग, ये दो चीज़ें हैं। एक है बीइंग, मतलब हु आई एम, दैट बीइंग इनसाइड, एंड डूइंग इज व्हाट आई एम डूइंग आउटसाइड। तो एक है बीइंग हैप्पी एंड एक है डूइंग समथिंग फॉर गेटिंग हैप्पीनेस। तो एक है मैं हूँ खुश और दूसरा है मैं ये कर रही हूँ ताकि मुझे खुशी मिले। तो कहीं मुझे अंदर वो एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था तो इसलिए मैंने उसको बाहर ढूंढना शुरू किया। सिंपल चीज़, जो एक सबसे पहला जो बिलीफ सिस्टम जो हमने लिया कि हैप्पीनेस को हम सारा दिन दिनचर्या में अगर देखते रहे तो हम हैप्पीनेस को फ्यूचर में ढूंढते रहे। यू नो, हम अपनी वोकैबुलरी को भी अगर देखें, ये होगा
0: तो मैं खुश
1: तो खुश होंगी। यू नो, एक स्टूडेंट लाइफ से भी, इवन आज मुड़कर हम कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ वॉज द बेस्ट लाइफ, लेकिन व्हेन वी वर अ स्टूडेंट, या हम जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम कहेंगे जब ये खत्म हो जाएगा ना, स्कूलिंग खत्म हो जाएगी,
0: व्हेन आई विल बी अर्निंग ना, व्हेन आई विल बी इंडिपेंडेंट, या मैं जब कॉलेज जाऊंगी ना तब आई विल नो।
1: सो वाइल दो स्कूल ईयर्स, मैं ये कहती रहूंगी कि जब ये स्कूलिंग खत्म होगी ना, देन आई विल बी हैप्पी। जैसे ही मैंने ये कहा कि जब ये होगा देन आई विल बी हैप्पी, विच मीन्स कि अभी
0: I'm unhappy.
1: Yeah. अभी आई एम नॉट हैप्पी, बट ये होगा तो देन आई विल बी हैप्पी। तो फिर चलो स्कूलिंग खत्म हुई, फिर हमारी एजुकेशन खत्म हुई, फिर हम प्रोफेशन में आ गए, फिर हमने सोचा व्हेन आई गेट अ पार्टनर ना, व्हेन आई गेट इन टू अ रिलेशनशिप, एंड फिर वो देन आई विल बी हैप्पी, फिर वो सर्च स्टार्टेड फॉर दैट, फिर वो रिश्ता हुआ, देन आई से हमारे जब फैमिली हो जाएगी ना, देन आई विल बी हैप्पी। तो एवरी टाइम वो हैप्पीनेस पोस्टपोन ही होती रही कि कब ये होगा।
0: और आई थिंक जब एक स्टेज आती है कि जब नहीं हो रहा होता और लगता है कि आगे तो और कुछ नहीं हो पाना, तो फिर तब पीछे देखना शुरू करते हैं, देन सेट कि वी लॉस्ट ऑन एवरीथिंग,
1: तब हम कहेंगे वो वाले जो दिन थे ना
0: वो अच्छे थे।
1: सो हियर आई एम इन द प्रेजेंट, लेकिन वेयर एम आई लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, या तो जो होने वाला है या फिर जो हो गया। अगर मैं यहाँ खड़े होकर कह रही हूँ कि जो हो गया दैट वॉज वेरी नाइस, दैट वॉज वेन आई वॉज हैप्पी, बट दैट टाइम आई डेंट फील दैट। क्यों? क्योंकि दैट टाइम आई वॉज सिटिंग विद द थॉट कि जब ये होगा देन आई विल बी हैप्पी। तो प्रेजेंट में न रहकर हम हर मोमेंट में या तो बीते हुए पल के बारे में सोच रहे हैं या फिर आने वाले पल में। इसको भी जब कई बार हम ये सुनते तो हमें लगता नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, आई डोंट थिंक, बट इट इज़ लाइक दैट। एक दिन अगेन यू हैव टू लुक एट योर थॉट्स, आपकी हर थॉट को अगर आप चेक करें, वो थॉट या तो बीती हुई बात से रिलेटेड होती है या फिर आने वाली चीज़ पर होती है। तो आई कीप ऑन पोस्टपोनिंग माई हैप्पीनेस एंड देन डिपेंडेड ऑन इवेंट, कुछ होगा तब खुशी मिलेगी, लोग कुछ करेंगे तो खुशी मिलेगी। तो हैप्पीनेस वॉज ऑलवेज गेटिंग पोस्टपोन्ड इन द प्रोसेस। मेरा एक एक पल बीतता गया, हर पल में सिर्फ ये कहते हुए कि अगले पल वो खुशी आने वाली है जब कुछ ऐसा होगा। कंडीशन भी उस पर भी लग गई थी कि जब ऐसा होगा तब मुझे खुशी मिलेगी। अब जैसे ही हमारी हैप्पीनेस किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट हो जाती है, यू नो वी सॉ इन द लास्ट फ्यू एपिसोड्स कि हमारी खुशी बहुत सारी बातों पर डिपेंडेंट है, अचीवमेंट्स पर डिपेंडेंट है, हम जो काम करते हैं उस पर डिपेंडेंट, लोगों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, हमारे फिजिकल साधनों पर डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट है, एक सेकंड अगर हम सोचे इस बात पर कि अगर मेरी कोई चीज़ किसी पर डिपेंडेंट है तो मेरा अनुभव कैसा होगा, हाउ विल आई फील, कैन आई बी हैप्पी व्हेन देयर इज अ डिपेंडेंसी. जैसे ही
0: आई विल बी वेरी यू नो आई विल बी वेरी फियरफुल.
1: एक्जेक्टली, दैट्स द पॉइंट, दिस इज द क्रक्स. जिसको ये समझ में आ गया ना, उसको ये समझ में आ जाएगा कि जब तक डिपेंडेंसी है तब तक खुशी नहीं हो सकती.
0: क्योंकि फियर और हैप्पीनेस कांट बी,
1: फियर एंड हैप्पीनेस कैन नॉट बी टुगेदर. डर में है तो खुश कैसे हो सकते हैं. तो जैसे ही मेरी खुशी, क्योंकि आज मेरी खुशी बहुत सारी चीज़ों पर, लोगों पर, तो जितनी भी चीज़ों पर वो डिपेंडेंट है, मैं हर चीज़ के लिए डर में रहूँगी. लेट्स से मेरी हैप्पीनेस आप पर डिपेंडेंट है फॉर एग्जांपल, तो मैं हमेशा डर में रहूँगी कि ये ठीक है, ये मेरे से नाराज तो नहीं हुए, ये खुश है ना, ये संतुष्ट है ना, मैं इनके लिए क्या. फियर इनसिक्योरिटी, जहाँ डिपेंडेंसी है वहाँ इनसिक्योरिटी है. अगर मेरी खुशी साधनों पर डिपेंडेंट है, सारा दिन क्या है और इकट्ठे कर जाऊँ, फियर है कहीं इसको कुछ हो ना जाए, कहीं मेरे धन को कुछ ना हो जाए, कहीं इन, अगर मेरी खुशी इस पर डिपेंडेंट है कि मेरे बॉस को मेरा काम पसंद है कि नहीं, तो सारा दिन मेरा फोकस किस पर रहेगा.
0: ऑफ कोर्स ये कि मेरा बॉस खुश रहे, यू नो.
1: सी, इट्स ऑलवेज फियर. तो जहाँ फियर है वहाँ स्टेबिलिटी, क्योंकि जैसे फियर क्रिएट हुआ तो कौन सी क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट होंगे, इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज वेस्ट. द ओनली रीजन कि इतना कुछ करते हुए, इतनी मेहनत करते

0: natural. I will not be...
1: You'll not be artificial, yes.
0: See, because meri khushi aap pe dependent nahi hai. I can just be natural. I can be the way I am. Mujhe aapko khush karna nahi hai.
1: Yes, you know, we actually hate to be dependent.
0: We hate to be dependent, but actually hum sara din dependent hi hai. परिस्थितियों पर, लोगों पर, वस्तुओं पर, किन किन चीज़ों पर अपने आप को डिपेंडेंट करके रखा है. इतनी चीज़ों पर डिपेंडेंट होंगे तो खुशी तो फिर वो जीवन सारा डर में बीतता है. क्योंकि डिपेंडेंसी मतलब ये नॉर्मल है किसी के साथ भी. अगर मेरी खुशी इस पर डिपेंडेंट है कि माई फिजिकल हेल्थ शुड बी ओके, तो हमेशा क्या बना रहेगा
1: कि मेरी ये कुछ होना चाहिए इसको. यस शिवानी, इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली मेरी डिपेंडेंसी उस पर अगर मुझे दिख रही थी, बट वॉज इट ओनली डिपेंडेंसी और माई केयर वॉज नेचुरल? क्या मैं उसके प्रति, अगर मैं ऐसे हो जाऊँ कि फिर मुझे अपने आप को एक रहना है, तो मैं फिर उनके लिए जो मैं करती आ रही हूँ किसी के लिए भी, वो मैं नहीं करूँगी?
0: एग्जैक्टली. अब लेट्स लुक एट इट लाइक दिस. एक है जो मैं बाहर करती हूँ और एक है जो मैं करते हुए अंदर फील करती हूँ, जो मैं थॉट्स क्रिएट करती हूँ. तो अब मैं बाहर आपके लिए बहुत कुछ कर रही हूँ. आप आ रहे हैं, आपके लिए अच्छा खाना बन रहा है, आपके लिए सब कुछ, मैं सब कुछ कर रही हूँ बाहर से, लेकिन मैं अंदर से कैसा फील कर रही हूँ? अगर मैं डर में हूँ तो कौन सी वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही है? अगर मैं इनसिक्योर हूँ कि मेरी हर छोटी बात पर आपको ये लगे, आप तो वो करते हुए आपको सब कुछ मैं कर दूंगी अच्छी तरह से, लेकिन वाइब्रेशन कौन सी क्रिएट होने वाली है? What is the energy of the interaction? ये बहुत important है. इसी पर आज हमारे fundamental जो relationships इतनी मेहनत करते हुए भी क्यों उतने strong नहीं हैं जितने होने चाहिए. हम बाहर से शायद पहले से कई गुना ज़्यादा आज कर रहे हैं. You know, even if we look at parents and child, I feel कि when I was a child तो इतना कुछ नहीं होता था, मतलब आराम से ही बड़े हो रहे थे, आ रहे हैं घर खा रहे. आज तो पेरेंट्स इतना कुछ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन करते हुए जो एनर्जी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर वो इनसे क्योंकि आज हम उनको प्लीज करने के लिए बहुत कुछ करते हैं. ये बहुत डीप है, मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं हम शायद उतना समय नहीं दे पाते. लेट्स से अगर एक हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, उनको अंदर एक गिल्ट है कि हम उतना टाइम नहीं दे पाते. जब मैं गिल्ट में घर आती हूँ तो मैं और ज़्यादा ओवर करती हूँ कि मैं क्या करूँ ताकि मैं आपको खुश कर सकूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं मुझे. अब उस प्रोसेस के अंदर मैं आपको आपकी गलतियों के लिए इन अ पेरेंट चाइल्ड मैं कुछ नहीं कहती कि चलो मैं जितनी देर आपसे मिली हूँ ना आपकी हर बात मान लूँ, आपको जो चाहिए वो आपको दे दूँ, आपको किसी तरह मैं खुश कर दूँ, ताकि एक तो मेरा गिल्ट भी खत्म कर दो, आई फील गुड, एंड दूसरा आप भी कंप्लेन ना करें. सो वो रिलेशनशिप बहुत सुपरफिशियल हो गया फिर. और इसको करने से हुआ क्या कि मैं बच्चे का फायदा करने की बजाय
1: नुकसान
0: कर रही हूँ. बट इट ओनली ऑल हैपेंड, हमें पता नहीं चल रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं हर चीज जो कर रही हूँ वो बच्चे के अच्छे के लिए कर रही हूँ. इंटेंशन इज वेरी प्योर, अगेन इंटेंशन इज वेरी राइट, लेकिन क्योंकि वो गिल्ट की एनर्जी क्रिएट करके किया जा रहा है उसका रिजल्ट, तो वो क्या हो रहा है?
1: Somewhere we need to check our own emotions and why we are doing it.
0: Absolutely. तो अब जैसे आपके लिए कुछ करने की बात आई, suppose अब मुझे ये लगे कि मेरी खुशी आप पर dependent नहीं है, I can create my own happiness. मुझे आपको खुश करना नहीं है खुश रहने के लिए खुद, तो दिस विल नॉट मेक मी इनडिफरेंट, दिस विल मेक मी वेरी स्ट्रॉन्ग पहले. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब यहाँ एनर्जी अच्छी होगी, मेरे अंदर डर नहीं, इनसिक्योरिटी नहीं, तो मेरे अंदर क्या? स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी मीन्स हैप्पीनेस, लव, पीस. लव कुछ करने में नहीं होता है, लव होता है फर्स्ट आई फील लव. एंड इफ आई एम फीलिंग लव, क्या मैं आपको अच्छी तरह से खाना बना के नहीं खिलाऊंगे जब आप आओगे? ये तो बहुत छोटी चीज है, ये करना तो बहुत इजी है किसी के लिए भी. कोई आ रहा है, आप 10 चीजें बना दो खाने के लिए, लेकिन अंदर कौन सी क्वालिटी की एनर्जी क्रिएट की है? तो जब अंदर राइट एनर्जी क्रिएट होगी, जो आउटर एक्शन है क्या वो कभी भी गलत हो सकता है? इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल.
1: तो इट मीन्स जब मैं इंडिफरेंट भी होती हूँ तो तब भी अंदर कोई हर्ट है.
0: हर्ट ही है ना, ऑफ कोर्स हर्ट है.
1: मतलब ये कि अगर मुझे ये फील करना है कि मुझे इनके ऊपर डिपेंड नहीं होना, तो फिर मैं कंप्लीटली
0: मैं इनडिफरेंट एक्चुअली बनती नहीं. जैसे ही मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, अभी क्या है, मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, तो या तो मैं आपको बहुत ज़्यादा प्लीज करने की कोशिश करती हूँ, फिर अगर आप थोड़ा सा हर्ट, आप मेरे से खुश नहीं हुए, तो मैं एकदम से रिएक्ट करके या तो विड्रॉ हो जाती हूँ,

0: बोथ केसेस इट इज़ एन एक्सट्रीम केस. अगर मैं स्टेबल हूँ कि मेरी खुशी मेरे हाथ में है, मुझे आपको खुश करना नहीं है, मुझे खुश रहना है. अगर मैं खुश रहूँगी, मेरी वाइब्रेशन राइट होगी, मेरी वाइब्रेशन आप पर डिपेंडेंट नहीं है, मेरे मुख से गलत वर्ड निकल नहीं सकता. इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरे वचन, मेरे वर्ड्स का, मेरे एक्शंस का जो बीज है वो है यहाँ. अब सिर्फ क्या हो रहा है कि अंदर आई एम इन पेन, इनसिक्योरिटी इज पेन, तो मुझे बहुत एफर्ट करना पड़ता है. मुझे अच्छा बोलना है, मुझे अच्छा करना
1: अच्छा है. एक और बात, यहाँ पे मैं आपसे इनसिक्योर नहीं हूँ. ओके, आई रियलाइज दैट माई हैप्पीनेस इज माई ओन क्रिएशन एंड मुझे भय नहीं रहा, लेकिन मैं कहीं और से पेन लेकर आई हूँ बाहर से. जैसे हम कहते हैं ना कि हमें ये देखना चाहिए कि उनका मूड भी तो ऑफ है. सपोज मेरा ही मूड ऑफ है, ठीक है, और मैं, लेकिन मुझे आपके साथ मेरे रिएक्शन में, मुझे पता है आपके साथ मेरे रिलेशनशिप में इट्स नथिंग लाइक दैट, तो तब भी तो कई बार वाइब्रेशंस जो हैं वो इस तरह की जाएंगी जो कि विच विल नॉट बी वेरी गुड एक्चुअली इवन इफ.
0: एब्सोल्युटली, लेकिन वाइब्रेशंस तो हमारा, सी वाइब्रेशंस हमारे यहाँ बॉक्स है, इट्स लाइक अ बॉक्स दैट वी क्रिएट, एंड दैट्स वाई वी सेड पूरी यात्रा में हमें बहुत ध्यान रखना है पड़ता है सारा दिन, क्योंकि एक स्टेप पर जो एनर्जी क्रिएट की, लेट्स से सुबह मॉर्निंग में एक डिस्टर्बेंस घर में हुई, वो जो एनर्जी ऑफ डिस्टर्बेंस क्रिएट की वो सिर्फ घर तक नहीं रहती है, वो घर से फिर मेरे काम पर जाती ही है, और फिर एक बार वो थॉट का साइकिल ऐसा वाला शुरू हो जाता है ना, डिस्टर्बेंस वाला, ऐसे ही है, कुछ नहीं होता, कोई मेरी बात नहीं सुनता, सब यू नो, वो क्वालिटी की थॉट जो क्रिएट हो गई तो फीलिंग कैसी क्रिएट हो गई, इट इज़ ऑब्वियसली ऑफ डिस्टर्बेंस. तो दिस नाउ विल कैरी फॉरवर्ड मी विद मी टू वर्क. अब ऑफिस में भी फिर मेरा आज सारा दिन थोड़ा सा वैसे वाला बीतेगा, फिर व्हेन आई कम फ्रॉम वर्क टू होम आई विल अगेन कैरी फॉरवर्ड दैट एनर्जी, फिर उसी तरह व्यवहार. तो ये तो कैरी फॉरवर्ड तो हर जगह ही हो रहा है.
1: फिर मेरा रिलेशनशिप आपके साथ, जब मैं घर आई या जो भी मेरे हस्बैंड है या वाइफ है उनके साथ, तो मेरा रिलेशनशिप में मुझे पर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी. डिपेंडेंट, आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर हैप्पीनेस और लाइक यू नो, बट आई माई सेल्फ वॉज डिस्टर्ब्ड विद समबडी
0: एल्स, समथिंग एल्स. एक बार स्टेबिलिटी क्या है वो एक्सपीरियंस किया, तो वो स्टेबिलिटी पर्सन स्पेसिफिक नहीं होती है, सिचुएशन स्पेसिफिक नहीं होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी डिपेंडेंट नहीं है. एक बार हमने स्टेबल रहना सीख लिया, वो स्टेबिलिटी मींस कि हम डिपेंडेंट नहीं हैं. जब वो आपने सीख लिया, तो वो फिर आप चाहे मेरे साथ हैं, इधर हैं, उधर हैं, किसी के भी साथ हैं, वो आपकी स्टेबिलिटी इंटैक्ट है ना, क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं है. लेकिन जब डिपेंडेंट थी, तो इस पर भी डिपेंडेंट है, इधर भी डिपेंडेंट है, उधर भी डिपेंडेंट है.
1: So it means it'll be with all, or it'll be with none.
0: Absolutely. You know? That is the crux. Either you will be happy, you will be always happy, and if you are disturbed, you're going to be more or less disturbed. Yes, ये हो सकता है कि आपने मेरे साथ अच्छी तरह से बात की, तो मैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो डिपेंडेंसी है, और वो डिपेंडेंसी फिर क्या क्रिएट करेगी, हमेशा वही एफर्ट कि ये मेरे साथ ठीक रहे, वो भी मेरे से नाराज है, वो भी मेरे से नाराज है, कम से कम ये तो मेरे साथ ठीक रहे. इन द प्रोसेस आई विल सेंड यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी. तो हम जो एफर्ट हम सोचते हैं कि अगर हम अंदर स्टेबल होंगे तो यू मुझे इनडिफरेंट कर देगा, नहीं, हम समझते कि स्टेबिलिटी मीन्स इनसेंसिटिव, लेकिन स्टेबिलिटी विल मेक मी ऑल द मोर सेंसिटिव, क्योंकि स्टेबिलिटी मीन्स हमारी जो ओरिजिनल नेचर है, हैप्पीनेस, लव और पीस, ये नेचुरल फ्लो करेगी, इसको ज़बरदस्ती क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये मेरी नेचुरल होगी जो फ्लो करेगी, एंड ये वो चीज़ है जो सबसे पहले सामने पहुँचती है. इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल कि ये वो सामने नहीं पहुँचेगी. एंड वंडरफुल बात ये होती कि इफ़ आई रियली क्रिएट लव For you, even if I say something जो थोड़ा सा harsh है, suppose मैं कह दूँ मुझे नहीं लगता कि जो आज आपने पहना है वो इतना अच्छा नहीं है, but I'm very clear कि intention क्या है, what do I feel for the opposite person, तो आपको वो बात hurt नहीं करेगी, क्योंकि वो hurt की energy के साथ गई नहीं है. क्यों नहीं गई है, क्योंकि यहाँ hurt नहीं है. लेकिन हम क्यों hurt बहुत जल्दी experience करते हैं, क्योंकि जो हमें बोलने वाला है
1: वो दे उस intention से रहा,
0: intention से शायद नहीं दे रहा होता, लेकिन उसके पास energy वो वाली है ना. तो अगर मेरे अंदर वो energy insecurity की है कि मेरे कुछ बोलने से इनको पता नहीं बुरा ना लगे, या अब वो इनसिक्योरिटी के साथ मैं बहुत ध्यान से भी कोशिश करो ना बोलने की आपको कि शायद जो आपने पहना है, लेकिन वो फिर भी हर्ट कर जाएगा. क्यों करेगा? क्योंकि एनर्जी इनसिक्योरिटी की, वो पेन की नेगेटिव एनर्जी. सो व्हेन यू आर स्टेबल, आपको पुट ऑन नहीं करना पड़ता. आपको इतना केयरफुल नहीं रहना पड़ेगा कैसे बोलो, इनको बुरा तो नहीं लगेगा. कितनी सोच सारा दिन ये चलती है कि जो मैं बोल दूंगी ये बुरा तो नहीं लगेगा. क्यों बुरा लगेगा? बुरा लग नहीं सकता इफ इट हैज गॉन विद द राइट वाइब्रेशन, एंड देन द रेस्ट ऑफ द वर्क इज द ऑपोजिट पर्सन एनीवेज. लेकिन हम नेचुरल रहते हैं, इसको कहते हैं अपनी नेचर. नेचर मतलब वो जो हमारा स्वरूप है शांति का, खुशी का, उसको एक्सपीरियंस करना, और फिर जिस भी रिश्ते में जाएंगे वो वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली फ्लो करती है,
1: सहज होते जाएंगे.
0: एंड कर्म तो फिर ऑटोमेटिकली होता जाएगा. अच्छा, बट इट विल गो विद द राइट एनर्जी,
1: यू नो. सो अगेन चेकिंग इज ऑन यू नो कि आप कितने नेचुरल हैं,
0: और वो नेचुरल तब होते जाएंगे जब डिपेंडेंट नहीं है. तो एक एक अपनी डिपेंडेंसी को चेक करें, ये भी एक बहुत सटल चेकिंग है. क्योंकि कई बार हमें खुद नहीं पता होता कि हम कितने लोगों पर और कितनी चीज़ों पर डिपेंडेंट हैं. आपने पहले कहा था फ्रीडम, जहाँ डिपेंडेंसी है वहाँ फ्रीडम
1: नहीं है, बिल्कुल नहीं है. यस,
0: देयर इज, इट कैन नॉट बी टुगेदर. फ्रीडम और डिपेंडेंसी कट्ठे नहीं हो सकती. अगर मैं किसी पर डिपेंडेंट हूँ तो देन हाउ एम आई फ्री? फ्री मतलब उनके प्रभाव से, उस बात के अफेक्ट से आई शुड बी फ्री.
1: होता यह है कि बहुत सी चीज़ें बहुत इंटरलिंक्ड होती हैं. आप मेरे बॉस सपोज, ठीक है, आपकी जो हैप्पीनेस है मैं क्यों देख रहा होता हूँ? क्योंकि मेरा काम, मेरा पूरा दिन भर आपके साथ रहना है. मेरी बहुत सी चीज़ें और बाकी जुड़ी हुई होती हैं. आप मेरे हस्बैंड हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं मेरी, मेरा अगर नहीं हुआ, अगर ये रिलेशनशिप नहीं ठीक चला, बहुत कुछ और है. तो अगेन दैट इज़ वाई द इनसिक्योरिटी.
0: दैट्स ट्रू, बट रिलेशनशिप को ठीक चलाने के लिए क्या चाहिए? द राइट एनर्जी. तो ये नहीं है कि हमें करना बंद करना है, कि ऑफिस में जो करना है करना है, लेकिन अगर मेरी राइट एनर्जी होगी तो जो मैं कर रहा हूँ वो कैसे, वो अफेक्ट हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा क्या? इज इट एवर पॉसिबल कि मैं अंदर खुश हूँ, स्टेबल हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ बाहर, चाहे वो ऑफिस में है या वो घर में है, उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी? इट जस्ट नॉट पॉसिबल.
1: नहीं, बट देन होता क्या है कि सपोज बॉस का या हस्बैंड का भी लेते हैं, आपकी हर बात मानता जाता हूँ मैं, अपनी बात कहने का जो फ्रीडम है, जो फ्रीडम की आपने बात की, वो हिम्मत नहीं रख पाता क्योंकि मेरी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंडेंट हो जाती हैं.
0: पर जब वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी तब आप बिना रूड हुए या बिना हर्ट हुए भी अपनी बात सामने वाले को कह सकते. आज मेजोरिटी प्रॉब्लम क्या है, अंदर बहुत सारा कुछ भरा हुआ है, कह नहीं पा रहे हैं, और कह नहीं पाने के कारण अंदर ही अंदर रखा कर रहे हैं, खुश नहीं हैं. क्यों? बोल नहीं पा रहे हैं. तो कम्युनिकेशन is really not there actually. क्यों? Because I don't have the courage to speak the truth. And why do I not have the courage to speak the truth? Because I'm scared कि जैसे ही अगर मैंने कहा तो आपका disapproval तो नहीं मुझे मिलेगा, आप नाराज तो नहीं हो जाएंगे. ये insecurity मुझे अंदर ही अंदर घुटती जाती है, and then how can I ever be happy with so much of discomfort? That's why we realize कि ये सारा discomfort, ये सारा upheaval, ये सारी insecurity, ये बाहर किसी की वजह से नहीं है.
1: I have created it. And in fact, अगर आपने कहा कि बात भी तभी करो, even if you know that once you're stable inside, अगर हम इसी अनस्टेबिलिटी में, इसी जो भी हर्ट, एंगर जो भी है, उसमें जाके बात करेंगे,
0: इट वोंट वर्क अगेन. तब इट विल नॉट वर्क. क्योंकि सपोज मेरे को कुछ प्रॉब्लम है और मुझे कहनी है, लेकिन वो मुझे अपने पर्सपेक्टिव को स्टेबल रख के फिर कहनी है. लेकिन अगर वो इस भाव से कही जा रही है कि मुझे कंप्लेंट करना है आपके अगेंस्ट, या मुझे आपको थोड़ा सा नीचे दिखाना है, अपने आप को सुपीरियर फील कराना, या मुझे आपको क्रिटिसाइज करना है, तो कितने भी अच्छी तरह से उस बात को रख दो, इट जस्ट वॉन्ट वर्क. वो एनर्जी तो साथ में जाने ही वाली है. वी नॉट एबल टू सी दैट एनर्जी इज फ्लोइंग विद द वर्ड्स. हमें लगता है सिर्फ वर्ड्स ट्रांसमिट होते हैं.
1: तो मैंने बहुत अच्छी तरह से कहा.
0: फिर हम कहते हैं मैंने तो बहुत अच्छी तरह से उनको कहा था, पता नहीं क्यों नाराज हो गया, पता नहीं उनको क्यों वो बात बुरी लग गई है. वो जिस एंगल से देख रहे हैं दैट इज़ ओके देयर जर्नी, बट अगर मेरी कोई कही हुई बात या कुछ कहा सामने वाले को पहुंची है एंड द पर्सन हैज़ क्रिएटेड हर्ट, कहीं ना कहीं आई हैव टू चेक माई एनर्जी. मैं उनको नहीं चेक कर सकती, उनको नहीं चेंज कर सकती, अपने आप को तो चेक कर सकती हूँ. तो जो मैं वर्ड्स भेजती हूँ सामने, जो मैं एक्शन सामने करती हूँ, इट ऑल्सो गोज विद अ पैकेट ऑफ एनर्जी दैट आई हैव टू सी. एंड उसमें भी इम्पोर्टेंट ये है कि पहले कौन पहुँचता है,
1: एनर्जी पहुंचे.
0: एक थॉट क्रिएट कर रहे हैं, एक वर्ड्स भेज रहे हैं, पहले ही सोच लिया पता नहीं कैसे दिख रहे हैं आज, क्या पहना हुआ है वो, फिर से बोला हाँ आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं आज देखने में, व्हाट इज द रिजल्ट, व्हाट विल बी द रिजल्ट. हम देन आई विल से मैंने तो बहुत अच्छी तरह से बात की है उनसे, पता नहीं उनको ही पता नहीं मेरी बात पसंद क्यों नहीं आई. एंड फिर हम कहते हैं मैं आपको नहीं समझ पाते, आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड यू, आई कांट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई आई डू दिस, कि मैं सोचती कुछ और हूँ बोलती कुछ और हूँ. बीच में कन्वर्टर लगाया हुआ है, सोचो कुछ और पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, ट्रांसमिट करो, और ये एक्सपेक्ट करो कि सामने वाले ने तो सिर्फ यही रिसीव किया और जो मैंने बोला वो तो बहुत अच्छा था तो उसको अच्छा ही लगना चाहिए. फिर हम क्वेश्चन मार्क करते हैं वो अच्छे नहीं है, मैंने उनसे अच्छी तरह से बात की फिर भी उनको अच्छा नहीं लगा, देन द फोकस अगेन गोज आउटसाइड. जस्ट हैव टू चेक दिस.
1: यस, यू नो दैट्स अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच वी लर्न टुडे, इज कि हमें जरूर चेक करना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति ऐसे रिएक्ट क्यों कर, हम सिर्फ उनका रिएक्शन देखते हैं. वेरी ट्रू. और जब हम हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं तो अगर वो हैप्पी है तो ऑफकोर्स मतलब कोई अपना है तो हमारे किसी बोल से अगर कोई नाराज हुआ है या कोई दुख में है तो वी रियली नीड टू चेक कि हमने क्या किया था,
0: कौन सी एनर्जी भेजी थी साथ में.
1: यू नो समवेयर वी हैव टू सी, ये पेरेंट चाइल्ड में भी आ जाता है, हर रिलेशनशिप में इट कैन कम डेफिनेटली. तो आज जो बात हमारे सामने आई कि डिपेंडेंसी, मेरी अपनी हैप्पीनेस जो थी वो इसलिए बार बार ऊपर नीचे होती थी कि मैं अपने ही रिश्तों में कहीं ना कहीं बहुत डिपेंडेंट था. और दूसरी बात ये कि जब मैंने अपनों को भी परेशान होते देखा मेरी ही बात से, वो भी कहीं ना कहीं मुझे अफेक्ट तो करती ही है.
0: दैट्स व्हाई. एंड जैसे ही वो अफेक्ट करती है फिर आई सेंड द नेगेटिव. सपोज मैं अभी थोड़ा सा स्टेबल हूँ, मैंने नहीं आपको नेगेटिव एनर्जी भेजी, लेकिन आप हर्ट हो गए और आप रिएक्ट कर गए, वो रिएक्शन का मुझ पर प्रभाव तुरंत पड़ा क्योंकि डिपेंडेंसी है. फिर मैंने इमिजिएटली आपको कौन सी एनर्जी भेजी, फिर वो एक्सचेंज ऑफ
1: वो शुरू ही हो जाता है, वो पूरा प्रोसेस है. तो इनफैक्ट इट्स सो फास्ट कि हमें रियलाइज भी नहीं होता. तो इट कैन ओनली हैपन विद अवेयरनेस. वी रियली नीड टू चेक. कोई मन में सवाल उठता है तो या तो आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873666555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. जैसे शिवानी, हर बार हम ये कहते हैं कि जो भी हम समझ रहे हैं वो अभी तो ठीक रहता है, लेकिन जब हम साइलेंस में बैठकर उस पर विचार करते हैं या उसको सोचते हैं तो कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बैठता जाता है.
0: जब साइलेंस में बैठते हैं हम अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं, और अगर रोज सुबह जब प्रोग्राम देख रहे हैं सभी तो वी वुड रिक्वेस्ट कि इसको सुनना नहीं है सिर्फ, यू नो जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो जस्ट डोंट लिसन टू इट जैसे आपने सारा प्रोग्राम सुना, लेकिन अपने अंदर अपनी थॉट्स के साथ अगर आपको ये थॉट्स ठीक लगी, द वे ऑफ थिंकिंग, तो उसको अपनी थिंकिंग के साथ रिलेट करना है, तब फिर ट्रांसफॉर्मेशन लाना it will become simpler. Don't have to do too much effort with that. तो जैसे जैसे प्रोग्राम देख रहे हैं साथ साथ उसको भी करते जाएं, और फिर रोज सवेरे उठकर कुछ मिनट्स अपने साथ बैठकर इसको फिर कर सकते हैं.
1: तो क्या हम अभी कुछ लम्हे जो करें एक्सपीरियंस,
0: कंफर्टेबल होकर बैठे और अपने आप को देखें. आज दिन तक बहुत जगह खुशी ढूंढे, लोगों में, वस्तुओं में, परिस्थितियों में, सब जगह ढूंढते ही रहे इंतजार में कि कुछ होगा तो हम खुश होंगे. आई नाउ अंडरस्टैंड आई एम अ हैप्पी बींग. खुशी मेरी अपनी नेचर है, मेरा अपना स्वभाव है. हैप्पीनेस इज व्हाट आई एम, हैप्पीनेस इज व्हाट आई क्रिएट. मेरी खुशी किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, मैं ऑलरेडी खुश हूँ. As I go out today and tomorrow to work, let me just take this thought with me. I am a happy being, going to work and meeting people. And जैसे ही इस thought के साथ जाते कि I am already happy, तो खुशी फिर मांगने की नहीं, लेकिन औरों को देने की, औरों के साथ शेयर करने की शक्ति बन जाती. Tomorrow, instead of looking for happiness, let's give happiness. Om Shanti.
1: Om Shanti. In fact, ये equation हम बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं. हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास है. और आज इस thought के साथ कि मैं खुश हूँ, I'm a happy being, खुशी मेरी अपनी creation है, I can start giving. बहुत सी बातें हैं जो आपके साथ और अभी करनी है, खुशी के कुछ और आस्पेक्ट समझने हैं, लेकिन फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं. ओम शांति.

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

बधाई हो बधाई हो। चलिए बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना, आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे होंगे। जब खुशी से संपन्न गीतों को सुनते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है और आनंदित होकर नाचने लगता है ना। तो चलिए आज मंगल दिवस है, हनुमान जी की जय हो, जय बजरंग बली। आप सभी को ले चलते हैं आज के दिन के विशेष बातों पर, और मैं चाहूँगा कि आप जो ख़ास इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो आप सभी ख़ास हैं और नई किरण इस कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। देखते हैं आज का दिन क्या कहता है आप सबके लिए और हम सब के लिए। जो 19 मई 2026 आज का तारीख है और भारतीय समय के अनुसार देखा जाए तो 1948 राष्ट्रीय शके अधिक ज्येष्ठ मंगलवार और विक्रम संवत 2083 अधिक ज्येष्ठा शुक्ल पक्ष मंगलवार मुक्षीरा आज है, और मुक्षीरा नक्षत्र वालों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके साथ ही आज का दिन जो है विशेष इस्लामी हिजरी 1447 एक जिलहद मंगल हकवा आज है, और कुछ ख़ास लोगों का जन्मदिन है जैसे कि विशेष ग्रीस कर्नाड के बारे में बातें करेंगे, जो एक्टर भी रहे, थिएटर आर्टिस्ट भी रहे, राइटर भी रहे। तो चलिए बात करते हैं कुछ ख़ास लोगों का और आपको ले चलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ, लेकिन उसके पहले

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM। जी हाँ साथियों, जनगणना शुरू हो चुका है, तो आप अपने जो है समय पर चीज़ें बराबर अगर दे देते हैं तो सरकार को काफ़ी मदद मिल जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और आज एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: बहुत ही बढ़िया सर, नमस्कार सर। नमस्कार
1: जी, कल कहाँ गायब हो गए थे आप, तो आए ही नहीं कल।
2: अरे सर, कल थोड़ा काम था, मैं काम में बिजी हो गया था इसलिए चला गया था सर।
1: अच्छा, और बताइए।
2: तो आज मंगलवार है, बढ़िया गाना एक हनुमान जी का सुना देना सर। ऐसी दत्ती नहीं देखी फिर हनुमान में, ऐसी शक्ति नहीं देखी हनुमान में, जब मुख से बोले जय सिया राम जय सिया राम।
1: अच्छा,
2: आवाज आ रही है सर?
1: बिल्कुल आ रही है।
2: हाँ, आपकी आवाज हमारे को बहुत कम सुनाई दे रही है।
1: अच्छा, अभी ठीक नहीं आ रहा है?
2: अभी ठीक ठीक आ रही है।
1: हाँ
2: ठीक है। और साहब, आपकी शांति है सर?
1: बिल्कुल शांति है, बढ़िया है।
2: बहुत शांति के साथ में हम भी हैं, हम आपके साथ में है, तो हमारे को तो आपके बिना तो हम रह नहीं सकते, लेकिन क्या करें, मजबूरी के कारण काम होता है, डाला पड़ता है।
1: चलिए चलिए, बहुत बढ़िया,
2: धन्यवाद सर।
1: धन्यवाद धन्यवाद,
2: सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार जी, नमस्कार। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और 8:20 हो रहे हैं और आइए हनुमान जी को याद किया है गुड़ीलाल जी ने, तो उनको सुनाते हैं उनका प्यारा गीत। और बहुत ही सुंदर गीत है, ऐसी भक्ति नहीं जगत में। जी हाँ, जिसने अपने सीने में राम को राम को बसाया और उन्हीं के नाम से अपना काम किया। चलिए बात करते हैं, लेकिन उसके पहले ये खूबसूरत सा भजन आपके नाम।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और बड़ा ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं। चलिए इसी के साथ मैं आपको ले चलता हूँ एक बहुत ही सुंदर साक्षात्कार, अजय शुक्ला जी के बारे में बातें करेंगे उनके साथ में। और आज 19 मई है, तो 19 मई को ऊपर माउंट आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल और वहाँ के जन समुदाय मिलकर जो है ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है, रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। तो जो भी माउंट आबू में मुझे सुन रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप माउंट आबू में हैं तो ब्लड डोनेशन कैंप में ज़रूर जाइएगा और लोगों को ले जाइए। अगर आप ब्लड नहीं दे सकते हैं, जो युवा है उनको प्रेरित करके ले जाइए, उनसे करवाइए, और आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो ये भी एक अच्छा पुण्य कार्य है, रक्तदान श्रेष्ठ दान, रक्तदान महादान कहा जाता है। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बी.एस. अग्रवाल, दाहोद गुजरात से। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सारी आत्माएं त्रिकालदर्शी हैं, सुदर्शन चक्रधारी हैं, राज ऋषि हैं, चक्रवर्ती राजा हैं, सारे विश्व में चक्कर लगाने में आत्मा हैं। शुभ भावना, शुभ कामना, खुश रहो, खुशियां बांटते रहो, सबकी झोली भरते रहो, मांगते रहो, फूल जैसे खिले रहो, सदा ही मुस्कराते रहो।
1: ओम शांति। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में विशेष अजय शुक्ला जी हैं, जिनके हमने कुछ हेल्थ सीरीज आपसे पहले से सुनाए थे। आज फिर से हमारे बीच में है उपस्थित, और बीच में आप जो है काफ़ी हार्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा चल रहे थे, लेकिन फिर भी आपने उस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से रिकवर किया है। और अभी मेरे ख्याल से 4 से 5 साल हो गए आपको।
2: जी जी
1: 5 सालों के बाद हम जो है वापस आपका साक्षात्कार रेडियो मधुबन में हो रहा है। तो अजय शुक्ला सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
2: बहुत धन्यवाद भाई जी, सादर प्रणाम। बहुत खुशी हो रही है एक लंबे समय के बाद, लेकिन पूरी जीवंतता के साथ मुलाकात हो रही है।
1: जी जी,
2: बहुत आनंद में है और बहुत खुश है
1: जी। मैं चाहूँगा कि क्या हुआ था, कैसे कहानी बनी और फिर कैसे आप ठीक हो गए, थोड़ा सा वो प्रक्रिया जरूर सुनाइए हमें।
2: बहुत अच्छी बात है। एक्चुअल में क्या है, जीवन में इस प्रकार के उतार चढ़ाव होते हैं, और मनुष्य के साथ में चूंकि हम लोग आत्म स्वरूप में तो हैं, लेकिन आत्मा के साथ साथ में जीव आत्मा भी है, शरीर भी है, तो शरीर और आत्मा का बैलेंस करते हुए पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन कई बार जीवन में बहुत सारे हिसाब किताब होते हैं, और उस हिसाब किताब के कारण थोड़ी सी परिस्थितियां आती हैं। नॉर्मल रूप से आज कुछ चीज़ें राज रोग रोग के रूप में हैं, जैसे डायबिटीज है या बाकी और बीपी है, ये सब चीज़ें नॉर्मल व्यक्ति को होती है। लेकिन अचानक 2015 में डायग्नोसिस हुआ था मुझे, और मॉर्निंग में अमृत बेला चाय पीने के बाद में बैठे हुए थे, तो अचानक से लगा कि चक्कर आके गिर गए, चाय भी छूट गया, तो दीदी को लगा कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। थोड़ा सा उन्होंने हार्ट पंप किया, चूंकि नॉलेज था उनको इस बीच में, और हमारी बहनें थी उन्होंने सबको बुला लिया था, और वैद्य जी चूँकि हमारे यहाँ सेंटर के पास में रहते हैं उनका भी आना हो गया था, तो उन्होंने चूँकि सभी पैथी के अंदर कुछ न कुछ ऐसे रेगुलर प्रैक्टिस के साथ साथ में कुछ जुगाड़ होते हैं, और वो जुगाड़ भाई जी क्या होता है कि अट्रेंडम किसी व्यक्ति के लिए बड़े एक रिकवरी के रूप में सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने कुछ सुंघाया, कुछ उनकी मेडिसिन थी आयुर्वेदिक, और उससे मुझे कॉन्सियस आया, फिर भी सबके सेटिस्फेक्शन के लिए इंदौर मेडिकल कॉलेज में, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया था, और उन्होंने कहा था कि यहाँ भले आप एडमिट हो, लेकिन कुछ दवाएँ मैं आपको दे रहा हूँ, तो जैसे कि एक हफ्ते में रिकवरी हो जाएगी, आप वापस आ जाएंगे। तो एक हफ्ते में रिकवरी हुई, तो पता चला कि डायग्नोसिस होने के बाद में शुगर का लेवल है वो 350 हो गया था। तो 350 में बॉडी ने सपोर्ट नहीं किया, और कई बार उन्होंने बताया मेडिकली कि 200 या 300 के आसपास रहता है, पेशेंट अपन नॉर्मल वर्क करते रहते हैं, उनको नहीं मालूम होता है, लेकिन मालूम होने के बाद में थोड़ा सा वो कॉन्शियसली अवेयर हो जाते हैं। तो उस अवेयरनेस को देखते हुए उन्होंने कहा कि अभी ऐसा करते हैं, और कुछ मेडिसिन उन्होंने दिया। हालांकि मेडिकल कॉलेज में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ आपस में, डॉक्टर्स और नर्सेज और पेशेंट हमारे बीच में, हमने बोला कि भाई मेडिकल साइंस का नियम है कि आप एक दिन के अंदर 1200 mg से ऊपर डोज नहीं दे सकते, और एक्सट्रीम केसेस में 1500 दे सकते हैं, तो आप तो उससे ज़्यादा दे रहे हैं। तो सीनियर डॉक्टर ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई देखो, हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम एक्सपर्टाइज के रूप में जो सपोर्ट आपको देते हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है जूनियर डॉक्टर का कि इस मेडिसिन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करें आप। अगर इंक्रीज़ करते हैं तो पेशेंट कम टाइम में ठीक तो हो जाता है, लेकिन एक नई डिजीज़ के साथ में फिर वापस आ जाता है। तो वो सारा चलता रहा, फिर लास्टली वैद्य जी ने कहा कि धीरे धीरे दवाइयाँ बंद कर दीजिए, और मैं कुछ आपको आयुर्वेदिक दवाई देता हूँ, तो उसको आप फॉलो करिए। तो लगभग वैद्य जी 6 महीने के अंदर एक नॉर्मल जो रूटीन होता है, मैंने 150 और 200 के आसपास में आ गया था। हालांकि आइडियल नंबर तो 100 एंड 125 के आसपास में, बाकी पूरा बॉडी का चेकअप किया तो ब्रेन से लेकर और हार्ट से लेकर सब ओके था, केवल शुगर लेवल मेंटेन इंक्रीज होने के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया। और मुझे लगता है कि कई बार हम लोग जो है चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, तो वो लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाता है। तो लंबा टाइम किस में लगा, क्या कारण था?
2: उसका ठीक होने में ट्रीटमेंट तो हो गया था, और मैं भी एनालिसिस कर रहा था कि जो वैद्य हैं अभी, हालांकि उनका हायर एजुकेशन नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस पिछले 30-40 वर्षों की काफ़ी पुरानी थी उनकी, तो उस आधार पर उन्होंने दवाइयां दी। फिर मैंने बड़े स्नेह प्यार से उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप ये बताइए कि ये शुगर एलोपैथिक में तो सोल्यूशन नहीं है, होम्योपैथिक में भी नहीं है, लेकिन एलोपैथिक और होम्योपैथिक में नहीं होने के कारण हम आप मुझे बताइए कि जी अच्छा बंद कर दिए ठीक है। तो उस समय भाई जी क्या था कि मैंने वैद्य जी से पर्सनल रिक्वेस्ट किया कि आयुर्वेद में इसका सलूशन है या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देखो हमारी करीब 35 साल की प्रैक्टिस में इसको हम ये नहीं कह सकते कि जड़ से हम समाप्त कर देंगे, और शुगर किसी की बॉडी के अंदर समाप्त नहीं होती है, ये रहती है, फ्लैक्चुएशन इसमें क्रिएट होता है। और इसका बेसिक रीजन चूँकि आप साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं और आप इस पर काम करते हैं तो आप जानते हो। तो मैंने इसका एक बारीकी से स्टडी किया और कुछ और वैद्य से मिलने का प्रयास किया। उन्होंने भी कहा कि जब तक जीना है आपको तब तक ये आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना है, ये केवल एक फिगर को मेनटेन कर देगा, या जिसको आप फास्टिंग बोलते हैं वो 120 के आसपास ले आएगा, या आफ्टर मील 150 ले आएगा, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन भी होगा इसमें, आगे पीछे भी होगा। कभी यार आपने यात्राएं कर ली, कई बार आपने लिखने पढ़ने का कार्य आपने कर लिया, स्ट्रेस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दबाव तो ब्रेन और हार्ट दोनों पर पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने अंडरस्टैंड किया, और अंडरस्टैंड करने के बाद में फिर मैंने पाया कि बहुत सारे पैथी में डिस्कशन किया, मेडिकल साइंस के काफ़ी एक्सपर्ट से मिला, चूँकि परिचय था ही उन लोगों के बीच में, उठना बैठना था। तो फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुँचे कि हम अगर अपनी दिनचर्या को सेट कर लेते हैं तो केवल शुगर ही नहीं, शुगर से रिलेटेड जितनी भी और बीमारियां हैं, चाहे आज की डेट में हाइपरटेंशन से लेके और थायराइड और छोटे छोटे बच्चों के साथ में ये प्रॉब्लम हो जा रही है, तो उन सब चीज़ के एनालिसिस करने के बाद मैंने पाया कि रूटीन जो दिनचर्या है इसमें परिवर्तन किया जाए। अब इसमें परिवर्तन के लिए एक बात दिमाग में आई कि जब मैं लोगों को मनोविज्ञान से संबंधित, बिहेवियर से संबंधित अच्छी प्रैक्टिस कराने के लिए कम्युनिकेट करता हूँ, चाहे वर्बल कम्युनिकेशन हो, रिटन कम्युनिकेशन हो, तो मेरी ड्यूटी है कि ये जो एक्सपर्ट बोल रहे हैं इन डिजीज को लेके, इसको थोड़ा सा डीप में जाके एनालिसिस किया जाए। तो हमने उस पर काम करना भाई जी शुरू किया, और परिणाम ये हुआ कि दिनचर्या सेट करने के कारण अब जो शुगर लेवल है वो 125 से 150 के बीच में मेंटेन रहता है। सारी चीज़ें पुरानी रिकवर हो गई, लगभग मुझे 6 महीने से 1 साल का समय लगा, लेकिन अब दिनचर्या इतनी विधिवत तरीके से सेट हो गई है कि अब किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम 5 साल पहले एनर्जेटिक अपने को फील करते थे, दिन भर काम करते थे, क्योंकि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम 11 से 5 के बीच में ही होता है, 6 आवर हमको काम करना ही है, तो सुबह लिखने पढ़ने का काम है, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सब शुरू हो जाता है। तो अभी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मेरे केस को देखते हुए चूंकि काफ़ी मित्रगण मेरे से जुड़े हुए हैं तो उन्होंने भी अपने आप को अपडेट कर लिया, और उन्होंने कहा कि जो आप फॉलो कर रहे हैं हम भी वो फॉलो करेंगे। तो अभी विदाउट एनी मेडिसिन पिछले 5 साल से हूँ, और अभी 1 साल में दिनचर्या में भारी सुधार किया है। इसका एक परिणाम ये हुआ कि जो फिजिकल लेवल पर थोड़ी बहुत कहीं कठिनाई थी वो भी समाप्त हो गई। तो उसे आप अगर कहेंगे तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करूंगा कि दिनचर्या में क्या चीज़ फॉलो कर रहे हैं, जिससे कि अपना जो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास विधिवत तरीके से संपन्न हो सके।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे वो चीज़ें आपने किया, और मैं चाहूँगा कि विधिवत थोड़ा थोड़ा बताइए आप।
2: जी, तो अभी मैंने जो दिनचर्या आरंभ की है, हम लोग रूटीन में चूँकि यज्ञ से जुड़े हुए हैं मधुबन से, और आना जाना यहाँ होता है, तो इसी दिनचर्या को मैंने शुरू में भी फॉलो किया था कि सुबह उठने के बाद में अमृत बेला से चाय कॉफ़ी दूध ये सब लेते थे, उसके बाद में क्लास के बाद में 8 बजे के बाद ब्रेकफास्ट लेते थे, दिन में फिर भोजन होता था, शाम के टाइम में फिर अगेन रेस्ट करने के बाद में दूध चाय है टोली है, फिर शाम को रात को भोजन कर रहे हैं, उसके बाद में सोते सोते भी 1 गिलास दूध का होता था, बीच में बोनस के रूप में जितनी भी टोली मिले उसे भी स्वीकार कर लेते थे। तो ये सब दिनचर्या पर मैंने जब विधिवत स्टडी किया तो ये पाया कि जो हमारा पाचन तंत्र है उसको रेस्ट का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, और उसमें जो इनपुट हम दे रहे हैं हमारी बाह्य समझ के हिसाब से हमें लगता है कि ये सब चीज़ अगर लेते हैं तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा और हम खुश रहेंगे, और यही हम चूंकि आसपास अपने वातावरण में देखते भी हैं, चाहे सेंटर की बात हो या बड़े सेंटर की बात हो या रिट्रीट सेंटर की बात हो, तो सभी जगह जाने के बाद ब्रेकफास्ट एक कॉमन चीज़ है, लंच कॉमन चीज़ है, डिनर कॉमन चीज़ है, तो ये कॉमन चीज़ से हट के दृष्टि और दृष्टिकोण शिफ्ट नहीं हो रहा था। लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैंने जब इस पर काम किया तो मैंने पाया कि जो बॉडी के अंदर जिसे हम बोलते हैं हमें भूख लग रही है या प्यास लग रही है, तो इसके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि प्यास का मतलब है कि आप बहुत दौड़ के आए या धूप में से आए तो आपको प्यास लगी। एक्चुअल में पानी की जो भूमिका है वो बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करना है, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक गिलास पानी भी हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पी लेंगे तो वो पॉसिबल हो जाएगा कि वो टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। लेकिन जो जीवन की भाग दौड़ है और हबड़ दबड़ है या जिसको अपन बोल सकते हैं आकुलता व्याकुलता है, वो सहज रूप से जीवन में हॉबी हो जाती है। हमें लगता है कि हम बहुत आत्मिक रूप से शांत स्वरूप हैं, लेकिन अपनी दिनचर्या को जब हम ऑब्जर्व करते हैं या जैसे बाबा बोलते हैं साक्षी होकर देखना, तो परमात्मा की जो वाणी है कि साक्षी होकर देखना, एक्चुअल में वो साक्षी नहीं हो पाते, हम उसके साथ में फुल्ली अटैच हो जाते हैं, डिटैच नहीं हो पाते। और वो डिटैच नहीं होने के कारण हमें लगता है कि ये हमारी अल्टीमेट रिक्वायरमेंट है, ये हमें चाहिए ही चाहिए, सब तो ऐसा कर रहे हैं ना। और उस बीच में अगर हमने नहीं लिया ब्रेकफास्ट या नहीं चाय दूध लिया, तो जो हमारे आसपास का परिवेश होता है वो वैसे ही बाध्य करता है जैसे लौकिक दुनिया में बाध्यता होती है। अरे भैया, बाबा के बच्चे इतने दिन से सब कुछ ले रहे हैं और अभी आप अचानक थोड़ा बंद कर दिए, किसने आपको कहा, किसने गुरु मंत्र दे दिया, क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो सब लोग मधुबन में, चूंकि सब एक जुड़ाव भी है गुरु शिष्य के रूप में, मित्र के रूप में, आत्मिक रूप से, तो सबने दबाव डाला। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपके सामने बिल्कुल स्वस्थ हूँ, आप मुझसे प्रेम करते हैं, मैं आपको दिनचर्या बताता हूँ अपनी। तो मैंने उनसे कहा कि सुबह जो उठ के आप दूध चाय या कॉफ़ी ले रहे थे, इससे को मैंने प्रणाम कर लिया, इसकी जगह मैंने नींबू पानी और सेंधा नमक या काला नमक यूज करता हूँ, तो ये मैं ले लेता हूँ। और क्लास के बाद में जो एक नाश्ते का दबाव होता है कि 8 बजे नाश्ता करना है, लेकिन जो आप स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, स्ट्रेस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो हमने कहा कि ये जो टाइमिंग है इसको हम थोड़ा सा एक बड़ी रेंज में शिफ्ट करेंगे, मैंने 8 से 10 के बीच में हमने नाश्ते का प्रोजेक्ट बनाया। और नाश्ते में जो रूटीन में हम अनाज से जुड़ी चीज़ें खा रहे थे उसको हमने भाई जी बंद कर दिया और हमने फ्रूट्स या सलाद का प्रयोग किया जो भी अवेलेबल हो जाए। और ऐसा नहीं है कि बहुत महंगे फल या जो सीजन में नहीं है वही लेना है, जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, मन में संतोष करते हुए संतोषम परमम सुखम, ये तमाम वैल्यूज़ के साथ में हमने इस ब्रेकफास्ट को लिया। और फ्लैक्चुएशन की सिचुएशन में 2 घंटे का समय रखा कि थोड़ा सा आगे भी पीछे हो जाए तो चीज़ें हमारे को तनाव के फॉर्म में हमारे अंदर क्रिएट ना हो। तो उसका परिणाम रहा कि बिल्कुल पीसफुली रिलैक्स होकर हमने ब्रेकफास्ट अपना किया और दिन में जो भोजन हम कर रहे थे वो वैसे ही मेंटेन है जैसे पहले है, जो भी उपलब्ध हो जाता है सेंटर पर या मधुबन में तो वो हम ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उसका भी टाइम हमने 12 से 3 रख दिया। अगर कॉन्शियसली हम 12 बजे रख देते हैं और 12 बजे भोजन नहीं मिल पाता है किसी कारण से, तो जो स्ट्रेस होता है हमें वो भी हमारे शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। तो स्ट्रेस यहाँ चाहे वो सकारात्मक हो, अच्छी चीज़ों के लिए हो, तनाव तो तनाव है, उसका जो इफेक्ट है वो बॉडी पर पड़ता है। तो इसके कारण हमने भोजन का समय 12 से 3 के बीच में रखा है। 3 बजे के बाद में और अगले दिन तक हम कोई भी चीज़ नहीं लेते हैं, जब भी भूख लगती है फ्रूट्स लेते हैं, सलाद लेते हैं और पानी पी लेते हैं। ये जो एक धारणा थी कि फ्रूट्स के बाद में या ये फल खाने के बाद में पानी नहीं पी सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिसर्च में पाया गया है कि सारे जूस जो बनते हैं वो पानी डाल के ही बनते हैं, तो उसमें कहीं वो तो बल्कि लिक्विड फॉर्म में क्रिएट हो जाता है, अच्छा है। तो ये बाकी दिनचर्या में फ्रूट और सलाद हमारा है, एक टाइम भोजन है, सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल मेंटेन हो रही है। इवन माइनस में चश्मा था मेरा 5 पॉइंट, वो भी 1 पॉइंट कम हो गया, बल्कि डॉक्टर आश्चर्य कि भैया हम चेकअप कर रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है, मैंने कहा एक टाइम भोजन है, बाकी फ्रूट और सलाद है और रिलैक्स है और पुरुषार्थ करने का ज़्यादा समय है मेरे पास में। तो ओवरऑल ये पिक्चर क्रिएट हो पाई और हमने कहा 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक भोजन करना ना करना इसमें हम उलझे हुए हैं, 6 से 10 हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिसलिए मनुष्य जीवन मिला है उस क्षेत्र में हम काम ज़्यादा कर पा रहे हैं। तो ये हमको बेनिफिट हुआ। ऐसी सुबह दिनचर्या 3 बजे से 9 बजे तक के बीच में, चूँकि ब्रेकफास्ट है नहीं और फल सलाद इजिली अवेलेबल हो जाता है,

0: रात जो है बीच बीच में खा लिया करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है एंगेज कर देता है, जिसके वजह से हमारी प्रॉपर डाइजेशन भी नहीं होता और उसके वजह से बहुत सारी चीज़ें फिर क्रिएट हो जाती हैं। क्योंकि जो काम करने वाला बंदा अगर 2400 घंटा काम करेगा तो वो कहीं ना कहीं थक के या तो काम छोड़ देगा तो निश्चित तौर पर वो चीज़ें जो हैं हमें फिर बहुत बड़ा जो है हार्ट अटैक या फिर डायबिटीज़, इस तरह के जो अलग अलग कॉम्प्लेक्सिंग जो रेगुलर लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हैं वो क्रिएट हो जाती हैं, और जिसके वजह से फिर हम सोचते हैं कि अब मेडिसिन खाना पड़ेगा, अब ये करना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें हमने करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुख्य धारणा की बात जो है वो आती है जहाँ पर आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा रेस्ट करने की बात है, लीवर को रेस्ट देने की बात है। अगर वो चीज़ें आप मैनिपुलेट कर लेते हो, समझ लेते हो, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे पहली बात तो क्या है कि हमारा जो तीन टाइम खाने का जो नाश्ता एंड खाना और फिर रात का खाना, ये तीन टाइम का जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, ऐसा लगता है कि इसको तोड़ा नहीं जाए तो बस उसको आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी बीमारियों को सेट कर सकते हैं और अच्छी लाइफस्टाइल को जी सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बंद करना है या ख़त्म कर देना है, बस उसमें देखना है कि आपको आप अगर एक हफ्ता 15 दिन भी अगर आप चेंज करके अपने आप को जी पाते हैं तो निश्चित तौर पर आपका मनोबल भी बढ़ जाता है और आपको समझ में भी आ जाता है कि मेरा हेल्थ कैसा बन रहा है। तो ये एक प्रैक्टिस की बात है, जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये एक क्रिया योग है जिसको हम करके ही अनुभव कर सकते हैं। हर व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल चीज़ें हो सकती है कि आपको कैसे उसको सेट करना है, तो एक बार आप सेट हो जाते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम आता ही नहीं है। तो अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अपना अनुभव साझा करने के लिए, और मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सबके लिए।
1: हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये सारे के पीछे एक सार निकल के मेरे दिमाग में और आया, वो ये आया है जैसा भी आपने कहा पूरे प्रोग्राम को कंक्लूड करते समय, कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ें हम बंद कर रहे हैं या बहुत बड़ा कोई पनिशमेंट हम दे रहे हैं। इसमें एक ग्रेट सेटिस्फेक्शन की बात है कि हमने पिछले 50 वर्षों तक इसी दिनचर्या को फॉलो किया है, और जब हमें ये जानकारी हुई तो कई बार ऐसा लगता है कि जो हुआ है उससे हम लर्निंग क्या ले सकते हैं। तो लर्निंग लेसन इसमें ये है कि देखिए, जीवन और जीवन की प्रक्रिया में जब आप उपस्थित रहेंगे तो आप पुरुषार्थ करेंगे ना, तो आपकी उपस्थिति के लिए और बेहतर तरीके से उपस्थिति के लिए, इसमें एक छोटा सा प्रयोग भी मैंने किया कि अगर हमारे शरीर में चोट लग गई और उस चोट को रिकवर करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं ली, लेकिन अगर 24 घंटे का आपने उपवास कर लिया तो वो चोट या दर्द से आप मुक्त हो जाते हैं। कारण उसके पीछे है, जैसे मोबाइल में आप गूगल में सर्च करते हैं तो कुछ सेकेंड्स लगते हैं चीज़ों को वापस आने में, और जब तक वो सिस्टम में जाए और सेटेलाइट से कनेक्ट हो और वो चीज़ें आपके पास आएँ तो उतना ही शरीर में ये टाइम लगता है। आपको लगता है जो भूख लग रही है उससे पीड़ा हो रही है, लेकिन वो पीड़ा को अगर आप इमीडिएट सपोर्ट ना करके फ्रूट्स और बाकी चीजें देते हैं तो वो जो तेजी से क्रिएट होने वाली एनर्जी है वो पूरी बॉडी में सर्च करती है कि रोग कहाँ है, और वो रोगों को ही खा लेती है, रोगों को अपना भोजन बना के खा लेती है। और तब तक आप फ्रूट और सलाद जब लेते हैं तो उसे रिलैक्स मोड में जाने का मौका मिलता है, और उस समय बॉडी क्योर होने लगती है, और सेल्स जो टूट जाती है किसी कारण से वो सारा का सारा वहां पर जुड़ने और जोड़ने की क्रिया में लग जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है, और इस पर बहुत सारी रिसर्च भी हुई है, और उस रिसर्च के माध्यम से एक जबरदस्त क्रांतिकारी परिवर्तन भी आ रहे हैं। लेकिन इसमें जो एक बड़ा मैसेज है जो भाई जी ने पूछा भी, वो ये है कि आप अपने जीवन में 365 दिन अगर इस नियम को पालन करते हैं और आप परिस्थिति बस अगर 15 दिन कंप्रोमाइज भी करते हैं तो 350 डेज का आपका जो नियम है वो 15 डेज में अप डाउन होने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप बिल्कुल हेल्दी महसूस भी कर सकते हैं और उस हेल्दी हैप्पीनेस की प्रैक्टिस को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। और परिस्थिति और ज़्यादा बिगड़ती है तो 50 डेज और भी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो भी अगर बच्चों की मार्किंग आप देखें तो 365 में से 300 नंबर मिलना वो एक ग्रेट परसेंटेज को इंडिकेट करता है। तो 300 दिन भी अगर आपने ये धारणा बना ली तो आप जीवन पर्यंत बिल्कुल स्वस्थ भी रहेंगे और मन आपका हैप्पी रहेगा और अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया, और क्या होता है प्रक्रिया, अगर आप 15 दिन 20 दिन भी अगर आप इस ब्रेक डाउन करते हैं अपने रूटीन को और फल फ्रूट और सब्जियों पे आप रहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको जो है बड़ा सुकून मिल जाता है। तो इस सुकून को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बीमारी जो है खुद ही सेटल डाउन हो जाता है। हमारे अंदर के सेल्स वो काम करना, बॉडी अपना जो है

मेंटेन करना और फिर रिपेयर करना शुरू कर देता है, जिससे बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो या कहीं स्टक एनर्जीज हो वो अपने आप जो है खींच कर ला कर आपको ख़त्म कर देता है। तो निश्चित तौर पे ये एक प्रक्रिया है जिसे आपको समझना है या जानने की ज़रूरत है। जब आप जानेंगे समझेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी और बड़ा अच्छा लगेगा आपको। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। 8:51 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ। चलिए, अजय शुक्ला जी की बहुत सारी बातें आपने सुनी और निश्चित तौर पे अजय शुक्ला जी की जीवन से जुड़ी हुई बहुत सुंदर अनुभव आप तक पहुंचाया हमने। आशा करूँगा आपको अच्छा लगा होगा। चलिए बात करते हैं गिरीश कर्नाड के बारे में। जी हाँ, ये एक जाने माने कवि, रंगमंच कर्मी, कहानी लेखक, नाटककार, फिल्म निर्देशक और फिल्म अभिनेता बने। गिरीश कर्नाड को 1994 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। 1998 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलावा पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने हिंदी में उत्सव मंथन, इकबाल, डोर जैसी फिल्मों में काम किया। तो आइए इनके बारे में अधिक जानकारी हासिल करते हैं और अगर आपको उनके बारे में पता हो तो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगेगा हमें आप उनके बारे में क्या जानते हैं। जी हाँ, गिरीश कर्नाड एक अच्छे एक्टर रहे और जब इनकी जो है एक क्या कहते हैं, हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका।
1: हाँ जी नमस्कार, ओम शांति, रमेश भाई जी।
0: जी जी जी जी, बताइए कैसे हैं आप।
1: मैं बहुत ही अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, बाबा की कृपा है, सभी मेरे प्यारे मित्रों की, बहनों की और आप सभी आरजे भाई बहनों की।
0: जी
1: और
0: जी,
1: बहुत ही अच्छी बातें भी हो रही है, बहुत ही अच्छे भजन भी सुनाए और जानकारी भी बहुत ही सुंदर दी आपने। और आज तो मंगलवार है तो श्री हनुमान जी का एक भजन सुनना चाहूँगा।
0: जी,
1: तो मैं दो लाइनें भी गा लेता हूँ। राम के बिना हनुमान न चले, हनुमान के बिना राम न चले, ऐसा कोई सुंदर भजन सुना देना गुरु।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और मेरे सभी प्यारे मित्रों को, बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। ओम शांति,
0: ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया याद करने के लिए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। ये थे दयाराम जी जो अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा कर रहे थे। तो आइए, गिरीश कर्नाड जी की जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा। अभी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: लखपति हो जाता है लेकिन बड़प्पन ब्लड में रहना जरूरी है, पीढ़ियों दर पीढ़ियों में होना चाहिए।
3: ये दास्तां है एक ऐसे कलाकार की जिसे सही मायनों में स्कॉलर कहा जा सकता है। इन्होंने वो मकबूलियत हासिल की जिसका सपना बहुत से कलाकार देखते रह जाते हैं। नाम गिरीश कर्नाड।
4: क्यों सर, और कितने दिन तक ये हार्ट अटैक का ड्रामा होने वाला है?
5: पप्पी को थोड़ा बदलने तो दो।
4: अजी पप्पी बेटी तो काफी बदल गई है।
3: जन्म हुआ 19 मई 1938 में। पूरा नाम गिरीश रघुनाथ कर्नाड। जन्म का स्थान था माथेरान। उस जमाने में यह बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था और आज की तारीख में यह महाराष्ट्र राज्य का हिस्सा है। इनकी माँ कृष्णाबाई दरअसल बहुत ही कम उम्र में विधवा हो गई थीं। उनका एक बेटा भी था। इनकी माँ ने नर्स की ट्रेनिंग लेना शुरू ही किया था, जहाँ पे इनकी मुलाकात हुई डॉक्टर रघुनाथ कर्नाड से, जो कि बॉम्बे मेडिकल सर्विसेज में काम किया करते थे। क्योंकि वो जमाना था जब विधवा स्त्री का पुनर्विवाह बड़ा कठिन माना जाता था। उसके बाद आर्य समाज पद्धति से इन दोनों लोगों का विवाह हुआ और इस शादी से 4 बच्चे हुए, जिसमें तीसरे नंबर पर पैदा हुए गिरीश कर्नाड।
6: आप जो कह रहे हैं सही है, मगर जरा ये बताइए कि स्टेट में मशहूर घराने कितने हैं आपके ख्याल से? हाँ, ठीक उंगलियों पर गिने जा सकते हैं।
3: गिरीश कर्नाड साहब की शुरुआती पढ़ाई लिखाई मराठी में हुई, जगह सिरसी कर्नाटक। बचपन में ही इन्होंने बहुत सी नाटक मंडलियां देखी थी। ऐसे रंग कर्मी देखे थे जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर नाटकों का मंचन किया करते थे।
7: मैं उन विदेशी लंगूरों को एक पैसा नहीं दूंगा। अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य मुझे मालूम है, समझे? और तुम बच्चों को राजनीति के झमेले में पड़ने की क्या जरूरत है? ऐसे ही हमारे देश में झमेले कम है क्या?
3: ये बाल गंधर्व के नाटक युग से बड़े प्रभावित थे। बचपन में ही यक्षगान का भी इन पे गहरा असर हुआ। इनका परिवार फिर धारवाड़ चला गया, जो कि कर्नाटक में है। तब इनकी उम्र तकरीबन 14 बरस रही होगी।
6: मेरे दादा सतनाम नागर पहले आदमी थे जिन्होंने कार खरीदी थी।
3: जहाँ एक तरफ कला के प्रति इनका रुझान नजर आता था, दूसरी तरफ पढ़ाई में भी ये बड़े ही तेज थे। इन्होंने मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में बीए की डिग्री हासिल की।
6: कम ऑन, पुराने जिक्र अब भूल जाओ।
3: सन 1958 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद ये चले गए इंग्लैंड, जहाँ पर इन्होंने फिलोसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई लिखाई करी। ये ऑक्सफोर्ड में मैकडेलन में रोड्स स्कॉलर की तरह एनरोल हुए थे, जहाँ पर इन्होंने एमए की डिग्री हासिल की।
7: बहुत अच्छा।
3: ये बात भी वाकई प्रशंसनीय है कि सन 1962 से लेकर सन 1963 तक ये ऑक्सफोर्ड यूनियन के प्रेसिडेंट बने थे। इन्होंने तकरीबन 7 बरस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के लिए काम किया। उसके बाद अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर इन्होंने मन बना लिया पूरी तरह से अपना जीवन लेखन में ही लगा देंगे। तब तक किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे जाकर ये बहुत बड़े नाटककार, साहित्यकार और एक जबरदस्त अभिनेता बनेंगे।
5: एक बार फिर बोलो।
3: ये वो वक्त भी था जब एक छोटे से थिएटर ग्रुप के साथ ये जुड़े, जिसका नाम रहा द मद्रास प्लेयर्स। सन 87-88 में इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के लिए चुना गया बतौर विजिटिंग प्रोफेसर। ये फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर भी रहे और संगीत नाटक अकादमी के चेयरमैन भी।
5: All right.
3: इनके लिखे नाटक बड़े मकबूल हुए, खासतौर पे मोहम्मद बिन तुगलक लिखा नाटक तुगलक, जिसका मंचन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की रिपर्टरी कंपनी ने किया था। डायरेक्टर थे अब्राहम अलकाजी और तुगलक की भूमिका निभाई थी महान अभिनेता मनोहर सिंह ने, और इसका मंचन हुआ था दिल्ली के पुराने किले में। फिर तो नागमंडल रहा या फिर है वदन, हर नाटक को सभी ने बहुत सराहा। धीरे धीरे इन्होंने फिल्मों में स्क्रीन राइटिंग का काम भी शुरू किया। इनकी फिल्म आई संस्कारा, जो कि यूआर अनंत मूर्ति के एक नॉवल पे आधारित थी, जिसे डायरेक्ट किया था पत्थभिराम रेड्डी ने। इस फिल्म को प्रेसिडेंट्स गोल्डन लोटस अवार्ड से नवाजा गया।
7: बात बिल्कुल सही है, पर हम इसे भूल जाते हैं ना, दैट इज आवर नेशनल ट्रेजेडी।
3: 80 के दहाई में आया टेलीविजन सीरियल मार्गरी डेज को कौन भूल सकता है, जो कि महान साहित्यकार आर के नारायण की लघु कथाओं पर आधारित था, जिसे शंकर नाग ने डायरेक्ट किया था, और इसमें इन्होंने स्वामी के पिता की भूमिका निभाई थी।
8: पिताजी, आप अच्छे पिताजी हैं।
3: टेलीविजन पर एक साइंस मैगजीन शो आया करता था, टर्निंग पॉइंट, जिसके ये एंकर रहे। इन्होंने फिल्में भी डायरेक्ट करना शुरू कर दिया था। वंश वृक्ष एक ऐसी फिल्म रही जिसके लिए इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्शन के लिए नवाजा गया था। इनके साथ ही थे बीवी कारंत।
7: और इस यादें का मतलब क्या है? तुम यही समझ बैठे हो ना कि रुपया ने पैसे आसमान से गिरते, यहाँ से जो चाहो ले लो।
3: हिंदी सिनेमा में श्याम बेनेगल के साथ भी इनकी जोड़ी खूब जमी। 1975 में आई फिल्म निशांत, 76 में मंथन, इन फिल्मों में भी इनकी भूमिका खूब सराही गई। ये कमर्शियल सिनेमा से भी ज्यादा दिन दूर नहीं रहे। सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर को कौन भूल सकता है, इन्होंने कन्नड़ा फिल्मों में भी काम किया और रंगमंच को भी नए नए नाटक देते रहे।
7: ये कैसे चलेगा, 8 दिन हुए गधे की तरह घर में बैठा।
3: इनके निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है, जब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस मद्रास में काम कर रहे थे, तो इंग्लैंड से वापस आने के बाद इनकी मुलाकात हुई सरस्वती गणपति से। 10 साल तक इनका रिश्ता चला और फिर ये विवाह के बंधन में बंध गए। शादी से इन्हें 2 बच्चे हुए। गिरीश कर्नाड साहब को पद्मश्री से नवाजा गया, पद्म भूषण से नवाजा गया, कन्नड़ा साहित्य परिषद अवार्ड से भी नवाजा गया, और साथ ही सन 1994 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी इन्हें दिया गया। इनकी अवार्ड की फेहरिस्त वाकई बहुत लंबी है।
7: लेकिन इन लोगों को कलम, स्याही, कागज, कागज के नीचे रखने को पैड सब चाहिए, मार्क्स तो हम लोगों से ज्यादा मिलते नहीं।
3: अभी तो इन्हें बहुत काम करना था, लेकिन 10 जून सन 2019 में 81 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। भारतीय साहित्य, शिक्षा, रंगमंच, सिनेमा, हर क्षेत्र के ये एक बहुत ही बड़ी शख्सियत बन के उभरे।
9: जला रहा है मुझे, पैसे का दिखावा कर रहा
10: है। हाँ साहब, ठीक कहा आपने।
11: महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए
0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और बड़ी प्यारी बातें आपने गिरीश कर्नाड जी के बारे में सुना, आशा करूंगा आपको अच्छा लगा होगा। तो ये 19 मई 1938 को इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, और माथेरान महाराष्ट्र में, जो बिल्कुल मुंबई के पास में एक हिल स्टेशन है, और इनका मृत्यु 10 जून 2019 को हुआ बेंगलुरु में। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं सीधे आपको ले चलता हूँ समाचारों की तरफ। वक्त हो गया है समाचारों का, दिल्ली चलते हैं, समाचार सुनते हैं।
12: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: कल को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाज रानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
2: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
4: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य $19 अरब है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
5: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
6: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
7: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रोक रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को एक महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
8: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत। सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें, जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था, स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत 100 अरब डॉलर अमरीकी के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी पांच नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है समाचारों के बाद। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं। और आइए, जैसे कि हमारे मित्र खास दयाराम जी ने याद किया और हमारे गुड़ीलाल जी ने भी याद भेजा बड़े प्यार से, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं तो किस एरिया में सुन रहे हैं वो थोड़ा सा बताइए। और रेवदर मंदार की तरफ में अगर आपको रेडियो सुनाई दे रहा है और आप रेडियो रेवदर मंदार की तरफ या अपने गिरवर की तरफ अगर आप रेडियो सुन रहे हैं तो ज़रूर कॉल करके हमें बताइएगा, हमें अच्छा लगेगा। उस तरफ रेडियो कौन कौन सुन रहे हैं ये हमें पता चलेगा। हेलो जी, नमस्कार।
1: जी सर नमस्ते, सुरेश बोलता हूँ, जखाना से। गुड मॉर्निंग, ओम शांति। कैसे हो सर?
0: ओम शांति, बहुत बढ़िया। आप सुनाइए, आप कैसे हैं?
1: बस हम तो सुन रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जो हम नहीं सुने।
0: बिल्कुल,
1: कहीं भी जाए, कहीं भी जाए तो हम सुन पाते हैं, क्योंकि हम तो मोबाइल पे सुनते हैं, इंटरनेट पे। तो कहीं भी जाइए, हमारे साथ में रेडियो बजता रहेगा। तो ये सुविधा अभी मोबाइल में बहुत अच्छी हो गई है। पहले तो क्या कर रेडियो लेके चलना पड़ता था और रेडियो लेके जाना था तो अच्छा ही नहीं लगता था। रेडियो कहाँ बाहर ले जाते हैं, तो कभी कभी जगह पे तो नेटवर्क भी अच्छा नहीं आता था। लेकिन मोबाइल में तो हम कहीं भी जाए इंटरनेट पर तकलीन सुना देता है। नेटवर्क की समस्या होनी नहीं चाहिए, बस नेटवर्क की समस्या होगी तो नहीं सुना देगा। तो ऐसा नहीं है, तो आप कभी भी छोटे से गांव में जाइए, वहाँ भी टावर लगा हुआ है। कभी
0: बिल्कुल
1: पहले तो ऐसी समस्या थी, लेकिन आज नहीं है। तो आज के दिन की बहुत शुभकामनाएं सर। मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, तो दाना हो जाए। एक सारंगपुर वाले कलयुग में पर्चा पूरे हनुमान जी कष्ट व्यंजन देव सत्य से। तो गुजराती गीत पे बहुत अच्छा जैमिनी, जो जैमिनी नाम है उसने गाया है, बहुत अच्छा गाना है, आवाज भी बहुत अच्छी है उसकी। तो सुना देना सर हमारी तरफ से आपको, हमारे सभी मित्रों को नमस्ते।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ओम शांति, ओम शांति। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद याद करने के लिए, शुक्रिया आपका। और आइए आगे बढ़ते हैं। और जैसे अभी सुरेश जी ने बात किया और रेडियो सुनकर उन्हें अच्छा लगता है, तो हमें भी खुशी होती है, हमें भी अच्छा लगता है। और हनुमान जी का दिन है तो हनुमान जी के गीत सुनाएंगे ही। और बात करते हैं अब नीलम संजीव रेड्डी के बारे में। जी हाँ, नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। और नीलम संजीव रेड्डी भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हुए पहली बार विफलता प्राप्त हुई और दूसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने पर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। पहली बार इन्हें वीवी गिरी के कारण बहुत कम अंतर से हार स्वीकार करनी पड़ी। तब ये सरकार द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए थे जब अप्रत्यक्ष रूप से हार गए। दूसरी बार गैर कांग्रेसियों ने इन्हें प्रत्यक्षी बनाया और ये विजय हुए। और इस तरह से वीवी गिरी को राष्ट्रपति चुनाव जीतने में सफलता प्रदान कराई। तब ये लगता था कि नीलम संजीव रेड्डी ने एक ऐसा मौका गंवा दिया है जो अब उनकी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। लेकिन वक्त ने फिर इनका साथ दिया। राजनीति के पंडितों ने अनुमान और दावे धरे रह गए। भाग्य की शुभ करवट ने नीलम संजीव रेड्डी जैसे हारे हुए योद्धा को विजयी योद्धा के रूप में परिवर्तित कर दिया। ये भारतीय राजनीति के एक ऐसे अध्याय बनकर सामने आए जो अनिश्चितता का प्रतिनिधित्व करते नजर आए। और संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। तो कभी कभी ऐसा लगता है जिंदगी में हार हो गई, अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन पता नहीं ऐसी कोई बिजली चमक जाती है तो वो हार जीत में बदल जाती है। और हमें वो लगता भी है कि ये तो जैसे सपना हो सच हो गया। और नीलम संजीव रेड्डी के जीवन में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो आइए इनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, लेकिन उसके पहले एक बहुत ही प्यारा सा भजन के बजाय एक फिल्मी गीत आपको सुनाने वाला हूँ। ये 1963 का सुंदर गीत है, मन्नाड़े की आवाज़ में आपको सुना रहे हैं, सबको नाच नचाता। तो ये एक बहुत ही सुंदर है और शिवम जी ने इसे संगीत से सजाया है। भरत व्यास जी ने इस गीत को लिखा है। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: सबको नाच न

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और कन कन में भगवान 1963 का ये एल्बम से आपने ये गीत सुना, सबको नाच नचाता और नजर नहीं आता। ये खूबसूरत गीत आपने अभी सुना। और इस पहले पुराने फिल्मों में होता क्या था कि एक गाने के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश रहती थी, और इस गाने में जो मेन एक्टर है उसको बड़ा बनाते हुए बताया गया है, और बहुत ही प्यारा सा संदेश कि सबको नाच नचाता और नज़र नहीं आता वो कौन है। जी हाँ, निश्चित तौर पे वो कौन चित्रकार है, अर्थात ईश्वर जो है हम सभी को, हम सभी के रक्षक है, हम सभी के पालन करता है। तो निश्चित तौर पे उनकी जो भावना है, उनके जो विचार है, इस संगीत के माध्यम से, इस गीतों के माध्यम से उनको याद करने का एक सुंदर तरीका मिल जाए, और हम चाहे भजन के माध्यम से, स्मरण के माध्यम से या चिंतन के माध्यम से भगवान को जितना ज़्यादा याद करेंगे उतना ही जीवन जो है सुगम और सुंदर बनता जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और नीलम संजीव रेड्डी के बारे में बातें चल रही थी, और इनका जन्म 19 मई 1913 को एल्लूर ग्राम अनंतपुरम जिला में हुआ, आंध्र प्रदेश में जो है, और एक किसान परिवार में इनका जन्म हुआ। नीलम संजीव रेड्डी की छवि कवि, अनुभवी राजनेता और कुशल प्रशासक के रूप में बन गई। इनका परिवार संभ्रंत तथा भगवान शिव का परम भक्त था। इनके पिता का नाम नीलम चिन्नप्पा रेड्डी था, जो उस समय राजनीतिक में काफ़ी काम करते थे, और पुराने कार्यकर्ता और प्रसिद्ध नेता टी प्रकाशम के बिल्कुल साथी थे। तो पिता की सारी चीज़ें जो है अपने बच्चे में, यानी नीलम संजीव रेड्डी ने बचपन से ही पिताजी को राजनीति में काम करते हुए देखा था, तो इनको उनके सारे गुण समझ में आ गए थे। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और सुंदर भजन की तरफ। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। आइए इसके साथ ही मैं आप सभी को ले चलता हूँ, बातें कर रहे थे हम लोग नीलम संजीव रेड्डी के बारे में। इस बीच नीलम संजीव रेड्डी जो है थियोसोफिकल हाई स्कूल आईडीआर मद्रास में उनकी शिक्षा पूरी की और फिर आर्ट्स कॉलेज अनंतपुर में बाकी की शिक्षा उन्होंने पूरी की। इस बीच हुआ ऐसे कि महात्मा गांधी का उस समय आह्वान हो रहा था कि जो भी युवा है वो भारत के आज़ादी में, आज़ादी के संग्राम में आए, तो महात्मा गांधी के आह्वान पर इसने पढ़ाई छोड़कर नौकरी त्याग कर स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए और फिर तब से मात्र 18 वर्ष की आयु से आंदोलन में कूद पड़ने के कारण इन्हें भी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और सविनय अविज्ञा आंदोलन में भाग लिया और उस समय आकर्षण का केंद्र बने जब उन्होंने विद्यार्थी जीवन में सत्याग्रह किया। ये युवा कांग्रेस के सदस्य बने और राष्ट्रवादी कार्यक्रमों में हिस्सेदारी की। इस दौरान उन्हें कई बार जेल की यात्राएं भी करनी पड़ी और फिर इस तरह से वो सभी आंदोलन में भाग लेने के बाद, जेल की यात्राएं करने के बाद ये पार्टी से अच्छे जुड़े रहे तो इनका नाम भी होने लगा और फिर धीरे धीरे 1964 में राष्ट्रीय राजनीति में आ गए और फिर लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में स्टील और खाद्य मंत्रालय के प्रधान बन गए। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और सुंदर भजन की तरफ जो हनुमान जी का है, जिसे दयाराम जी ने याद किया था। सुनते रहो मस्कराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। चलिए, बड़ा प्यारा सा गीत आपने सुना, निश्चित तौर पे आपको बड़ा आनंद आया होगा गीत सुनकर। तो ये लखबीर सिंह का सुंदर गीत आपने, भजन आपने सुना। अब आइए आगे बढ़ते हुए एक और शख्सियत के बारे में बातें आपको बताना चाहूँगा, नाना साहब के बारे में। सन 1857 की बात है। जी हाँ, उस समय भारत आज़ादी का पहला संग्राम के शिल्पकार बने नाना साहब। इनका नाम डोंडू पंत था और नाना साहब ने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतृत्व किया। पेशवा बाजीराव बालट बट दूसरे ने नाना साहब को गोद ले लिया था। इतिहास में नाना साहब को बालाजी बाजीराव के नाम से भी संबोधित किया जाता है। और 1857 को जब कानपुर में अंग्रेजों ने प्रशासन किया तो नाना साहब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी तथा पेशवा की उपाधि भी इनको मिल गई थी। नाना साहब का अदम्य साहस कभी कम नहीं हुआ और उन्होंने क्रांतिकारी सेनाओं का बराबर नेतृत्व करते अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा जो है परेशान कर दिया। अंग्रेज इनके नाम से डरने लगे थे। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नाना साहब 1864 में इनका जन्म वेणुग्राम निवासी माधव नारायण भट्ट के घर में हुआ और इनके पिता पेशवा बाजीराव दूसरे के सुगोत्र भाई थे। पेशवा बाजीराव जिस समय दक्षिण छोड़कर गंगा तटस्थ बिट्टू कानपुर में रहने लगे थे तब उनके साथ दक्षिण में पंडित माधवराम भट्ट और उनकी पत्नी गंगाबाई भी वहीं रहने लगी। इसी भट्ट दाम्पत्य से एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो भारत की आज़ादी के इतिहास में अपने अनुपम देश प्रेम के कारण सदैव अमर हो गए। पेशवा बाजीराव पुत्रहीन होने के कारण इसी बालक को गोद ले लिया था और कानपुर के पास गंगा तट के किनारे बिट्टूर में ही रहते हुए बाल अवस्था में ही नाना साहब ने घुड़सवारी, मल्लयुद्ध और तलवार चलाने का बहुत ही कुशल नेतृत्व प्राप्त किया और अजीम अल्लाह खान नाना साहब का वेतन भोगी कर्मचारी भी बना था। तो ये थी कुछ खास बातें नाना साहब के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। चलिए आज के दिन जन्म में उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनका जन्मदिन आज है। 1824 में आज के दिन सन 1857 के भारतीय आज़ादी के पहला संग्राम के शिल्पकार नाना साहेब का जन्म आज के दिन 1824 को हुआ। आधुनिक तुर्की के निर्माता थे कमल आतातुर्क। 1881 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। कवि, रंगमंच कर्मी, कहानी लेखक, नाटककार, फिल्म निर्देशक और फिल्म अभिनेता गिरीश कर्नाड का जन्म आज के दिन 1938 को हुआ। अंग्रेजी भाषा के बहुत ही पॉपुलर भारतीय लेखकों में से एक रसिक बैंड। 1934 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। भारत के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, 1913 में इनका जन्म हुआ था। और भारतीय तमिल सिनेमा की बहुत ही पॉपुलर पार्श्व गायिका पी लीला का जन्म भी आज ही के दिन 1934 को हुआ। लंबी कूद के भारतीय खिलाड़ी टीसी योहनन, 1947 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ। और भारतीय फ्रीस्टाइल पहलवान 86 किलोग्राम वर्ग में खेलते हैं दीपक पुनिया, 1999 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। तो जिनका भी जन्मदिन आज है उन सभी को रेडियो मधुबन करता है।

0: चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे शाम 4 बजे सफर कार्यक्रम में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति।
1: As the guru initiated 2 of his elder sons in the battle of Chamkaur Ki Gadi, he heard on reaching the forest of Machhiwada

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खुद को समय दें, क्योंकि आत्मा की गहराई तक पहुंचने में धैर्य और ध्यान दोनों की आवश्यकता होती है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्ते, ओम शांति। मैं हूं हरीश मोयाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते।
1: सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। समझदारी और सूझबूझ से काम करते हैं तो सफलता भी मिलती है और परिस्थितियों का सामना भी कर सकते हैं। कैसे वो तो आप आशियाना सुनेंगे तभी जान पाएंगे। अगर तेली त्वचा है तो देंगे आपको बहुत ही सुंदर नुस्खे। और जी हाँ, जिंदगी आसान नहीं, आसान बनानी पड़ती है। वो भी आप आशियाना सुनिए, आपसे चर्चा जरूर करेंगे और कुछ बनाएंगे खास। तो वो खास रेसिपी क्या बनाने वाली हूँ वो भी सस्पेंस रहेगी, अभी नहीं बताऊंगी। और आपको टंग ट्विस्टर पूछने वाली हूँ, तैयार हो ना सभी? तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास न करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा न करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, ध्यान से सुनेंगे। आपकी समझदारी और सूझबूझ से काम करते हैं तो सफलता भी मिलती है और परिस्थिति का सामना भी कर सकते हैं। समझदारी और सूझबूझ से काम करते हैं तो सफलता भी मिलती है और परिस्थिति का सामना भी कर सकते हैं। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार एक कहानी के साथ करना चाहूँगी कि अवलदीन और उसकी माँ बहुत ही गरीब थे। उनका निर्वाह बहुत ही कठिनाई से होता था। कभी कभी तो उनके पास दो वक्त की रोटी तक का जुगाड़ भी नहीं हो पाता था। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, एक दिन अवलदीन दिन भर काम ढूंढता रहा, परंतु उसे कोई काम नहीं मिला। शाम को थक करके जब वह घर पहुंचा, तब माँ ने उसे बताया कि घर में अब चावल दाल थोड़ा ही बचा है। दोनों ही चिंता में पड़ गए कि कल भी काम नहीं मिला तो निर्वाह कैसे होगा। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। दोनों चौंक पड़े कि कहीं कोई अतिथि तो नहीं। अवलदीन ने दरवाजा खोला तो सामने एक वृद्ध व्यक्ति को खड़े पाया। वृद्ध ने पूछा, क्या मुस्तफा दर्जी का घर यही है? अवलदीन ने कहा, जी हाँ, आप कौन हो? मैं तुम्हारे पिता का भाई हूँ। कई वर्ष पहले मैं विदेश चला गया था, अभी अभी लौट रहा हूँ। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? वृद्ध ने पूछा। अवलदीन की माँ ने उत्तर दिया, उनकी मौत को तो कई वर्ष हो गए, बस यही एक बेटा है, घर की हालत बहुत खराब है। वृद्ध ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, बेटा अवलदीन ये लो पैसे और बाजार से कुछ खाने को ले आओ। उस रात सबने पेट भर करके खाना खाया। सोने से पहले परस्पर बातचीत करते हुए मुस्तफा के भाई ने कहा कि मैं पर्याप्त धन कमा करके आया हूँ और आपके साथ ही रहूँगा। हाँ, कल सुबह अवलदीन को कुछ काम से बाहर ले जाऊँगा, हम लोग संध्या होने से पहले ही लौट आएंगे। वास्तव में वह मुस्तफा का भाई नहीं था, एक जादूगर था। प्रातः होने पर वह अवलदीन को लेकर के शहर से बाहर एक जंगल में पहुँच गया। वहाँ एक गुफा थी जिसका मुँह एक भारी पत्थर से बंद था। दोनों ने मिलकर के पत्थर को हटाया। वृद्ध ने भीतर एक रास्ता दिखाते हुए कहा, नीचे उतर करके सीधे अंदर चले जाऊं, वहां एक दीपक पड़ा होगा, उसे उठा लाना। अवलदीन गुफा के भीतर चला गया। भीतर एक कोठरी थी जिसमें घुसते ही उसकी आंखें चौंधिया गई। वह आश्चर्यचकित होकर के इधर उधर देखने लगा। कोठरी हीरे मोती और तरह तरह के रत्नों से भरी हुई थी। अवलदीन ने उनमें से कुछ रत्न उठा करके जेब में भर लिए और कुछ अपनी झोली में डाल लिए। इतने में उसे अपने चाचा की आवाज़ सुनाई दी, जल्दी से दीपक मुझे पकड़ा दो। अब अवलदीन का ध्यान दीपक की ओर गया। वही कोने में एक पुराना दीपक पड़ा था जिस पर धूल जमी हुई थी। अवलदीन ने दीपक उठाया और गुफा के द्वार पर पहुंचा। चाचा जी, मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर खींच लीजिए, उसने कहा, पहले दीपक मुझे पकड़ा दो। वृद्ध ने कहा कि भाई पहले दीपक मुझे पकड़ा दो। अवलदीन अपनी बात पर डटा रहा और जादूगर अपनी बात पर। इस तरह कुछ समय बीत गया तो जादूगर को गुस्सा आ गया और बोला, अच्छा तो फिर यही रहो। उसने गुफा के मुंह पर भारी पत्थर रख दिया और स्वयं वहां से चला गया। अवलदीन बहुत चिल्लाया, परंतु किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। थक करके वह जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ में दीपक था। दीपक को किसी तरह रगड़ लग गई और एक जिन्न उसके सामने प्रकट हो गया। अवलदीन भय से कांपने लगा। इतने में ऊंची आवाज में वह जिन्न बोला, बोलिए मालिक, क्या आज्ञा है? अवलदीन ने कांपते हुए स्वर में पूछा, तुम कौन हो? जिन्न ने उत्तर दिया, मैं इस दीपक का सेवक हूँ। जिसके पास ये दीपक रहता है वही मेरा स्वामी होता है। अब अवलदीन की जान में जान आई। वह बोला, मुझे मेरे घर पहुँचा दो। जिन्न ने पलक झपकते ही अवलदीन को उसके घर पहुँचा दिया। अवलदीन ने जिन्न से कह करके एक बहुत बड़ा महल बनवाया और अपनी माँ के साथ उसमें सुख से रहने लगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर समझदारी और सूझबूझ से काम करते हैं तो सफलता भी मिलती है और परिस्थितियों का सामना भी कर सकते हैं। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार जिस पर जरूर ध्यान देंगे। और आइए सुनेंगे गीत, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 100.4।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में आपको देंगे बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। अगर तेली त्वचा है तो क्या करेंगे, यदि त्वचा इतनी तेली हो कि मेकअप भी नहीं ठहरता हो तो बर्फ का टुकड़ा दूध में भिगो करके चेहरे पर होले होले मलिए। इस क्रिया से त्वचा का चिकनापन दूर होगा और चेहरे पर ताजगी का अनुभव करोगे। मेरी प्यारी बहनों, फिर से दोहरा रही हूँ कि यदि त्वचा इतनी तेली हो कि मेकअप भी नहीं ठहरता हो तो बर्फ का टुकड़ा दूध में भिगोइए, फिर उसको चेहरे पर होले होले मलिए। ऐसा करने से त्वचा का चिकनापन दूर होगा और चेहरे पर ताजगी का अनुभव होगा। तो जिसके भी तेली त्वचा है तो इस नुस्खे को आजमा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि भाई त्वचा, वो कहते हैं ना कि चेहरे का ध्यान सभी रखते हैं। अब चेहरे पर पिंपल निकल आते हैं, झाइयाँ हो जाती है, दाग धब्बे होते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं खुद को। ऐसा नहीं कि सामने वाले को क्या पड़ी है भाई, सामने वाले को तो सभी अपने अपने में व्यस्त रहते हैं ना, लेकिन खुद को ही अच्छा नहीं लगता है कि ये क्या चेहरे पर झाइया वाइया हो गई है। तो इस नुस्खे को आप आजमा सकते हो। अगर शुष्क और रूखी त्वचा है तो फिर आप आधी कटोरी कच्चा या गुनगुना दूध में एक स्वच्छ रुई का टुकड़ा भिगो करके चेहरे, गर्दन, हाथों, इन सब मतलब इन अंगों पर आप 5-10 मिनट तक फेरिए नरमी से। आप देखेंगे कि रुई कितनी मेली हो गई है। 20 मिनट के बाद ठंडे या गुनगुने पानी से धो दीजिए। दुग्ध स्नान से त्वचा स्निग्ध बनती है। दूध के रोज प्रयोग से मुहासे, चेहरे की झाइया, दाग धब्बे, झुर्रिया और खुरदरापन ये सब दूर होता है, ठीक हो जाता है और मुखमंडल की शोभा और कांति बढ़ती है और रंग भी निखरता है। कितने सारे फायदे, खाली एक चीज दूध बस, लेकिन कितने सारे फायदे हैं। फिर से दोहरा रही हूँ, इस नुस्खे को ध्यान से सुनेंगे कि आधी कटोरी कच्चा या गुनगुना दूध में एक स्वच्छ रुई का फोहा डालना है, ठीक है? फोहे को भिगो करके चेहरे, गर्दन, हाथ या सभी को आपको मलना है, ठीक है? भले खाली चेहरे को मलिए, वो आप पर छोड़ा है कि आप कहाँ कहाँ दूध लगाते हैं, वो आप पर छोड़ा है। आप देखेंगे कि रुई, अगर हम इस तरह फोहे से दूध लगाएंगे तो फोहा तो मेला हो ही जाएगा। 20 मिनट के बाद ठंडे या फिर गुनगुने पानी से धो लीजिए। तो ऐसे करने से चेहरे की झाइया, मुहासे, दाग धब्बे, झुर्रिया और खुरदरापन ये सब ठीक हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, मुखमंडल की शोभा और कांति बढ़ेगी और रंग निखरेगा। तो बहुत सारे फायदे हैं। और लास्ट नुस्खा यह है कि देखिए, त्रिफला तो आप सभी जानते हैं, त्रिफला का पाउडर होता है ना, उसको आप पानी में गर्म कर दीजिए। गर्म करके फिर आप ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद ये इस पानी को छानना नहीं है, डायरेक्ट इस पानी से चेहरे को धोइए, ठीक है? और चेहरे को धो करके 5 मिनट बाद आप स्वच्छ पानी से चेहरा धो लीजिए। बस आपकी ये तेली त्वचा होगी ना, उसमें तुरंत ही फर्क पड़ेगा। आप तुरंत महसूस करेंगे, 2-3 दिनों में आप कहेंगे कि वास्तव में तेली त्वचा, जो बार बार पिंपल हो जाते थे, क्योंकि तेली त्वचा में बार बार पिंपल हो जाते हैं, चेहरे पर दाग धब्बे हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि चेहरे पर शाइनिंग भी आएगी, दाग धब्बे भी खत्म हो जाएंगे और पिंपल जो निकलते होंगे वो बंद हो जाएंगे। त्रिफला का पाउडर लीजिए। पाउडर को पानी में उबालना है। आपको क्या करना है, रोज़ रोज़ ये नहीं कर सकते हो ना, तो आप इकट्ठा ऐसे करके बोतल में भर दीजिए और बस खाली चेहरा धोना है, ठीक है? और चेहरे पर ज़्यादा पानी तो चाहिए नहीं, खाली एक बार आप एक कटोरी में निकाल दीजिए, आधी कटोरी से चेहरे को धो लीजिए, उसके बाद आप 5-7 मिनट रहने दीजिए और फिर स्वच्छ पानी से चेहरा धो लीजिए बस। तो इससे चेहरे पर शाइनिंग आएगी, तेली त्वचा की वजह से पिंपल्स निकलते होंगे वो भी नहीं निकलेंगे, निकलना ही बंद हो जाएगा, और झाइयाँ, किल, मुहासे, दाग धब्बे ये भी सब छूट जाएंगे और चेहरा एकदम चमक उठेगा, ठीक है? तो ये सारे ही नुस्खे लाजवाब हैं, आप आजमा सकते हो। इसमें कोई मोटा मोटा खर्चा भी नहीं है और ऐसे कुछ टिप्स हम आजमाते हैं तो उसके लिए कोई डॉक्टर को पूछने भी नहीं जाता है, वो अपने आप करते रहते हैं, तो इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। अब मैं आपको टंग ट्विस्टर सुना रही हूँ जो आपको बोल के सुनाना है। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई। ये टंग ट्विस्टर है। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई। तो आप जरूर टंग ट्विस्टर बोल करके सुनाएंगे। हमारे नंबर हैं 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और टंग ट्विस्टर सुना सकते हो। आइए बढ़ते हैं एक गीत की ओर। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: आप हबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।
1: जिंदगी आसान नहीं, आसान बनानी पड़ती है। जिंदगी आसान नहीं, आसान बनानी पड़ती है। कुछ सब्र करना पड़ता है तो कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है और बहुत कुछ नज़रअंदाज करना पड़ता है। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में ये विषय आपके सामने रखा है जिस पर आप जरूर चर्चा में अपनी राय व्यक्त कर सकते हो। हेलो,
2: जय माता दी, जय श्री हरि।
1: हाँ जी, जय श्री हरि। नमस्कार सुरेश भाई, कैसे हो आप?
2: हम अच्छे हैं। सभी दोस्तों को, सुनने चाहने वाले सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार
1: जी।
2: और बहुत ही सुंदर खुशनुमा जीवन के विचार लेके आए हो और सुविचार भी बहुत ही सुंदर था
1: जी। थैंक यू।
2: कितनी तारीफें करें, कुछ शब्द ही नहीं है। मतलब शब्द कम पड़ गए हैं, क्या तारीफ करें। इतना सुविचार तो बहुत ही सुंदर था
1: जी।
2: और मैं खुशनुमा जीवन के बारे में बात करना चाहूंगा। तो देखिए, जिंदगी मतलब ऐसी है कि इसको वो आसान नहीं होती, आसान बनानी पड़ती है। कोई भी कार्य अपन जैसे कि कोई कार्य करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आसान नहीं बनेगा, उसको करना पड़ेगा, मन लगाएगा, उसको आसान अपन को करना है
1: जी। कैसे?
2: तो कैसे कि देखिए, कोई भी अपन कार्य कर रहे तो उसको मन लगा के करना पड़ेगा
1: जी।
2: तो वो जरूर आसान हो सकता है, परंतु आप बेमन से कोई भी कार्य करोगे तो वो बिगड़ने वाला है, वो मुश्किलें खड़ी करेगा
1: जी।
2: हाँ, तो मैं यही मतलब कहीं पे कोई भी हो, मतलब कहीं पे मतलब झगड़ा हो रहा है या कुछ भी उलझे हुए हैं, तो वहां भी अपन कुछ शांति देना चाहे तो मतलब अपने को पहले मन से दोनों को समझाने की कोशिश, शांति से पहले अपन को शांत होना पड़ेगा
1: जी।
2: तो अपन दूसरों को शांत करेंगे तो उनका मतलब झगड़ा निपटाने में अपन आसानी पैदा कर सकते हैं, नहीं तो अपन खुद ही शांत नहीं होंगे तो वहाँ मुश्किलें बढ़ सकती है
1: जी।
2: तो इसीलिए कहते हैं ना कि कोई भी कार्य करते हो तो अपने मतलब सोच कर अपने मन से दिल लगा के करना चाहिए
1: जी। जी जी, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई, बहुत अच्छी तरह आपने स्पष्ट किया इसके लिए। और विषय बहुत ही अच्छा है कि जिंदगी आसान नहीं, आसान बनानी पड़ती है। कुछ सब्र करना पड़ता है तो कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है और बहुत कुछ नजर अंदाज करना पड़ता है। तो ये आज का विषय है जिस पर आप जरूर चर्चा में अपनी राय व्यक्त कर सकते हो। और आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही सुंदर है, जो लगभग आपने पहले भी सुना होगा, क्योंकि अक्सर जब महफिल जुड़ती है तो इस तरह की बातें, इस तरह के टंग ट्विस्टर सुनाए जाते हैं। तो मैं सुना रही हूँ आपको, आप ध्यान से सुनना। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई। तो मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, थोड़ा सा घेप लेकर के आप लिख भी सकते हो। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई। बहुत ही सरल है, आप इजी वे में जवाब दे सकते हो। तो नंबर हमारे हैं 9914141415, 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के विषय में भी आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हो और टंग ट्विस्टर भी बोल करके सुना सकते हो। तो जैसा कि आज का विषय रखा है कि भाई जिंदगी आसान नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, जिंदगी आसान नहीं है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको वो बचपन से जब गुजरता है तो बहुत ही इनोसेंट होता है, उसको ऐसा लगता है कि कितना अच्छा है और ये जीवन इसी तरह चलता रहे। लेकिन जब वो बड़ा होने लगता है तो पढ़ाई की टेंशन होने लगती है, पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आए तो टेंशन, आ जाए अगर अच्छा तो और भी उम्मीदें बढ़ जाती है कि भाई इस बार 80% आए तो अगली बार 85% लाने ही है, फिर 90, फिर 95, आकांक्षाएं बढ़ती जाती है पेरेंट्स की भी और बच्चे की। फिर भी कोशिश करते हैं, लाते हैं, फिर जिम्मेवारी आती है बड़े होते, कुछ पढ़ाई पूरी होने के बाद जब जो जो भी करते हैं शादी ब्याह होता है, बहुत सारे वो कहते हैं कि परिस्थितियां आने लग जाती हैं। कभी कभी तो पैसे टकों से भी आती है, तो कभी कभी लोगों के द्वारा आती है, संबंधों के द्वारा आती है, व्यवहार बिगड़ने लगता है, बहुत सारी बातें आ जाती है जिंदगी में। हम ना चाहते हुए भी किसी न किसी से तकरार हो जाती है और ऐसा लगता है कि पता नहीं ये सुलझेंगे भी या नहीं, या रिश्तों में ऐसा ही चलता रहेगा। हेलो,
3: हाँ दीदी नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
1: हाँ जी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग जी। बिल्कुल अच्छे, आप सुनाइए।
3: बस हम भी अच्छे हैं और अच्छी बातें हो रही हैं, अच्छा रिश्ते भी हैं, दोनों विषय अच्छे हैं, दो बात अच्छी है
1: जी।
3: एक जिंदगी की बात कही दीजिए, जिंदगी आसान नहीं होती है, लेकिन उसके लिए हमको कुछ करके आसान करना पड़ता है।
1: हाँ जी,
3: कैसे करें ये भी सही बात है, और कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है कि जीवन में हम जो रिश्तेदार में रहते हैं, संबंध में रहते हैं, रिश्तों को भी निभाना पड़ता है, और रिश्तों को भी कहीं ना कहीं आप देखते हैं कई रिश्ते टूट रहे हैं
1: जी।
3: और हमारे थोड़ी सी सहन शक्ति भी करनी पड़ती है
1: जी।
3: तो जिंदगी आसान बनाने के लिए दीदी पहले तो एक बात है कि हम ऐसा कोई काम ना करें कि हमको कुछ प्रॉब्लम आए
1: जी।
3: और आसान बनाने के लिए भी दीदी क्या है कि आसान इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और कुछ कहते हैं हमारे गुजराती में कुछ गड़ी पी जाना पड़ता है, जाने पे कुछ सहन करना पड़ता है
1: जी जी जी।
3: और सहन करके सहन किए भी करना पड़ता है, लेकिन सहन की जो हद होती है ये भी सही है। कई बार हम सहन करते हैं तो सहन करते करते करते हम खुद
1: थक जाते हैं
3: कि हमारा भी बेहाल हो जाता है, ऐसा ना हो
1: जी।
3: हम कुछ ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन भी आसान हो जाएगा और हमारे रिश्ते भी बना रहेगा, और हमारा कुछ बर्दाश्त करके भी हम आसानी से रिश्तेदारी निभा सकते हैं। आप देखते हैं, मैं बताऊं दीदी कि जो हम शादी का कुछ मौसम होता है घर पे, और कई रिश्तेदारों को तो इतना मनाना पड़ता है, इतना मनाना, हमारा कुछ
1: जी,
3: नहीं
1: जी।
3: है, हमने कुछ किया भी नहीं है
1: जी,
3: फिर भी मनाना पड़ता है। इसी वक्त ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तो हमको खुद वहां जाना पड़ता है और कहते हैं कि भाई चलो भाई हमारी कोई भी भूल हो हम बर्दाश्त कर लेते हैं
1: जी जी,
3: और आप आइए और हमारे शामिल हो जाइए हमारे शादी में या कुछ प्रसंग में।
1: बिल्कुल, भले हम इजी वे में उनके यहाँ जाते हो, लेकिन कभी कभी कोई कोई रिश्तेदार थोड़े भाव खाते हैं।
3: हाँ ऐसा होता है दीदी, जो अच्छे लोग हैं तो ऐसा करते नहीं कभी, चाहे कुछ भी हो जाए आसानी से चले जाते हैं।
1: जी जी जी, जाना है तो जाना ही है।
3: कई लोग
1: हैं जी,
3: कई लोग तो दीदी ऐसे ही होते कि जब ऐसा मौका मिला तो यही मौका लेते, फिर चलो भाई मौका मिल गया है जो हम कुछ करेंगे तो उसको हम कहेंगे तो करना पड़ेगा, ऐसा लोग कई लोग ऐसे होते हैं। तो बस जिंदगी तो आसान नहीं होते, लेकिन हमको कुछ आसान करना पड़ता है तो इसी वजह से
1: जी जी जी।
3: ठीक है दीदी, और आपने जो टेक्स्ट सुनाया है तो मैं बताऊं आपको।
1: हाँ जी,
3: चंद की चाची ने चंद के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई।
1: क्या बात है,
3: वो गाना बना दिया मैंने।
1: हाँ जी हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका। जी जी नमस्कार। तो टंग ट्विस्टर देखिए, सुरेश भाई ने भी बोल के सुनाया है, आप भी सुना सकते हो, बहुत ही सरल आपको दिया है, आप आसानी से बोल के सुना सकते हो, शर्माने की कोई जरूरत नहीं। रेडियो मधुबन एक अपना परिवार है, पूरा ही परिवार रेडियो मधुबन से जुड़ा हुआ है, तो हम सभी परिवार के सदस्य ही हुए, तो इसमें हिचकिचाने की तो बात ही नहीं है, बहुत ही सरल है, मैं सुना रही हूँ, आप जरूर सुनाइएगा। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई। तो बोल करके जरूर सुनाएंगे, हमारे नंबर है 94-1415-1415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज का टंग ट्विस्टर सुना सकते हो। आइए सुन लेते हैं एक गीत, फिर से इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: जिंदगी हंसने खाने के लिए है, पल दो पल इसे खोना नहीं।

0: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में भाई खुशनुमा जीवन की बात चल रही है कि जिंदगी आसान नहीं, आसान इसको बनाने पड़ती है, कुछ सब्र भी करना पड़ता है तो कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है और बहुत कुछ नजरअंदाज भी करना पड़ता है। हेलो, हाँ जी नमस्कार कंचन भाई, कैसे हो आप?
1: बस बहन जी थोड़ा बाहर निकला हूँ बाइक लेके, तो आपका प्रोग्राम अभी बदल सुना तो साइड में रख के बाइक बात कर रहा हूँ।
0: जी जी, तो टंग ट्विस्टर सुनाएंगे आप?
1: हाँ वो तो सुना, सुरेश भाई ने सुनाया, लेकिन मुझे थोड़ा नहीं, अभी थोड़ा बाहर ही हूँ, हाईवे पे साइड में गाड़ी रख के बात कर रहा हूँ।
0: हाँ जी हाँ जी, आपने फोन लगाया तो हम पूछ रहे हैं, आप हाँ, सुनाना चाहो तो भले सुनाइए, नहीं तो कोई बात नहीं।
1: और आज क्या क्या है आपका?
0: आज का विषय नहीं सुना आपने?
1: नहीं सुना तो था, लेकिन रेडियो तो सुनता था, लेकिन बाइक चालू था।
0: जी जी, तो जिंदगी आसान नहीं, इसको आसान बनानी पड़ती है, बहुत कुछ सब्र भी करना पड़ता है तो बर्दाश्त भी करना पड़ता है और बहुत कुछ नजरअंदाज भी करना पड़ता है। क्या कहेंगे आप, क्या ख्याल है?
1: बिल्कुल सही बात है, जीवन है ना, एक एक संघर्ष है, हमें कुछ घुमाना भी पड़ता है, कोई हमारे ये होता है तो सहनशीलता भी रखनी पड़ती है, ये सब करना पड़ता है।
0: जी
1: हाँ जी, तो इसमें तो ये कोई सगे संबंधी है, कोई उग्र स्वभाव का हो तो हमें शांत से पेश आना पड़ता है, घर परिवार में समाज में सबका स्वभाव देख के हमें रहना पड़ता है।
0: जी जी जी, बहुत बहुत आभार आपका कंचन भाई। जी
1: जी जी, थैंक यू
0: जी। तो बहुत ही सुंदर विषय है कि देखिए जिंदगी आसान नहीं होती, जो दिखाई देती है, लोग हमेशा खुश दिखाई देते हैं लेकिन उनके अंदर झांक करके देखेंगे तो कुछ न कुछ टेंशन परेशानियां उनके जीवन में भी है। और सुरेश भाई ने बहुत अच्छी बात बताई है कि अक्सर लोग रंग कब दिखाते हैं, जब हमारे घर में प्रसंग आता है, प्रोग्राम आता है, तब लोग भाव खाएंगे, आना है, ऐसे नहीं कि उनको नहीं आना है, लेकिन कुछ लोग क्या है, वो चाहेंगे कि यही मौका है कि इन लोगों से थोड़े से मनुहार कराई जाए, ये लोग थोड़े हमारे सामने हाथ जोड़े, पैर पड़े, फिर देखेंगे। बहुत जनों की आदत होती है, कोई कारण नहीं होता है, कोई भी कारण नहीं, और जब घर में इस तरह शादी ब्याह या कुछ प्रोग्राम आता है और उनको न्योता देने जाते हैं कि भाई ये प्रोग्राम है और आइए, तो उस समय अच्छी तरह बात नहीं करेंगे, फिर पुरानी बातें कुछ हुई होगी, भले गलती उन्हीं ही की होगी तो भी दोहराएंगे, उस वक्त ऐसा हो गया वैसा हो गया। बहुत सारे ऐसे मैंने देखा है कि वो कहते चोरी और सीना झोरी, उस समय भी झगड़ा उन्होंने ही किया, फिर भी इस समय भी वो इस तरह नखरे दिखाते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्कार उत्तराखंड।
0: हाँ जी नमस्कार, रामा भाई बोल रहे? हाँ जी रामा भाई नमस्कार, कैसे हो?
2: ओम शांति और मजे में।
0: हाँ जी ओम शांति। तो आज का टंग ट्विस्टर सुनाएंगे?
2: टंग ट्विस्टर सुनाएंगे, आज का विचार भी अच्छा बहुत है, और टंग ट्विस्टर ये उल्टा बोलना है कि ऐसे बोलना है?
0: नहीं सीधा ही बोलना है, जैसे मैंने बोला वैसे ही बोलना है। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई।
2: तो चंदू की चाची ने चंदू के चाचा ने चांदी की चमची से चटनी चटाई।
0: एक शब्द का फर्क पड़ गया, कोई बात नहीं चलेगा, अच्छी कोशिश की है।
2: फिर बढ़ाइए।
0: कोई बात नहीं चलेगा। और विषय के बारे में आप क्या कहेंगे, आपके खुद के अनुभव कैसे रहे हैं, जिंदगी के अनुभव थोड़े सुनाएंगे? आपके
2: अनुभव ऐसा है कि जो मेहनत तो सभी को करनी पड़ती है और मेहनत का फल होता है सभी को,
0: इसमें मेहनत की बात नहीं है, इसमें यह है कि जिंदगी में बहुत कुछ हमको नजरअंदाज करना पड़ता है, जिंदगी आसान नहीं है, सब्र करना पड़ता है, तो धैर्यता रखनी पड़ती है, बर्दाश्त करना पड़ता है, नजरअंदाज करना पड़ता है। क्या कहेंगे आप?
2: तो ये रखना ही पड़ता है, ये आपने सभी ने बोला, यही मैं कहता हूँ, और क्या।
0: जी जी हाँ जी, आभार आपका। तो बहुत ही ये सुंदर विषय है कि अक्सर जैसा कि मैंने आपको कहा है, सुरेश भाई ने भी सुनाया है कि जब घर में प्रोग्राम आते हैं तब लोग जरूर उस समय कोई ना कोई रंग जरूर बताएंगे, अपना असली रंग। हेलो, उस समय वो चाहेंगे कि मनुहार करे और करते क्या करे, क्योंकि आज का समय तो थोड़ा चेंज हो गया। आज का समय में तो आज की युवा पीढ़ी क्या कहती है। हेलो,
3: गुड मॉर्निंग दीदी।
0: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
3: विजय कुमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: हाँ जी विजय कुमार जी, स्वागत आपका, कैसे हो?
3: ठीक है, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं।
3: काफी दिनों बाद बात हो रही है दीदी। प्रॉब्लम हो गया था, मेरा फोन तो खराब हो गया था, और दूसरी बात के मेरे फोन जो लिया दूसरा तो उसमें ये स्टेशन नहीं पकड़ रहा था, तो काफी मकसद के बाद ये सब किया हूं।
0: अच्छा अच्छा, चलिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
3: यही तो आप जो आज का सब्जेक्ट है जिंदगी के बारे में, तो जिंदगी का तो यही विषय है कि मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि जिंदगी में कोशिश करते रहो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है।
0: लेकिन यहाँ पर तो परिवार की बात है कि जिंदगी आसान भी नहीं होती, सब्र भी करना पड़ता है, बर्दाश्त भी करना पड़ता है, और नजरअंदाज भी करना पड़ता है।
3: सब कुछ करना पड़ता है, परिवार पालना है तो कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है, कुछ सहन भी करना पड़ता है।
0: जी जी जी, अपनों का ही
3: जो मतलब जो आज का जो आपने किया वो चंदू के चाचा वाला जो बताया आपने।
0: हाँ जी,
3: तो उसमें क्या है कि बताओ आप।
0: खाली उसको आपको दोहराना है, टंग ट्विस्टर है,
3: स्पीड से कि स्लो में,
0: मीडियम बोल सकते हैं आप, बहुत ही स्लो नहीं, बहुत फास्ट ही नहीं, मीडियम बोल सकते हैं। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई।
3: चंदू के चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई।
0: वाह वाह, क्या बात है। बहुत बहुत आभार आपका विजय भाई।
3: हाँ, ये दीदी ये जो पहेली है ना, ये जो अभी है, और वो पके पेड़ पर पका पपीता, और वो सभी हम जब पढ़ते थे तभी ये सब ट्राई करते थे।
0: जी जी जी बिल्कुल, ये बचपन की बातें फिर से याद आ रही है।
3: हाँ, बचपन की, आज आपने बचपन याद दिला दिया। थैंक यू।
0: हम भी बचपन में इस तरह का एक मतलब फ्रेंड्स के साथ चिट चिट करते थे, इस तरह बोल बोल के।
3: हाँ, यही तो नहीं, आज जो आपकी जो पहेली जो आपने दोहराई ना, इसके हमें बचपन याद आ गया था। आज मंगल जी को फोन लगा था, दीदी से बात करते हैं।
0: बहुत बहुत आभार आपका,
3: बचपन की याद दिलाने के लिए धन्यवाद।
0: ओहो ऐसा। ओके जी, आभार आभार।
3: ठीक है दीदी।
0: तो बहुत ही सुंदर बात है कि देखिए आज की युवा पीढ़ी थोड़ी चेंज हो चुकी है। आज की युवा पीढ़ी की सोच क्या है, अगर वो आएंगे तो हम भी उनके याद जाएंगे, अगर वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, लेकिन हम हाथ नहीं जोड़ेंगे, मनुहार नहीं करेंगे, हम भी इजी वे में जाएंगे, और एक बार प्यार से बुलाया तो वो भी इजी वे में आवे। तो सही है, सही भी है, क्योंकि समय के साथ परिवर्तन जरूरी है। और आज की युवा पीढ़ी अब अभी की लाइफ क्या है, हमारी एकदम फास्ट लाइफ हो चुकी है। पहले तो लोग बाग इतने बिजनेस में मतलब खेती बाड़ी में इनमें ही लगे रहते थे, अब तो आज बच्चे भी बाहर रहते हैं, अच्छी अच्छी जॉब करते हैं, अब उनको इतना समय नहीं कि वो अपनी जॉब छोड़ करके छुट्टियां लेकर के आए और रिश्तेदारों के मनुहार करते फिरे, उनको समय नहीं मिलता। पहले तो लोगों के पास काफ़ी समय मिलता था, पहले शादी ब्याह में भी तीन तीन चार चार पाँच पाँच दिन पहले मेहमान आना शुरू हो जाते थे, लेकिन आज तो जैसे कि अभी ये विधि चल रही है तो विधि के कोई 10 मिनट पहले आएंगे, कोई 1 घंटा पहले आएंगे, ऐसा हो गया है। इसलिए समय के साथ परिवर्तन हुआ है। मेरे को याद आ रहा है कि मेरे एक रिश्तेदार है, उनके यहाँ पर प्रोग्राम था, और कुछ रिश्तेदार उनसे बिना कारण ही नाराज थे। उन्होंने एक बार प्यार से उनको घर पर जाकर के उनकी मनुहार की कि भाई ये इस तरह का प्रोग्राम है, ये विधियाँ आपको आना है। बोले कि देखेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद वो नहीं आए तो दूसरे रिश्तेदारों ने कहा कि अरे आपके वो रिश्तेदार नहीं दिखाई दे रहे, फ़ोन कर दो। वो बोले नहीं, फ़ोन अब मैं नहीं करूँगा, अब मैं अपने घर में विधियाँ है तो उन विधि को मैं संपूर्ण करूँगा या मैं फ़ोन करता फिरूँगा, अगर वो नहीं आए तो कल मुझे भी नहीं जाना है। और नहीं आए वो ज़बरदस्ती नाराज़ हो गए तो वो भी फिर उनके प्रोग्राम में नहीं जाते हैं, तो ऐसा हो रहा है। इसलिए बर्दाश्त ठीक है, एक हद तक सभी बर्दाश्त करते हैं, सब्र भी करते हैं, नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं कि चलो जाने दो जाने दो जाने दो, भले वो बोल रहे हैं, भले उल्टा सुलटा सुना रहे हैं, काफ़ी कुछ बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं, नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर आ जाता है तो लोग थक जाते हैं। फिर यही या तो रिश्ता टूटता है या फिर उनके सामने पूरे ही दंडवत हो जाते हैं, झुक जाते हैं कि भाई आना ही है आपको, कोई भी गलती नहीं है। तो लेकिन समय के साथ चेंज आया है, तो अब ऐसा है कि मैं आपके यहाँ आऊँगी, अगर आप मेरे यहाँ आओगे तो मैं भी आऊँगी, बिना मनुहार आपको भी आना है, बिना मनुहार मैं भी आऊँगी। अगर मनुहार किया तो आजकल कोई मनुहार नहीं करता है, वो लोग क्या है जबरदस्ती नहीं आए, उन्होंने सोचा कि ये लोग फिर से एट ए टाइम आएंगे और हमारे हाथ जोड़ेंगे, वो इंतज़ार करते रहे, इन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई हमने कभी कोई गलती नहीं की, इनके यहाँ पर जो भी प्रोग्राम थे हम इजी वे में गए, तो आज हम हाथ क्यों जोड़े, वो भी आओ सरलता से आ जाओ, उनका ही कार्य है आकर के अपने हाथ से करें। लेकिन नहीं आए, तो वो प्रोग्राम तो हो गया, उसके बाद लोगों ने बातें की कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो बोले कि हमारी मनुहार नहीं की। सामने वाले को पूछा तो बोले कि भाई मनुहार जब मैंने कभी करा ही नहीं तो मैं क्यों करूं, मैं भी आराम से जा रहा था, वो भी आ जाते हैं, नहीं आए तो कोई बात नहीं, कल से मैं भी नहीं जाऊंगा। तो आजकल तो ऐसा ही है जैसे को तैसा, इसलिए ध्यान रखे, बर्दाश्त की हद होती है, बर्दाश्त जो बर्दाश्त की सीमा टूटती है, सब्र की सीमा टूटती है, नज़रअंदाज की सीमा टूटती है, तो रिश्ते बिखर जाते हैं। अब इसको संवारना है या बिखेरना है वो अपने हाथ में है, ठीक है। और आज का टंग ट्विस्टर है कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सरल है, चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई, बहुत सरल है, आप जवाब दे सकते हो, बोल के सुना सकते हो। हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो। और आइए फिर से सुनेंगे एक प्यारा सा गीत, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

0: मैं हूं जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष इंडियन आर्मी, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नई नई व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिए, आज बनाएंगे आशियाना के किचन में बालूशाही। तो बालूशाही आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। इसको आप बना करके 8-10 दिन भी स्टोर कर सकते हैं, खा सकते हैं, 8-10 दिन की इकट्ठी भी बना सकते हैं। तो सामग्री आपको लिखवा रही हूँ। बालूशाही के लिए मैदा लेना है 1 किलो, घी ले लीजिए 1.5 किलो, चीनी भी 1.5 किलो, और दही 100 ग्राम, खाने वाला सोडा थोड़ा सा, मीठा सोडा बोलते ना जिसको, वो। फिर से सामग्री दोहरा रही हूँ। बालूशाही के लिए मैदा लेना है 1 किलो, घी 1.5 किलो, चीनी भी 1.5 किलो, और दही 100 ग्राम, फिर खाने वाला सोडा थोड़ा सा। अब मैं आपको बनाने का तरीका भी साथ ही साथ सिखा रही हूँ कि मैदे को छान लीजिए, छान करके फिर बराबर का घी डालिए मैदे में, ठीक है, और सोडा भी डाल दीजिए, और फिर दही डाल करके अच्छी तरह मथिए। मैदे को इस तरह आपको गूंध लेना है, फिर छोटी छोटी उसकी गोलियां बना लेनी है। उंगलियों से बालूशाही का आकार दे करके इसको थोड़ा सा दबाइए। अब आप कढ़ाई में घी डालिए, घी गर्म हो जाए तो हल्की आंच पर आप बालूशाही को तल लीजिए। अगर ये दोनों तरफ से लाल हो जाए तो फिर निकाल दीजिए। फिर 3 तार की चाशनी बनानी है, उसमें थोड़ी देर तक डुबोइए बालूशाही को, उसके बाद निकाल दीजिए। तो ये बन गई बालूशाही। बहुत स्वादिष्ट लगती है बालूशाही भी, और अक्सर राजस्थान में तो देखा है कि प्रतिभोज होते हैं ना, उसमें बालूशाही बनती है। तो फिर से मैं आपको तरीका सिखा रही हूँ कि मैदे को छानिए, छान करके ये इसमें बराबर का घी डालिए मोवन के तौर पर, फिर सोडा भी डाल दीजिए, दही को मथ लेना है, और फिर मैदे में डाल करके अच्छी तरह गूंदना है, ठीक है। फिर छोटी छोटी इसकी गोलियां बना लीजिए, और उंगलियों से बालूशाही का आकार दे करके दबाइए हल्का सा। अब आप घी रखिए, कढ़ाई में डालिए, गरम करिए, और हल्की आंच पर बालूशाही को तल लीजिए। दोनों तरफ से लाल लाल हो जाए उसके बाद निकाल दीजिए। इस तरह सारी बालूशाही तल लीजिए, और आपको दूसरे गैस पर चाशनी बना देनी है 3 तार की, और बालूशाही को उसमें डालना है, और डुबो डुबो करके उसको निकालना है, ठीक है, थोड़ी सी देर ही उसमें रखना है, फिर निकाल देना है। इस तरह सारी बालूशाही आपको बनानी है। तो बहुत ही सरल तरीका, आराम से आप बना सकते हो, और इजी वे में बना करके खा सकते हो। बहुत ही तरीका इसका सरल है, और स्वादिष्ट मिठाई है ये, तो आराम से आप बना सकते हो। चलिए अभी तो एक गीत सुनेंगे, उसके बाद फिर से एक आपको एक रेसिपी खाऊंगी। तो आज का ट्विस्टर आपको सुना रही हूँ। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई, ये टंग ट्विस्टर आपको बोल के सुनाना है। नंबर हमारे है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो, और आज टंग ट्विस्टर सुना सकते हो। अब बढ़ते हैं फिर से गीत की तरफ। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: मैं हूँ वर्षा उसगांवकर और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बन रहा था बालूशाही। अब आपको सिखा देते हैं बेसन की खट्टी पूरी, भाई नमकीन और मीठा दोनों के जोड़ा कहलाता है ना, कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो मीठा हो और नमकीन ना हो तो भी मज़ा नहीं आएगा, नमकीन हो और मीठा ना हो तो भी मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए, बेसन की खट्टी पूरी के लिए मैं आपको सामग्री लिखवा रही हूँ। 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल लेना है, 200 ग्राम लेना है बेसन। फिर आप लीजिए चुटकी भर हींग और 1/4 छोटा चम्मच कलौंजी ले लीजिए। हरा धनिया लेना है आवश्यकता के अनुसार, नमक, पीसी हुई लाल मिर्च, ये सब आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए। और 2 चम्मच आपको लेना है अमचूर और आवश्यकता के अनुसार तेल। फिर से दोहरा रही हूँ सामग्री को, ध्यान दीजिएगा। 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल लेना है सबसे पहले तो, फिर 200 ग्राम बेसन ले लीजिए, चुटकी भर हींग लेना है तो 1/4 छोटा चम्मच कलौंजी लेना है, हरा धनिया, नमक, पीसी हुई लाल मिर्च पाउडर, ये सब आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। और 2 चम्मच अमचूर लेना है, आवश्यकता के अनुसार तेल ले लीजिए। अब बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ कि बेसन में 2 चम्मच तेल डाल करके अच्छी तरह मिला लीजिए, ठीक है, मोहन के तौर पर। और अब बेसन को पानी के साथ बहुत ही कड़क गूंदना है, आवश्यकता के अनुसार पानी डाल करके। फिर गूंदते समय सब सूखे व हरे मसाले मिला दीजिए और फिर छोटी छोटी लोई बना करके पूरी बना लीजिए और तेल में करारी करारी तल लीजिए। तो ये बन गए बेसन की खट्टी पूरी। फिर से आपको विधि बता रही हूँ कि बेसन को छानिए, छान करके इसमें जो 2 चम्मच तेल लिए है ना वो डालिए मोहन के तौर पर, अच्छी तरह मिक्स करिए। फिर इसमें सारे मसाले डाल दीजिए, हींग, नमक, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, कलौंजी वगैरह सब डाल देना है। डाल करके अच्छी तरह कड़क गूंद लीजिए, ठीक है। गूंद करके बस लुए बना करके पूरी की तरह बेल लीजिए और तेल में तल लीजिए। तो ये बन गई बेसन की खट्टी पूरी। तो बेसन की खट्टी पूरी तैयार है, बालूशाही तैयार है। तो बस देर किस बात की, लीजिए एक स्वच्छ थाली, थाली में दोनों ही सामग्री रखिए और भी कुछ आपने बनाया हो तो वो भी रख दीजिए। तुलसी पत्र और जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए, ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद अब आप पूरे परिवार सहित आनंद लीजिएगा बालूशाही और बेसन की खट्टी पूरी का, साथ ही साथ एक गीत का। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बन रहा था बालूशाही। अब आपको सिखा देते हैं बेसन की खट्टी पूरी, भाई नमकीन और मीठा दोनों के जोड़ा कहलाता है ना, कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो मीठा हो और नमकीन ना हो तो भी मज़ा नहीं आएगा, नमकीन हो और मीठा ना हो तो भी मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए, बेसन की खट्टी पूरी के लिए मैं आपको सामग्री लिखवा रही हूँ। 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल लेना है, 200 ग्राम लेना है बेसन। फिर आप लीजिए चुटकी भर हींग और 1/4 छोटा चम्मच कलौंजी ले लीजिए। हरा धनिया लेना है आवश्यकता के अनुसार, नमक, पीसी हुई लाल मिर्च, ये सब आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए। और 2 चम्मच आपको लेना है अमचूर और आवश्यकता के अनुसार तेल। फिर से दोहरा रही हूँ सामग्री को, ध्यान दीजिएगा। 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल लेना है सबसे पहले तो, फिर 200 ग्राम बेसन ले लीजिए, चुटकी भर हींग लेना है तो 1/4 छोटा चम्मच कलौंजी लेना है, हरा धनिया, नमक, पीसी हुई लाल मिर्च पाउडर, ये सब आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। और 2 चम्मच अमचूर लेना है, आवश्यकता के अनुसार तेल ले लीजिए। अब बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ कि बेसन में 2 चम्मच तेल डाल करके अच्छी तरह मिला लीजिए, ठीक है, मोहन के तौर पर। और अब बेसन को पानी के साथ बहुत ही कड़क गूंदना है, आवश्यकता के अनुसार पानी डाल करके। फिर गूंदते समय सब सूखे व हरे मसाले मिला दीजिए और फिर छोटी छोटी लोई बना करके पूरी बना लीजिए और तेल में करारी करारी तल लीजिए। तो ये बन गए बेसन की खट्टी पूरी। फिर से आपको विधि बता रही हूँ कि बेसन को छानिए, छान करके इसमें जो 2 चम्मच तेल लिए है ना वो डालिए मोहन के तौर पर, अच्छी तरह मिक्स करिए। फिर इसमें सारे मसाले डाल दीजिए, हींग, नमक, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, कलौंजी वगैरह सब डाल देना है। डाल करके अच्छी तरह कड़क गूंद लीजिए, ठीक है। गूंद करके बस लुए बना करके पूरी की तरह बेल लीजिए और तेल में तल लीजिए। तो ये बन गई बेसन की खट्टी पूरी। तो बेसन की खट्टी पूरी तैयार है, बालूशाही तैयार है। तो बस देर किस बात की, लीजिए एक स्वच्छ थाली, थाली में दोनों ही सामग्री रखिए और भी कुछ आपने बनाया हो तो वो भी रख दीजिए। तुलसी पत्र और जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए, ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद अब आप पूरे परिवार सहित आनंद लीजिएगा बालूशाही और बेसन की खट्टी पूरी का, साथ ही साथ एक गीत का। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

0: याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुना ही है, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा है। और आज का टंग ट्विस्टर था, चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई। तो जवाब आज सभी का सही रहा है। विषय में भी आपने बहुत ही अच्छी अपनी राय व्यक्त की है। सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, सुरेश भाई जोटाना से, जीतू भाई खेड़ब्रह्मा से और रामा भाई वासना से, विजय कुमार जी, कंचन भाई ने विषय पर चर्चा की लेकिन टंग ट्विस्टर नहीं सुनाया, बाकी सभी ने सुनाया। आप सभी के लिए ढेर सारी तालियां। और अब मैं एक प्यारा सा आपको भाव भजन सुनाऊंगी। आज का अनमोल वचन है कि बात सीधी सी है, आप कुदरत का ख्याल रखिए, कुदरत आपका ख्याल रखेंगे। और अब मैं आपको प्यारा सा भाव भजन सुनाऊंगी, कृष्ण भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन। जग

0: Hi, this is Ravina Tandon, and I take this opportunity to wish Brahma Kumaris with all the success in their love that they've been giving to the world and the social service that they have been spreading all over our planet. I wish you all the best, and I wish that more and more people become aware and follow this true path of what Brahma Kumari teaches of only love and peace. God bless humanity. God bless the Brahma Kumari.
1: Radio Madhuban 107.8 FM sun rahe hain. Aap karyakram hai Love You Zindagi. Aur zindagi se pyar ho to bhai shayariyan bahar aati hain, creativity bahar aati hai aur bahut sundar moments life ke hum create kar paate hain. वो गाना है ना लव यू जिंदगी का, मुझे कुछ लिरिक्स उसके बड़े ही अच्छे लगते हैं. जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय बाय. इतना आसान होता अगर हाय कहना जो अच्छा लगे और बाय कहना जो बुरा लगे, कितना अच्छा होता ना दोस्तों. चलिए इसे और अच्छा बनाते हैं और लाइफ में शामिल करते हैं, क्योंकि ये बात है एकदम प्रैक्टिकल. और हमारे साथ जुड़ गए हमारे एक्सपर्ट्स, यानी कि कल्पना जी ग्लोबल अस्पताल से, जो कि साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं. दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है.
2: धन्यवाद आरुषि जी.
1: और हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीनिधि जी भी, जो कि रेडियो मधुबन के जाने माने आरजे भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं. आपका भी बहुत बहुत स्वागत है.
3: बहुत बहुत धन्यवाद आरुषि जी, कल्पना जी, बहुत अच्छा लग रहा है वापस लव यू जिंदगी कार्यक्रम में आप दोनों से मिलके.
1: जी, और पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे थॉट्स को रेगुलेट करने के बारे में. बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई थी कि किस तरीके से अपने आप को व्यक्त करना बहुत जरूरी है, थॉट्स रेगुलेशन कैसे बेनिफिशियल है हमारे लिए, वो भी हमने समझा था. एक सवाल जरूर आता है, क्योंकि जब बात आती है ना कि क्या हम सच में थॉट्स रेगुलेट कर सकते हैं, तो कई बार जब लोगों के रिलेशनशिप में ब्रेकअप होते हैं, अलग हो जाते हैं रास्ते, लेकिन वो थॉट पीछा ही नहीं छोड़ता या वो व्यक्ति बार बार याद आता रहता है, तो ऐसे में अगर कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जो थॉट्स रेगुलेट कर पाए और वापस वहीं ना जाए बार बार, तो बड़ा फायदेमंद होगा. क्या ऐसा पॉसिबल है? श्रीनिधि जी आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में?
3: मैं समझता हूँ ये बहुत ही एप्ट विषय है, एक ऐसा विषय है जिस पर अनेक फिल्में बन चुकी हैं.
1: बिल्कुल.
3: और पिछले रोज कोई मेरे को ये बात सुना रहा था कि भाई एक फिल्म में यही घटना होती है कि लड़का और लड़की दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, और जिनके साथ उनका ब्रेकअप हुआ होता है वो लोग आपस में शादी कर रहे होते, तो इनको लगता है कि भाई हम इनको भूल नहीं पा रहे और ये शादी करने के लिए ऑलरेडी मूव ऑन कर गए. तो ये अक्सर देखने को मिलता है कि जो लोग अपने जीवन की धारा या अपने विचारों को बदल कर आगे बढ़ चुके हैं, उनके आगे बढ़े हुए चीज पर भी कई लोगों को तकलीफ हो सकती है कि इतने जल्दी आगे कैसे बढ़ गए, मूव ऑन कैसे कर. और वो शायद इसलिए तकलीफ में है क्योंकि उनसे वो खुद चीज नहीं हो पा रही है, वो खुद मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं. इसके लिए हम लोग अंग्रेजी में ये जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, मूव ऑन कर देना, यानी आगे बढ़ जाना, यानी इसका मतलब ये नहीं कि वो मूव ऑन कर जाने से आपका ही भला होने वाला है. अगर आप इस मूव ऑन को पीछे कर दे तो मूव बैक हो जाएगा, यानी पीछे. कोई भी व्यक्ति जीवन में पीछे नहीं जाना चाहता, जीवन में हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, और इसलिए भी संबंधों में भी, रिलेशनशिप्स में भी मूव ऑन करना जरूरी है. आपने रिलेशनशिप्स की बात कही, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में है, वो बात समझ में आती. कई बार दोस्तों के साथ भी ऐसा होता है, आप अच्छे दोस्त हैं मगर एक लेवल पर आकर आपको लगता है कि ये बहुत ही टैक्सिंग हो रहा है, या आपको लगता है कि नहीं अब हमें दोस्त बदलने की जरूरत है, या ऐसा लगता है कि भाई इसके लिए तो हमेशा मेरे को ही करते रहना पड़ता है और मुझे इन रिटर्न जो सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिलता है. तो ऐसे समय पर लोग दोस्तों से भी मूव ऑन कर जाते हैं. दे चूज न्यू फ्रेंड्स. नए लाइफ में आप गए हैं, जीवन में आगे बढ़े हैं, या आपकी नौकरी चेंज हो गई है, या आपका कोर्स बदल गया है, अब आप कॉलेज से आगे की लाइफ में आ चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में आ गए, आपके नए दोस्त मिल गए हैं. अब आप ये एक्सपेक्ट करें कि जो ग्रेजुएशन का मेरा दोस्त था, ग्रेजुएशन के दौरान वो मेरे से जितना टाइम स्पेंड कर रहा था, अब वो पोस्ट ग्रेजुएशन में, हालांकि वो डिफरेंट कोर्स कर रहा है और मैं डिफरेंट कोर्स कर रहा हूँ, दोनों की अलग अलग दिशाएं हैं, दो अलग अलग चीजें हम पढ़ रहे हैं, अब भी हम एक दूसरे के साथ उतना ही टाइम स्पेंड करें, शायद ये संभव नहीं है. और ये जानना जरूरी है कि जीवन के सफर में हर एक के स्टेशन अलग अलग हैं. हम में से कई लोग पूरे सफर साथ चलें ये उम्मीद पाल कर बैठें तो शायद हमारे लिए मुश्किल हो. और ये भी जानना जरूरी है कि हम सभी हम सफर हैं, और हम जब तक एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, एक दूसरे के इस सफर में हैं, तब तक हम स्वीट मेमोरीज क्रिएट करें, इस सफर को अच्छा बनाने की कोशिश करें, एक दूसरे के लिए ये सफर सुहावना हो, सहूलियत भरा हो, इसकी कोशिश हम कर सकते हैं. कब इस ट्रेन की गाड़ी में किसका स्टॉप आएगा और कहाँ किसको उतरना होगा, ये नहीं पता है.
1: नहीं पता.
3: और किसी ने दार्शनिक विचारधारा रखते हुए बात कही है कि स्टेशन आना और गाड़ी से उतर जाना इसका मतलब मौत ही नहीं है, वो व्यक्ति मर गया या उस व्यक्ति का देहांत हो गया ही नहीं है। कभी कभार व्यक्ति उस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर जाते हैं या किसी भी कारणवश हो सकता है, क्या शायद वो फिजिकल डिस्टेंसेस की वजह से हो सकता है। इसलिए बहुत बार लोग कहते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर पाना मुश्किल होता है लोगों के लिए, क्योंकि उस तरीके का इंटरेक्शन नहीं है। और इसकी वजह से अगर व्यक्ति किसी और व्यक्ति को चुन लेता है तो ये नहीं सोचना है कि इसमें आपकी गलती है, मगर साथ साथ ये भी सोचना है कि हम पॉजिटिवली, हमें भी मूव ऑन करने की जरूरत है क्योंकि हम सभी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो बार बार ये जो थॉट्स आते हैं कि हाँ मतलब वो मेरे को छोड़ के क्यों चले गए, मेरे में ही कमी थी, पता नहीं वो क्या चाहते थे मेरे से, मैंने इतना दिया फिर भी उनको, ये क्वेश्चंस नहीं पूछना है। ये क्वेश्चंस आते हैं आपके मन में और मैं समझता हूँ अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हम बीती हुई बातों पे चिंतन नहीं करना है। कहा जाता है कि बीती को चितो नहीं, यानी बीती की चिंता नहीं करनी। और बीती हुई बातों की अगर हम चिंता करते हैं तो हिंदी में और संस्कृत में ये बात कही जाती है।

0: दूंगी और मैं अपनी लाइफ के लिए, अपने लिए भी आगे की ओर मैं कुछ नया करने के लिए, कुछ नई चीजों को आने के लिए अपने द्वार खुला।
1: ओके कल्पना जी, आपसे भी ये पूछना चाहूंगी, पास्ट में अगर अटक गए हैं, सेम थॉट्स पैटर्न रिपीट हुए जा रहे हैं, पता है कि हो रहा है लेकिन फिर भी उससे हम अपने आप को निकाल नहीं पा रहे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे, तो क्या कुछ तरीके हैं जो हम लाइफ में अपना सकते हैं?
2: श्री जी की बातें सुनते हुए मुझे दो गाने याद आ गए जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो
1: किसने जाना
2: जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते,
1: फिर नहीं आते।
2: तो जब उनकी बातें मैं सुन रही थी, मैं सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रही थी अपनी ही लाइफ के ऊपर, और कई सारी बातें मुझे रियलाइज हो रही थी उनकी बातों को सुनते हुए कि लोग हमारे लाइफ में आते हैं। और जब मैं अपने जीवन की तरफ देखती हूँ तो जन्म के साथ जो मेरा सफर शुरू हुआ, तो किसी कवि ने बहुत सुंदर बात कही है जो हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है, एकला चालो रे, शायद रविंद्रनाथ टैगोर की ये बात है। ये हमारा सफर अकेले का सफर है जो जन्म के साथ हमने शुरू किया। जन्म होने के बाद हमारे माता पिता उस सफर में वैसे ही जुड़ गए जैसे कि बिल्कुल शुरू के फर्स्ट लाइन में रनिंग करते समय हमारे साथ बहुत सारे साथी होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे भाई बहन मेरे सफर में जुड़ते गए, मेरा सफर आगे बढ़ा, मैं स्कूल गया तो वहां पर मुझे दोस्त और टीचर मेरे सफर में जुड़ गए, थोड़ी दूर उन्होंने भी साथ दिया, उनके भी साथ को मैंने इंजॉय किया, मेरे पीछे के भाई बहन माता पिता थोड़ा सा पीछे रह गए और मैं आगे अपने दोस्तों के साथ निकल गया। आगे चल के मेरे जीवन में एक लाइफ पार्टनर आया, उस लाइफ पार्टनर के साथ मेरा जीवन शुरू हो गया, परंतु केवल लाइफ पार्टनर ही नहीं मेरे सफर के साथ ही थे, उसके साथ बहुत सारे रिश्ते और जुड़ गए और उन्होंने साथ चलना शुरू किया। धीरे धीरे देखा कि पीछे के रिश्ते धीरे धीरे छूटते गए, आगे के रिश्ते आगे बढ़ते गए, कुछ लोग साथ रहे, कुछ ने साथ छोड़ा। और जीवन का यही सच्चाई है कि हमारे सफर में हम अकेले आगे बढ़ते हैं, लोग हमारे साथ जुड़ते जाते हैं। एक बहुत सुंदर पुरानी कविता है जो लमाण जाति के लोग होते हैं ना, लमाण जाति के लोग, वो लमाण जाति के लोग किसी एक जगह पर रुकते नहीं है ज्यादा लंबा समय तक, वो अपना सामान अपने जानवरों के पीठ पर लादकर एक जगह से दूसरी जगह पर सफर करते रहते हैं। हमारे जीवन का भी सफर ऐसा ही है, बहुत सारे लोग जुड़ते रहते हैं, छोड़ भी जाते हैं। अब इसमें ब्रेकअप की जहां तक बात है, वो व्यक्ति मेरे साथ कुछ समय रहा और कुदरतन उसका समय आया साथ छोड़ने का, वैसे ही मेरा कोई रिलेटिव, नजदीकी रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन, बेटा, उनकी अचानक डेथ भी हो सकती है। वो दुख भी ब्रेकअप से कई गुना ज्यादा होता है क्योंकि एक व्यक्ति आपको हमेशा के लिए छोड़कर गया। ब्रेकअप के बाद तो हमें पता होता है कि वो व्यक्ति जिससे हमने प्यार किया वो कहीं है और खुश है, इस बात की हमें खुशी होती है, लेकिन जो व्यक्ति हमें हमेशा के लिए छोड़कर जाता है उसके दुख को भी ओवरकम करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्त हमारे छोड़कर चले जाते हैं तो वो भी ट्रॉमा हमारी लाइफ में हम आगे लेके चलते हैं। तो क्या ऐसे समय पर हम मूव ऑन, जो कहा श्री जी ने, वो एक फंडा अपने साथ, यादें लेकर हम आगे बढ़े, ना कि ये सोचे कि वो व्यक्ति ही मेरे साथ हो सकता है, उस व्यक्ति के साथ बुनी हुई यादें लेकर मैं आगे बढ़ूं, शिक्षाएं मैं लेकर आगे बढ़ूं, सफर तो मेरे अकेले का ही है जो मुझे अकेले ही तय करना है।
1: लेकिन हम उन्हें मिस भी कर रहे होते हैं सफर में, उनके साथ जो हम, अब मान लीजिए सिंपल चीजें हैं, आइसक्रीम खाने गए तो फिर अकेले गए तो फिर वो व्यक्ति याद आ जाता है, या फिर कोई और मोमेंट्स में हम अकेला खुद को फील करते हैं, किसी ने हमारी केयर करी होती है, बहुत ध्यान रखा होता है तो वो याद आ जाता है, या उसने कुछ चीजें गिफ्ट की होती
2: है। जी, मुझे आपको सुनते हुए ऐसे लग रहा है मैं बच्चों को सुन रही हूँ नहीं, आइसक्रीम खाते समय मुझे याद आता है बिल्कुल बिल्कुल याद आता है, जिनके साथ हमने समय बिताया क्यों हम उनको भूले, उन्हें भूलना नहीं है। यही मैंने कहा कि उनके साथ बुनी हुई अच्छी अच्छी यादें हम अपने साथ लेके जाएं, तो हमारी यादों में तो वो है ना, उन्हें भुलाया तो नहीं जा सकता है, बट अच्छी अच्छी यादें हमें जो एंटरटेन करेगी, ये पॉसिबल तो नहीं है। समझो कि किसी माँ का एक बेटा अमेरिका में है, उनका प्यार कम नहीं होता है, वो हर वक्त कनेक्टेड रहते हैं लेकिन साथ नहीं है, फोन से या किसी और तरीके से वो कनेक्ट कर

0: हैं। कोरोना में कई बार हमें मिलने को नहीं मिला कई लोगों से, बट
1: बिल्कुल.
0: उनकी दूरियां हमने महसूस नहीं की। वो हमारे पास थे, दूसरे कमरे में थे, 15-15 दिन हम नहीं
1: बिल्कुल
0: मिले।
1: ऐसा हुआ है.
0: ये हमें अपने आप को सिखाना होगा कि सफर तो मेरा अकेले का है, साथ में बहुत खूबसूरत यादें हैं और उन यादों के सहारे मुझे आगे बढ़ना है।
1: तो यादों के सहारे आगे बढ़ना है, और मूव ऑन का भी हमने कॉन्सेप्ट समझा, जो हम बहुत आम भाषा में यूज करते हैं. जैसे दोस्त कहते हैं, लेट्स मूव ऑन यार, अब तुम बहुत हो गया, मूव ऑन करो. या फिर इस जनरेशन में कई बार मानते हैं मूव ऑन इतनी बड़ी बात नहीं है, हम कर सकते हैं आराम से, लाइफ बहुत बड़ी है, उसे एंजॉय करना है तो मूव ऑन करना ही होगा. लेकिन जब हम थॉट्स रेगुलेशन के टॉपिक पे बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक सवाल आता है. मैंने किसी को कहते हुए एक्चुअली सुना था कि जब मैं, मतलब वो व्यक्ति शायद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सुना रहे थे, और वो 11th क्लास या 12th क्लास में होंगे, और उन्होंने बोला कि मैं अपनी चीजों में, हर चीज में रेगुलेशन पसंद नहीं करता, बिकॉज इट ब्लॉक्स माई क्रिएटिविटी. अगर मैं उसको रैंडम जाने नहीं दूंगा थॉट्स को, या फिर लोगों को, या रैंडम एक्सपीरियंसेस नहीं करूंगा, तो मेरी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाएगी, मेरी लाइफ को जो एक्सपीरियंसेस हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे. तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप लोग?
2: जब कल्पना जी बात कह रहे थे तो मुझे ये लाइन याद आई कि दूरियों का मतलब फासले नहीं हुआ करते। मगर ये एक सिंपल सी लाइन में कितनी खूबसूरत सी बात कह दी गई है कि सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस होने की वजह से इसका मतलब ये नहीं है कि ये फासले हैं या हम बहुत जुदा जुदा हैं, इसका मतलब ये नहीं है। और इसीलिए जब आप मूव ऑन कर भी रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, इसका मतलब आप किसी से दूर जा रहे हैं या फिर आप उनको भूल जाना चाहते हैं। इसके लिए एक बहुत सुंदर शेर की लाइन याद आती है कि याद रखना ही सब कुछ नहीं है मोहब्बत में, भूल जाना भी बड़ी बात। यानी हम लोग ये सोचते
1: क्या
2: हैं कि हम यही सोचते आए हैं कि मोहब्बत का मतलब ये है कि हम हमेशा उनको याद रखें, हमेशा उनकी यादें हमें सतानी चाहिए। और हो सकता है बॉलीवुड में ऐसे गाने बने हुए हैं,
1: बिल्कुल
2: तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना। अब ऐसे गाने सुनकर आपको लग रहा होगा कि हाँ हाँ ये तो एक्चुअल मोहब्बत तो ये है। मगर कवियों ने बहुत सुंदर तरीके से, ना सिर्फ ठीक है फिल्मों के हिसाब से गाने बनाए गए, क्योंकि वो सिचुएशन के हिसाब से कवियों को बोला गया था कि ऐसे गाने बनाओ, तो जावेद अख्तर साहब जैसे लोगों ने ऐसे गीत लिख दिए। मगर उन्होंने मार्मिक गीत भी लिखे हैं तो तार्किक गीत भी लिखे हैं, उन्होंने हमें समझानी देने वाले गीत भी लिखे हैं कि हम सही तरीके से अपने लाइफ को लीड कर सकें। उसके लिए भी हमें पॉजिटिव इंस्पिरेशन उन्होंने दिए हैं, और ये शेर व शायरी यही काम करती है, जहां पर हमको पता चलता है कि मोहब्बत के मायनों को समझें। ठीक है, एक व्यक्ति हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, देर इज नो डाउट अबाउट, बट उसका एक टाइम फ्रेम है कि वो हमारे लाइफ का सिर्फ इतने ही चंक का हिस्सा बन सकते थे, अब वो किसी और के लाइफ का हिस्सा बन रहे हैं या उनकी आगे की जर्नी कहीं और लिखी हुई है, ये समझना आवश्यक है। बट मैं वो आइसक्रीम खाते हुए याद आए, अच्छी बात है याद आए, बट वो याद आएंगे तो हमें उदास नहीं होना है, उन यादों को आते समय याद दिलाना है अपने आप को पॉजिटिवली कि वाह इतना समय उन्होंने मेरे साथ आइसक्रीम खाया, इतनी अच्छी बात है, ये लम्हात तो मैंने साथ में गुजारे और
1: पार्ट था
2: मेरे
1: मेरी लाइफ
2: साथ
1: तो
2: सुंदर पार्ट है मेरे लाइफ का, इट इज अ ब्यूटीफुल मोमेंट इन माय लाइफ एंड आई सेलिब्रेट इट एंड आई एक्नॉलेज कि हाँ ये बहुत ही खूबसूरत समय रहा है मेरे लिए। अब वो जिसी की भी जिंदगी में है, लेट्स अज्यूम, तो उनके लिए भी वो इतनी ही खुशियां दे, उनके लिए भी वो इतने खूबसूरत पल हो, ये दुआएं हैं मेरी। अगर वो कहीं और चल चुके हैं या समझ लें अब वो देहांत हो गया, फिजिकल बॉडी के रूप में वो हमारे साथ नहीं है, तो उनकी यात्रा जहां कहीं पर भी हो, वहां पर भी उनकी यात्रा अच्छी हो, वहां पर भी वो खुशियां ही बांटे, उनको खुशियां मिले, ये दुआएं मैं कर सकता हूँ। उसके एवज में अगर मैं सैड हो जाऊं, हाय मेरे साथ तो आइसक्रीम खाया, पता नहीं अब मैं अकेले आइसक्रीम खा रही, तो आप अपने लिए भी पेन क्रिएट कर रहे हैं और हो सकता है शायद उनके लिए भी पेन क्रिएट कर रहे हैं। और ये शायद भले कर्म के जो चीजें हम फिलोसफी में सुनते हैं आप उसके हिसाब से उस पर विश्वास रखें या ना करें, बट इन दिस मोमेंट आप क्योंकि उस चीज को पॉजिटिवली नहीं देख रहे हो, आप अपने लिए पेन क्रिएट कर रहे हो, इसलिए मूव ऑन करना जरूरी है कि आप अपने पेन को खुद क्रिएट कर रहे हैं।
1: खुद क्रिएट कर रहे हैं।
2: तो ये मेरे हाथ में है कि मैं अपने दर्द पर मरहम लगाना चाहता हूं या फिर उस दर्द को खुरेदना चाहता हूं बार बार, तो ये सेल्फ इंफ्लिक्टिंग हार्म है। अगर मैं अपने आप को हार्म करता हूं तो ये चीज होता है। अक्सर घाव जब भर रहे होते हैं तो जब घाव सूखता है, चमड़ी सूखती है वहां पर, तो खुजली होती है, और जितना आप जाएंगे उतना वो घाव फिर से खुलेगा, खून बहने लगता है उससे। इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं, जब इलाज करते हैं तो चिकित्सा कर्मी कहते हैं कि आपको स्क्रैच नहीं करना है,
1: नहीं करना है,
2: उसके ऊपर मरहम लगाइए। अगर आपको स्किन ड्राई होता है तो स्क्रैचिंग होता है, तो इसके लिए आप मरहम लगाइए, उस पर तेल लगाइए या कोकोनट ऑयल लगाइए, मॉइस्चराइजर, ये बोला जाता है। ये हमारे मन के लिए भी है, हम फिजिकल इंजुरीज के लिए तो ऐसा करते हैं, बट अगर आपको मन के ऊपर भी ऐसे घाव हैं तो उसके लिए भी मरहम लगाना आना चाहिए, और ये चीज सीखना पड़ेगा। और सेल्फ रेगुलेशन की जब आप बात कर रहे हैं, ये इसी प्रकार का हीलिंग है। हम उन थॉट्स को क्रिएट करें जो हमें राहत दे, ऐसे विचारों को क्रिएट नहीं करें जो हमें और आहत करें। और आहत देना या राहत देना, ये हमारा ही अपना मन कर रहा है, इसलिए रेगुलेशन करना बहुत आवश्यक है। अगर आप अनचेक्ड छोड़ देते हैं अपने मन को, जैसे आप कह रहे थे, बहुत सारे लोग आर्टिस्टिकली अपने एक्सप्रेशंस को देने के लिए कहते हैं कि नहीं, हम रेगुलेट नहीं कर सकते, हमें अनचेक्ड रहने की जरूरत है। अनचेक्ड रहने की जरूरत तब है जब आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, मगर आप जब अपने जीवन के इन चीजों को डील कर रहे हैं, वहां पर अगर आपके मन में कुछ ऐसे विचार आ रहे हैं तो वहां रेगुलेट करने की जरूरत है। और कवियों ने यही चीज की है, जो ये शेरो शायरियां मैंने अभी सुनाई है आपके सामने, ऐसा नहीं है कि उनके ब्रेकअप्स नहीं, उनके ब्रेकअप्स को भी उनने पॉजिटिव तरीके से उसके लिए चीजें लिखी। तो यहाँ ये बात पता चलती है कि वो क्रिएटिव जीनियस अपने मन के विचारों की दिशा को सकारात्मक ओर ले चले। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मेरे भाई का लड़का है, मेरा भतीजा, और मैं अक्सर ये बात एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि उसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, मेमोरी पावर अच्छी है, और वो इस लाइन को बार बार याद करता है। वो बोलता है, इफ यू हैव गुड मेमोरी यू शुड हैव गुड मेमोरीज, अगर आपकी स्मरण शक्ति अच्छी है तो आपके अंदर स्मृति में अच्छी चीजें होनी चाहिए। जीवन में दुर्घटनाएं भी घटती हैं, मगर अगर आप उसे याद करते रहेंगे बार बार, तो वही चीज आपकी स्मृति पटल पर अंकित रहेगी, और जो चीज मैं बार बार करता हूँ वही आदत बन जाती है, वो छप जाती है। इसलिए अच्छी चीजों की आदत डालें, अच्छे विचारों की आदत डालें, अच्छे विचारों को बार बार रिपीट करें, यही सेल्फ रेगुलेशन है। नकारात्मकता से थोड़ा दूर हो जाएं, इतना ही तो करना है।
1: बहुत सुंदर लाइन है, मुझे लगता है याद रहेगी। इफ यू हैव गुड मेमोरी यू शुड हैव गुड मेमोरीज, तो वो अच्छी यादों को जीना जरूरी है, लेकिन उदासी के साथ नहीं, एक सेटिस्फेक्शन के साथ कि यू हैव एंजॉयड दैट, आपने वो समय भी एंजॉय किया, आगे भी करेंगे, अभी भी करेंगे। बहुत सुंदर, और मुझे लगता है बहुत नटशेल में आपने ये बात समझा दी है। कल्पना जी, क्योंकि हमारा जाने का भी समय हो रहा है इस एपिसोड से, तो मैं चाहूंगी कि कोई आपको क्लोजिंग रिमार्क या कोई ऐसी बात आप जो ऐड करना चाहें इसमें, साथ साथ क्या कुछ हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं प्रैक्टिकली मेडिटेशन के माध्यम से जो हमें हेल्प करे इस सिचुएशन में।
0: श्री जी की बातें सुनते हुए मुझे कुछ बातें याद आ रही थी। मेरी एक फ्रेंड से मैं मिली, उसने मुझे कहा कि माय लाइफ माय चॉइस, जो मेरा जीवन है मेरे जीवन की चॉइसेस भी मेरी अपनी होनी चाहिए। मैंने बोला कैसे? कहा कि मेरी लाइफ में जो भी लोग आते हैं मैं उनको वेलकम करती हूँ, और जो जाते हैं उनको भीड़ कम हो गई, जिनकी मेरे जीवन में आवश्यकता नहीं थी वो मेरे जीवन से चले गए। आओ तो वेलकम, जाओ तो
1: भीड़ कम,
0: हाँ। आवश्यकता नहीं है, कोई और जुड़ जाएगा। यस, लास्ट में हम यही याद रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं कि मेरा जीवन मेरी चॉइसेस होनी चाहिए, और मेरी चॉइसेस में, जैसे कि श्री जी के भतीजे ने कहा कि अगर मेरी मेमोरी अच्छी है तो मेरी मेमोरीज में अच्छी बातें होनी चाहिए, अच्छी मेमोरीज होनी चाहिए। सो दिस इज वंडरफुल, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी और मैं इसे याद रखूंगी और अपने साथ लेकर चलूंगी। आइए 1 मिनट के लिए हम रुक जाते हैं, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते हैं आज के सेशन पर, और जो कुछ बातें हमने की जरा उनको हम रिवाइज करते हैं, रिवाइंड करते हैं, कि बहुत सारी सुंदर बातें निकली। हमने ब्रेकअप के बारे में बात किया, ब्रेकअप के बाद कैसे मूव ऑन करना है उसके बारे में बात किया, एंड देन रिश्तों में कैसे नई ताजगी लानी है उसके बारे में हमने अच्छे अच्छे विचार किए, मेमोरीज जो हमें साथ ले जानी है, जो लोग आते हैं उनको कैसे अपने लाइफ में ऐड करना है, और जो जाते हैं उनको कैसे गुड बाय कहना है। तो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर कोई मेरे रिश्ता टूट जाता है या कोई ऐसी डेथ हो जाती है, मेरे अपनों की मृत्यु हो जाती है, एक बहुत सुंदर अभ्यास है कि ऐसे समय पर हम एक गुड बाय लेटर बहुत प्यारा सा उनको लिखें, चाहे वो किसी की मृत्यु भी हुई है, चाहे कोई रिश्ता भी टूट गया है या ब्रेकअप भी हुआ है, तो एक बहुत सुंदर गुड बाय लेटर लिख के उनसे मिले, प्यारा सा लिखा हुआ लेटर उनको दे खुद पर्सनली, उनके सोशल मीडिया पर पोस्ट करें और उनको बहुत खुशी से अलविदा कहें, अलविदा कहें। आज सुबह मैंने किसी को अलविदा कहा, एक सिस्टर आए थे इसराइल से जहां पर अभी युद्ध चल रहा है, वो यहाँ काफी समय रहे और अब जाते समय उनको दुख हो रहा था इस स्थान को छोड़कर जाते वक्त। सो जाना तो पड़ेगा ही, परंतु अलविदा कहना बहुत जरूरी है। सो अलविदा दोस्तों, आप भी अपने जीवन में खुश रहे, आबाद रहे, न बिसरे न याद रहे, ये कहावत है, न बिसरे न याद रहे। धन्यवाद दोस्तों।
1: बहुत सुंदर कहावत, बहुत सुंदर कविताएं और बहुत सुंदर इंग्लिश की कोटेशन। मुझे लगता है सब कुछ आज हमने बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में समझा, और अगर उसे याद रखें या अपने पास लिख कर भी रख लेना, तो एट मोमेंट जब हम ये चीजें भूल जाते हैं, हमें ट्रैक पे ले आएंगी ये वापस। एंड ये जो कॉन्वर्सेशन है, जितनी प्रैक्टिकल होती है उतनी आर्टिस्टिक भी होती है आप दोनों के साथ, वो बड़ा ही मजा आता है सुनने में और याद करने में भी आसान हो जाता है। तो इन सभी बातों के लिए, हमारे साथ हमें गाइड करने के लिए, हमें हेल्प करने के लिए, आप दोनों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि ये जो लव यू जिंदगी कार्यक्रम में हम हर एक अपनी जिंदगी को आसान बनाने के सफर में हैं, और हम एक दूसरे का सफर आसान बनाएं, बेहतर बनाएं, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, और जिंदगी को बहुत ही प्यार से अगर कहना है, सच्चे दिल से कहना है कि लव यू जिंदगी, प्यार है मुझे तुमसे, तो इस कार्यक्रम को जरूर सुनिएगा, रेडियो मधुबन के साथ जरूर बने रहिएगा। फिलहाल लेते हैं इजाजत, रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: किताबों की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज आपको मिलवाएंगे आबू के रहने वाले प्रवीणा जी राणा, जिनकी उम्र है 52 साल और जीवन के काफी अनुभवी है। आपने घर घर में काम किया है, झाड़ू पोछा लगाना, लेकिन अपने बच्चों को अच्छा जीवन दिया है। तो ऐसी मातृशक्ति से आज आपको मिलवाएंगे। प्रवीणा जी नमस्कार।
1: हाँ नमस्कार।
0: प्रवीणा जी कैसे हो आप?
1: बस मजे में।
0: आपके चेहरे की स्माइल देख करके बता रहे कि आप बहुत खुश हो।
1: हाँ दीदी।
0: अच्छा प्रवीणा जी, चलिए अभी वर्तमान के बारे में हम जरूर जानेंगे आपसे, लेकिन थोड़े समय के लिए आप अपने बचपन को याद कर लीजिए। आपका बचपन कहाँ पर बीता?
1: मेरा बचपन गुजरात में।
0: गुजरात में कहाँ पर?
1: पालनपुर।
0: ओ तो तमे गुजराती छो एम ने?
1: गुजराती छो।
0: सुवात छी है। तो पालनपुर तो अपने आबू के पास में ही है।
1: हाँ पास में ही तो है पालनपुर।
0: अच्छा तो पालनपुर में आप कितने भाई बहन, किस तरह आपका बचपन बीता थोड़ा बताएंगे?
1: मेरे 3 भाई थे और 5 बहनें थे। हम पिताजी ऐसे दारू वारू पीते थे, शराब वराब, फिर हम भी दुख से ही भाई बड़े हुए हैं। ससुराल में आए तो ससुराल में ही ऐसा ही हमारे को देखने को मिला।
0: जी जी, ससुराल की बात जरूर करेंगे, थोड़े से बचपन की खट्टी मीठी बातें याद कर लेते हैं। कि आप बता रहे थे आप 8 भाई बहनों।
1: 8 भाई।
0: आपका नंबर कौन सा बनता है?
1: मैं तो लास्ट में हूँ।
0: अरे वाह क्या बात है, आप सबसे छोटे हो, तब तो आपको सभी का प्यार मिला होगा।
1: नहीं नहीं, मेरे से छोटी और बहन थी, इससे बड़ी हूँ। 3 बहनें बड़ी थी हमारे से।
0: अच्छा तो आपका नंबर 7वें नंबर पर, 8 भाई बहनों में आपका 7वां नंबर।
1: 7वां नंबर। हाँ 3 भाई ऑफ हो गए मेरे
0: बचपन में ही।
1: नहीं बड़े होके, शादी शुदा होके, बच्चे बच्चे हैं इनके, 8 आगे होते।
0: सॉरी, बात करेंगे आपसे इस बारे में भी, लेकिन पहले मैं पूछना चाहूंगी आपने पढ़ाई कहाँ तक की?
1: मैंने नहीं पढ़ाई करी दीदी।
0: आप 8 भाई बहन में आपका 7वां नंबर बनता है, तो कहते हैं कि भाई बहनों को भी रहता ना, खुद पढ़ाई नहीं करते लेकिन छोटे भाई बहनों के प्रति रुचि रखते हैं कि हमारे छोटी बहन छोटे भाई पढ़ाई करे।
1: हाँ, तो बहुत करा इन्होंने पढ़ाने का, पर हम खेलने कूदने में रहे। ऐसा समझ में नहीं था कि हमारे को पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी।
0: कोई नॉलेज देने वाला नहीं मिला?
1: नॉलेज देने वाला नहीं मिला। और मम्मी भी बेचारी, ये भी हमारे छोटे छोटे थे, खूब दुख सुख करके इन्होंने बड़े किए, वो हमारे तरफ ध्यान नहीं दे पा रही थी। हमारी मस्ती में मस्त थे। ऐसे जब पता नहीं था कि हमारे को कभी जरूरत पड़ेगी हमारे को पढ़ने लिखने की, इसीलिए हमने नहीं पढ़ाई करी। बहुत भेजा पर हमने पढ़ाई नहीं करी।
0: अच्छा तो मम्मी रुचि रखते थे पढ़ाई में?
1: हाँ ध्यान नहीं दे पा रही थी मम्मी, क्योंकि
0: 8 भाई बहन इसलिए।
1: हाँ इसीलिए नहीं दे पा रही थी ध्यान। ये दुकान थी हमारे सब्जी की, तो मम्मी तो वहाँ पे व्यस्त रहती थी।
0: अच्छा मम्मी सब्जी बेचते थे। और पिताजी?
1: पिताजी सर्विस करते थे, पर बाकी वो शराब पीते थे।
0: सर्विस किस में करते थे?
1: ये चपरासी की।
0: स्कूल में?
1: नहीं नहीं, ये हॉस्पिटल के अंदर चपरासी थे।
0: अच्छा तो आप 8 भाई बहनों ने मिलकर के आपके पिताजी को समझाया नहीं शराब के लिए, कि भाई नहीं पीना चाहिए?
1: छोटे छोटे थे, क्या समझावे, बड़े भी नहीं समझा पा रहे थे इनको, तो हम तो बहुत छोटे थे इनसे।
0: तो शराब पी करके घर में तो मारपीट नहीं करते थे?
1: नहीं ऐसे झगड़े टंटे होते थे, तो मम्मी बेचारी कहाँ कहाँ ध्यान दे, वो मजदूरी करके दुकान चला के सब्जी बेच के।

0: हमारा पेट भरने का लाभ है कि हमारे में ध्यान देवे।
1: तो आपके पिताजी सारा पैसा शराब में उड़ा देते थे?
0: सारे पैसा उड़ा देते थे। तो फिर माँ को तो करना है कुछ न कुछ काम।
1: तो आपकी मम्मी को कोई मदद करते थे?
0: नहीं, कौन करने वाला है मदद आजकल।
1: नहीं, जैसे आपके भाई बहन, ऐसे बड़े भाई बहन?
0: बड़े था भाई, पर भाई भी ऐसा ही था, झगड़ा हो एक नंबर का, ऐसा ही था व्यसन वाला।
1: पिताजी तो व्यसनी थे, लेकिन भाई कैसे व्यसनी बने? आपके मम्मी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया?
0: भाई ने फिर थोड़े घड़ी पढ़ाई करी, फिर इसने नौकरी करी सरकारी, बड़ा साफ बन गया था ये तो। और इसने फिर कोई हमारी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया था। इसने, हम पांच बहने थी, तीन भाई थे। तो फिर शादीशुदा हो गया, तो फिर इनका अलग से करने लग गया। फिर पिताजी ऑफ हो गए, रिटायरमेंट हुए, तो फिर इनकी पेंसिल वेंसिल आती थी, तो मम्मी इन सबका टेका लेके, सहारा लेके हमारे को शादी करवाई। घर गृहस्थी वैसा ही हमारी।
1: अच्छा, आप सभी भाई बहन कैसे रहते थे? आपस में कभी झगड़ते थे या फिर खेल खेल में बचपन बीता?
0: बहुत अच्छे से रहे, बहुत अच्छी लाइफ जी हमने, पर पढ़ाई नहीं करी। हंसना खेलना कूदना खाना पीना बहुत अच्छे से खेल कूद करके हम बड़े हुए। कभी झगड़ा बगड़ा नहीं करा हमने, कभी किसी से नहीं।
1: अच्छा, आपके मम्मी सब्जी का काम करते थे, तो घर का काम कौन संभालते थे?
0: बहने थी और हमारे से बड़े, हमारी दीदियां संभालती थी सारा काम। फिर ये शादीशुदा होके गए घर पे ससुराल, फिर हम लोग ने करा। हम छोटे थे तो हमने फिर संभाला। फिर मेरी शादी करी गई, तो फिर मेरी और छोटी बहन थी, फिर इसने संभाल लिया काम। तो विधवा हो गई शादी करके ससुराल जाते ही, तो इसकी पेंसिल वेंसिल मिली, पैसे वैसे इसके सर्विस करता था आदमी, तो बैंक का ऑडिटर था, तो इसके पैसे वैसे केस बेस करा हम लोगों ने। फिर पैसे थोड़े घने मिले, तब मम्मी के पास में ही है।
1: अच्छा, अभी भी आपके मम्मी के पास ही रहते हैं?
0: हाँ, मम्मी के पास में ही है। फिर मेरे भाई और मेरे भाभी जो आदिपुर में रहते थे, फिर वो भी जल के मर गए, तो इसके बच्चे इसके हवाले आ गए, तीन लड़कियां ने एक लड़का।
1: जल के मर गए?
0: तो फिर
1: कुछ हादसा हुआ क्या?
0: हाँ, ऐसे चक्कर आए, आग लग गई थी, तो अंदर ही थे कमरे में, तो ये जल गए। फिर भाई भी टेंशन टेंशन में, ऐसा भाई को अटक आ गए। फिर तीन बच्चियां और एक लड़का, ये मेरी छोटी वाली बहन ने शादी करी, तीन लड़कियों की, अब भतीजे की शादी करके आई। सारा हमारा पियर में वही संभालती, भाभियां नहीं संभालती, हमारी छोटी वाली संभालती है।
1: अच्छा, बहुत, देखो कहते हैं कि कहाँ से कहाँ नसीब लेके जाता है। तो प्रवीणा जी, ये सब बातें हुई तब आप वही थे या आपकी भी शादी हो चुकी थी?
0: नहीं, मेरी शादी हो चुकी थी, मैं ससुराल में ही थी, मेरे बच्चे थे, दो लड़कियां थी मेरे पास में।
1: अच्छा अच्छा, चलिए। और आपकी बहन, जैसे बहुत कम एज में उनके हस्बैंड ने शरीर छोड़ दिया था, उनकी डेथ हो गई थी, तो दूसरी शादी नहीं करवाई?
0: नहीं, वो कहे के नहीं, मेरे को गिफ्ट दे के गए बोले भगवान। भाभी ऐसे ही बोलती थी के बोले ये बच्चे तुम्हारे को ही दे के जाऊंगा मैं, पर ऐसा मालूम नहीं था कि भाभी ऑफ हो जाएंगे, तो इसके ही हवाले आ गए सारे बच्चे। तो सबकी शादी कर ली इसने बहुत अच्छे से, जैसे मान ही नहीं भावे ऐसा इसने कार्य करा है, माँ से भी बढ़कर इसने करा है।
1: बच्चे भी रिस्पेक्ट देते?
0: हाँ, इसको ही मम्मी बोलते, मेरी बहन को ही, बुआ को ही मम्मी बोलते, माँ को और सबको। घर गृहस्थी संभाल रही है हमारे पियर में, बहुत अच्छे से जिंदगी बिता।
1: वो कहते ना, त्याग उन्होंने भी किया ना,
0: इसने जीवन त्याग कर दिया। इसने शादी का था, घनी शादी करने वाले तो आए इसके जीवन में, पर इसने मना कर दिया कि मेरा सुख संपत्ति यही है बच्चे। तो बच्चे बहुत इज्जत करते इनकी, हमारे सारी पांचों ही फुआओं की इज्जत बच्चे बहुत करते कि नहीं हमारा मम्मी पापा यही है बोले।
1: जी जी, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि चलिए बड़े अपना फर्ज निभाते हैं, लेकिन छोटे भी उस बात को महसूस करते हैं, तब जाकर के मजा आता है रिलेशन में, कि रिलेशन मधुर बनते हैं। तो चलिए प्रवीणा जी, आपसे और भी बातचीत करेंगे, और भी अनुभव सुनेंगे, परंतु अभी ले लेते हैं एक ब्रेक। बने रहिएगा मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, वंदे मातरम कार्यक्रम अभी बाकी है, प्रवीणा जी हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन सुन लेते हैं गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो रेडियो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: वंदे मातरम में पुनः आप सभी का स्वागत है। प्रवीणा जी राणा जो आबू के रहने वाले हैं और आपके बचपन के बारे में काफी अनुभव हमने सुने हैं और भी सुनेंगे, तो प्रवीणा जी फिर से आपका स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: अच्छा प्रवीणा जी, बचपन की बातें आपकी चल रही थी, कैसा लग रहा है बचपन की बातें सुन के?
2: बहुत बढ़िया लग रही है मेरे को, ये बचपन अभी भी याद आ रहा है मेरे को।
1: सही कहा, बचपन में लौट आए हैं तो बचपन लगता है कि जैसे बचपन ही बना रहा है, बड़े होवे ही नहीं।
2: बड़े होके तो और जिम्मेदारियां पड़ जाती है अपने सिर पे, घर गृहस्थी की, सगे संबंधी की, सबकी।
1: जी जी, तो आप बता रहे थे कि 8 भाई बहनों, आपके मम्मी ने काफी स्ट्रगल किया और आपको बड़ा किया साग भाजी बेच बेच करके, तो और भी आपके परिवार में किसी का सहयोग मिलता था या आपके मम्मी सभी कुछ करते थे?
2: नहीं, ऐसे मेरे मम्मी करते थे, थोड़ा घना देते थे पापा, थोड़े घने पैसे बचा के ऐसे थोड़े घने लेके आ जाती थी मम्मी झगड़े करके बच्चों को संभालने के लिए, थोड़ा घना मम्मी ने करा। फिर भाई ने नौ सर्विस करी, कुछ भाई ने थोड़े घने पैसे दिए, ऐसे करके हमारा गुजारा। फिर सब बहनों की शादियां कर दी मम्मी ने।
1: तो आपने पढ़ाई तो की नहीं, तो पूरे दिन क्या करते थे?
2: ऐसे खेल कूद करना, फिर सब ससुराल चले गए शादी कर करके, तो सारा घर गृहस्थी की, माँ के घर की, पियर की सारी जिम्मेदारी हमारे सिर पे आ गई थी काम काज करने के लिए।
1: लेकिन जैसे कि पढ़ाई नहीं की, तो ऐसे कढ़ाई बुनाई सिलाई गीत संगीत इनमें रुचि थी आपको?
2: नहीं दीदी, ऐसा टाइम ही नहीं मिला इतना हमारे को, काम ज्यादा था, खाना पीना बनाना करना वो सब कुछ करना था, तो फिर हमने पढ़ाई भी नहीं करी, ना कोई कढ़ाई बुनाई करी, कुछ भी नहीं करा।
1: अच्छा, और आप कितने साल के थे और आपकी शादी हुई?
2: 15-16 साल की थी।
1: 15-16 साल की एज में आपकी शादी करवा दी?
2: तो
1: शादी करके आप सीधे आबू आए?
2: सीधे आबू आए।
1: तो शादी के बाद आपके जीवन में किस तरह के परिवर्तन आए?
2: बहुत झेलना पड़ा मेरे को, बहुत संकट का सामना करना पड़ा, पढ़ करके रही।
1: मतलब कैसे, जैसे आपके पियर में बहुत बड़ा परिवार था, ससुराल में कितना परिवार था?
2: ससुराल में थे पर कम परिवार था, पर धंधा रोजी नहीं थी। फिर मैंने काम धंधा चालू करा, मैं बंगलो घर घर में काम करती थी, झाड़ू पोछे बर्तन ऐसे करके मेरे बच्चों को बड़े करे मैंने।
1: तो आप शादी करके अपने ससुराल में आए, उस समय सभी साथ में रहते थे परिवार वाले?
2: नहीं, जेठ जेठानी अलग रहते थे, मेरा देवर मेरा ससुर ये हमारे साथ में रहते थे, ननद बनंद वो दोनों मियाँ बीवी अलग रहते थे।
1: और आपके हस्बैंड कुछ नहीं करते थे?
2: नहीं, दुकान थी किराने की, पर कहते हैं कि एक जना कमाने वाला होते, 100 जने खाने वाले होते तो कहाँ से चले। फिर जैसे तैसे करके इन्होंने फिर सप्लाई करी, माल करा, धंधा करा, अमूल्य के पे अहमदाबाद जाके पैकेट लेके आते थे, करा इन्होंने भी, मैंने भी डट के सामना करा।
1: तो आप जैसे झाड़ू पोछा करने के लिए जाते थे, कभी पियर में भी किया आपने झाड़ू पोछा?
2: नहीं, वहाँ की बहुत अच्छी जिंदगी जीती मैंने, बहुत बहुत अच्छे से जीवन जिया मैंने वहाँ पर।
1: जी जी, तो यहाँ पर आप झाड़ू पोछा के आपको मतलब अंदर से आपको आई कि मुझे कुछ करना चाहिए या परिवार वालों का दबाव था?
2: नहीं, मेरे को अंदर से कि मैं मेरे आदमी के साथ में कंधा मिला के चलू। ऐसे ही झोपड़ा था, घर मकान नहीं था हमारे, झोपड़ा था ससुर का दिया हुआ, फिर इनों को मैंने बनवाया, बहुत ऐसे मैंने संकट से झीला है।
1: तो आपके जैसे पियर वालों ने देखा नहीं था आपका ससुराल?
2: नहीं देखा था इन्होंने, देखा था क्योंकि मतलब गरीब लोग है, मेरी बच्ची को रखेंगे ये लोग अच्छे से, पर मैं अब पियर वालों को हम नहीं बताते थे कभी कि मेरे को ये तकलीफें पड़ी, ये तकलीफें से सामना करना पड़ा। पियर वाले हमारे हेल्प करते थे, मम्मी फिर मम्मी को दिखा कुछ कि बेटी मेरी तकलीफ में, तो फिर ये हेल्प करते थे थोड़ा घनी हमारे को, थोड़ी घनी कोई भी मेरी जरूरत के सामान थोड़ा घना देते थे करते थे।
1: जी जी, तो इधर आपके कितना बड़ा परिवार था, जैसे आप कह रहे थे ना ननन देर सास ससुर सभी?
2: सास नहीं थे, ससुर थे, फिर ननद थी दो, फिर मेरा आदमी ने घर वाला नहीं सारा करा।
1: अच्छा, और किराने की दुकान अकेले आपके घर वाले चलाते थे? हाँ, दुकान अच्छी चलती थी?
2: नहीं चलती थी, फिर वो लॉस में आ गए थे, दुकान बंद पड़ी गई, लॉस में आ गए। फिर ऐसे ही छूटी मजूरी करी, धंधा कर, पेट पालने के लिए तो कुछ तो करना ही पड़ता है। इतने पैसे ही नहीं थे कि हम सामान डलवावे किराने के और दुकान खोले वापस, इतना कुछ था ही नहीं। बच्चे थे, छोटे छोटे थे, मैं भी काम पे जाती थी, वो भी इनके काम करते थे। जैसे तैसे करके थोड़ी घनी बचत करके फिर ये मकान करवाया, बनाया मैंने।
1: जी जी, तो जैसे आप फर्स्ट बार झाड़ू पोछा करने, तो शादी के कितने समय बाद आपने ये काम चालू किया?
2: मैंने 5-6 साल बाद।
1: अच्छा, 5-6 साल के बाद आपने ये झाड़ू पोछे का काम चालू किया। तो 5-6 साल आपने क्या किया, घर के कामकाज?
2: छोटे बच्चे थे और घर का ही काम करके बैठी रहती थी।
1: और कहते हैं ना कि जैसे घर में कमाई नहीं आती है तो अक्सर तू में मैं होती है, क्योंकि कुछ न कुछ तो घर में चाहिए होता है रोजी। तो कभी आपके साथ भी ऐसा होता था, आपके हस्बैंड के साथ कभी झगड़ा?
2: हाँ, होता था, बहुत होता था। कोई सगे वाले आते थे, करते थे, मैं बहुत तकलीफें सहन करती थी। फिर किसी को कुछ अच्छा से इनकी सेवा नहीं कर पाती थी तो मैं गुस्से होती थी, झगड़े करती थी कि भाई तुम ऐसा ला के नहीं देते। फिर मैंने किसी ने, आप जैसे किसी ने मेरे को बताया कि ये बैठने से तो कुछ नहीं होगा, बोले काम धंधा पकड़ लो, बोले। फिर मेरे को ऐसा लगा, फिर एक घर लिए, दो घर लिए, ऐसे करके मेरा भी कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता ही गया। करती होंगी 4-5 हजार का काम, 10-12 घरों में काम करती थी तो 4-5 हजार रुपये आते थे।
1: कितने रुपये से आपने शुरुआत की, फर्स्ट काम आपने क्या किया और कितने रुपए लिए मंथली?
2: 250 रुपये में झाड़ू पोछे बर्तन कपड़े करे मैंने।
1: ये कितने साल पहले की बात होगी?
2: ये होगी दीदी, ज्यादा टाइम क्या।
1: तो 250 रुपये में सारे काम?
2: फिर 550 रुपये ऊपर नीचे के झाड़ू पोछे बर्तन कपड़े सारे करती थी मैं, 550।
1: घर का सारा काम करना, उसके बाद बाहर का करने जाना?
2: फिर बाहर का करने जाती, बच्चों को रात को तैयार करके सोती करती। 1:30-2 बजे तक तो मैं रात का घर का काम करती थी मैं, वो काम करके बच्चों को सुला के, फिर बच्चों को ब्रश करवा के, चाय पिला के, फिर बच्चों को स्कूल भेजती, फिर मैं काम पे जाती। तो शाम को 4:30-5 बजे घर पे आती तो बच्चे मेरे घर में ही खेलते रहते बंद करके, मैं काम करके आती।
1: जी, और परिवार में आपके अन्य सदस्य भी थे ना, ननंद, दियर, फिर इनको कौन?
2: हाँ,
1: समझ
2: तो शादी होगी थी दीदी, पर वो आते जाते रहते थे। इसके आदमी तकलीफें देते थे तो भाई के घर पे आवे ना, कहने का जा रहे, माँ बाप तो थे नहीं, तो भाई भाभी हम समझदार थे तो हमारे को ही रखना पड़ता था सबको। जेठ जेठानी ने कभी नहीं रखा इनको, मैं अभी भी मैं ही संभालती हूँ इनको। कोई भी तकलीफ आती करती तो मैं ही जाती हूँ, मैं संभालती दोनों बहनों को।
1: बहुत अच्छी बात है प्रवीणा जी, कहते हैं कि अगर हमारा व्यवहार अच्छा होता है तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। और आज आपकी काफी स्थिति चेंज हो चुकी है, इस पर भी जरूर हम गौर करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं गीत। तो आइए और भी सुनेंगे आपके अनुभव, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: मैं हूँ वर्षा उसगांवकर और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम और प्रवीणा जी राणा हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीणा जी, जैसे आपने अपने जीवन के काफी अनुभव सुनाए हैं, आपने बताया कि आप पालनपुर से शादी करके यहाँ आए, तो देखिए गुजरात के कल्चर और राजस्थान के कल्चर में काफी भिन्नता है, तो यहाँ आकर आपको अच्छा लगा या एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगा?
2: समय लगा था दीदी, मेरे को बहुत समय लगा था। ये हिंदी बोलना नहीं आता था और राजस्थान बोली नहीं आती थी मेरे को। अब मैं सारों में सेट हो गई हूँ।
1: जी जी, अब तो इतने साल हो गए जो
2: मेरे को हिंदी बोलना नहीं आता था, मैं गुजराती में बातें करती थी। ये हिंदी क्या बोलते हैं क्या समझ में नहीं आ रही था मेरे को कि कैसे बोलते हैं हिंदी ये लोग। अब सब समझ गई हूँ।
1: वो कहते हैं कि एक पत्थर को भी पीट पीट करके मूर्ति बना देते हैं, उसको भी ठोक बजा गए तो इंसान तो फिर एक्टिव हो ही जाता है। लेकिन जब आप पहली बार इधर आए तो मतलब आपके पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया कि हमारी बच्ची गुजराती, मतलब हम गुजरात के रहने वाले राजस्थान में देंगे तो ये कैसे उस कल्चर को अपनाएगी, क्या करेगी? क्योंकि भाषा का ही ज्ञान नहीं है तो कौन क्या कह रहा है समझ में ही नहीं आता।
2: नहीं, मेरे पियर वालों ने ऐसा ही सोचा था कि धीरे धीरे सीख जाएंगे, अच्छे घर में जा रही मेरी बच्ची, तो बोले धीरे धीरे सीख। फिर पिताजी शराब बरब पीते थे करते थे तो फिर मम्मी कहे कि मेरी इज्जत रह जावे, आजकल टाइम खराब है, बोले बच्चिया, बोले मेरे पांच लड़कियां है, इसे करके मम्मी ने फिर जानता दे दी थी बेटियों को, देखा नहीं के बोले हमारी कास्ट में ही दी सब जगह पांचों बहनों के।
1: जी जी हाँ, सब यही सोचते ना, पहले इतना ध्यान नहीं देते थे कि वहाँ चलो अपने आप जाएंगे तो घर में सब ठीक हो जाएगा, यही सोचा होगा।
2: तो हम अच्छे से ही रह रहे हैं पर तकलीफें तो घनी हैं।
1: जी जी, पर जैसे आप इधर आए है ना, तो फिर आप कैसे समझते थे? आपको हिंदी नहीं आती थी, आपको राजस्थानी नहीं आती थी, तो कोई कुछ कहता तो आप कैसे समझ पाते थे?
2: समझ आती थी, थोड़ी घनी आती थी, मैं ज्यादा जवाब नहीं देती थी इन लोगों को। ऐसे ही घूंघट में रहना, करना, मान सम्मान से रहना, ये राजस्थान में बहुत मैंने देखा है यहाँ पर।
1: तो उस समय आपके हस्बैंड साथ देते थे आपका?
2: बिल्कुल साथ देते थे मेरे को।
1: तो कोई चीज अगर समझानी हो तो आपके हस्बैंड समझाते थे कि इसको ये बोलते? गुजराती आती थी उनको?
2: नहीं, वो थोड़ी घनी समझ में आती थी इनको, दुकान थी वहाँ पे, कोई गुजराती रहते थे थोड़े घने, तो उनकी लैंग्वेज इनको समझ में आती थी, फिर वो मेरी भी लैंग्वेज समझते थे कि मेरे घर वाली वो कहना चाहती है। फिर धीरे धीरे ऐसे करके मैं भी समझी, मेरे को समझे, मैं इनको समझी।
1: चलिए, आपके पारिवारिक तंगी थी, पैसों की तंगी थी, बाकी घर में शांति थी?
2: पैसों की तंगी थी पर घर में शांति थी। फिर मेरे हस्बैंड के साथ में मैंने भी काम धंधा खूब करा।
1: तो जैसे आपने झाड़ू पोछा करने की सोची तो आपके हस्बैंड ने मना तो किया होगा कि नहीं करना है?
2: हाँ, मना करते थे, पर कहते हैं कि एक बार इंसान को पैसे हाथ में आ जाते तो फिर इंसान को लालच सी पड़ जाती। मैं मेरे काम काज में इतनी मस्त थी कि किसी के सामने ध्यान नहीं देती थी, खाली मेरे बच्चों के अलावा कि भाई मेरे बच्चे पढ़ लिखे करे, इसके अंदर ही ध्यान देती थी, ज्यादा नहीं।
1: तो आप अपने बच्चों को छोड़ करके फिर इस तरह आपने शुरुआत की, तो आपके ससुर जी ने मना नहीं किया कि ये काम नहीं करना है, कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाया?
2: हाँ, ऑब्जेक्शन तो उठाए थे इन्होंने कि बोले नहीं करना ऐसा काम, बंगलों का काम तो इसमें क्या हो गया, कोई चोरी चिनाली तो कोई खराब धंधे तो करने जाते नहीं, करते अच्छे लोगों के मुंह ही लगते, अच्छे घर में जाते हैं, अच्छे संस्कार पाते अपन, अच्छों के मुंह लगते, तो इसीलिए फिर हमने मैंने काम धंधा जारी रखा।
1: नहीं, कहते हैं ना कि भाई चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, लेकिन काम करना पाप नहीं है, काम छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता है, काम काम ही होता है।
2: काम काम ही होता है दीदी, इसीलिए मैंने काम को खूब अहमियत दी।
1: जी जी, मेहनत की आपने और मेहनत का फल तो मीठा ही होता है। तो आप मतलब पूरे दिन आप बाहर का काम करते थे, घर का भी काम करना, फिर बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, फिर आप रेस्ट कब करते थे?
2: एक दो तीन बज जाते थे सोते करते, सुबह फटाफट 7 बजे तो उठ जाना पड़ता था मेरे को, फिर बच्चों को नाश्ता वास्ता करवा के फिर स्कूल भेज के, फिर 9 बजे में थोड़ा घर का काम करके फिर 9 बजे काम पे जाती।
1: सुबह 9 बजे?
2: सुबह 9 बजे तक तो मैं फ्री हो जाती थी घर का करके, तो 15-16 घर के काम करती थी।
1: बहुत काम करते थे तो कहते हैं कि भाई काम करने जाते हैं तो कोई किसी के यहाँ पर कोई फंक्शन है या फिर भोजन बनाया बच गया वो भी हेल्प मिल जाती है, बच्चों के कपड़ों की भी हेल्प मिल जाती है, तो आपने इस तरह की हेल्प ली कभी?
2: नहीं दीदी, मैंने पैसों की अहमियत दी, मैंने ऐसी हेल्प में कभी लेती ही नहीं थी। मैंने मेरे घर की मिर्ची रोटी खिलाई होगी पर मेरे घर की खिलाई है मेरे बच्चों को।
1: खुददारी से जीवन जिया,
2: दूसरे कोई देते बेचारे बापड़े करके मैंने जीवन नहीं जिया। मैंने सामना करा, अनुकाम धंधा करा, मेरे बच्चों को अच्छा खिलाया पिलाया, भले थोड़ा लाके खाते थे पर अच्छा खाते थे।
1: जी जी बिल्कुल, कहते ना ये भी अपना अपना स्वाभिमान होता है, काम करना गुनाह नहीं है लेकिन स्वाभिमान में रहना ये एक विशेषता है।
2: बस यही मेरा बड़पन है कि मैं मेरे ही स्वाभिमान में रही हूँ।
1: जी जी, तो आपके जैसे बेटियां भी है तो आप अपने बेटियों से क्या अपेक्षाएं रखती है, मतलब किस तरह की अपेक्षाएं रखते हैं? जैसे आपके तो पेरेंट्स में मतलब पिताजी तो शराब पीते थे, माँ बेचारे सब्जी का काम, इतने भाई बहनों की पालना करना, तो उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप क्या चाहते हैं? आपकी बेटियां पढ़ रही है?
2: नहीं, मेरी दो बेटियां ससुराल है और एक छोटी वाली ये मेरे पास है।
1: तो आपने अपने बच्चों को पढ़ाया? आपने तो पढ़ाई नहीं की पर आपके बच्चों को तो पढ़ाया, बेटियों को?
2: हाँ, एक सातवीं क्लास पढ़ी, फिर वो तकलीफें घर के अंदर, वो मकान बना दिया, फिर तकलीफें बहुत आई हमारे को, फिर बच्चियों ने दोनों बहनों ने स्कूलें छोड़ दी। फिर
1: घर के अंदर मकान बना दिया बोले तो?
2: नहीं, झोपड़ा था, मैंने मकान बनाया, थोड़ा कर्जा हो गया था, फिर बेटियों ने पढ़ाई छोड़ दी, फिर घर में तकलीफ देख रहे थे, तो फिर इन्होंने बिचारियों ने काम करा दोनों बहनों ने।
1: देखिए पढ़ाई का तो अभी गवर्नमेंट के इतने सारे नियम है कि गवर्नमेंट फ्री में पढ़ाई कराती है, तो बेटियों के तो शुरू से मेरे ख्याल से सरकारी स्कूलों में फीस नहीं लगती है।
2: नहीं, सरकारी स्कूल थी पर दीदी फिर पूरा नहीं जाता था घर में, सरकार इतना तो नहीं देती थी हमारे को कि हमारा

0: पढ़ाई नहीं कर सकी।
1: अच्छा, तो अभी छोटी वाली बेटी भी मतलब पढ़ाई 8वीं तक पढ़ाई करके छोड़ दी और आपके साथ हेल्प करते हैं?
0: हेल्प करती मेरे साथ।
1: तो अभी आप क्या करते हो काम?
0: अब बेटा कमाता है तो थोड़ा घना चलता रहता है जैसे तैसे। बेटी अभी जाती थी काम पे, फिर इसने छोड़ दिया। छोरी कपड़ों की दुकान पे जाती, इसने छोड़ दिया अभी।
1: अच्छा, कपड़े की दुकान पर जॉब करते?
0: जॉब करती थी तो उसने छोड़ दिया। तो अभी ये अभी करने सोच रहे हैं भाई कहाँ कहीं अच्छा मिल जावे तो वापस लग जाऊं।
1: जी जी बिल्कुल। तो प्रवीणा जी, और भी आपसे हम आपके अनुभव सुनेंगे, परंतु समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो ले लेते हैं एक ब्रेक। बने रहिएगा मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं वंदे मातरम कार्यक्रम में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। प्रवीणा जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीणा जी, अपने जीवन के उतार चढ़ाव सारी बातें आपने बताई है कि किस तरह आपने स्ट्रगल किया है, बच्चों को बड़ा किया है। बच्चे बड़े होने के बाद आपको काम करने देते थे या फिर आपने काम छोड़ दिया?
3: नहीं, बच्चों ने मना करा कि मम्मी आपने बहुत संघट करा है, बोले अपनी अब मम्मी हम जाएंगे तुम खाओगे बैठ के, घर को संभालो। और काम धंधे करने में कोई खराब नहीं है काम।
2: तो आपके हस्बैंड के बिजनेस सेट हुआ या नहीं हुआ?
3: नहीं, मेरा हस्बैंड तो ऐसा ही धंधा करता है, यही खुली मजदूरी ऐसे ही करते है। तो ऐसे कुछ मांगते है तो दे देते है, बाकी मैं जरूरी नहीं समझती। अभी बच्चे संभाल रहे थे, मैं इनके पास ये इनका छोकरते है, इसीलिए मैंने काम धंधा बहुत करा पर इज्जत की रोटी खाई है मैंने। मैंने शान से जी हूँ, शान से ही वही रहना है मेरे को। इसीलिए मेरे बच्चे कह रहे हैं कि बोले नहीं काम धंधा, बोले मम्मी आपने खूब करा अब मत काम करो।
2: जी जी बिल्कुल, कहते हैं कि काम करने की शर्म नहीं है लेकिन इज्जत से रहना ये बहुत बड़ी बात है। तो आप बहुत सारे घरों में जाते थे काम करने के लिए, कभी आपके काम से किसी ने नाराजगी जताई?
3: नहीं, सब खुश थे, मेरे को देख के बहुत खुश हो जाते थे कि हमारे हंसमुख आ गई। मैंने कभी ऐसा दुख कभी मन पे ही नहीं लाई कि मेरे को इतनी तकलीफ है, मैं इतनी दुखी चल रही हूँ। सबके सामने हंस के सामने आई हूँ। तो सब काम वाले, सब बंगलों वाले, सब सेठानियाँ खुश ही थी मेरे को, प्रवीणा प्रवीणा करके करती। ऐसे नहीं कि मैंने इज्जत की रोटी खाई है वहाँ पे भी, पूरा घर बार मेरे भरोसे छोड़ के जाते थे, कभी वहां से वहां नहीं हुई चीजें इनकी।
2: कहते खुश रहना सबसे बड़ा गुण है और हंसता हुआ चेहरा सभी को पसंद आता है, तो ये बहुत बड़ी विशेषता है आपकी कि सारे दुखों को अंदर दबा करके हमेशा चेहरे पर स्माइल रखी है और यही होना चाहिए सही मायने में। तो जैसा कि आपने बताया कि आपके बेटियों को सातवीं सातवीं तक पढ़ाया और सबसे छोटी वाली को आठवीं तक पढ़ाया है ना, और बेटे को?
3: बेटा वो भी नौवीं तक पढ़ा है और एक बेटा अभी छोटा वाला है नौवीं में आया है। तो बस इसका एडमिशन कहाँ करावे कैसे करे अभी सोच रहे, इसकी फीस बीस जमा करनी है और सोच रहे वहां तक हाथ पैर मारेंगे भाई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बन जाएगा बंदोबस्त, फिर काम धंधा करके इनको चुप्त कर देंगे।
2: जी जी बिल्कुल, देखिए पढ़ना बहुत जरूरी है ना। आज आपको अफसोस होता है आपने पढ़ाई नहीं की जो?
3: बहुत अफसोस होता है, बहुत, कि खेल कूद में हम लगे रहे, पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया। मम्मी ने तो बापड़ी ने रिश्वत खिला के भी हमारे को पढ़ाने को भेजा, पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि पढ़ाई के ऊपर, कि पढ़ाई क्या चीज है, खेल कूद करने में खूब ध्यान दिया हमने।
2: इसलिए आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। बेटियां तो अब आपने छुड़वा दी, बाकी सबसे छोटी बेटी उसको तो आप पढ़ा सकते हो।
3: हाँ दीदी, तो दे रही है अभी, कह रही कि मम्मी देखती हूँ मैं एग्जाम दूंगी घर बैठ के। तो ऐसा थोड़ा घर में सही चल रहा है तो बोले मम्मी मैं करती हूँ, बोले एग्जाम दूंगी, लड़की कह रही है।
2: जी जी, और अभी आप वर्तमान में अपने घर के मकान में हो?
3: हाँ अभी तो मेरे घर के मकान में ही हूँ, मैं मेरे घर के मकान में ही हूँ, मेरे बच्चों के साथ में हूँ, मैं मेरे बच्चों को लेके बहुत खुश हूँ।
2: बच्चे आपका कहना मानते?
3: बिल्कुल मेरा कहना मानते हैं, मेरे बच्चों के अंदर मेरी सारी खुशी मेरे बच्चों में ही है, इसीलिए मैं मेरे बच्चों के अंदर बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चों के अंदर भी बहुत खुश हूँ। इसीलिए मेरे को भगवान से कुछ नहीं चाहिए, बस एक इज्जत दे दे, दे ने एक रोटी दे, दे दो टाइम इज्जत की, बस वही मेरे लिए काफी है।
2: जी जी, तो प्रवीणा जी आपके जीवन में काफी उतार चढ़ाव आए, आपको इससे क्या सीखने को मिला?
3: मैंने हर चीज को हंस के सामना करा, डट के कर रहा सामने, कभी हार नहीं खाई मैंने, अभी तक की भी टक्कर ले रही हूँ उससे ही, पर कभी दुख ऐसे नहीं समझा कि मेरे को तकलीफ हुई ऐसा हुआ ऐसा हुआ, मैंने कभी सोचा ही नहीं ऐसा।
2: तो हमारी जो बहनें सुन रही है उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
3: बस वही कि डट के सामना करो किसी भी चीज का, ऐसे नहीं समझने का कि छोटा बड़ा काम काज ही है, इसको छोटा बड़ा मत समझा करो, ऐसे डट के सामना करो, भगवान चाहेगा तो सब अच्छा ही होगा, मालिक चाहेगा तो।
2: जी जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम ही होता है, बस उसमें आप कहते हैं कि लगन से काम करते रहो और हमेशा खुद को खुश रखो, ये सबसे बड़ा गुण है। जैसा कि प्रवीणा जी के अंदर है कि कितने भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन आज भी इनके चेहरे पर हम भी देख रहे हैं, अभी जो इतना अनुभव इनका सुना है कि लगातार इनके चेहरे पर स्माइल ही रही, कहीं शिकन की बात ही नहीं। तो सचमुच जीवन में तो उतार चढ़ाव सभी के आता है, लेकिन स्वयं को दूसरों के सामने मुस्कुराहट के साथ पेश करना, ये सबसे बड़ा गुण है। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृशक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और इस तरह आप अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हो। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

दिन की जगह रात ले लेती है और रात की जगह दिन। आते जाते दिन और रात कुछ न कुछ कहानी सुनाती हैं। दिन भर की कहानी दिल में बसी होती है, जिसे हम रात को याद करते हैं। पलकों की गलियों में नई पुरानी कहानी, कहानी जो सपनों को पंख दे। सात सुरों के गीतों में भी होती है स्टोरी। हर सप्ताह हम मिलते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में, और कार्यक्रम गुलदस्ता भी थीम के जरिए कुछ न कुछ नई स्टोरी आपको सुनाता रहता है। तो आज के प्रोग्राम में हम करेंगे क्या, आज के प्रोग्राम में भी आपके लिए है बहुत सारे सुहावने तराने, सुहावने गीत। गुलदस्ता कार्यक्रम आपके लिए आज विशेष लेकर आया है सोलफुल मैजिक, मैजिकल मेलोडीज। और इन मेलोडीज को सुनते हुए हम इन दिनों भारतवर्ष में जो भी चेंजेस आए चुनाव के कारण, और इस दौरान हमें कौन से एहतियात बरतने हैं, इस पर भी बातें होंगी। तो बहुत ही मजेदार कार्यक्रम है, दोनों मूड को साथ साथ लेकर हम चल रहे हैं। एक ओर प्यार भरे गीत, तो दूसरी ओर प्रैक्टिकलिटी, समाज का क्या है आज का, और यह प्रैक्टिकलिटी हमें क्या कहती है, कौन सी कहानी सुनाती है। बने रहिए स्वर्णलता के साथ रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते हुए मुस्कुराते हुए।

0: मैं हूं जयप्रदा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: सोलफुल और मीनिंगफुल गीत सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में। आज है शनिवार और आपका फेवरेट कार्यक्रम लेकर आई हूं मैं स्वर्णलता। जैसे इस गीत को हम सुन रहे थे, सुनते हुए हमें यही एहसास हो रहा था कि जब हमें किसी का अपनापन, प्यार भरा साथ और विश्वास प्राप्त होता है तो वह जीवन निखर जाता है। ऐसे ही जैसे हमें मालूम है कि भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जनता द्वारा सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि चुने जाते हैं और ये प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं वो चुनाव से पहले बहुत वादे करते हैं, अपनापन दिखाते हैं और उसके बाद जब वो अपनी बात को जो है प्रूफ करके दिखाते हैं और उसे साबित करते हैं कि हाँ उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही है, वो करके ही दिखाएंगे, तो ऐसे में क्या होता है कि देश के शासन और कानून निर्माण में उनकी जो भूमिका है बहुत अहमियत रखती है। तो आज के कार्यक्रम में हम आपके साथ यही शेयर करना चाहेंगे कि भारत में जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है जिसमें हम वोट देते हैं, वोट के बाद रिजल्ट आ जाते हैं सामने और उसके बाद नागरिक का क्या कर्तव्य होता है, हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सी सेफ्टी मेजर्स अपनाने चाहिए, ये है आज का मुद्दा। बने रहिएगा, एक ओर गीत का मिजाज मिठास से भरा है तो दूसरी ओर प्रैक्टिकलिटी से भरा विषय, तो इन दोनों ही को बैलेंस में रखते हुए हम चलेंगे आज के कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कुछ सोलफुल म्यूजिक का हम मजा ले रहे हैं आज के प्रोग्राम में और इसमें आपको डुएट सॉन्ग्स भी मिलेंगे तो सोलो सॉन्ग्स भी मिलेंगे। तो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आज हम आप सभी को यही कहना चाहते हैं कि जैसा कि हम सभी को मालूम है कि चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, तो ऐसे मोड पर हमारा क्या कर्तव्य है। तो पहले थोड़ा सा हम इसकी भूमिका थोड़ी और बांध दें कि इन दिनों भारतवर्ष के कई राज्यों में चुनाव का प्रचार प्रसार हुआ और सभी अपना कर्तव्य और कार्य की लिस्ट जनता तक पहुंचा रहे थे। प्रत्येक राजनीतिक दल के अपने लक्ष्य और अपना कार्य करने का तरीका होता है, पर सभी ने एक ही लक्ष्य रखा, देश व रहवासियों का विकास और उनकी उन्नति। वैसे चुनाव के रिजल्ट्स सामने आ गए हैं, तो ऐसे में हमारा कर्तव्य क्या है। हमारा वोट गुप्त है, इसलिए इसकी हम चर्चा किसी के साथ भी ना करें। जैसे कि हमें मालूम है कि हर 5 या 2.5 साल में जो भी बदलाव आते हैं, यही दर्शाता है कि कर्म तकदीर व समय का यह खेल है। किसी की बुराई या अच्छाई पर कहीं भी डिस्कशन न करें। ऐसा करने पर हम खुद के साथ और अपने अपनों के साथ क्या कर रहे हैं, सुरक्षा का कवच एक हम तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए अपने अपनों की सुरक्षा हमारे पास ही है। हम बिल्कुल ही उत्तेजित ना हो और न ही किसी आर्ग्यूमेंट में या किसी भी डिस्कशन में न जाएं। तो बने रहिए स्वर्णलता के साथ, राज के विषय में मशगूल भी रहें और गीतों को भी तल्लीनता से सुने। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: प्यार भरे गीत या नगमे जो दो दिलों को जोड़े, प्यार भरे गीत जो मूड को तरोताजा कर दे, अपलिफ्ट कर दे, प्यार भरे गीत जो समय को सफल कर दे। ऐसे ही अभी जो समय है जिसमें कोई राजनीतिक दल ने आगे अपने वोट के कारण जो है अपना भाग्य आजमा रहे हैं, कोई फिर से अपना भाग्य आजमाएंगे, ऐसे में अपने विचारों को किसी पर न थोपें। कहा जाता है ना, सवे दिन होत न एक समान, हर समय एक जैसा नहीं होता। हार व जीत पर ही यह दुनिया कायम है। राजनीतिक दल अपने अपने क्षेत्र में सक्षम हैं, देश के विकास व उन्नति के लिए वे भी तत्पर हैं। आज कोई आगे है तो कल कोई आगे होगा, इस पर बिगड़ने या बिगाड़ने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं। हमारा मुद्दा यही है कि हम सब प्यार से जिए और जीने दें, खुद जियो औरों को भी जीने दो, यही है ना हमारे इस प्रोग्राम का मकसद। तो यही शांति को फैलाने का मार्ग भी है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप हैं रेडियो मधुबन पर स्वर्ण लता के साथ, कार्यक्रम है गुलदस्ता।
2: मैंने कुछ खोया है

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खुद से सच्चा संवाद करें, क्योंकि दुनिया के सभी उत्तर आपके भीतर ही छिपे हैं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: मैंने कुछ खोया है, मैंने कुछ पाया है। कोई भी कर्म आप कीजिए, कोई भी कार्य कीजिए, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप अपनाने की कोशिश कीजिए, उसमें हार जीत है, उसमें सुख दुख है, उसमें खोना पाना शामिल है। तो यही बात अप्लाई होती है वोट के रिजल्ट्स पर। जब भी वोट के रिजल्ट्स या नतीजे सामने आते हैं, उस समय हमें क्या करना चाहिए? और अगर अभी अभी आपने रेडियो ट्यून किए हैं, तो आपको हम बता दें कि आज हम बातें कर रहे हैं भारतवर्ष में जो लोकतंत्र शासन प्रणाली है, उसके अंतर्गत जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा देश का प्रशासन चलता है, संचालित होता है। वोट के माध्यम से ही वो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो ऐसे में जब नतीजा सामने आता है, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है कि हम आपस में कोई भी डिस्कशन करके एक दूसरे के साथ मन मुटाव उत्पन्न न करें, इससे हम बचें। हम शांति से रहें, शांत रहें, और देश के लिए क्या अच्छा है या बुरा, क्या सर्वोत्तम है, यह उस समय की मौजूद चुनौतियां स्पष्ट करती हैं। वोट के जो रिजल्ट्स हैं, वह खुद ही खुलासा करती हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो बने रहिए स्वर्णलता के साथ, और आज के गीतों का आप आनंद भी लीजिए, और आज के मुद्दे पर जो है विचार विमर्श भी कीजिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें, धन्यवाद।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम गुलदस्ता में आज हम प्यार के भिन्न भिन्न रंग के गीत सुन रहे हैं और इन भिन्न भिन्न रंग के गीतों में सुकून के रंग भी हैं, है ना। तो मिले जुले गीत भी हैं और इसमें आपको डुएट सॉन्ग सोलो सॉन्ग्स दोनों ही मिलेंगे और सोलफुल मैजिक है। वैसे तो इस प्रोग्राम में हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर भी बातचीत कर रहे हैं कि कैसे चुनाव के रिजल्ट्स आउट होने के बाद हमें उस समय क्या करना चाहिए ताकि आसपास सुरक्षा कायम रहे, हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम एज ए सिटीजन नागरिक हमें क्या करना चाहिए। तो वैसे हम काफी बातें स्पष्ट कर चुके हैं और भी कुछ बातें रह गई हैं और उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारी जो प्रतिक्रिया या आक्रोश दीवार खड़ी कर सकती है, इसलिए कभी भी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करने से बचें, किसी के साथ हम डिबेट ही ना करें, है ना। और इसके अलावा जब चुनाव के नतीजे सामने आते हैं तो अति उत्तेजित होकर टिप्पणी करना, इन सब चीजों से हम दूर रहें। बने रहिएगा स्वर्णलता के साथ कार्यक्रम गुलदस्ता में रेडियो मधुबन पर।

0: यार वो आएगी या नहीं?
1: वो आएगी कुकी, तू फिक्र क्यों करता, वो जरूर आएगी।
0: मुझे इतना विश्वास है कुसुम पर।
1: मुझे सुनीता की आवाज पर विश्वास है, वो आवाज मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती कुकी।

0: चतुर चपल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, चलो मिलते हैं मीना से, जो रोशनी और सबीना के साथ स्कूल से वापस लौट रही है।
1: मीना, रोशनी, चलो थोड़ी देर पकड़न पकड़ाई खेलते हैं।
2: ठीक है सबीना। रोशनी, पहले तुम्हारी बारी।
3: आज नहीं मीना, आज मुझे जल्दी घर पहुंचना है।
2: क्यों?
3: क्योंकि आज हमारे घर मधु दीदी आ रही है।
2: मधु दीदी? मधु दीदी कौन है रोशनी?
3: सबीना, मेरे चाचा जी की बेटी है मधु दीदी, पड़ोस के गांव में रहती है। आजकल उनके स्कूल की छुट्टियां हैं, इसलिए वो कुछ दिन हमारे साथ रहेंगी। तुम दोनों भी उनसे मिलने जरूर आना।
4: जरूर आना, साथ में खाएंगे खाना।
0: और जब रोशनी दौड़ती हुई अपने घर पहुंची,
3: मधु दीदी कैसे हो? रोशनी, मैं तो ठीक हूँ। अभी पता है क्या हुआ?
1: क्या हुआ?
3: मीना और सबीना मुझे खेलने के लिए कह रही थी, लेकिन मैंने उनसे कह दिया आज नहीं, आज मेरी मधु दीदी आने वाली है।
1: अरे मधु दीदी, ये आपके सामान के पेटी के ऊपर क्या रखा है?
3: ये तो एक हारमोनियम है ना?
5: हाँ रोशनी, ये मेरा हारमोनियम है।
3: आपको हारमोनियम बजाना आता है दीदी?
5: हाँ रोशनी, मैं अपने स्कूल में गाना सीखती हूँ और वहीं मैंने हारमोनियम बजाना भी सीखा।
3: इसे बजाइए ना दीदी।
5: अभी तो माँ, मधु दीदी को कहो ना कि हार

0: नील और गोलू झट से मान गए मधु दीदी से संगीत सीखने के लिए। फिर शाम को सब रोशनी के घर इकट्ठा हुए।
1: सबसे पहले हम गाएंगे सरगम, जो बनती है सात सुरों से मिलकर।

0: मधु दीदी, मुझे भी आपकी तरह हारमोनियम बजाना है।
1: हाँ हाँ गोलू, क्यों नहीं, मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगी। अब हम सब मिलकर मेरा मनपसंद गाना सीखेंगे, जो है सारे जहाँ से अच्छा। तो चलो शुरू करते हैं।
2: चलो शुरू करते हैं, अच्छे गायक बनते हैं।
3: और अगले दिन सुबह जब मीना और रोशनी स्कूल जाते हुए मिले।
4: पता है मीना, मधु दीदी सिर्फ 12 साल की हैं और सब कुछ इतनी चुस्ती से करती हैं। मुझे भी उन्हीं की तरह बनना है और उन्हीं की तरह गाना भी है।

0: अरे मीना, रोशनी,
1: नरस बहन जी, आप नमस्ते।
0: खुश रहो मीना, तुम दोनों तो बहुत अच्छा गाती हो।
1: बहन जी, हम रोशनी की चचेरी बहन मधु दीदी से संगीत सीख रहे हैं और उन्होंने ही हमें कल ये गाना सिखाया।
0: अच्छा, जब तुम पूरा गाना सीख लो तो मुझे जरूर सुनाना।
2: जरूर सुनाएंगे नरस बहन जी, परसों तक हम पूरा गाना सीख लेंगे। आप परसों सुबह मेरे घर आइएगा और हम सब आपको पूरा गाना गाकर सुनाएंगे।
0: मैं जरूर आऊंगी बच्चों।
3: नर्स बहन जी के साथ साथ सभी बच्चों ने अपने माता पिता को भी गाना सुनने के लिए बुलाया। और फिर दो दिन बाद,
1: रोशनी, मधु दीदी तैयार है ना?
4: मीना, मधु दीदी पता नहीं कहाँ है। मैंने घर में भी ढूंढा और बाहर भी, पर वो कहीं नहीं मिल रही।
1: नहीं मिल रही? क्या तुमने शौचालय में देखा? हो सकता है वो वहाँ हो।
4: शौचालय में तो मैंने नहीं देखा मीना, चलो वहाँ देखते हैं। मधु दीदी, आप ठीक तो है ना?
5: हाँ रोशनी, बस तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है।
1: नर्स बहन जी आ चुकी है, मैं अभी उन्हें बुलाकर लाती हूँ।
3: सुमी भाग के नर्स बहन जी को बुला लाई और फिर नर्स बहन जी ने मधु दीदी की जांच की।
5: नर्स बहन जी, आज सुबह से ही मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, बहुत बेचैनी हो रही है, जैसे कि उल्टी से पहले होती है।
0: मधु, तुमने सुबह से अब तक क्या क्या किया है मुझे बताओ।
5: आज सुबह उठकर मैंने गाने का अभ्यास किया, बकरियों को घास डाली और आंगन की सफाई की, वही सब जो मैं रोज करती हूँ। और हर हफ्ते मैं एक दिन आयरन की गोली खाती हूँ, जो मैंने आज सुबह ही खा ली।
4: मधु दीदी, कहीं ये सब उस गोली की वजह से तो नहीं हो रहा?
5: हो सकता है। नर्स बहन जी, बहुत बार जब मैं आयरन की गोली खाती हूँ मुझे ऐसा ही महसूस होता है।
0: मधु, एक बात बताओ, क्या आज सुबह से तुमने कुछ खाया है?
5: नहीं नर्स बहन जी, वो सब लोग आ रहे थे तो फिर इतने सारे काम भी थे कि कुछ खाने का समय ही नहीं मिला।
0: मधु, क्या तुम हमेशा ही इसी तरह कुछ खाए बिना ही आयरन की गोली खाती हो?
5: हमेशा तो नहीं नर्स बहन जी, पर कई बार जब काम की वजह से खाने का समय नहीं मिलता तो मैं खाली पेट ही गोली खा लेती हूँ।
0: ओहो, अब समझ में आया है कि सुबह से तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ है। तुमने आयरन की गोली तो खाई मगर खाली पेट।
5: मैं

0: कुछ समझी नहीं नर्स बहन जी।
1: मधु ये बात हमेशा ध्यान रखना कि आयरन की गोली हमेशा खाना खाने के बाद लेनी चाहिए। खाली पेट गोली लेने से उल्टी जैसा महसूस होता है, तुम्हारे साथ भी यही हुआ है।
0: ओ मुझे तो इसके बारे में मालूम ही नहीं था।
2: नरस बहन जी, क्या मधु दीदी को अभी भी हर हफ्ते ये गोली खानी चाहिए? इसे खाने से तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है।
1: रोशनी, मधु अभी 12 साल की है और हर लड़की को 10 साल की उम्र के बाद हफ्ते में एक बार आयरन की गोली जरूर खानी चाहिए। ये उनकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। देखो मधु आयरन की गोलियाँ खाती है तभी तो सब काम चुस्ती से और ध्यान लगाकर कर पाती है। बस ध्यान रहे कि हमेशा इस गोली को खाने के बाद लेना चाहिए, खाली पेट नहीं।
0: मैं आगे से जरूर इस बात का ध्यान रखूंगी नर्स बहन जी।
2: पर मधु दीदी, हम आज के कार्यक्रम का क्या करें?
0: सभी लोगों के आने में अभी थोड़ा समय है रोशनी, तब तक मैं कुछ खा के आराम कर लेती हूँ और फिर हम सब मिलकर लोगों को सुनाएंगे एक सुरीला गाना।
3: एक सुरीला गाना मिट्टू से भी गवाना।
4: भाई वाह, अब तो मैं भी मधु दीदी से गाना सीखूंगा। चलो देखें ये मीना और मिट्टू क्या नया कर रहे हैं।
3: बात हमेशा याद रखना, भूलना इसको जाना।
5: आयरन की गोली लेने से पहले खाओ खाना।
4: क्या खूब कविता लिखी है मीना और मिट्टू ने। चलो अब सुनते हैं एक बढ़िया सा गाना।

0: गाना तो शानदार था। अब देखें मीना की बहन जी आज क्लास में बच्चों को कौन सा खेल खिला रही है।
1: प्यारे बच्चों, आज हम खेलेंगे कड़ियाँ जोड़ पहेली तोड़। मैं तुम्हें एक चीज से जुड़ी तीन कड़ियाँ बताऊंगी और तुम्हें बताना है कि वो चीज क्या है। तो शुरू करें आज का खेल।
2: जी नहीं जी।
1: पहली कड़ी है, आँखों के रहती हूँ पास, नहीं कहीं जाती हूँ दूर।
3: बहन जी, आप जरूर भोलू भैया की बकरी भूरी की बात कर रही हैं, जो कभी उनसे दूर नहीं जाती।
1: पर गोलू, क्या भूरी भोलू की आँखों के पास रहती है? चलो अब अगली कड़ी के साथ बताती हूँ। आँखों के रहती हूँ पास, नहीं कहीं जाती हूँ दूर, गांधी जी की तस्वीर में मुझको पाओगे जरूर।
4: ओ, समझ गई, भारत का झंडा।
1: नहीं रोशनी, भारत का झंडा क्या आँखों के पास होता है? ध्यान से सोचो, जवाब कुछ और है।
3: ऐसी क्या चीज हो सकती है? बहन जी, ये पहेली तो बहुत मुश्किल है।
1: नहीं सुमी, चलो अब तीसरी कड़ी बताती हूँ। नाक पे बैठ के साफ दिखाती, चीज पास हो या हो दूर।
4: ओह, मैं समझ गया बहन जी, इस पहेली का सही जवाब है ऐनक। वही तो है जो आँखों के पास रहती है और जिन लोगों की नज़र कमजोर होती है उन्हें ठीक से देखने में मदद करती है।
5: और हाँ, गांधी जी की जो तस्वीर हमारे स्कूल में है उसमें उन्होंने भी ऐनक लगाई है।
1: बिल्कुल सही जवाब सुनील और रोशनी, शाबाश बच्चों। तो आज के खेल में मजा आया बच्चों?
2: जी बहन जी।
0: तो आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना।
3: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार साथियों, आज संदीप त्रिवेदी आप सबके बीच में है। थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ, जनरल इंग्लिश क्लास 10th गोल्डन रेज का लेसन नंबर 2 हमने पढ़ा था, उसका टेक्स्ट पढ़ लिया था। क्वेश्चंस हमें करने हैं, ग्रामर पोर्शन हमें करना है। तो आज हम क्वेश्चन आंसर्स और एक्टिविटी 2 पे बात करेंगे। तो एक्टिविटी फर्स्ट में लिखा हुआ है कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें ए भाग है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। इसमें पहला क्वेश्चन है फिजिकल वायलेंस किल्स पीपल। फिजिकल वायलेंस किल्स पीपल इंसिडेंटली, विलिंगली, अनविलिंगली, नन। तो विलिंगली आना चाहिए इसमें। नंबर 2 है वायलेंस इन इंडिविजुअल्स कम्स बाय बर्थ। बिल्कुल बाय बर्थ ही आंसर होगा इसका, क्योंकि एक वर्ड आया था हमारे टेक्स्ट में इनहेरेंट, तो इनहेरेंट का मतलब ही वही होता है। तो पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाइल शोइंग वायलेंस टू अदर्स मैन इज, ए है वेरी थॉटफुल अबाउट हिज ओन सेफ्टी, नॉट वेरी मच क्रूएल, और सी है कॉन्शियस अबाउट हिज फैमिली, फोर्थ है इवन रेडी टू बी किल्ड। तो व्हाइल शोइंग वायलेंस टू अदर्स मैन इज, इसमें सी ऑप्शन मेरे ख्याल से होना चाहिए, कॉन्शियस अबाउट हिज फैमिली, और चौथा भी ऑप्शन हो सकता है इवन रेडी टू बी किल्ड। फोर्थ क्वेश्चन है अ पर्सन विदाउट द सेंस ऑफ लव इज बेटर देन एनिमल्स, वर्स देन एनिमल्स। तो यही ऑप्शन सही है, वर्स देन एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है द स्टेट ऑफ ब्लिस इन ह्यूमन माइंड मे बी जनरेटेड बाय वायलेंस, नो मर्सी, नो एजुकेशन, यस, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, एजुकेशन। अब बी एक्सरसाइज है इसमें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। तो आप देखिएगा, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल वायलेंस, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनवर्ड वायलेंस। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको इस लेसन का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें मिलेगा। कैसे मिलेगा वो अभी हम देखते हैं। आप देखिएगा मेरे साथ, आपको बुक अगर आप उठा करके देखेंगे तो आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड दैट। और वो है, देखिए यहाँ पे पहला पैराग्राफ आपका क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। देर इज अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड, देर इज फिजिकल वायलेंस एंड अबाउट इनवर्ड एंड ऑल्सो इनवर्ड वायलेंस। ठीक है, ये वाक्य हो गया, फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर। ठीक है, ये आंसर आपका शुरू हो गया, टू हर्ट अदर पीपल कॉन्शियसली, डेलिबरेटली और विदाउट थॉट, टू से क्रूअल थिंग्स फुल ऑफ एंटागोनिज्म एंड हेट। दूसरा क्वेश्चन है इनवर्डली, इनवर्ड वायलेंस इज इनसाइड द स्किन, टू डिसलाइक पीपल, टू हेट पीपल, टू क्रिटिसाइज पीपल। इसमें ये भी ऐड कर सकते हो, इनवर्डली वी आर ऑलवेज क्वारलिंग, बैटलिंग नॉट ओनली विद अदर्स बट विद आवरसेल्व्स। और ज्यादा लिखना चाहो तो फिर ये लास्ट सेंटेंस भी ले सकते हो, वी वॉन्ट पीपल टू चेंज, वी वॉन्ट टू फोर्स देम टू अवर वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है, तो ये आपके 2 क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट पैराग्राफ में मिल गया। थर्ड क्वेश्चन है वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन हैविंग अ PhD। तो इस पर हमने बात की थी कि ये भी एक इसमें ही था आंसर, वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन हैविंग अ PhD डिग्री। इसका आंसर दिया हुआ था कि चाहे PhD डिग्री हो लेकिन अगर वो व्यक्ति वायलेंट है तो वो कहाँ पर आया है पैराग्राफ, वो मुझे देखना पड़ेगा। तो इसके पहले हम और क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। फोर्थ वाला, हाउ कैन अ पर्सन बिकम रैशनल, रैशनल वर्ड को पकड़िएगा इसमें आप। फिर है हाउ कैन अ पर्सन बिकम रैशनल, व्हाट डज मैन रियलाइज इन ओल्डर एज, व्हेन डज ह्यूमन लाइफ बिकम फुल ऑफ जॉय, ह्यूमन लाइफ बिकम फुल ऑफ जॉय। ये लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, देखते हैं इसको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मान सकते हैं। बी फ्री, लिव हैप्पीली, जॉयसली, विदाउट एनी एंटागोनिज्म, विदाउट एनी हेट, देन लाइफ बिकम्स समथिंग क्वाइट डिफरेंट, देन लाइफ हैज अ मीनिंग।
इज फुल ऑफ जॉय एंड क्लैरिटी। ठीक है, सीधा सीधा हमको आंसर मिल गया यहाँ पे इस पैराग्राफ में कि अब इसको आप लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं। ह्यूमन लाइफ बिकम्स फुल ऑफ जॉय, ठीक है, व्हेन वी लिव विदाउट एनी एंटागोनिज्म, विदाउट एनी हेट, देन लाइफ बिकम्स समथिंग क्वाइट डिफरेंट।

फॉर्मिंग और ये सब जो है, ये पूरा पैरेलल भी हम देखेंगे, शायद बड़े क्वेश्चंस में ये आ जाए, है ना, शायद आ जाए। मैं एक तो वो ढूंढ रहा हूँ क्वेश्चन, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ का आंसर मैं कहीं पे मिल जाए तो आपको, मे हैव अ पीएचडी, मिल गया। आफ्टर हिज नेम और ही मे बिकम अ बिजनेसमैन विद हाउसेस एंड कार्स, बट देखिए यहाँ से आंसर आपको मिल रहा है, बट इफ ही हैज नो लव, नो अफेक्शन, काइंडलीनेस, नो कंसिडरेशन, ही इज रियली वर्स देन एन एनिमल बिकॉज ही कंट्रीब्यूट्स टू अ वर्ल्ड दैट इज डेस्ट्रक्टिव। तो आप इसको, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप से था, क्वेश्चन था व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन अ पीएचडी, है ना, क्वेश्चन था आपका फोर्थ नंबर का। देखिए बच्चों, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन हैविंग अ पीएचडी, तो इसमें सिंपल सा आपका आंसर हो जाएगा बेटा, आप व्हाट हटा दीजिए और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपका आंसर लव, अफेक्शन, काइंडलीनेस, कंसिडरेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन हैविंग अ पीएचडी डिग्री, बस ये चार शब्द जोड़ के आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो एक दो, थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या था आपका, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, एक दो तीन हो गया, सिक्स्थ हो गया, फोर्थ और फिफ्थ, हाउ अ पर्सन बिकम रैशनल, व्हाट डज मैन रियलाइज इन ओल्डर एज। तो ओल्डर एज का आपको मालूम होगा, हम इस पे फिर चर्चा करेंगे। अब सी एक्सरसाइज में आ जाइए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। पहला क्वेश्चन है हाउ डज एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू ओवर पावर वायलेंस, एजुकेशन का पूरा एक पैराग्राफ था, है ना, अभी हम देखते हैं वो कौन सा वाला पैराग्राफ था, अभी देख लेते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा देख के, हाँ ये वाले सेकेंड पैराग्राफ में देखिए आप, देर इज वायलेंस बिटवीन हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, ठीक है, देर इज वायलेंस एंटागोनिज्म, अभी हमारा आंसर नहीं शुरू हुआ, हेट क्रुएल्टी, अगली क्रिटिसिज्म, एंगर, ऑल दिस इज इनहेरेंट इन मैन, इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग, इट इज इनहेरेंट इन यू, एंड ये देखिए, एंड एजुकेशन इज सपोज टू हेल्प यू टू गो बियॉन्ड ऑल दैट, नॉट मेयरली टू पास एन एग्जामिनेशन एंड गेट अ जॉब, यू हैव टू बी एजुकेटेड सो दैट यू बिकम अ रियली ब्यूटिफुल, हेल्दी, सेन, रैशनल ह्यूमन बींग, नॉट अ ब्रूटल मैन विद अ वेरी क्लेवर ब्रेन हु कैन आर्ग्यू एंड डिफेंड हिज ब्रूटैलिटी, ठीक है, यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायलेंस एज यू ग्रो, ये यहाँ से नहीं होगा, ये यहाँ तक ब्रूटैलिटी तक आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा आपको बच्चों बुक भी हाथ में रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑथर्स व्यू अबाउट द ओल्ड एंड द न्यू कल्चर, ये तो पूरा का पूरा आपका पैराग्राफ सीधा सीधा, देखिए एक दो तीन, ये फोर्थ नंबर का पैराग्राफ, बट अ न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी, अ न्यू कल्चर इज नेसेसरी, यहाँ से आप ले लेंगे, द ओल्ड कल्चर इज डेड, बरीड, जो भी है ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन हाउ कैन द वर्ल्ड ऑफ नेचर बी, लास्ट पैराग्राफ जिसके बारे में मैंने बताया था अभी आपको, ठीक है, व्हेन यू वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फोर्थ व्हेन डस लाइफ बिकम अ टेरिबल बिजनेस, इसको छोड़ सकते हैं आप, नॉट इम्पोर्टेंट, फिफ्थ हाउ डस जे कृष्ण मूर्ति पॉइंट आउट द डेंजर्स ऑफ वायलेंस, ये तो इसमें तो आप पूरे टेक्स्ट में से कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। एक्टिविटी टू वोकेबलरी, वोकेबलरी में हम कर लेते हैं एक्सरसाइज, ए छोड़ दीजिए, बी छोड़ दीजिए इसमें, और सी में आते हैं, ये भी छोड़ दीजिए, तो डी में आ जाइए आप, डी कर लेते हैं हम, इसमें है डी में फिल इन द ब्लैंक्स विद सिनोनिम्स ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, ठीक है, पहला है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ, वेरी लार्ज, एनॉर्मस आ जाएगा, वेरी लार्ज का सिनोनिम होता है एनॉर्मस, दूसरा है अनफॉर्चुनेटली पीपल आर मोटिवेटेड बाय, ये है एंटोगनिज्म आ जाएगा, अपोजिशन एंड हेट्रेड का सिमिलर वर्ड है एंटोगनिज्म। थर्ड क्वेश्चन है नवे डेज डैश यानी खाली जगह हैज बिकम अ रेयर वर्चर, काइंडनेस का जेनरसिटी आ जाएगा, नवे डेज जेनरसिटी हैज या काइंडलीनेस भी कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में द स्टेट ऑफ ब्लिस कैन ओनली बी फेल्ट व्हेन वायलेंस इज आउट ऑफ

परफेक्ट हैप्पीनेस, तो ब्लिस आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, वायलेंस एंड एंगर आर इन मैन, फिर ये नेचर, नेचुरल तो इनहेरेंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट ई एक्सरसाइज में आ जाइए, फिल इन द ब्लैंक्स विद एंटोनिम्स ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द, ऑपोजिट वर्ड्स हमें देखने हैं। पहला है इन द खाली जगह माइंड ओनली नेगेटिव थॉट्स एंटर, सेन का इनसेन, ठीक है, बुक में दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन नंबर टू है, फिर खाली जगह डैश यानी बिहेवियर इन ह्यूमन बीइंग्स इज इनटॉलरेटेड, ये है आपका रैशनल का इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे सिंपल था, पहले वाले का ऑपोजिट इन लगा के बन गया, दूसरे वाले का इर आई आर लगा के बन गया, तो इरेशनल, ओके। थर्ड, अ पीसफुल माइंड कैन ऑब्जर्व द खाली जगह ऑफ नेचर, अगलीनेस का ब्यूटी हो जाएगा, अ पीसफुल माइंड कैन ऑब्जर्व द ब्यूटी ऑफ नेचर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड का अप्रिशिएटेड, ठीक है, क्रिटिसाइज्ड आलोचना करना, अप्रिशिएट तारीफ करना, प्रशंसा करना। फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन है, अ ट्रू खाली जगह ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट इज डिजायरेबल, इग्नोरेंस का इंटेलिजेंस हो सकता है या नॉलेज भी हो सकता है। अ ट्रू नॉलेज ऑफ या अ ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ, ठीक है, पास्ट एंड प्रेजेंट इज डिजायरेबल, ठीक है, तो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग दोनों में से। अब एक्टिविटी थ्री है ग्रामर, और यहाँ पे टेंस है सिंपल पास्ट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। तो पास्ट के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट लेसन में द बुक दैट सेव्ड द अर्थ में हमने प्रेजेंट टेंस की चर्चा की थी, यहाँ पे हम पास्ट टेंस की चर्चा करेंगे। तो कल का लेसन बच्चों इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू सो मच।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

0: हाय शश भैया।
1: हेलो यस।
0: आपको पता है भैया आज स्कूल में क्या हुआ?
1: हाँ बताओ क्या हुआ।
0: आज सर ने मेरी बहुत तारीफ की।
1: क्या तारीफ की है आपकी? यस
0: ऐसा हुआ कुछ दिनों पहले हमारे स्कूल में एडिकॉम कुछ तरह से खराब हो गया, उसका स्पीकर खराब हो गया, तो मैंने सर की हेल्प की थी। इस कारण सर ने मेरे को इंचार्ज बना दिया उसका। तो साथ साथ फिर क्या हुआ कि आज लास्ट पीरियड में बच्चे बहुत शोर कर रहे थे, तो एक तरफ से मैं मॉनिटर भी हूँ और इंचार्ज भी हूँ उसका, एडिकॉम का इंचार्ज भी हूँ।
1: अच्छी बात है।
0: तो सर इतने परेशान हो गए कि एकदम चिल्लाने लगे कि इतना शोर मचा रहे हैं, यहाँ हेल्प कर रहे हैं, एक तरफ मॉनिटर भी, एक तरफ से यहाँ पे भी, देखा कैसे चलेगा, बात करें बट लेकिन थोड़ा स्लो से करें ना। तो फिर मतलब परेशान हो गए बहुत। इस कारण फिर वो एकदम तारीफ करने लगे कुछ मॉनिटर्स की। मतलब मैं तो अभी जैसे असिस्टेंट्स होते हैं वैसे टाइप का हूँ, बट लेकिन जो मॉनिटर है वो हमारा दूसरा है। तो तीन जने हैं, उनमें से एक मैं हूँ। तो वो फिर कुछ ना कुछ बोलने लगे, तो उनमें से मेरी भी तारीफ की उन्होंने बहुत।
1: अच्छी बात, आपकी तारीफ की सर ने। क्या तारीफ की आपकी?
0: मेरे बारे में मतलब ऐसे बोल रहे थे कि जैसे मॉनिटर है तो फिर उन्होंने कुछ ना कुछ देखा ही होगा, उसमें कोई गुण देखा ही होगा, मैम ने कोई गुण देखा ही होगा मॉनिटर बनाने से पहले।
1: हाँ।
0: जो मॉनिटर बना दिया।
1: सही बात।
2: तो हेलो बच्चों।
1: हाय
2: हाय दीदी।
0: क्या
2: बात हो रही है, आज कुछ गुण गुण वैल्यूज के बारे में मुझे अभी अभी सुनाई दिया।
0: हाँ दीदी
3: जी। दीदी
2: तो दृष्टि क्या बात कर रहे थे ये लोग अभी?
3: यश बता रहा था कि उसके साथ स्कूल में एक इंसिडेंट हुआ है जिससे उसको मॉनिटर भी बनाया गया और इंचार्ज भी बनाया गया है,
2: और वो इसलिए कि सर ने जरूर कोई ऐसी वैल्यूज कोई ऐसी चीजें देखी होंगी, है ना, कि
0: हाँ।
2: उसके लिए चूज किया।
3: हाँ
2: क्योंकि बच्चों लाइफ में वैल्यूज बहुत इम्पोर्टेंट होती है ना।
3: हाँ जी, मॉरल वैल्यूज।
2: तो एक काम करते हैं, चलो आज हम लाइफ की वैल्यूज के बारे में बात करते हैं,
3: यानी कि मॉरल वैल्यूज।
2: बिल्कुल, मॉरल वैल्यूज की बुक्स तो आप सब पढ़ते होंगे।
3: हाँ, हमारे स्कूल में तो एक्स्ट्रा पीरियड लगता है मॉरल वैल्यूज का, और मैम कहती है कि बड़े होकर मॉरल वैल्यूज इतने काम आएंगे, लेकिन पढ़ाई भी उतनी काम नहीं आएगी जितनी मॉरल वैल्यूज काम आएंगे। अगर हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो वो भी हमें रिस्पेक्ट देते हैं।
2: बिल्कुल बच्चों, देखो हम पढ़ते तो हैं लेकिन जब हम लाइफ में वो वैल्यूज अपनाते हैं तो रिजल्ट्स हमें अपने आप नजर आते हैं। तो चलो हम बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो हमें पसंद है या हमें अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले यश बताओ आपको कौन सी वैल्यूज अच्छी लगती है?
0: मैं अपना काम समय पे करता हूँ, दूसरी कि मैं हेल्पिंग नेचर वाला हूँ, और मैं अपने में कुछ ना कुछ नए नए बदलाव करते ही रहता हूँ, जो अगर गलत हो तो उनको सही करने में मेहनत करता हूँ।
2: ओके, मेहनत भी एक वैल्यू है और टाइम पे सब कुछ करना भी एक वैल्यू है। तो और आगे अब कौन बताएगा मुझे?
3: मैं।
2: बताओ दृष्टि।
3: मैं हमेशा सबसे प्यार से बात करती हूँ, किसी को रूडली नहीं बोलती हूँ।
2: ओके, लव एक बहुत अच्छी वैल्यू है। और
3: मैं भी अपना सारा काम टाइम पे करती हूँ, अच्छे से समय को यूज करती हूँ। जैसे स्कूल में कोई फ्री पीरियड होता है और मेरे पास बहुत सारा काम होता है तो मैं बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करती, जैसे ही वो पीरियड मुझे मिलता है मैं फटाफट अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर घर आके फ्री होती हूँ तो कुछ एक्स्ट्रा स्टडीज कर लेती हूँ।
2: बिल्कुल, ये भी बहुत एक अच्छी बात है। आप सैंडी, आप बताओ।
4: दीदी मैं जहाँ तक सच बोलता हूँ,
2: ट्रूथ। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात कही अभी आपने, गांधी जयंती अभी भी थोड़े दिन पहले हो के गई है और गांधी जी ने भी हमें सच बोलना सिखाया है। और शशि आप बताओ।
1: मुझे हेल्प करना बहुत पसंद है।
2: हेल्प करना पसंद है,
1: दूसरे के प्रति हेल्प करना,
2: मतलब कोई जरूरत में हो तो उसकी मदद करना।
3: हाँ जी।
2: चलो
3: दीदी, आप कौन सी मॉरल वैल्यूज फॉलो करते हो?
2: मैं कौन सी मॉरल वैल्यूज फॉलो करती हूँ? एक्चुअली मैं फॉलो करती हूँ रिस्पेक्ट की वैल्यू, लव की वैल्यू।

0: और सबसे बड़ी बात ट्रूथ की वैल्यू।
1: अरे वाह,
2: जो कि मैं करता हूँ।
0: बिल्कुल, क्योंकि जब हम सच बोलते हैं ना तो हमें कभी लाइफ में कोई कंफ्यूजन नहीं होता और कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसमें हम आंखें नीचे करके खड़े हो अपनी लाइफ में।
1: जी जी, जी,
0: है ना?
1: जैसे झूठ बोले तो और 100 झूठ बोलने पड़ते हैं ना।
0: बिल्कुल,
3: झूठ बोले करवा काटे।
0: हाँ, और सबसे ज्यादा पता है क्या बाइट करता है?
3: क्या?
0: हमारा कॉन्शियस।
1: हाँ दीदी, हमारे मन में वो बात चलती रहती है।
2: मैंने बोला आप आगे क्या होगा क्या।
0: ये सब चीजों से बचने के लिए क्यों ना हम एक ऐसी वैल्यू अपनाएं कि हमें कभी इन चीजों का सामना करना ही नहीं पड़े।
3: और वो है सच की वैल्यू।
0: वो है सच की वैल्यू। अच्छा, तो हमारे पास वैल्यूज तो बहुत अच्छी अच्छी हैं जिन पे हम बात भी कर रहे हैं और हम फॉलो भी करते हैं।
3: हाँ जी।
0: तो मुझे ये बताओ, ये जो वैल्यूज आप लोगों ने बताई, ये आपने सीखी कैसे या किसने आपको बताई?
1: दीदी, मेरे को तो बचपन से जैसे घर पे कुछ सिखाया गया है, कुछ वैल्यूज घर से, मैनर्स वो सब घर से सिखाया, और कुछ स्कूल में जाके भी पता चलते हैं। जैसे टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, अगर बाहर से अंदर आ रहे क्लास में तो मैम से पहले पूछते हैं, कोई भी कार्य करने से पहले मैम से परमिशन लेना जरूरी होता है। वैसे
0: मतलब मम्मी ने सिखाया और टीचर्स ने सिखाया।
1: हाँ जी।
3: हाँ जी।
1: तो इसमें मेन रोल घर और टीचर्स का और स्कूल का, तीनों में ही।
0: बिल्कुल। और दृष्टि, आपने कहाँ से सीखी वैल्यूज?
3: मैंने मम्मी पापा से और मेरे भाई से भी बहुत अच्छी अच्छी वैल्यूज सीखी है। मेरे फ्रेंड से भी बहुत वैल्यूज सीखी है मैंने, कि कैसे एक दूसरे की मदद करना। पता, पहले मैं मदद नहीं करती थी।
0: ओके।
3: तो अब फिर ना मेरी फ्रेंड्स को मैं देखती थी कि अरे ये तो बड़े अच्छे से मदद कर रहे हैं, फिर मुझे लगता था मैं भी मदद करूँगी, तो मैं भी मदद करने लग गई।
0: बिल्कुल दृष्टि, पता है आपने कितनी बड़ी बात बोली, ये कि वैल्यूज कभी कभी हम नहीं अपनाते तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम ऐसे नहीं, बल्कि हम सीख भी सकते हैं। हम उन्हें सीख कर अपना सकते हैं और उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर बना सकते हैं अपनी लाइफ का।
3: जी दीदी।
0: और इसीलिए ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दृष्टि ने दिया। चलो दृष्टि के लिए एक बार तालियां हो जाए, क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं ना ये तो इसका काम है, चलो ठीक है हमारे अंदर ये नहीं है तो हमारा तो नेचर ही ऐसा है, हमारे अंदर ये वैल्यू नहीं है तो क्या करें। लेकिन जब हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो सिर्फ उसके बारे में बात नहीं करके अगर हम उसे अपनाते हैं तो बहुत फायदा होता है, जैसे कि दृष्टि ने किया।
2: हाँ दीदी।
0: सैंडी, आप बताओ आपने कहाँ सीखी वैल्यूज?
2: मैंने मेरे पापा से, मम्मी से, भाई से, दीदी से, फिर स्कूल और टीचर्स सबसे सीखा मैंने, और पंकज से,
0: आपके बेस्ट फ्रेंड। ये भी अच्छी बात है सैंडी ने बोली, हम हर किसी से कोई ना कोई वैल्यू सीखते हैं।
2: अभी भी सीखता रहता हूँ।
0: तो आपकी फेवरेट वैल्यू है ट्रुथ। ट्रुथ आपने किससे सीखा बोलना?
2: ट्रुथ तो ज्यादातर पापा से मैंने। पापा ने मुझे हमेशा कहा कोई भी बात हो, अगर तुम गलती करते भी हो तो घर पे आके बता दो कि हाँ पापा आज मुझसे ये गलती हो गई। क्योंकि अगर तुम नहीं बताते हो और बाद में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमें तो बात मालूम ही नहीं है ना, तो फिर हम उसको कहाँ से फेस करेंगे। अगर तुम मुझे पहले ही बता देते हो कि हाँ मुझे गलती हो गई या मैंने आज ये गलती कर दी, तो हाँ जो लोग ठीक है तुम्हारी गलती तो सुधारेंगे, और तुमने बताया वो सबसे बड़ी बात है। तो कोई भी अगर दिन में कुछ भी अगर हम गलत करते हैं या कुछ अच्छा भी करते हैं तो घर बताना चाहिए, और मैं ये ज्यादा करता हूँ।
0: सैंडी, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हम जब घर पे बताते हैं तो प्रॉब्लम के सोल्यूशन ही निकलते हैं, सच बोलने के फायदे। और शशि, आप बताओ।
4: मैंने तो मतलब वैल्यू सीखा है अपने माँ बाप से, बड़े बुजुर्गों से, इनसे सीखा है जो हेल्प करना, हेल्प दूसरों के प्रति हेल्प जो करते हैं तो हमको उसका फल अच्छा मिलता है।
0: तो ये आपने अपने बड़ों से सीखा।
4: बड़े से सीखा।
0: अच्छा, तो अब ये बताओ, आप लोगों ने ये चीजें सीखी तो अपने आसपास बड़ों से, घर से, स्कूल से, क्या इसका कोई फायदा आपको कभी मिला? ये वैल्यू आपने यूज की हो और आपको कोई फायदा मिला हो, कोई ऐसा इंसिडेंट आप लोगों को याद है?
1: यस दीदी, मेरे को है।
0: हाँ यश बताओ। वेरी गुड, सबको याद है। तो यश बताओ।
1: मैं एक बार, मेरे सेकंड या थर्ड की बात है, मेरे साथ मेरे वो नया आया था, मेरा एक बहुत बेस्ट फ्रेंड बन गया था। उसका स्कूल में दिल ही नहीं लगता था कभी, वो बेचारा हर समय पूछता था टाइम कितना हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है, कब घर जाएंगे। तो मतलब बेचारा इतना परेशान रहता था, एक तो नया है ऊपर से ना कोई दोस्त है। तो जब वो मतलब ऐसे टाइम पूछते पूछते हमारी दोस्ती हुई, उसका नाम तन्मय है। वो हमारे साथ बॉम्बे में ही रहता था, अब तो हम यहाँ आ गए हैं। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हमारी जो क्लास टीचर थी वो बहुत रूढ़ थी, कुछ भी छोटी मोटी गलती हो जाए तो बहुत गलत शब्द यूज़ करते थे। तो मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा मैम का, बट लेकिन हर एक इंसान से, हर एक बच्चा हमारी क्लास में उनसे बहुत डरता था। कुछ भी काम हो जाए सबसे पहले उसके दिमाग में यही आता था कि अब क्या होगा, मैम तो ये करेंगे। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हमारा एक क्राफ्ट का पीरियड था और क्राफ्ट में कुछ मटेरियल्स लाने बोले थे। अब ऐसा हो गया कि मैंने वो जो चार्ट पेपर लाने का था वो तो ले आया, लेकिन बुक नहीं लाया। और मेरे फ्रेंड ने बुक लाया था लेकिन चार्ट पेपर नहीं लाया। अब मैंने उसे अपना चार्ट पेपर दे दिया और उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया जैसे जैसे मैम ने बता रहे थे। तो मैंने उसकी हेल्प कर दी, वो बेचारा बहुत थैंकफुल था। हम दोनों आसपास ही बैठे थे, बड़ा परेशान था, मैंने उसकी हेल्प कर दी। उसके बाद उसके अगले दिन ही आंटी ने मेरे लिए एक बहुत बड़ी डायरी मिनट ला कर दी सिर्फ थैंक यू कहने के लिए, क्योंकि नो बेचारा था अभी भी इतना डरता है ना, जैसे ही मैम का नाम लेगा वैसे ही डर जाएगा कि ऐसी क्लास उसे कभी ना मिले इस कारण।
0: यश, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम उसका दिल भी जीत लेते हैं, और साथ ही उसे सिर्फ एक वो छोटी सी मदद नहीं होती, उसकी कितनी और चीज़ों में हम मदद कर देते हैं हमें पता भी नहीं चलता। जैसे आपकी छोटी सी मदद उसको स्कूल में अच्छा फील कराने के लिए मदद की है ना।
2: हाँ दीदी।
0: तो अब कौन मुझे बताएगा?
2: मैं।
0: सैंडी बताओ।
2: दीदी मैं 9th क्लास में था तो हमारी इंग्लिश की पीरियड चल रहा था, तो मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट की कॉपी नहीं बनाई थी। फिर मैम ने डेली बोलते थे होमवर्क करके रखना होमवर्क करना, फिर मैं सोचता कि हाँ चलेगा चलेगा। फिर एक दिन मैम ने बोला तुम अपनी कॉपी दिखाओ, तो मैंने सोचा कि अगर मैं झूठ बोलूँगा कि हाँ मैम कॉपी घर पे ऐसा वैसा तो एक दिन तो पकड़ा जाऊँगा। मैंने बोल दिया मैम मैंने कॉपी बनाई नहीं है। मैम ने बोला सच्ची? बोले हाँ। बोले मुझे बता कितनी प्रॉब्लम होगी अगर तूने नहीं बनाई तो। मैंने मैम मैंने सच बता दिया नहीं बनाया। तो मैम बोला पक्का? बोला हाँ मैम देख लो नहीं बनाई तो नहीं बनाई, हाँ पर इतना प्रॉमिस करता हूँ कि 2-3 दिन मुझे समय दे दो मैं कंप्लीट करके दे दूँगा। तो मैम ने बोला ठीक है। फिर हमने मुझे बैठा दिया, फिर मैंने 2-3 दिन पंकज की हेल्प से खुद की हेल्प से होमवर्क करके दे दिया। तो मैम ने फिर एक दिन और मैम कॉपी चेक कर रही थी, फिर मैंने बोला मैम मैंने कंप्लीट कर लिया। फिर मैम ने एक लड़के को बोला, मैम को उसने बोला था कि नहीं मेरी कॉपी घर पे है, तो मैम ने बोला ठीक है लेके आना, तो पकड़ा गया था। मैम ने बोला कि अगर तूने भी सच बोल दिया था कि हाँ मैंने कर लिया तो मैं तुझे समय दे देती, अब देख झूठ बोला तुझे पकड़ा गया ना। मेरे को मैम ने बोला कि कभी भी जो तो सच बता देने का, गलती की तो की है, तो मुझे अभी तक याद है।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी स्टोरी थी, मुझे लगता है हम सबको सीखने को मिला होगा, है ना?
1: यस दीदी।
0: तो जब हम सच बोलते हैं तो हमें उसका सलूशन मिलता है, बड़ों से हेल्प मिलती है, थोड़ी सी डांट पड़े तब भी काम तो चल जाता है, आगे तो हम बढ़ते हैं। और झूठ सबसे बड़ी बात है बच्चों, एक ना एक दिन तो सामने
3: आता ही है।
0: शशि आपके पास ऐसी कोई स्टोरी है?
4: हाँ जी दीदी, जब मैं 12वीं में था उसमें एक फ्रेंड था, तो उसके मतलब पढ़ता तो अच्छा था, मतलब मैं भी पढ़ता था, लेकिन एग्जाम हुआ, एग्जाम के टाइम में वो एग्जाम दिया उसने तो कुछ कारणवश वो फेल हो गया, मतलब सप्लीमेंट्री आ गई उसके, तो सप्लीमेंट्री आ गई तो मेरा फ्रेंड बोला है अब मेरा सप्लीमेंट्री एग्जाम आने वाला है, अब मैं तैयारी तो कैसे करूँ, मैथ विषय में आई थी उसके, तो बोले मेरे को मैथ थोड़ी कम समझ में आती है तो आप कुछ बता सकते हो? तो मैं बोला कि हाँ बता सकता हूँ। तो मैंने उसको समझाया सिखाया, तो उन्होंने फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम दिया तो वो पास हो गए, अच्छे नंबर लेके आए, तो वो पास हो गए तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने बोला थैंक यू भैया तुमने मेरे को सिखाया आपने, तो उस कारण से मतलब दूसरों के प्रति आपको हेल्प करना चाहिए।

मैम बोल रहे थे कि चेकिंग के लिए दो, चेकिंग के लिए दो। अब उसके नोट्स कंप्लीट नहीं थे तो ना वो सबसे बुक मांग रही थी, एकदम स्वीटली बात करती थी, बहुत स्वीट थी। लेकिन ना कोई बुक नहीं दे रहा था कि हम तुझे बुक नहीं देंगे। तो मेरे पास आई बेचारी, रोने ही लग गई कि दृष्टि प्लीज़ बुक दे दे, मेरा काम कंप्लीट नहीं है। तो फिर मैंने उसको बुक दे दी, लेकिन वो लिखने में थोड़ी स्लो थी, तो फिर मैंने उसका काम फटाफट कर दिया।

0: उसने फिर मैम को दिया, तो मैम ने मेरे को बोला कि आपने उसकी मदद करी, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से बोला। मेरी अभी भी एक फ्रेंड है, वो भी मतलब काम कंप्लीट नहीं कर पाती है इतना जल्दी। हैंड राइटिंग उसकी बहुत अच्छी है, लेकिन वो कर नहीं पाती है और एब्सेंट रहती है तो और प्रॉब्लम होती है। तो फिर क्या हुआ, उसका प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट था, उसकी ड्राइंग अच्छी नहीं थी उस प्रोजेक्ट में। तो अभी की बात है, परसों की, मैंने उसको पूरा प्रोजेक्ट बना के दिया। फिर कि मतलब लिखने का काम उसने कर लिया, ड्राइंग का काम मैंने उसको करके दिया।
1: ओके, मतलब आपने उसकी मदद की। तो बच्चों देखो, कमियां तो हम सब में होती हैं कोई ना कोई।
2: हाँ दीदी। हाँ
1: दीदी। तो बजाय कि हम उसका मजाक उड़ाएं या फिर उसको जाने दें, अगर हम उसकी हेल्प करते हैं तो हमें भी हेल्प कहीं ना कहीं से जरूर मिलेगी। पता है ना, जो हम देते हैं वही तो हमें मिलता है।
0: जी दीदी।
3: जी दीदी।
1: है ना, वैसे तो कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा करो और भूल जाओ,
2: अच्छे काम करो और भूल जाओ।
1: बिल्कुल, लेकिन रिजल्ट तो हमेशा हमें मिलता है, इसलिए ये वैल्यूज को अपनाते रहो। और इस बारे में हम बात करते रहेंगे, अभी टाइम एक छोटे से ब्रेक का, फिर बात करेंगे बच्चों की दुनिया में वापस आएंगे रेडियो मधुबन 90.4 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर वापस आ गए हम लेकर बच्चों की दुनिया, जिसमें बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बहुत समझदार भी हैं, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वैल्यूज उनके अंदर हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम वो अभी तक करते हैं। मुझे लगता है हम सभी बच्चे बहुत समझदार हैं, तो आइए उन लोगों से बात करते हैं और आप लोग भी याद करिए अपने वो इंसिडेंट्स जिसमें आपने किसी वैल्यू को अपनाया हो। तो अभी सैंडी आप कुछ बोल रहे थे।
1: हाँ दीदी, आपने ना हेल्प की बात की ना, तो मैं हेल्प पे बताऊंगा ना। शशि है ना, शशि, इसने अभी एक ना ब्लाइंड स्टूडेंट है उसकी हेल्प की थी। कॉलेज में हमारे वो दो भाई थे, दोनों ब्लाइंड थे, तो उनके एग्जाम्स थे, शायद उनके कुछ एग्जाम्स होंगे, तो 6 दिन एग्जाम चलने थे, तो कॉलेज में ब्लाइंड तो लिख तो सकते नहीं थे, तो सबसे बोल रहे थे कि आप लोग मेरी हेल्प कर दोगे, मेरा पेपर लिख दोगे। तो कितने लड़के बोले नहीं, मेरे पास टाइम नहीं हो। फिर शशि ने आगे से बुलाया कि भाई आ जा, मैं तेरा लिख दूंगा। फिर इसने आगे से बुलाया, जबकि इसका भी एग्जाम आने वाला था। एग्जाम शायद आने वाला था कि नहीं आने वाला था। हाँ, इसका एग्जाम भी आने वाला था, फिर भी इसने बोला ठीक है मैं तेरा पेपर लिख दूंगा। फिर इसके कॉलेज दूसरी जगह जाके एग्जाम देना था, तो ये खुद जाता था, उसको लड़के को लेके जाता था, फिर पेपर लिख के आया था। फिर एक बार सर ने ऑप्शन भी उठाया था कि नहीं, सर ने बोला था कि तुम नहीं लिख सकते, तुम तो BSc के हो। और फिर इसने बोला क्यों नहीं लिख सकते सर, जब ये ब्लाइंड है तो मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ ना, आपको क्या प्रॉब्लम लिखना, मुझे है, आप मेरे पास बैठ जाओ, ये बोलेगा मैं लिखूंगा। तो उसके एग्जाम था तो ये खुद पढ़ता था। शशि ने बोला कि ठीक है, जहाँ तक तो पढ़ के आया, पढ़ के आना, तेरी बुक देना मैं खुद पढ़ूंगा। तो उसकी ये बुक पढ़ के जाता था और ये खुद उसका पेपर, कम से कम एक महीना इसका शायद पेपर चला था। तो इसने एक महीना खुद ने, उसके लिए इसने खुद ने पढ़ाई की, उसका पेपर लिखा।
0: ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई हमें सैंडी, कि देखो जिनको वो जरूरत होती है, हमें तो भगवान ने सब कुछ दिया है, छोटी से छोटी छोटी छोटी कमी उनके पास है, लेकिन उसके एवज में उनके पास बहुत सारी पावर्स और बहुत कुछ भंडार होता है जो हमें उनसे मिल सकता है।
1: हाँ,
2: जी।
0: लेकिन उनके साथ जब हम रहेंगे, उनसे जब हम सीखेंगे, उनके लिए जब कुछ करेंगे, तभी तो वो हमें भी मिलेगा।
1: हाँ,
0: जैसे कि काइंडनेस है, या बहुत ऐसी क्वालिटीज हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं।
2: जी जी जी।
0: तो ये बहुत अच्छा काम किया शशि ने, और एक बार जोर से ताली हो जाए। और सैंडी ने भी एक अच्छी क्वालिटी शो की, पता है क्या?
1: क्या दीदी, मुझे तो पता ही।
0: दूसरों का प्रेज करना, दूसरों की तारीफ करना। क्या होता है कभी कभी हम सिर्फ अपनी तारीफ करते हैं, अपने बारे में बताते हैं,
2: और दूसरों के बारे में
0: भूल जाते हैं। लेकिन जब हम दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, उनको आगे रखते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है।
2: जी दीदी।
0: ठीक है
2: जी।
0: अच्छा, अब ये बताओ मुझे कि ये जो वैल्यूज आप लोगों ने बताए, इंसिडेंट्स आपने बताए, कभी ऐसा भी हुआ कोई ऐसी वैल्यू है आपको पता भी है लेकिन आपने फॉलो नहीं किया, नहीं कर पाए?
1: हाँ,
2: साहस की वैल्यू।
1: मुझे कभी कभी मैं अपने काम टाइम पे नहीं कर पाता हूँ।
0: बिल्कुल, देखो जब हम अपनी नोटिस कर लेते हैं ना बातें, तो बिल्कुल हम उस पर सुधार पे काम कर सकते हैं।
1: हाँ।
0: तो जब हमें कोई काम बताए, अगर हम उसे तुरंत करें, तो हम कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है,
3: मेरे साथ भी होता है ऐसे। बिल्कुल, मम्मी उसी समय कहते हैं और मैं उसी समय भूल जाता हूँ।
2: मैं भी, और कभी कभी मम्मी काम बोलती है, मैं सुनती हूँ, उसके बाद मैं बोलती हूँ मम्मी आपने क्या बोला।
0: अच्छा बच्चों, अब देखो इसमें दो चीजें आ जाती है, एक रिस्पेक्ट की वैल्यू और एक टाइमलीनेस की वैल्यू, है ना। जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ों को मानते हैं, उनका कहना भी हमें मानना चाहिए।
1: हाँ,
2: जी जी,
0: है ना। और टाइमलीनेस, टाइम पे काम करेंगे तो हमारा काम सही चलेगा एकदम।
2: जी जी।
0: तो ये दोनों वाली उसको अपनाने के लिए अब मम्मी पापा जो बोलेंगे वो हम कब करेंगे?
2: उसी समय
1: करेंगे।
0: बिल्कुल, उसी समय करेंगे। अच्छा चलो, अब एक लास्ट क्वेश्चन, मुझे एक बात बताओ, आप लोगों के आइडल्स तो जरूर होंगे, है ना, बिकॉज हम कभी म्यूजिक पसंद करते हैं तो कभी स्पोर्ट्स, हमारे आइडल्स तो कभी स्पोर्ट्स में होते हैं, कभी म्यूजिक में होते हैं, कभी डांस में होते हैं, कभी मूवीज में होते हैं। लेकिन क्या हमारे कोई ऐसे आइडल्स भी हैं जिनकी वैल्यू को हम फॉलो करते हैं, या जिनकी वैल्यू की वजह से हम उन्हें पसंद करते हैं?
1: रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने देश के लिए तो कुछ बहुत कुछ किया, बट उन्होंने जो कभी भी उन्होंने अपनी लाइफ में आज तक कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा उन्होंने सच ही बोला, और कुछ भी हो जाए और वो सच पे अड़े रहते थे हमेशा।
0: ये बात आपको बहुत पसंद है।
2: और मदर टेरेसा भी, क्योंकि वो हमेशा ही जिन लोग बहुत बीमार होते थे उनकी मदद की है, तो हमें उनसे हेल्पिंग की वैल्यू मिलती है, तो वो मेरे आइडियल है।
0: बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा है। मदर टेरेसा तो हम सब की आइडल है, क्योंकि उन्होंने ऐसी सिचुएशंस में लोगों की मदद की।
2: हाँ जी।
0: और पूरी लाइफ अपनी समर्पित की लोगों की मदद करने की।
2: हाँ जी।
0: तो शशि, आपका आइडल कौन है?
1: दीदी मेरा आइडल है ये भीमराव अम्बेडकर जी। वो भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारे देश के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, जैसे कि जाति प्रथा को खत्म किया, समाप्त किया। वो हमारे देश के अंदर बहुत अच्छी फैलती जा रही थी, उनको उन्होंने एकदम जुट करके ऐसा संविधान बनाया जिसमें सबको समान रखा जाए।
0: समानता भी एक बहुत अच्छी वैल्यू है, सबको इक्वली ट्रीट करना, सबको इक्वल समझना। वेरी गुड, आप बताओ यश।
3: भगत सिंह, उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से दान कर दिया और बलि पर चढ़ गए हमारी देश की स्वतंत्रता के लिए।
0: बिल्कुल, साहस जिसको हम कहते हैं हिम्मत,
3: वीरता तो देखो
0: वीरता। उनके सामने तो हम सब का सर नतमस्तक है ना।
3: हाँ। जी जी जी।
0: तो देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हम उनसे सीखते हैं।
3: दी, आपको जी। पता है मैं भी आर्मी में जाऊंगा बड़े होके।
0: अरे वाह, मतलब हम अपने आइडल से ये भी सीखते हैं कि हमें देश के लिए कुछ करना है।
3: जी जी
1: जी जी।
0: और ये बहुत अच्छी बात है यश, हम सब होप करते हैं कि आपकी ड्रीम फुलफिल हो और बहुत सारी विशेस भी आपके साथ हैं।
1: बेस्ट ऑफ लक।
3: थैंक यू।
0: और आप सभी इसी तरह वैल्यूज जो आपने धारण की है अभी बचपन से ही, उनको स्टे स्ट्रॉन्ग रहना, उनपे हमेशा उनपे कायम रहना।
2: जी दीदी।
3: जी दीदी।
0: और अपनी लाइफ से लोगों के लिए एग्जाम्पल बनना।
2: जी दीदी।
1: बिल्कुल
0: ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग बच्चों की दुनिया के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वैल्यूज को अपनाते रहो और सीखते रहो, सिखाते रहो। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय।

0: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
1: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
0: सोनोग्राफी वो किस लिए?
1: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
0: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
1: फिर तुम शुरू हो गई।
0: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
1: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।

0: ये गाना गुजराती में जो गाया है, मुझे ऐसी लगने लगी है कि मैं कब प्रभु परमात्मा से मिलूं, और मैं जब तक प्रभु से नहीं मिलूंगी तब तक मुझे चैन।
1: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

स्वामी विवेकानंद भारतीय शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। सन 1898 की जुलाई में स्वामी जी नीलांबर बाबू के उद्यान में स्थित बेलूड़ मठ में निवास कर रहे थे। एक दिन संध्या समय अपने शिष्यों सहित ध्यान समाप्त कर स्वामी जी कमरे में आकर बैठ गए। बाहर जोरों की वर्षा हो रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। स्वामी जी ने सब दरवाजे बंद कर लिए और तानपुरे पर एक गीत गाया।

0: इसलिए हमारे वीर रस का संगीत इतना प्रबल नहीं है। हमारा संगीत धीरे धीरे उन्नत हो रहा था, किंतु मुसलमानों ने आकर इस तरह का विकृत कर दिया कि उनकी प्रगति कुंठित हो गई। पाश्चात्यों का संगीत बहुत अधिक उन्नत है, उनके संगीत में करुण और वीर रस दोनों की ही प्रचुरता है। हमारे तुम्बे से बने प्राचीन वाद्यों में कोई प्रगति ही नहीं हुई।
1: कौन कौन से राग वीर रस प्रधान है?
0: हर एक राग वीर रस प्रधान बन सकता है, यदि उनमें लय हो और वाद्य भी तदनुकूल लिए जाएं। कुछ रागिनियां भी कुछ वीर रस प्रधान बन सकती हैं।
2: भोजन का समय हो गया था, इसीलिए चर्चा समाप्त कर दी गई। तदुपरांत स्वामी जी कलकत्ते से आए हुए अतिथियों के सोने की व्यवस्था के बारे में पूछताछ कर अपने शयन कक्ष में आराम करने लगे।
3: स्वामी जी कितने अच्छे संगीतज्ञ थे, उसका एक उदाहरण आपको दे रहे हैं। शायद इस घटना का उल्लेख हम पहले भी कर चुके हैं, पर यहाँ संगीत की बात चली तो और एक बार उस घटना के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं।
2: परिव्राजक के रूप में अपने भारत भ्रमण के दौरान स्वामी जी की एकनाथ पंडित नामक एक वरिष्ठ संगीतज्ञ के साथ मुलाकात हुई, जो एक ध्रुपद गायक थे। स्वामी जी ने उनका संगीत सुनने की इच्छा व्यक्त की। एकनाथ पंडित के गाने के साथ स्वामी जी मृदंग पर संगत करने लगे। स्वामी जी के इस मृदंग वादन से गायक और श्रोता पूर्णतः संतुष्ट हुए।
3: इस कार्यक्रम के पश्चात होने वाले वार्तालाप से पता चला कि स्वामी जी एक अच्छे गायक भी हैं। अतः उन लोगों ने स्वामी जी से गाने का अनुरोध किया। स्वामी जी तानपुरा उठाकर ध्रुपद का आलाप लेने लगे। फिर जब वे गीत के लय पर आए तो कोई भी मृदंग पर उनकी संगत नहीं कर सका।
2: सहसा ही उन्होंने तानपुरा एकनाथ पंडित के हाथ में सौंपते हुए मृदंग उठा लिया और स्वयं ही अपनी संगत करने लगे। इस तरह सबको आश्चर्य में डालकर स्वामी जी ने दोनों भूमिकाएं निभाई। इस अद्भुत घटना पर विस्मित होकर पंडित जी कह उठे, स्वामी जी आप केवल गायक नहीं नायक भी हैं।
3: नायक की उपाधि एक ऐसे संगीतज्ञ को दी जाती है जिसमें सफल प्रदर्शन, संगीत रचना की क्षमता, संगीत शास्त्र का दान और श्रोताओं को अभिभूत करने की प्रतिभा हो। जिन लोगों को संगीत का थोड़ा ज्ञान है वे इस बात को ठीक ठीक समझ सकेंगे कि ध्रुपद गायन जिसमें कि षट प्राण और षट संगत लगते हैं के साथ मृदंग पर स्वयं ही संगत कर पाना प्रायः असंभव सा है। इन दोनों को एक साथ अकेले ही सफलतापूर्वक कर दिखाना एक अति मानवीय कार्य है।
2: स्वामी जी ने सुव्यवस्थित ढंग से ध्रुपद, धमार, ख्याल, भजन और टप्पा का अध्ययन किया था। टप्पा के बारे में उनकी राय अच्छी नहीं थी। विभिन्न शिक्षकों से उन्होंने मृदंग, तबला और सितार भी सीखा। वेणी उस्ताद वेणी माधव अधिकारी और उस्ताद अहमद खां से उन्होंने ध्रुपद व ख्याल सीखा था।
3: ब्रह्म समाज के एक सदस्य श्री काशी घोषाल से उन्होंने इसराज एवं मृदंग सीखा। उनके समकालीन बंगाल के संगीतज्ञों में प्रमुख थे रविंद्रनाथ ठाकुर, त्रैलोक्यनाथ सान्याल और जितेंद्रनाथ ठाकुर। कहते हैं अपनी संगीत शिक्षा के दिनों में स्वामी जी नियमित रूप से कठोर अभ्यास किया करते थे।
2: स्वामी जी एक रचनाकार भी थे। परवर्ती काल में उन्होंने संस्कृत, बंगला और हिंदी में अनेक रचनाएं की और उन्हें विभिन्न शास्त्रीय रागों एवं तालों के साथ समायोजित किया। उनमें कुछ का विवरण निम्नलिखित है। पहला, खंडन भव बंधन, राग यमन, ताल चौताल। ये रामकृष्ण संघ के सभी केंद्रों में गाई जाने वाली दैनिक प्रार्थना है। दूसरा, एक रूप अरूप नाम वर्ण, राग बड़ा हंस सारंग, ताल चौताल। तीसरा, ना ही सूर्य ना ही ज्योति, राग बागेश्री, ताल अड़ा या इकवी। चौथा, मुझे वारी बनवारी सैया, राग ठुमरी, ताल कहरवा।
3: उनकी तबले की ताल पर भी अनेक रचनाएं हैं। यदि 39 वर्ष की अल्पायु में देह त्याग न किया होता तो संगीत जगत संभवतः उनकी और भी रचनाएं पाकर उपकृत होता।
2: संगीत के किसी भी अन्य प्रकार की तुलना में ध्रुपद के प्रति स्वामी जी का बड़ा सम्मान का भाव था। वे कहते,
0: जिन सब गीत वाद्यों से मनुष्य के हृदय के कोमल भाव समूह उद्दीप्त हो जाते हैं, उन सब को अब थोड़े दिन के लिए बंद रखना होगा। ख्याल टप्पा बंद करके ध्रुपद का गाना सुनने का अभ्यास लोगों को कराना होगा। वैदिक छंदों के उच्चारणों से देश में प्राण संचार कर देना होगा।
3: परंतु संगीत के आदर्श के बारे में स्वामी जी ने कहा था,
0: ध्रुपद और ख्याल आदि में एक विज्ञान है, किंतु कीर्तन अर्थात माथुर और विरह तथा ऐसी अन्य रचनाओं में ही सच्चा संगीत है, क्योंकि वहां भाव है। भाव ही आत्मा है, प्रत्येक वस्तु का रहस्य है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाव मात्र ही संगीत है, पर ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी ओर भाव विहीन परंतु केवल व्याकरण शास्त्र पर आधारित शब्दों की कसरत भी संगीत नहीं है।
3: स्वामी जी के गुणों से एक और गुणी व्यक्ति भी बहुत प्रभावित हुए थे। वे थे फ्रांस के रोमारोला। उन्होंने लिखा है,
4: स्वामी जी के शब्द मात्र महान संगीत है। वे शब्द तो जैसे बिथोविन शैली के संगीत के टुकड़े हैं, हेंडेल के संवेद गान के छंद प्रवाह के भांति उनमें उद्दीपक लय नहीं थे। उनकी वाणी सुनते ही शरीर में बिजली सी कौन जाती, उनके मुख से निकली वाणी में अनायासी आवेग उत्पन्न हो जाता है।
2: स्वामी जी का मत था कि सिर्फ शुद्ध ताल और स्वर के साथ गाना गाने को यथार्थ संगीत नहीं कहा जा सकता। लोक गीतों की मधुरता, शास्त्रीय संगीत का विज्ञान और कीर्तन का भाव, इन गीतों के मेल से ही आदर्श संगीत की सृष्टि होती है। उन्होंने कहा था,
0: युगों पूर्व भारत में संगीत को पूर्ण सप्त स्वरों तक विकसित किया गया था, यहां तक कि अर्ध एवं चतुर्थांश स्वर तक भी विकसित हुए थे। भारत ने संगीत में और नाटक तथा स्थापत्य कला में भी नेतृत्व किया। अब जो कुछ हो रहा है वो तो सिर्फ नकल है।
3: टप्पा के बारे में उन्होंने कहा था,
0: जो ध्रुपद गाने में दक्ष हैं, उन्हें तो टप्पा कर्कश ही लगता है। टप्पा को नाक से गाते हुए बिजली के समान एक सुर से दूसरे सुर में दौड़ना कोई उत्कृष्ट संगीत नहीं हो सकता। क्या तुम्हारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब एक स्वर के पीछे दूसरा स्वर इतनी द्रुत गति से तेजी से आता है तो केवल संगीत की सुषमा ही नष्ट नहीं होती, वरन एक प्रकार का बेसुरापन पैदा हो जाता है।
2: पाश्चात्य संगीत में गहराई तक बैठने के बाद स्वामी जी ने उसके बारे में उच्च धारणा बना ली थी। उन्होंने कहा,
0: जब मैंने पाश्चात्य संगीत को ध्यान पूर्वक सुनना शुरू किया और उस शास्त्र का अध्ययन किया तो प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। सभी कलाओं का यही हाल है।
3: उन्होंने आगे और भी कहा,
0: हमारे संगीत में आरोह अवरोह बहुत सुंदर बन पड़ता है, उसी का अनुसरण आज सारा विश्व कर रहा है।
2: स्वामी जी सिर्फ सिद्ध संगीतज्ञ ही नहीं, बहुत अच्छे कवि भी थे। उनका काव्य जीवन और दर्शन का सत्य है।
3: विवेकानंद के काव्य को विषय और शैली की दृष्टि से दो भागों में रखा जा सकता है। प्रथम वर्ग की कविताओं में सत्य की अभिव्यक्ति के लिए प्रत्यक्ष शैली ली गई है। इसमें कवि विवेकानंद का वो रहस्यवादी रूप प्रकट है जो मात्र रहस्य में ही विराम नहीं पाता, बल्कि उसकी पूर्णाभिव्यक्ति की चेतना से भी भरा है। उनकी कविताएं रहस्यमय सत्य की नहीं, सत्य की रहस्यात्मकता की अभिव्यक्ति हैं। हम इस वर्ग में कवि की समाधि, सखा के प्रति, गाता हूं गीत मैं तुम्हें ही सुनाने को, नाचे उस पर श्यामा, काली माता और सन्यासी का गीत आदि कविताओं को रख सकते हैं।
2: सत्य के सगुण स्वरूप पर आधारित कविताएं दूसरे वर्ग में रखी जाएंगी। इन कविताओं में ईश्वर के सगुण रूप पर निवेदित भावनाओं के समर्थन के साथ ही मानवीय मूल्य के विविध आयामों की रचनाएं हैं।
3: विवेकानंद का काव्य समाधि की सृष्टि है। समाधि चरमावस्था का ही दूसरा नाम है। ये वो अवस्था है जिसमें मानव व्यक्तित्व पूर्णतः एकात्म प्राप्त कर लेता है। उसकी अनेक मुखी प्रवृत्तियां अपनी विभेद खोकर एक अपूर्व एकात्म का अनुभव करती हैं। उस अवस्था में सूर्य भी नहीं है, ज्योति सुंदर शशांक नहीं, छाया सव्योम में ये विश्व नजर आता है।
2: जहां मन के विभिन्न भाव अपने मिथ्यात्व का दर्शन कराने लगती हैं, जहां अहंकार की उद्दीप्त धारा में दृश्यमान विश्व विलीन होने लगता है, और अंत में जहां अंधकार भी एक व्यापक पूर्णता में लय प्राप्त करता है, वहां कवि विवेकानंद उपमा देते हैं, बंद वो धारा हुई, शून्य में मिला है शून्य, अवार्ड गमन सगोरचम, वो जाने जो ज्ञाता है।
3: कवि विवेकानंद हमसे कहते हैं,
0: तुम प्रेम की यज्ञ वेदी में अपनी स्वार्थ परता एवं मलिनता की आहुति दे दो। स्मरण रखो कि तुम्हारा भिक्षुक हृदय सदैव से सुख वर्जित रहा है। अपने हृदय की प्रेम राशि का वितरण तुम बिना प्रतिदान की आकांक्षा किए मुक्त हस्त से करो, क्योंकि ब्रह्मा और परमाणु कीट तक सब भूतों का है आधार। एक प्रेममय प्रिय इन सबके चरणों में दो तन मन वार। बहुरूपों में खड़े तुम्हारे आगे और कहां है ईश, व्यर्थ खोज ये जीव प्रेम की सेवा ही पाते जगदीश।
2: उनके गीत प्रकृति और पुरुष या शक्ति और शिव रूपी मूल तत्व के प्रति ही निवेदित है। वे ही कवि के सर्वस्व है। कवि ने अपनी आंतरिक घनिष्ठता का वर्णन इन भावनाओं में किया है। मात्र तुम ही हो मेरे, तुम ही प्राण बंधु हो, होता है आभास कि तुम मैं और मैं तुम हूँ। तुम वाणी हो, तुम ही कंठ में बसे हुए हो, वीणापति शारदा तुम ही, मैं माध्यम हूँ। है प्रवाह उद्याम वेगमय और चिरंतन, बह बह जाते थाह न पाते हैं मानवगण, ध्वनि गांभीर्य तुम्हारा सदृश जलधि का गर्जन, शेखर चंद्र तुम्हारी वाणी के आवर्तन।
3: विवेकानंद लोगों से काली माता की भयंकारी रूप को संतान भाव से पूजने का आग्रह करते। वे कहते हैं,
0: हे सत्य स्वरूपा माँ, तू ही इस ब्रह्मांड का सत्याधार है। लोग तुझसे प्रेम का ढोंग करते हैं, पर तेरी मूर्ति का साक्षात्कार करने का साहस उनमें कहां। मां, तेरा दिगंबरा रूप देखकर तो संसारी लोगों के प्राण सूखे पत्ते की तरह कांपने लगते हैं, और वे तुझे असुर विजयिनी, दयामयी इत्यादि गुणों से युक्त कर अपने विक्षुब्ध मन के भय को शांत करने का प्रयास करते हैं।
3: हम विवेकानंद को राग का कवि नहीं कह सकते, बुद्धि का कवि भी नहीं कह सकते। इसी प्रकार हम ये भी नहीं कह सकते कि विवेकानंद की कविता रागमय नहीं है, बुद्धिमय नहीं है। हमें उनकी प्रत्येक पंक्ति से एक अपूर्व अनुभूति होती है, ऐसी अनुभूति जो एक साथ राग और बुद्धि दोनों को अभिभूत कर देती है। हृदय और मेधा दोनों को एक साथ चमत्कृत करती है। राग और बुद्धि प्रकृत काव्य का मूलभूत समन्वय गुण है, और विवेकानंद का काव्य आदि से अंत तक इस समन्वय की ही अभिव्यक्ति है।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 1107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए बात करते हैं 19 मई के बारे में, और आज एकादशी है, हस्त नक्षत्र है, और इसके साथ ही नाना साहेब, गिरीश कर्नाड, नीलम संजीव रेड्डी, टीसी योहना, दीपक पुनिया, इन सभी का जन्मदिन है, और इसके साथ ही विजय तेंदुलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जमशेद जी टाटा, जानकी रामचंद्रन, शोम्बू मित्रा, इन सभी का पुण्य दिवस है। आइए तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा सुविचार के साथ। यदि आपको कोई याद नहीं कर पाता तो आप कर लीजिए। रिश्ते निभाते वक्त मुकाबला नहीं किया जाता। इसीलिए आपको अगर कोई याद नहीं कर रहा है तो आप याद कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिए और दूसरों को ज़रूर याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत के साथ। आपको जोड़ना चाहूँगा, आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफ़र, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रुक, ओ भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पकाए चले जा रहे हो, हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ही ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। ओए इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का ढेरों शुभकामनाओं के साथ स्वागत है और बात करते हैं अभी नाना साहब के बारे में। जी हाँ, 1857 के भारतीय आज़ादी के प्रथम संग्राम के शिल्पकार थे। इनका मूल नाम डोंडू पंत था और आज़ादी का संग्राम में नाना साहब ने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। पेशवा बाजीराव बल्लालाल भट्ट ने नाना साहब को गोद ले लिया था। इतिहास में नाना साहब को बालाजी बाजीराव के नाम से भी संबोधित किया जाता है। और 1 जुलाई 1857 को जब कानपुर से अंग्रेजों ने प्रस्थान किया तो नाना साहब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी तथा पेशवा की उपाधि की धारणा की थी। नाना साहब का अधम्य साहस कभी भी कम नहीं हुआ और उन्होंने क्रांतिकारी सेनाओं का बराबर नेतृत्व भी किया। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। और 19 मई 1824 को वेणुग्राम निवासी माधव नारायण भट्ट के घर में इनका जन्म हुआ। इनके पिता पेशवा बाजीराव के सगोत्र भाई थे और पेशवा बाजीराव दूसरे जिस समय दक्षिण छोड़कर गंगा तट बिटूर कानपुर में रहने लगे थे तब उनके साथ दक्षिण के पंडित माधव नारायण भट्ट और उनकी पत्नी गंगाबाई भी वहीं रहने लगे थे। इसी भट्ट दाम्पत्य से एक ऐसा बालक का जन्म हुआ जो भारत की आज़ादी के इतिहास में अपने अनुपम देश प्रेम के कारण सदैव अमर हो गया। पेशवा बाजीराव के पुत्रहीन होने के कारण इसी बालक को गोद लिया गया था। कानपुर के पास गंगा तट के किनारे बिटूर में ही रहते हुए बाल अवस्था में ही नाना साहब ने घुड़सवारी, मल्लयुद्ध और तलवार चलाने की कुशलता प्राप्त कर ली थी। अजीम अल्लाह खान नाना साहिब का वेतन भोगी कर्मचारी रहा था। तो पेंशन का रुकना पेशवा बाजीराव को मराठा साम्राज्य के कानपुर के पास बिटूर आना पड़ा था और उस समय अंग्रेजों ने भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इसी दौरान 28 जनवरी 1851 को पेशवा बाजीराव की मौत हो गई और कहा जाता है कि इनकी मृत्यु तक पेशवा को $80,000 की पेंशन अंग्रेज सरकार से मिलती थी, लेकिन बाद में उसे रोक दिया गया। माना जाता है कि लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब को दत्तक पुत्र होने के कारण पेंशन देने से मना कर दिया और ऐसे में नाना साहब को इस बात से बहुत दुख हुआ। एक तो वैसे ही उनके मराठा साम्राज्य पर अंग्रेज अपनी हुकूमत जमा कर बैठी हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें जीवन यापन के लिए रॉयल्टी का कुछ भी हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। तो ये चीज़ जो है उनको खटकी और 1953 में नाना साहब ने अपने सचिव अजीम अल्लाह खां को पेंशन बहाली पर बात करने के लिए लंदन भेजा। अजीम अल्लाह खां हिंदी, फारसी और फ्रेंच, जर्मन और संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। वह अंग्रेजों की क्रूर नीतियों का शिकार था, इसलिए नाना साहब ने उसे अपने सचिव बना लिया था। और इस दौरान अजीम अल्लाह ने अंग्रेजी अधिकारियों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी सभी दलीलें ठुकरा दी गई। ब्रिटिश अधिकारियों ने इस रवैये से नाना साहब बहुत बेहद खफा हो गए और ऐसे में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत की सबसे अच्छा विरोध का माध्यम माना। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को, सुनते रहो मस्त।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: क्वालिटी ऑफ हेल्थ। जब हम हेल्थ के बारे में कहते हैं तो देयर आर टू एस्पेक्ट्स जिस पर हमको ध्यान देना होगा। नंबर वन इज एक्सरसाइज, और ये बहुत बहुत जरूरी है कि हर दिन हम सुबह उठकर थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। आप कहेंगे सर वेयर इज द टाइम टू डू एक्सरसाइज। इसे एक बार भगवान से इंटरव्यू लिया गया और भगवान से एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा गया, आपको मनुष्यों को देखकर सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात क्या लगता है? और मालूम है भगवान का जवाब क्या था? God's beautiful answer was, the thing that surprises me the most about these human beings, they invest their complete health to gain wealth, and after many many years, they have to reinvest their complete wealth to regain health. कहा जाता है जान है तो जहान है, और बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा समय अपने लिए निकालें to do some exercise. अच्छा, अब एक्सरसाइज तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन हमारा रिसर्च कहता है कि एक्सरसाइज करते समय आप किस मानसिक अवस्था से आप एक्सरसाइज कर रहे हो। अब लोग सुबह उठकर जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, लेकिन अगर कोई गुस्से से वॉकिंग कर रहा है तो इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना होना चाहिए। इसलिए हमारा रिसर्च कहता है कि जो भी आप कार्य कर रहे हो, अगर आप बहुत खुशी से करते हो तो उसका जो इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत रिमार्केबल होता है। इसे ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में कुछ एक एक्सरसाइज को डिवाइस किए गए, विच आर कॉल्ड एज साइको फिजिकल डायनेमिक एक्सरसाइजेस। साइकी मींस माइंड और फिजिकल मींस शरीर, और इन दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन होना बहुत बहुत जरूरी है। तो कुछ एक एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगा, विच इज बीन डिवाइस बाई डॉक्टर गिरीश पटेल, अ वेरी फेमस साइकियाट्रिस्ट फ्रॉम बोरीवली बॉम्बे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये एक्सरसाइजेस आपको बहुत बहुत पसंद आएंगे। तो सभी स्ट्रेट होकर, अलर्ट होकर बैठे, रेडी ऑल ऑफ यू। अच्छा अच्छा, सबसे पहले आपको ये बहुत खुशी से, बहुत आनंद के साथ करना है। अच्छा, कैसे करना है? जब मैं कहूंगा वन, तो आप जोरदार ताली बजाना और महसूस करना कि आप उस सुप्रीम सर्जन जो ईश्वर है उनको टच कर रहे हो। और जब मैं कहूंगा टू, तो महसूस करना है कि उनसे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस उतर उतर कर आप तक पहुंच रहे हैं। करेंगे सभी? हाँ, चलिए। ओके, हियर वी गो। वन टू, खुशी से करना, आपके चेहरे में मुस्कुराहट भी होनी चाहिए, ठीक है? ओके, एक और बार करेंगे। वन टू कर। अच्छा, जैसे आप उस सुप्रीम सर्जन को टच करते हो तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारे जो शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं, अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं डिजीजेस होने का कारण क्या है, इट इज बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स, राइट? और जैसे ये टॉक्सिन्स शरीर से फ्लश आउट हो जाती है, वे बिकम डिजीज फ्री। लेकिन आजकल देखा गया है शरीर से ज्यादा टॉक्सिन्स हमारे मन में होते हैं, स्ट्रेस, फियर, टेंशन, डिप्रेशन, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। ऐसे एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज मुझे अच्छा लगता है, और वो है जब मैं कहूंगा वन, तो आप महसूस करना कि अगर आपके शरीर में और मन में अगर टॉक्सिन्स है तो जब मैं कहूंगा वन, तो आप इस तरीके से उसको झटक दो, और जब मैं कहूंगा टू, तो उसको थोड़ा धक्का मार के बाहर फेंक, ठीक है? बहुत खुशी से, बहुत आनंद से करना। चलो वन टू, थोड़ा धक्का मार दो, वेरी गुड वेरी गुड। एक और बार वन, हाँ टू, करो करो करो, या या या। फ्रेंड्स, ये जो रोड में जो गाड़ियां चलती है उसमें हम पेट्रोल यूज करते हैं, और जो एरोप्लेन जो हवा में चलती है उसमें भी हम फ्यूल यूज करते हैं। अच्छा बताइए फ्रेंड्स, ये दोनों क्वालिटी ऑफ फ्यूल कौन सा अच्छा होगा, इफ यू कंपेयर बोथ? राइट आंसर, वेरी इंटेलिजेंट ऑडियंस, यस, द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। उसी तरह द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स डाउन टू हेल्थ इज हम अपने शरीर में किस प्रकार का फ्यूल डाल रहे हैं, एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ आवर डाइट। अब प्रश्न उठता है कि हम किस प्रकार का भोजन स्वीकार करें। इसलिए हमारा रिसर्च कहता है दिस ह्यूमन सिस्टम इज मेंट फॉर प्योर वेजिटेरियन फूड, दिस ह्यूमन सिस्टम इज नॉट मेंट फॉर नॉन वेजिटेरियन फूड। अब नॉन वेजिटेरियन फूड से क्या प्रॉब्लम्स है उसके तो हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, तो हमारा क्वालिटी ऑफ डाइट क्या होना चाहिए, प्योर वेजिटेरियन फूड के साथ साथ जरूर भोजन के पहले जरूर सलाड को लीजिए। ओके, ईट लॉट ऑफ स्प्राउट्स, फ्रूट्स, जूसेस, तो इससे क्या होता है हमारी बॉडी जो होती है बहुत शक्तिशाली बन जाती है। साथ साथ में एक और बात पे ध्यान खिंचवाना चाहता हूँ, कहा जाता है जैसा अन्न होगा वैसा मन बन जाता है। इसे मैं आप सभी बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप भोजन बना रहे हैं तो बहुत खुशी और आनंद से भोजन बनाइए। अगर आपने बहुत गुस्से से भोजन बनाया, यही हमारा जीवन है क्या, जिंदगी भर हम भोजन बनाते रहें? अगर इस एटीट्यूड से भोजन बनाया तो जो भी आपका हाथ का बनाया भोजन खाएंगे तो उनके भी विचार जो होंगे वो डामाडोल हो जाएंगे, राइट। भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा कोई शास्त्र में नहीं लिखा है कि बहनें ही भोजन बना सकते हैं, आप भी तो थोड़ा हेल्प कर सकते हो ना, तो एक बार ट्राई करके देखना, है ना। जब बहन भोजन बना रहे हैं तो बहुत किचन में जाना, बहुत प्रेम से एक दो टमाटो कट करके देखना और बहन के चेहरे को देखना, उनका चेहरा एकदम गुलाब की तरह खिल जाएगा। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इमोशंस, ओके। यू नीड टू हेल्प एवरीवन। जैसे मैंने अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया है कि जब भी मेरे फैमिली मेंबर्स इफ दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू कुक फूड, मैं कहता हूं मैं आज के दिन भोजन बनाता हूं। एंड टेक कुकिंग एज योर हॉबी। जैसे आज भी आप देखो मंदिर में जाते हो, आपको प्रसाद मिलता है ना, भले थोड़ा सा प्रसाद क्यों ना हो, लेकिन उसका महत्व बहुत होता है क्योंकि वो ईश्वर की याद में वो भोजन बनाया गया है। जैसे जब आप भोजन बनाते हो तो ईश्वर के अच्छे अच्छे गीत लगाइए और उनके याद में अगर आप भोजन बनाते हो तो बहुत शक्तिशाली, बहुत।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और ढेर सारी शुभकामनाओं के बाद आइए बात करते हैं नाना साहब की आगे की कहानी। जब पेंशन अंग्रेज सरकार से नहीं मिला तो ये एक तो अंग्रेज उनके पर राज भी कर रहे थे और पेंशन भी नहीं दे रहे थे, तो इस वजह से उनका बगावत जो है बढ़ गया। और उधर मंगल पांडे के नेतृत्व में मराठा छावनी के सिपाही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का मन बना चुके थे। खबर उड़ती उड़ती नाना साहब के पास पहुंची तो उन्होंने तात्या तोपो के साथ मिलकर 1857 में ब्रिटिश राज के खिलाफ कानपुर में बगावत छेड़ी। जब मैं 1857 में पहला आज़ादी का संग्राम की ज्वालाएं उठी, नाना साहब भी राष्ट्र मुक्ति संघर्ष में कूद पड़े, कानपुर पर अधिकार कर लिया। कई मास इस पर आज़ादी का झंडा लहराता रहा। कानपुर पर फिर से अधिकार करने के लिए हेवलॉक ने विशाल सेना के साथ आक्रमण किया। उन्होंने कुछ समय तक शत्रु सेना से वीरता के साथ संघर्ष किया, अंत में उनकी पराजय हुई। नाना साहब ने अपने साहस नहीं खोया और उन्होंने कई स्थानों में शत्रु सेना से संघर्ष किया। अंत में जब 1857 का पहला संग्राम असफल हुआ तब नाना साहब को सपरिवार नेपाल जाकर शरण लेनी पड़ी, लेकिन वहां शरण ना मिल सकी क्योंकि नेपाल दरबार अंग्रेजों को असंतुष्ट नहीं करना चाहता था। जुलाई सन 1857 तक इस महान देशभक्त को घोर आपत्तियों में अपने दिन व्यतीत करने पड़े और उसका स्वराज्य स्थापना का सपना टूट चुका था। तो इस तरह से नाना साहेब और ब्रिटिश सेना के बीच में लड़ाई के सती चोर घाट के नरसंहार के बाद और भी गंभीर रुख अख्तियार कर लिया गया। और दरअसल 1857 में एक समय पर नाना साहेब ने ब्रिटिश अधिकारियों के साथ समझौता कर लिया, मगर जब कानपुर का कमांडिंग ऑफिसर जनरल व्हीलर अपने साथी सैनिकों व अनेक परिवारों समेत नदी के रास्ते कानपुर आ रहे थे तो नाना साहब के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। इस घटना के बाद ब्रिटिश पूरी तरह से नाना साहब के खिलाफ हो गए और उन्होंने नाना साहब के गढ़ माने जाने वाले बिट्टूर पर हमला बोल दिया। पहले के दौरान नाना साहब जैसे तैसे अपनी जान बचा के सफल हुए, लेकिन यहाँ से भागने के बाद उनके साथ क्या हुआ ये बड़ा सवाल है। इसे लेकर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वह भागने में सफल हो गए थे और अंग्रेज सेना से बचने के लिए भारत छोड़कर नेपाल चले गए। फिर उनकी तलाश शुरू हुई। हालांकि रहस्य केवल नाना साहब के गायब होने का नहीं है, बात उनके बेशकीमती खजाने की भी है। जिस समय अंग्रेजों ने नाना साहब के महल पर हमला किया तो उनके हाथ नाना साहब तो नहीं लगे, लेकिन दौलत के भूखे अंग्रेजों ने उनके महल को उदेरना शुरू कर दिया और अंग्रेज वहाँ किसी गुप्त खजाने की तलाश में थे। इसके लिए खास तौर पर रॉयल इंजीनियरिंग व लगभग आधी ब्रिटिश सेना को काम पर लगा दिया। खजाने की खोज के लिए अंग्रेजों ने कुछ भारतीय जासूसों से भी मदद ली, जिसके चलते वह खजाना ढूंढ पाने में लगभग सफल हो ही गए। महल में खोज के दौरान अंग्रेजों को 7 गहरे कुएं मिले, जिनमें तलाशने पर उन्हें सोने की प्लेट मिली। इससे यह पक्का हो गया कि नाना साहब का खजाना इन्हीं कुएं में कहीं छिप गया है। इस दौरान सारा पानी निकलकर जब कुआं की तलाश ली गई तो कुएं के तले में बड़े बड़े बक्से दिखे, जिसमें सोने की ईंटें, चांदी, सिक्के व अन्य बेशकीमती सामान रखा हुआ था। इतना बड़ा खजाना अंग्रेजों के हाथ लग चुका था, बावजूद इसके उनका मानना था कि नाना साहब खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने साथ ले गए। तो इस तरह की बातें सामने आती रहीं और नाना साहब की मृत्यु को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। माना जाता है कि नेपाल के देवखरी गांव में रहते हुए नाना साहब भयंकर बुखार से पीड़ित हो गए और इसी परिणाम स्वरूप 34 साल की उम्र में 6 अक्टूबर 1858 को उनकी मौत हो गई। कुछ विद्वान एवं शोधकर्ता ये के अनुसार क्रांतिकारी नाना साहब के जीवन का पटपेक्ष नेपाल में ना होकर गुजरात के ऐतिहासिक स्थल शिरोहर में हुआ, ऐसे भी बताते हैं। तो ये थोड़ा मतभेद यहाँ पर है। तो चलिए इसके साथ ही मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, और आशा करूंगा कि आप सभी को विशेष बातें सुनकर अच्छा लग रहा होगा। नाना साहेब जो पहले ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857 की प्रथम संग्राम में हिस्सा लेते हुए उन्होंने भी अंग्रेजों से लोहा लिया, और लेकिन इनको वहां से भागना पड़ा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इतिहास के कुछ पन्नों को देखकर बड़ा अजब सा लगता है, और जीवन के कहीं ना कहीं कुछ सत्य को हमें उस कड़वे घूट को पीना भी पड़ता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को एक खास व्यक्तित्व के बारे में मिलाना चाहूँगा। जी हाँ, गिरीश कर्नाड के बारे में बात करते हैं। ये एक बहुत ही थिएटर आर्टिस्ट, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर रहे हैं। तो इनकी जीवन कहानी से जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूँगा। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए बात करते हैं गिरीश कर्नाड के बारे में। और ये एक ऐसे लीजेंडरी व्यक्ति रहे जिनकी बायोग्राफी को अगर आप सुनेंगे तो निश्चित तौर पे आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। और कर्नाटक संगीत, कर्नाटक नाट्य शैली के लिए भी जाने जाते हैं। तो गिरीश कर्नाड एक जाने माने कवि, रंगमंच कर्मी, कहानी लेखक, नाटककार, फिल्म निर्देशक और फिल्म अभिनेता है। गिरीश कर्नाड को 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1998 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलावा पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। हिंदी में उत्सव, मंथन, इकबाल और डोर जैसे फिल्मों में काम करके इन्होंने एक अलग छवि बनाई है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन पर, सफर सुनते रहो।

0: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता पंडित, आपकी साथी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है खुशियों की खान, बेटी है तो दुनिया है, बेटी नहीं तो दुनिया भी नहीं। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर सफर। इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। और बात कर रहे थे हम लोग गिरीश कर्नाड के बारे में, तो आइए उनसे, उनके कुछ जीवन कहानी से जुड़ी हुई कुछ डायलॉग डिलीवरी, उनके व्यक्तित्व के बारे में आपके लिए अभी आगे की कहानी। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
2: लिसन शंकर चौधरी, 5 रुपए की लॉटरी टिकट से भिखारी लखपति हो जाता है, लेकिन बड़प्पन ब्लड में रहना जरूरी है, पीढ़ियों दर पीढ़ियों में होना चाहिए।
3: ये दास्तां है एक ऐसे कलाकार की जिसे सही मायनों में स्कॉलर कहा जा सकता है। इन्होंने वो मकबूलियत हासिल की जिसका सपना बहुत से कलाकार देखते रह जाते हैं। नाम गिरीश कर्नाड।
4: क्यों सर, और कितने दिन तक ये हार्ट अटैक का ड्रामा होने वाला है?
2: पप्पी को थोड़ा बदलने तो दो।
4: अजी पप्पी बेटी तो काफी बदल गई है।
3: जन्म हुआ 19 मई 1938 में। पूरा नाम गिरीश रघुनाथ कर्नाड। जन्म का स्थान था माथेरान। उस जमाने में यह बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था और आज की तारीख में यह महाराष्ट्र राज्य का हिस्सा है। इनकी माँ कृष्णाबाई दरअसल बहुत ही कम उम्र में विधवा हो गई थी। उनका एक बेटा भी था। इनकी माँ ने नर्स की ट्रेनिंग लेना शुरू ही किया था, जहाँ पे इनकी मुलाकात हुई डॉक्टर रघुनाथ कर्नाड से, जो कि बॉम्बे मेडिकल सर्विसेज में काम किया करते थे। क्योंकि वो जमाना था जब विधवा स्त्री का पुनर्विवाह बड़ा कठिन माना जाता था। उसके बाद आर्य समाज पद्धति से इन दोनों लोगों का विवाह हुआ और इस शादी से 4 बच्चे हुए, जिसमें तीसरे नंबर पर पैदा हुए गिरीश कर्नाड।
5: आप जो कह रहे हैं सही है, मगर जरा ये बताइए कि स्टेट में मशहूर घराने कितने हैं आपके ख्याल से? ठीक उंगलियों पर गिने जा सकते हैं।
3: गिरीश कर्नाड साहब की शुरुआती पढ़ाई लिखाई मराठी में हुई, जगह सिरसी कर्नाटक। बचपन में ही इन्होंने बहुत सी नाटक मंडलियां देखी थी। ऐसे रंगकर्मी देखे थे जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर नाटकों का मंचन किया करते थे।
6: मैं उन विदेशी लंगूरों को एक पैसा नहीं दूंगा। अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य मुझे मालूम है, समझे? और तुम बच्चों को राजनीति के झमेले में पड़ने की क्या जरूरत है? ऐसे ही हमारे देश में झमेले कम है क्या?
3: ये बाल गंधर्व के नाटक युग से बड़े प्रभावित थे। बचपन में ही यक्षगान का भी इन पे गहरा असर हुआ। इनका परिवार फिर धारवाड़ चला गया, जो कि कर्नाटक में है। तब इनकी उम्र तकरीबन 14 बरस रही होगी।
5: मेरे दादा सतनाम नागर पहले आदमी थे जिन्होंने कार खरीदी थी।
3: जहाँ एक तरफ कला के प्रति इनका रुझान नजर आता था, दूसरी तरफ पढ़ाई में भी ये बड़े ही तेज थे। इन्होंने मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में बीए की डिग्री हासिल की।
6: कम ऑन, पुराने जिक्र अब भूल जाओ।
3: 1958 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद ये चले गए इंग्लैंड, जहाँ पर इन्होंने फिलोसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई लिखाई करी। ये ऑक्सफोर्ड में मैकडेलन में रोड्स स्कॉलर की तरह एनरोल हुए थे, जहाँ पर इन्होंने एमए की डिग्री हासिल की।
6: बहुत अच्छा।
3: ये बात भी वाकई प्रशंसनीय है कि 1962 से लेकर 1963 तक ये ऑक्सफोर्ड यूनियन के प्रेसिडेंट बने थे। इन्होंने तकरीबन 7 बरस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के लिए काम किया। उसके बाद अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर इन्होंने मन बना लिया पूरी तरह से अपना जीवन लेखन में ही लगा देंगे। तब तक किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे जाकर ये बहुत बड़े नाटककार, साहित्यकार और एक जबरदस्त अभिनेता बनेंगे।
2: एक बार फिर बोलो।
3: ये वो वक्त ही था जब एक छोटे से थिएटर ग्रुप के साथ ये जुड़े, जिसका नाम रहा द मद्रास प्लेयर्स। 1987-88 में इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के लिए चुना गया बतौर विजिटिंग प्रोफेसर। ये फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर भी रहे और संगीत नाटक अकादमी के चेयरमैन भी।
2: All right.
3: इनके लिखे नाटक बड़े मकबूल हुए, खासतौर पे मोहम्मद बिन तुगलक लिखा नाटक तुगलक, जिसका मंचन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की रेपर्टरी कंपनी ने किया था। डायरेक्टर थे अब्राहम अलकाजी और तुगलक की भूमिका निभाई थी महान

0: स्वामी के पिता की भूमिका निभाई थी।
1: पिताजी आप अच्छे पिताजी हैं।
0: टेलीविजन पर एक साइंस मैगजीन शो आया करता था टर्निंग पॉइंट, जिसके ये एंकर रहे। इन्होंने फिल्में भी डायरेक्ट करना शुरू कर दिया था। वंश वृक्ष एक ऐसी फिल्म रही जिसके लिए इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्शन के लिए नवाजा गया था। इनके साथ ही थे बीवी कारंत।
2: और इस यानी का मतलब क्या है? तुम यही समझ बैठे हो ना कि रुपया ने पैसे आसमान से गिरते, यहाँ से जो चाहो ले लो।
0: हिंदी सिनेमा में श्याम बेनेगल के साथ भी इनकी जोड़ी खूब जमी। 1975 में आई फिल्म निशांत, 76 में मंथन, इन फिल्मों में भी इनकी भूमिका खूब सराही गई। ये कमर्शियल सिनेमा से भी ज्यादा दिन दूर नहीं रहे। सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर को कौन भूल सकता है, इन्होंने कन्नड़ा फिल्मों में भी काम किया और रंगमंच को भी नए नए नाटक देते रहे।
2: ये कैसे चलेगा, 8 दिन हुए गधे की तरह घर में बैठा।
0: इनके निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है, जब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस मद्रास में काम कर रहे थे तो इंग्लैंड से वापस आने के बाद इनकी मुलाकात हुई सरस्वती गणपति से। 10 साल तक इनका रिश्ता चला और फिर ये विवाह के बंधन में बंध गए। शादी से इन्हें 2 बच्चे हुए। गिरीश कर्नाड साहब को पद्मश्री से नवाजा गया, पद्मभूषण से नवाजा गया, कन्नड़ा साहित्य परिषद अवार्ड से भी नवाजा गया और साथ ही 1994 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी इन्हें दिया गया। इनकी अवार्ड की फेहरिस्त वाकई बहुत लंबी है।
2: लेकिन इन लोगों को कलम, स्याही, कागज, कागज के नीचे रखने को पैड सब चाहिए, मार्क्स तो हम लोगों से ज्यादा मिलते नहीं।
0: अभी तो इन्हें बहुत काम करना था, लेकिन 10 जून 2019 में 81 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। भारतीय साहित्य, शिक्षा, रंगमंच, सिनेमा, हर क्षेत्र के ये एक बहुत ही बड़ी शख्सियत बन के उभरे।
3: जला रहा है मुझे, पैसे का दिखावा कर रहा है।
4: हाँ साहब, ठीक कहा आपने।

चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खम्मा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो मुस्कुरा।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना नीचे करना है? ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज़, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किसके पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

होंगे हम तो विघ्न हार जाएंगे, विघ्न हार जाएंगे। शिक्षा बनेगी बल, स्वस्थ होगा कल। सहयोग की ईंटों से सफलता।

0: रेडियो
1: मधुबन 90.4 FM सुन रहे हैं आप. कार्यक्रम का नाम है युवा मंच. दोस्तों, युवाओं का मंच है तो फिर कुछ करियर्स के बारे में भी बीच बीच में बात होती है जो कि युवाओं को आकर्षित करते हैं, या कई चीजें जो जानकारियां हमारे लिए उपस्थित नहीं होती. हालांकि दोस्तों, इंटरनेट का जमाना है, बहुत कुछ आपको मिल सकता है जो भी आप करियर अपनाना चाहें. लेकिन वो करियर है कैसा, उसको जाने किसी ऐसे व्यक्ति की नजर से जो ऑलरेडी उस करियर में हो, तो फिर कहीं ना कहीं मोटिवेशन के साथ साथ सही जानकारी भी मिल जाती है. दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे इसी श्रृंखला में. आज हमारे साथ हैं श्री कृष्ण प्रकाश तौले जी. एक्चुअली मैं उनका नाम पूरा जरूर लिया लेकिन उनकी पोस्ट तो भूली गई. दोस्तों, आज हमारे साथ हैं CA श्री कृष्ण प्रकाश तौले जी. जी हाँ, वो एक युवा साथी हैं और CA हैं, तो आज इसी फील्ड के बारे में, इसी करियर के बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे और उनके बारे में भी कुछ जानेंगे. आपका बहुत बहुत स्वागत है.
2: थैंक यू.
1: अच्छा, सबसे पहले तो बहुत अच्छा करियर है एंड आई नो बहुत कॉम्पिटिशन होता है, तो आपको बहुत बहुत बधाई है कि आप इतना अच्छे करियर में आगे बढ़ रहे हैं एंड हम आपसे आज बहुत कुछ जानेंगे. आप अपने बारे में कुछ अपने शब्दों में बताइए.
2: थैंक यू सो मच फॉर ब्रीफ इंट्रोडक्शन. अगर आप CA के बारे में करेंगे तो CA एक बहुत अच्छा, मतलब इंडिया में रिप्यूटेड कोर्स है जिसकी शुरुआत इसका, मतलब मैंने एक्चुअली इन द 9th स्टैंडर्ड ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि मुझे CA परस्यू करना है.
1: अच्छा.
2: मुझे एक्चुअली एक स्कूल टीचर से पता चला था, बिकॉज तब इतना अवेयरनेस नहीं होता है CA कोर्स के बारे में लोगों को, इसलिए वो इशू जाता है. तो मुझे एक स्कूल टीचर से पता चला था कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स होता है और इसमें ऐसा ऐसा कुछ फ्यूचर वगैरह होता है, तो फिर मैंने वहां से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट
1: किया. तो आपको इंटरेस्टिंग कैसे लगा, मतलब आप 9वीं कक्षा में थे, 9th क्लास में थे, तो उस टाइम आपको कैसे लगा कि नहीं CA अच्छा है, मतलब क्या बताया ऐसा टीचर ने जो आपको बहुत अच्छा लगा?
2: एक्चुअली वो नई चीज सुनी थी क्योंकि पहले तो डॉक्टर, इंजीनियर और अदर फील्ड जो ऑप्शंस जो यूजुअली अपने को पता होते हैं वही चीजें पता थी, बट ये नई चीज सुनी थी. और ये सुना था कि रेपुटेशन अच्छा होता है, इसका जॉब पैकेज अच्छा होता है, ये सब चीजें सुन के मैंने और इंटरेस्ट लिया. और एक पावर होता है CA के सिग्नेचर में, तो वो चीज सुन के फिर मैंने उसको आगे सोचना स्टार्ट किया.
1: आपको लगा ये अच्छा है? ओके. तो आपके टीचर्स ने आपको ये बातें बताई?
2: टीचर को इतना नहीं पता था एक्चुअली, उन्होंने ब्रीफ में बताया था. एक्चुअली वो टाइम पे एक मुंबई की एक बहन थी, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने टॉप किया था क्लास में, लेकिन वो उनके पापा रिक्शा चलाते थे, तो उन्होंने टॉप किया था, तो उनका एक मोटिवेशन एग्जांपल देने के लिए उन्होंने हमको बताया था. तो उससे फिर उन्होंने CA के बारे में बता दिया, तो वहां से मेरा इंटरेस्ट वो फील्ड, मतलब उसके बारे में बढ़ गया.
1: और बढ़ गया, राइट. ओके. तो उसके बाद आपने क्या किया, मतलब आपको पता चला था सब कि CA बनने के लिए क्या करना होता है?
2: कुछ भी पता नहीं था, बस ब्लाइंडली लोगों से पूछता था, लोग कुछ अपने हिसाब से जवाब देते रहते थे, उतना कुछ आइडिया नहीं था. आफ्टर 11th मुझे वो सब चीजें फिर क्लियरली, बट सोचा था मैंने कि करना है, बट जो प्रैक्टिकल चीजें है, जो एक्चुअल क्या है, जैसे सुनते तो अपन काफी चीजें टफ होता है, टफेस्ट इन द, मतलब इंडिया में टफेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, नहीं कर पाते आप, क्लियर नहीं हो पाओगे. अगर आप बीच में रुक गए तो आपका करियर स्पॉइल हो जाएगा और आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो लोग से सुनते थे, बट फिर बाद में जब मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया तो फिर चीजें थोड़ी अलग थी.
1: ओके. तो जो 9th में आपको जानकारी मिली थी वो बहुत थोड़ी थी, 11वीं में जब आप थे तो ऐसी क्या जानकारी मिली जो आपको क्लैरिटी आई?
2: ओके. फिर उस हिसाब से मैंने कॉमर्स चूज किया, 11th 12th, कॉमर्स से मतलब रिलेटेड ही होता है, तो मैंने 11th 12th कॉमर्स स्ट्रीम को चूज किया, जिसमें फिर मेरे जो कल मतलब जो फ्रेंड्स थे स्कूल वाले, सब मैक्सिमम दोस्त भी CA ही कर रहे थे, तो उनसे मुझे पता चला. और फिर प्रैक्टिकली मुझे जो CA चार्टर्ड अकाउंटेंट थे उनसे डायरेक्ट मिलने का मौका.
1: अच्छा.
2: हाँ, जो टीचर हमारे थे, मतलब एग्जाम जो प्रिपरेशन कराते, वो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो उनसे मुझे अच्छा गाइडेंस मिला, तब मुझे पता चला कि हाँ, मतलब यहाँ कर सकते हैं या फिर.
1: अच्छा. तो क्योंकि आपने जैसे बताया 11वीं में पता चला, तो 11वीं के बच्चे को आप क्या बताएंगे, बहुत डिटेल में आप बताएंगे या उसके अनुसार बताएंगे? तो अगर एक 11वीं का बच्चा आपको सुन रहा है आज और जो आपने सुना था उस वक्त, तो आप उसे क्या बताएंगे CA क्या होता है?
2: ओके. अगर CA के बारे में बात करेंगे तो एक इंडिया में बहुत अच्छा रिप्यूटेड कोर्स है, इसका एक्चुअली इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट की फॉरेन में भी अच्छी डिमांड है. फॉरेन कंपनीज में भी इंडियन सीए रिक्रूट होते हैं. आज कनाडा में देखिए, दुबई में देखिए, दुबई में बहुत अच्छा मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम चलता है, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट का. तो अगर सीए के बारे में बात करें तो एक 4.5 साल का ब्रीफली कोर्स होता है, मतलब 4.5-5 साल अप्रोक्सीमेटली पकड़ सकते हैं आप. 12 आप 10वीं के बाद उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है और फिर 12वीं से आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. मतलब आप 12th अपीयर चाहिए, आप 12th अपीयर होते हुए भी आप एग्जाम दे सकते हैं. आप 12th अपीयर होके एग्जाम दीजिए. सबसे पहले एग्जाम होते हैं सीए फाउंडेशन, मतलब इसमें 3 एग्जाम आपको क्लियर करना है और 3 साल की सीए के अंडर आर्टिकलशिप कंप्लीट करना है. मतलब इट्स लाइक प्रैक्टिस, आपको सीए के अंडर ट्रेनिंग करना है, उसको आर्टिकलशिप बोलते हैं. तो आपको पहली एग्जाम 12th अपीयर होते हुए, जैसे आपके 12th की एग्जाम हो जाती है, वो 12th के आई कार्ड के बेसिस पे आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं. फिर वो एग्जाम का फॉर्म दे के आप एग्जाम दो.
1: कहाँ भर सकते हैं ये फॉर्म?
2: ये ऑनलाइन ही भरना है. मतलब पहले तो आपको 10वीं के बाद रजिस्ट्रेशन लेना है. 11वीं में 12वीं में कभी भी आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो. पहले एक रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही करना होता है सब. एक ICAI.org वेबसाइट होती है इंस्टीट्यूट की, जिसमें आप वो रजिस्ट्रेशन करा लो.
1: कौन सी वेबसाइट बताएं?
2: ICAI.org. www.icai.org ये साइट पे चाहिए तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे.

0: तो आप वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, फिर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप 12th के बाद एग्ज़ाम दिए सीए फाउंडेशन, वो 4 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होते हैं, 4 सब्जेक्ट को आपको क्लियर करना है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पता होनी चाहिए, ये पासिंग क्राइटेरिया है। एक्चुअली यहाँ पे 2-वे पासिंग क्राइटेरिया होता है। आपको 50% टोटल एग्रीगेट में लाना है और 40% इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट। लाइक अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो आपको एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। और अगर टोटल ओवरऑल जो स्कोर है आपका, जैसे आपको 4 पेपर है 400 मार्क्स के, तो आपको 200 मिनिमम लाना, दैट्स 50%। तो एग्रीगेट आपको 50% लाना है और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मिनिमम 40% होना चाहिए। अगर आप एक सब्जेक्ट फेल हो जाते हो तो फिर आप दूसरा, मतलब आप पूरे सब्जेक्ट को वापस से आपको देना
1: मतलब
0: होता
1: आपको
0: है,
1: चारों सब्जेक्ट का दोबारा देना पड़ेगा।
0: पूरा देना पड़ेगा।
1: और ये कौन कर सकता है? मतलब कोई भी स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं या कोई सब्जेक्ट जरूरी है इसमें अपीयर करने के लिए?
0: कोई भी स्ट्रीम के कर सकते हैं। 11th में अगर वो कॉमर्स है, आर्ट है, या फिर आप साइंस बैकग्राउंड से, कोई भी कर सकते हैं यहाँ पे।
1: तो ऐसा नहीं है कि मैथ्स होना जरूरी है?
0: ऐसा कुछ नहीं, बस ये होता है कि आपको थोड़ा अच्छा कैलकुलेशन होना चाहिए, बट ऐसे ज़रूरी नहीं कि आपको एडवांस लेवल का मैथ चाहिए, बट आप नॉर्मल मैथ से भी चला सकते हैं। और चीज़ें तो सीखने के लिए होते हैं, अपन तो कुछ भी सीख सकते हैं,
1: सीख सकते हैं।
0: सीख
1: हाँ, ये
0: सकते हैं।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने। तो मतलब हमने अभी तक ये समझा कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो सीए की हम बात कर रहे हैं, तो 11वीं या 12वीं के साथ आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो वेबसाइट पे।
0: यस
1: और एक सीए का पहला जो पेपर होता है फाउंडेशन, उसमें 4 सब्जेक्ट आपको पास होने जरूरी हैं,
0: राइट।
1: मिनिमम 40% और टोटल 50%।
0: हाँ, टोटल 50%।
1: अच्छा, तो अगर नहीं पास हो पाए तो दोबारा कर सकते हैं? तो 12वीं के बाद, मतलब जब आप आगे की पढ़ाई कर रहे हो तब भी आप कर
0: कभी
1: सकते
0: भी
1: हो?
0: विदिन 6 मंथ्स एग्जाम होती रहती है,
1: अच्छा,
0: मतलब
1: हर छह
0: साल में
1: महीने
0: दो
1: में।
0: बार, मई और नवंबर।
1: ओके, तो कब आता है इसका फॉर्म, कौन से समय आता है ऑलमोस्ट?
0: ये आप कभी भी कर सकते हैं, मतलब अभी चाहो तो अभी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, इसका
1: अच्छा,
0: कोई ये नहीं। बस ये क्राइटेरिया होता है कि आपको अगर एग्जाम देना है तो 6 मंथ्स बिफोर आप रजिस्टर्ड होना चाहिए। दैट इज अ बेसिक क्राइटेरिया कि अगर सपोज आपको 12th के बाद, जैसे आपकी 12th में मार्च में एग्जाम कंप्लीट हो रही है और आपको मई में एग्जाम देना है, तो आप मई के एग्जाम के 6 मंथ्स बिफोर आप रजिस्टर होना चाहिए।
1: 6 महीने पहले
0: 6 महीने
1: रजिस्ट्रेशन
0: पहले
1: जरूरी है।
0: रजिस्ट्रेशन तो भी एटलीस्ट होना चाहिए।
1: ओके, ठीक है।
0: और फिर उसका एग्जाम फॉर्म आएगा आपका, एग्जाम वो इंस्टीट्यूट के साइट पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। एग्जाम फॉर्म जनरली एग्जाम के 2 महीने पहले आ जाता है, तो वो आपको फिल करना है, उसका 10-15 दिन का टाइम होता है, तो फिर आप ये कर सकते हो फिर।
1: तो जो सेम वेबसाइट आपने बताई, वहीं पे आता है एग्जाम फॉर्म?
0: हाँ, वहाँ पे फिर नोटिफिकेशन आते रहता है, वहाँ पे फिर सब वेबसाइट्स वगैरह है उसमें, जो अलग अलग चीज़ें, जैसे ICAI.exam एक अलग वेबसाइट होती है जिसमें एग्जाम फॉर्म आपको अलग से भरना है, बट ये कोर वेबसाइट जो मैंने बोला है, मेन वेबसाइट जो www.ICA.org,
1: मतलब उसके थ्रू आपको सारी जानकारी
0: सारी
1: मिलेगी।
0: जानकारी मिल जाएंगी मोस्टली।
1: ठीक है, तो अगर पहला जो क्राइटेरिया है, यानी पहला जो एग्जाम है फाउंडेशन का, वो क्लियर किया, तो उसके बाद क्या?
0: हाँ, अगर आप सपोज मई में एग्जाम क्लियर कर ले तो कोई भी साल में, तो उसके बाद फिर आपको 9 मंथ स्टडी पीरियड होता है सेकेंड एग्जाम का।
1: अच्छा,
0: सेकेंड एग्जाम का नाम होता है सीए इंटरमीडिएट, जो आपको जैसे आप एग्जाम क्लियर होते हो उसके 9 मंथ्स आपको पढ़ाई करनी है उसकी, आपको बुक्स इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा। हाँ, पूरे आपको कुरियर के द्वारा अपने घर आ जाएंगे पूरी बुक्स, पूरा मटेरियल, साथ में आईसीए के चैनल्स भी चलते हैं जिसमें वो लेक्चर्स वगैरह रहता, शॉर्ट मतलब स्टडी मटेरियल रिलेटेड ऑल चीज़ें आप इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा, और आप कोचिंग भी ले सकते हो। हाँ, तो वो 9 मंथ्स में जब आप क्लियर हो जाते हो, तो वो 9 मंथ्स के अंदर आपको प्रिपरेशन करनी पूरी इंटरमीडिएट के लिए, फिर आप इंटरमीडिएट के एग्जाम दे सकते हो।
1: अच्छा, तो मतलब आपने 9 महीने तैयारी किया, उसके बाद फिर से वो एग्जाम फॉर्म भरना है
0: हाँ,
1: जो अपने
0: सेकेंड एग्जाम
1: सेकेंड एग्जाम है,
0: राइट।
1: उसमें क्या होता है?
0: हाँ, उसमें एक्चुअली 8 सब्जेक्ट्स होते हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: 8 होते हैं।
0: 8 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन उसमें एक है कि जैसे पहले अपन ने सुना है कि 50% एग्रीगेट होना चाहिए, तो उसमें कभी ऐसा हो जाता है कि आपको 40-40 तो आ जाता है। एक्चुअली एग्जाम थोड़ा टफ होता है, इसलिए 40 लाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, काफ़ी बच्चे नहीं ला पाते हैं, मतलब
1: जी
0: रिजल्ट आपको पता होगा, तो रिजल्ट काफ़ी टफ आता है इंस्टीट्यूट का, तो वो 40 लाना अगर आपको ये हो जाता है, तो इसलिए वो फिर इंटरमीडिएट पे 2 ग्रुप बनाया आईसीए ने
1: ओके okay.
0: एग्रीगेशन पर्पस के लिए, मतलब 4 सब्जेक्ट का एक ग्रुप, 4 सब्जेक्ट का दूसरा ग्रुप, ऐसे ग्रुप 1 ग्रुप 2, ऐसे 2 ग्रुप होंगे 8 सब्जेक्ट के, लेकिन आपको इंटरमीडिएट पूरे एग्जाम क्लियर करना है तो दोनों ग्रुप क्लियर करने हैं, चार चार
1: ओके
0: सब्जेक्ट के, 8 सब्जेक्ट के।
1: वो क्या सब्जेक्ट होते हैं उसमें, कुछ आप
0: अगर
1: बता सकते हैं आइडिया?
0: हाँ, ग्रुप 1 में अगर मैं बताऊँ तो फर्स्ट पेपर होता है अकाउंट्स का होता है, अकाउंट्स होता है, कॉस्टिंग होता है, ऑडिट होता है, इसमें
2: इंटरमीडिएट का 3 साल होता है ना फिर इंटरमीडिएट के,
1: टाइम हो जाता है, सही बात है।
0: ये फाउंडेशन की भी एग्जाम, ये इंटरमीडिएट के जो सब्जेक्ट्स है, पहला पेपर होता है अकाउंटिंग का, सेकंड पेपर होता है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, जिसमें आपको लॉज को पढ़ना है, बिजनेस लॉज रिलेटेड। थर्ड पेपर होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, जिसमें कॉस्टिंग्स के बारे में बात होंगी। फोर्थ पेपर होता है टैक्सेशन, जिसमें आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना। डायरेक्ट टैक्स इज रिलेटेड टू इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स इज जीएसटी मोस्टली, और उसमें कस्टम्स और बाकी अदर इनडायरेक्ट टैक्स भी आते हैं। फिफ्थ पेपर होता, ये हो गया फर्स्ट ग्रुप, चार पेपर का टैक्सेशन तक। फिर सेकेंड ग्रुप में होते हैं एडवांस अकाउंटिंग, लेकिन थोड़ा उसका स्कोप ये हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और सिक्स पेपर होता है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, जिसमें ऑडिटिंग रिलेटेड आपको लॉज पढ़ने हैं। सेवेंथ पेपर होता है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इट्स लाइक ये होता है मैनेजमेंट रिलेटेड, ये होता है और आईटी रिलेटेड सब्जेक्ट होता है। एट पेपर होता है जो लास्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, इसमें आपको फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज मिलेगा और इकोनॉमिक्स जो जिसके बेसिस पे वर्ल्ड में वर्ल्ड इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स उसके बारे में आपको सब्जेक्ट रहेगा।
1: तो 8 सब्जेक्ट 9 महीने हमारे पास है। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि शेड्यूल क्या होता था आपका एक दिन का जब आप इसकी तैयारी कर रहे थे?
0: उसमें तो एक्चुअली ऑप्शन होता है कि आप एक ग्रुप का भी प्रिपरेशन कर सकते, मतलब 4 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लो, फिर बाद में आप 4 सब्जेक्ट देना, एक ग्रुप पहले दे दो एक ग्रुप। लेकिन मैंने जब सोचा था कि मुझे बोथ ग्रुप एट अ टाइम कंप्लीट करना है, ऐसा मैंने टारगेट रखा था, तो मेरी वैसे क्लासेस भी मैंने पूरी फिर कंप्लीट की। क्लासेस में एक्चुअली शेड्यूल हमारा काफी फिक्स होता था, मतलब सुबह 7 बजे से क्लास स्टार्ट होती थी, रात के 9 बजे तक तो मिनिमम क्लास चलती थी बोथ ग्रुप, जब 8 सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो
1: सुबह 7 से रात 9 बजे
0: तक। दोपहर में 1-2 घंटे का ब्रेक लेके, तो ऐसा पूरा दिन भर क्लासेस चलती थी, तो पूरा एग्जॉस्ट तो हो ही जाता था, उतनी पढ़ाई नहीं होती पाती थी क्लासेस के ड्यूरिंग, लेकिन थोड़ा रिवाइज करना होता था कि आप जो क्लास में पढ़े उसको थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज कर लो और नेक्स्ट डे आप क्लास में चले जाओ, ताकि वो होता रहे, नहीं तो आप भूल जाओगे पूरी चीज़ें। तो वो तो क्लासेस के ड्यूरिंग तो ऐसे टाइट शेड्यूल था, सुबह आप 6 बजे उठ के ये करके 7 बजे से जाओ, फिर रात को 9 बजे तक आओ। फिर उसके बाद जब क्लासेस हो गए, आई थिंक क्लासेस का ड्यूरेशन मोस्टली 5 to 6 months था, फिर लास्ट के 3 months हमारे सेल्फ स्टडी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि क्लासेस में आप चीज़ें भूल जाते हो, लेकिन आपको लास्ट एग्जाम के पहले जो पढ़ना होता है 3 महीने मिलते, तो उसमें आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होता है, अच्छे से पढ़ना होता है। तो वो टाइम मिनिमम मैं 10 घंटे तो पढ़ता ही था, कभी कभी 12-13 घंटे हो जाते थे, कभी थोड़े कम भी होते थे, क्योंकि वो थोड़ा अप एंड डाउन चलते रहता स्टडी में।
1: लेकिन ज्यादातर आपने इतनी पढ़ाई की?
0: यस, मिनिमम 10 आवर्स तो वी हैव टू स्टडी, वो तो जरूरी हो ही
1: दिन भर में मिनिमम 10 घंटे
0: पढ़ने। और आपको बस वो एग्जाम के पहले ही 2-3 महीने वो पढ़ लो, आप क्लियर हो जाओगे।
1: लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने जैसे बताया कि पढ़ाई इतनी जरूरी है, और उसी पढ़ाई से जो हम आगे, मतलब आपने जैसे शुरू में बताया था कि सीए करते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है, तो जो मेहनत का नतीजा है वो आगे मिलता है, लेकिन मेहनत जरूरी है उसके लिए,
0: बहुत ज्यादा
1: जरूरी है। तो कैसा लगता था उस समय आपको, मतलब क्या डर लगता था, या बस पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं आता था दिमाग में, या कभी क्या लगता था?
0: कभी कभी तो ऐसे लगते थे कि गलत फील्ड में आ गए, नहीं आना था।
1: अच्छा, ओके।
0: कि गलती हो गई, हमारे दोस्त जो इंजीनियरिंग जो अदर फील्ड में गए वो एंजॉय करते थे, वो अपनी स्टूडेंट लाइफ एंजॉय कर रहे, और हम क्लासेस कर रहे, दिन भर समय ही कहाँ है, अदर एक्टिविटीज के लिए समय नहीं है, ना तुम स्कूल जा रहे हो, ना कॉलेज जा नहीं पा, नहीं जा रहे हो कॉलेज, और दिन भर क्लासेस और पढ़ाई, तो वो थोड़ा लगता था कि थोड़ा ये हो गया, बट हाँ फिर सोचना पड़ता था कि हाँ फ्यूचर में जब बन जाएंगे तो अलग ही ये रहेगा, और टीचर्स को देखते थे, उनकी लाइफ को देखते थे, तो थोड़ा मोटिवेशन आ जाता था। हाँ, और मैं मेडिटेशन वगैरह करता था, तो थोड़ा माइंड काम रहता था, तो वो हो जाता था।
1: बिल्कुल, मतलब इतना ज्यादा अगर पढ़ाई करनी हो तो मेडिटेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप मेडिटेशन करते थे, क्या करते थे पर्टिकुलरली, क्या कैसे करते थे, अगर आप थोड़ा सा बताएं हमें, क्या करते थे, किस समय करते थे, समय तो आपको मिलता नहीं था,
0: देखता ही रहना आप आगे,
1: एक बार आप समय भी बता दो ताकि पता चले कितने बिजी शेड्यूल में से करते
0: कैसे, 5-10 मिनट करने हैं स्टार्ट करने के पहले।
1: हाँ, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि आप 5 मिनट भी खुद के लिए दे रहे हैं, खुद के माइंड के लिए दे रहे हैं, तो उसको तैयार करें एक तरीके से, तो अच्छी बात है. क्योंकि कई बार हमें मेडिटेशन को सोच के लगता है कि इतना समय देना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, लेकिन आप करते करते बीच में कर सकते हैं. ये सुन के अच्छा लगा. मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा.
0: कर सकते हैं बीच में. आप मतलब न्यू सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करो तो बीच में ब्रेक लेके 10-15 मिनट का पे कर लो, म्यूजिक सुन लो, थोड़ा माइंड फ्रेश भी हो जाता है, क्योंकि आप कंटिन्यूस नहीं पढ़ सकते ना.
1: बहुत जरूरी है एक्चुअली. ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं. तो आपका जब आपने 8 सब्जेक्ट ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों दिए तो क्या हुआ फिर?
0: शॉकिंगली मैं फेल हो गया था.
1: ओके.
0: मैं फेल हो गया था शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत में जब मैंने क्लासेस की थी शेड्यूल बिजी होता था, इसलिए मैं उतना पढ़ नहीं पाता था. तो जब मैं सेल्फ स्टडी कर रहा तो काफी चीजें मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भूल गया. क्योंकि वो ब्रेन अपना एट द एंड आप ह्यूमन माइंड है, तो उसका प्रॉपर ये रहता है प्रोसीजर. आपको माइंड के अंदर कुछ चीजों को अगर इनपुट डालना है और उसको स्टोर रखना है तो उसका प्रोसीजर, उसको आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा और उसको आपको प्रैक्टिकली मतलब सोच के उसको ये करना पड़ेगा, तभी जाके हो रहा था. लेकिन मेरे क्लासेस का शेड्यूल इतना टाइट था इसलिए वो नहीं हो रहा था मेरा.
1: Okay,
0: मतलब नहीं हो पाया मेरा क्लियर. मैं फेल हो गया था. रिजल्ट आया कुछ नहीं, फिर एक दिन थोड़ा आंसू बहा लो, लोगों की सांत्वना ले लो.
1: okay.
0: उसके बाद तो फिर नॉर्मल जिंदगी तो अपनी कोई जिंदा होता है, उसको अपनी कोई ट्रूथ को एक्चुअली अपने साथ रख के उसको आगे बढ़ना पड़ता है.
1: बिल्कुल. लेकिन डेफिनेटली आपने 9 महीने मेहनत की उतनी कड़ी, और बुरा तो लगता है, लेकिन आपने फिर कैसे खुद को मोटिवेट किया और क्या प्लान किया आगे के लिए उस समय?
0: हाँ, एक दो दिन तो मेरा वैसे ही ये हो गया. फिर मैंने टीचर्स से वगैरह कंसल्ट किया जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, जो प्रोफेसर्स ने, तो उन्होंने फिर मुझे थोड़ा मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं. इट्स और ऐसा भी बोला जाता है कभी, अगर सीए कर रहे हो और अगर आप फेल नहीं हो रहे तो सीए क्या बने.
1: okay.
0: तो वो थोड़ा एक मोटिवेट करता है. और अभी तो वो सीए का लॉन्ग फॉर्म लोग कम अगेन बोल, सीए का लॉन्ग फॉर्म होता है कम अगेन, आप और वापिस
1: आओ
0: एग्जाम देने के लिए आओ. तो वो थोड़ा था कि हाँ ठीक है, नॉर्मल है, होता है,
1: होता है, होता.
0: तो फिर मैंने फिर 2-3 दिन ब्रेक लेके फिर माइंड को उसका कमांड दे दे कि इस बार कुछ भी हो जाए अच्छे से पढ़ना है. वो कैसा होता है ना कि जब आप एग्जाम देते हो तो आपको 2.5 महीना तो भी रिजल्ट आने को लगता है. सपोज अगर मैं मई में एग्जाम दे रहा हूँ तो मेरा अगस्त तक रिजल्ट आ जाएगा इंटरमीडिएट का. तो फिर जैसे आप अगस्त का रिजल्ट आ रहा है तो आप अगस्त से फिर आपको नवंबर में नेक्स्ट एग्जाम है.
1: ओके.
0: हाँ, तो फिर अगस्त से आपको नवंबर तक का टाइम मिल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर और 3 महीने का, बस 3 महीने.
1: तो आपको फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा?
0: नहीं नहीं नहीं, आप रजिस्ट्रेशन हमारा मोस्टली 3 साल तक वैलिड रहता है. अगर 3 साल तक आप एग्जाम क्लियर नहीं करते तो फिर वापस से आपको रिन्यू करना पड़ेगा, बट वो चलते रहता है. एग्जाम आप कितने भी बार दे सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है, आप अनलिमिटेड एग्जाम दो. तो जो नेक्स्ट एग्जाम देने उसमें 3 महीने का टाइम है, वापस से आपको 3 महीने प्रिपेयर करना है और एग्जाम फॉर्म भरना है और आपको एग्जाम देना है.
1: ओके.
0: तो ये साइकिल चलता रहता है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं जाता है ये कर इसमें कि आपको एक एक साल रुकना है या फिर काफी टाइम रुकना है, तो वो प्रॉब्लम नहीं जाता. आपके पास ऑप्शन रहते हैं कि आप एग्जाम दे के ये कर लो.
1: ठीक है,
0: तो वापस से फिर मैंने 3 महीने पढ़ाई की, फिर नेक्स्ट टाइम मेरा हो गया क्लियर.
1: ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों?
0: ग्रुप 1 क्लियर हो गया.
1: ग्रुप 1 क्लियर हो गया, क्या बात है. ओके, ठीक है. ये तो बड़ी मतलब आपको बहुत खुशी हुई होगी डेफिनेटली.
0: एग्जैक्टली.
1: कितना रिलीफ भी मिला होगा.
0: एग्जैक्टली, कि वापस से वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना अभी.
1: सही बात है. और उसके बाद फिर आपने ग्रुप 2 की तैयारी?
0: हाँ, तो उसमें ऐसा होता है कि ग्रुप 1 क्लियर होने के बाद या फिर कोई भी एक वन ऑफ द ग्रुप क्लियर होने के बाद आप आर्टिकलशिप जो 3 साल मैंने बोला था जो सीए के अंडर अपने को करना है वो कर सकते स्टार्ट.
1: अच्छा.
0: लेकिन मैंने नहीं किया था.
1: Okay.
0: क्योंकि मैंने सीनियर्स से वगैरह सुना था कि सेकेंड ग्रुप को थोड़ा टाइम देना पड़ता है, उसको क्लियर कर लो तो फिर आर्टिकलशिप अच्छे से कर सकते. और आर्टिकलशिप में आपको प्रॉपर ऑफिस जाना होता है, मतलब 10 बजे जाओ, फिर आपको आने का टाइम डिसाइडेड नहीं है क्योंकि आपको काम है तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सीखना है ऑफिस में जाके प्रैक्टिकली पूरी चीज जो तुमने पढ़ा था वो सब अप्लाई करना है. तो ऑफिस के टाइम में ऑफिस में टाइम जाता है तो फिर आप पढ़ाई पर इतना फोकस नहीं कर पाते, तो इसलिए आप पहले एक ग्रुप सेकंड ग्रुप बचा है वो क्लियर कर लो. तो मैंने वो सोचा था बट शॉकिंगली वो नहीं ये हुआ, मैं वापस से फेल हो गया था.
1: ओहो, ओके.
0: हाँ, तो फिर मैंने एट द एंड सोचा कि नहीं इसको, क्योंकि मेरा टाइम डिले हो जाता है, क्योंकि अगर आपका वो समय चले जाता तो फिर आपका जो कंप्लीशन होता है एक कोर्स का वो लेट हो जाता है, तो फिर मैंने फिर बाद में रजिस्टर कर लिया आर्टिकलशिप के लिए।
1: अच्छा ठीक है।
0: हाँ तो फिर मैंने आर्टिकल,
1: आपने अपने ऑप्शंस खुले रखे, सोचा कि अब ये कर सकता हूँ तो आप आगे बढ़े।
0: एग्जैक्टली हाँ, फिर मैंने सोचा कि हाँ अभी फाइनली आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें अगर वापस से फेल हो गए तो वापस समय चले जाएगा, 6 महीने का समय आपका जा रहा है तो उधर आगे एक्सटेंड हो रहा है, क्योंकि आपका CA फाइनल भी जो लास्ट एग्जाम वो क्लियर करना है तभी आप डिग्री ले सकते हो, तो उसको डिले हो जाएगा आपको, वो जो फाइनल काटे वो डिले हो जाएगा, तो इसलिए अभी से रजिस्ट्रेशन करा लो तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं।
1: ओके तो आपने आर्टिकलशिप फिर शुरू
0: कर दी।
1: वो एक्सपीरियंस तो मुझे लगता है और ज्यादा को, जैसा आपने बताया अभी की जॉब भी करनी है और पढ़ाई भी करनी है, तो कैसा था अनुभव शुरुआत में कैसा था?
0: शुरुआत में तो अब आदत पड़ गई थी कि आपको पढ़ना ही है, और ऐसी जिंदगी की आदत पड़ गई थी कि आपको जहाँ इतनी मौज वाली जिंदगी नहीं, आपको पढ़ना है और ये करना है, तो ऐसे एटीट्यूड ही बन गया था
1: okay.
0: कि आपको बस यही आपकी जिंदगी यही लिमिट है, क्योंकि okay. आप फंस गए हो ना वहाँ पे, क्योंकि अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं कर रहे तो फैमिलीज के ताने या फिर अपने को खुद को लगता है कि हम कुछ आउटपुट नहीं दे पा रहे, तो इसलिए थोड़ा वो पढ़ना ही तो ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करने हैं और साथ में ऑफिस तो बहुत ज़रूरी, तो वो बहुत हेक्टिक होता था एक्चुअली, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब आपको ऑफिस में जाना है 10 बजे, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि ऑफिस में अपने हाथ से गलती हो रही तो फिर सीनियर्स की डांट खा लो, बॉसेस की डांट खा लो, क्योंकि वो बिजी रहते थे सर, मतलब जो हमारे चार्टर्ड अकाउंट जो इनकी प्रैक्टिस है, तो उनके काफ़ी जो काम से रहते थे क्लाइंट से मिलना वो सब चीज़ें, तो वो उसकी वजह से हाँ, तो हम और हम नए थे छोटे,
1: उम्र भी उतनी नहीं थी।
0: हाँ उम्र भी उतनी नहीं थी। आई गेस मुझे याद है कि मैं 1920 का होऊंगा जब मैंने आर्टिकलशिप स्टार्ट किया, वो टाइम में तो बच्चे मजे कर रहे होते मतलब कॉलेज लाइफ में, और आप प्रॉपर ऑफिस में जा रहे हो फॉर्मल्स पहन के, तो
1: 19-20 साल
0: की उम्र में, तो वो अलग ये रहता है आपका, अलग फील रहता है कि आप वो कर रहे हो
1: जी।
0: तो फिर मैंने मैनेज कर लिया, फिर मेरा सक्सेसफुली उसके बाद हो गया क्लियर एग्जाम।
1: ओके
0: सेकेंड ग्रुप मेरा कंप्लीट हो गया।
1: तो आपने ऑफिस को और पढ़ाई को दोनों को मैनेज किया। क्या बात, बाप रे। तो लेकिन एक बात मुझे और यहाँ पे आपको पूछनी है कि जैसे आपको कभी कभी लगता था कि आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं या बहुत हेक्टिक है, तो कोई चीज थी जो आपको उसमें मदद करती थी, क्या मदद करता था?
0: जैसे मैंने पहले बोला कि मैं एग्जाम मतलब पढ़ाई के टाइम में मेडिटेशन करता था, तो एक चीज मुझे हेल्प करती है, क्योंकि आपको तो चीजें पूरे माइंड से करने, बॉडी एग्जर्शन तो नहीं हो रहा है आपका, बस माइंड ब्रेन प्रॉपर होना चाहिए, वही से चीजें विचार आपके बनने चाहिए, एटीट्यूड बनना चाहिए, उसके लिए मेडिटेशन काफ़ी हेल्प करेगा। आप सुबह उठते ही सबसे पहले 10-15 मिनट मेडिटेशन कर लो, या फिर बीच बीच में भी आप थोड़ा एक जगह बैठ के रिलैक्स हो के आँखें बंद कर लो, आप एक कुछ म्यूजिक सुन सकते हो, मोस्टली आप वो मेडिटेशन वाला म्यूजिक सुनो जिसमें लिरिक्स ना हो, क्योंकि वो आपको याद रहेगी, लिरिक्स वाले अगर आप सुनोगे
1: तो लिरिक्स ही याद आएंगे
0: तो वो विदाउट लिरिक्स वाला जो मेडिटेशन सॉन्ग्स है वो सुनो, तो थोड़ा काम रहेगा, स्ट्रेस को थोड़ा मैनेज करने के लिए हेल्प होगा। कभी कभी तो आपका स्ट्रेस बहुत ओवर हो जाता है, बट ठीक है वो चीज़ें भी निकल जाती है, बिकॉज वो सस्टेन नहीं होता है, हम वो स्ट्रेस आपको थोड़ा रहता है थोड़ा, क्योंकि आपको कलीग्स वगैरह होते हैं उनके साथ थोड़ा बाहर चले जाओ घूम लो, थोड़ा कहीं और चले जाओ फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर लो, यस थोड़ा, तो वो फिर ये हो जाता है रूटीन में आ जाता है।
1: ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर स्ट्रेस है प्रेशर है तो वो अपने तक रखे, लेकिन उसको कैसे हमको डील करना है वो भी समझना जरूरी है।
0: Exactly.
1: क्योंकि नहीं तो जैसा आप बता रहे हैं CA का एग्जाम इतना टफ है, कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है, फिर आप एक सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाए तो आपको पूरा रीअपियर करना पड़ता है, तो बहुत ऐसे सर्कमस्टेंस में खुद पे डाउट होने लगे, इससे जरूरी है कि हम खुद को मोटिवेटेड रखें।
0: एग्जैक्टली
1: बहुत जरूरी है।
0: एग्जैक्टली क्योंकि एट द एंड आपको ही करना है, कोई कुछ भी बोले या फिर कोई कुछ भी करे, आपको खुद को ही मैनेज करना है सब चीजें।
1: बिल्कुल,
0: तो वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप खाली बैठ के मतलब आप स्ट्रेस लेके क्या आउटपुट क्या निकल रहा है आपका, आपका समय बर्बाद हो रहा है, आप खुद को तकलीफ दे रहे हो,
1: राइट
0: है ना, तो आपको एट द एंड वो स्ट्रेस से मूव ऑन होके आपको को खुश रखने के बहाने ढूंढ के आपको ये करना ही पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा।
1: ओके तो जब आपने आपका जॉब भी किया, साथ में आपने ग्रुप 2 भी क्लियर किया, तो उसके बाद क्या?
0: हाँ ओके, फिर आर्टिकलशिप जब आपकी स्टार्ट होती है उसके 2.5 साल के बाद आपको आप फाइनल का एग्जाम
1: अच्छा
0: हाँ, पहले तो आपको 2.5 साल में आर्टिकलशिप करना है, ऑफिस में रोज जाना है, ये कर ऑफिस के पूरे काम करने, कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यू डेट्स होते हैं, जैसे आप इनकम टैक्स का अगर पता करो तो इनकम टैक्स एक ड्यू डेट होती है इनकम टैक्स रिटर्न्स की, फॉर्म्स की, तो वो आपको अगर ड्यू डेट पे पूरा काम होना चाहिए तो फिर पेनल्टी इंटरेस्ट वगैरह क्लाइंट को लगता है, अगर आपको क्लाइंट को प्रॉपर सर्विस देना है तो वो चीज़ें आपको करनी पड़ती है, तो फिर आप आर्टिकलशिप में तो आपको तो करना ही पड़ता है, तो कभी कभी काफ़ी लेट तक आपको ऑफिस रह के काम करने हैं, तो वो ड्यूरिंग आर्टिकलशिप आपको ऑफिस प्रॉपरली करना है, साथ में आपको सीए फाइनल की पढ़ाई भी करनी है।
1: राइट, बिल्कुल।
0: वो ग्रुप टू तो अलग ये था, उसको आपको क्लियर करने के बाद फिर आप फाइनल में फोकस करना है।
1: इसमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं?
0: इसमें भी 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, बट उनका लेवल जो होता है वो थोड़ा एडवांस होता है, इट्स लाइक हाई लेवल नॉलेज होता है वो, तो वो आपको ये करना होता है, उसका सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, जैसे इंटरमीडिएट में भी वास्ट होता है, वो एज के हिसाब से लगता है, क्योंकि आप फाइनल में गए हो तो आर्टिकलशिप के, तो आपको नॉलेज भी आ गया तो उस हिसाब से वो ठीक है, बट सिलेबस काफ़ी वास्ट हो जाता है।
1: तो वो 8 सब्जेक्ट के पेपर एक समय देने होते हैं या यहाँ भी?
0: उसमें भी 2 ग्रुप का ऑप्शन है, ग्रुप 1 ग्रुप 2, आप दोनों भी दे सकते हो।
1: ओके।
0: कभी मतलब एक दे दो पहले फिर बाद में दो, तो मोस्टली मैंने सुन, मेरे मतलब जो दोस्त है यही ग्रुप देते हैं, क्योंकि आप आर्टिकलशिप कर रहे हो उसमें टाइम जा रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, फिर लास्ट में 2.5 साल के बाद मतलब आपको 6 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली लीव्स का ऐसे समझ लो कि आपको 6 महीने कोई भी ऑफिस में आप काम कर रहे हो तो बॉसेस आपको 6 महीने की छुट्टी दे देंगे पढ़ाई के लिए, मतलब डिपेंड ऑन फॉर्म्स 4 to 6 मंथ्स की वो लीव होती है जिसमें आपको फाइनल की पढ़ाई करनी है, क्योंकि वो सफिशिएंट टाइम नहीं है एक्चुअली स्पीकिंग, ड्यूरिंग आर्टिकलशिप भी आपको पढ़ना है।
1: ओके ठीक है, तो आपने फिर 2.5 साल मतलब मेहनत किया, और क्या सीखने को मिला है प्रैक्टिकल, आपको क्या सीखने को मिला जब आप आर्टिकलशिप कर रहे थे?
0: एक्चुअली मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही होती है, क्योंकि आप उसमें देखोगे एग्जाम अगर मैं टाइम कैलकुलेट करूँ तो ये 2 साल में कम्प्लीट हो जाएगा, लेकिन आर्टिकलशिप आपको 3 साल करना है, तो ये अच्छी ब्यूटी इसलिए क्योंकि आपको प्रैक्टिकल चीजें पता चल रही, आप बुक में पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं कि वो हमेशा हर चीजें एज इट इज अप्लीकेबल हो जाएंगे, वैसे नॉलेज प्रैक्टिकल है बट जब आप प्रैक्टिकली ऑफिस में जाते हो, क्लाइंट से बात करते हो और प्रैक्टिकली काम करते हो जो तुम्हें सीए बनने के बाद करना है, तो वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप गलती कर सकते हो, मेन चीज है कि आप ड्यूरिंग आर्टिकलशिप गलती करते, लेकिन एक बार आप प्रोफेशनल बन जाते हो आफ्टर क्वालिफाइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप गलती करने का जो स्कोप है आपका कम हो जाता है, बिकॉज आपको क्लाइंट को सर्विस देना है,
1: right.
0: या फिर आप जॉब में हो तो वहां पे भी आप गलती नहीं कर सकते हो, या प्रैक्टिस में वहां गलती नहीं कर सकते, क्योंकि उससे ऐसा हो सकता है कि आप क्लाइंट को पेनल्टी बैठ सकती है, क्लाइंट ना खुश हो जाए और आपका बिजनेस चले जाए, तो वो जो गलती करने का जो समय होता है ये 2.5 साल होता है।
1: ओके
0: okay. जो आप ऑफिस सीखते हो करके सीखते हो एग्जैक्टली
1: तो यहाँ मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगी कि अगर कोई एक 19 या 20 साल का बच्चा, कोई भी यूथ अगर जा रहे हैं जॉब के लिए, मान लीजिए आर्टिकलशिप है या कोई और जॉब है, अगर वो जा रहे हैं 19-20 साल की उम्र है, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया है, तो क्या उनको बोलेंगे जो उनका अनुभव बेहतर हो?
0: पहली बात तो आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, एटीट्यूड बनाना पड़ेगा एक प्रॉपर, कि आपको मतलब ऐसा ये पहले ही वैसे आपका ये बन गया होगा एटीट्यूड, क्योंकि पढ़ाई, क्योंकि आपको थोड़ा मौज वाली दुनिया से थोड़ा दूर रह के आपको ये करना है, क्योंकि काफी वर्क प्रेशर होता है ऑफिसेस में आर्टिकलशिप के ड्यूरिंग, काफी वर्क प्रेशर होता है और आपको करना ही पड़ता है, लाइक समवेयर बॉसेस को ऐसा रहता है कि आप देखो इतना काम दिया तो देखो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ऐसा ये रहता है थोड़ा, कभी कभी बॉसेस स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कभी रूड हो जाते हैं, फिर अपने को सुनना, बिकॉज अपन जूनियर है, अपन सीख रहे हैं, तो थोड़ा वो करना ही भी पड़ता है, हाँ वो टाइम पे थोड़ा बुरा लगता है क्या सुनना पड़ रहा है वो सब चीजें,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बट वो अच्छे प्रोफेशनल के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप डांट खा खा के ही और गलती करके ही इंसान आगे बढ़ता है, वो तो आप भरपूर गलती करो, मतलब ऐसे नहीं जानबूझ के गलती नहीं करो, बट नई नई चीजें करो, तो उससे फिर आपका उतना एक्सपीरियंस भी उसमें पड़ेगा।
1: ओके एंड अगर डांट सुनते भी हैं तो जैसा आपने कहा कि शुरुआत में होता है और उससे थोड़ा और स्ट्रांग होता है।
0: एग्जैक्टली जितना ऐसे बोलते ना, जितना हीरे को आप तराशोगे उतना वो चमकता है, इट्स लाइक अपन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हीरा बनने वाला है, जो अभी कोयले के खदान में है जो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, उसको वो तरस रहा है और उसको फाइनल मतलब क्लियर करके बाहर निकलना है, तो आपको जितना मतलब आप पिसोगे, जितना ज्यादा आप रगड़े जाओगे उतना ज्यादा आप चमकोगे बाहर आके। तो वो चमकने के लिए आपको जितना ज्यादा हो सके मतलब आप प्रेशर को हैंडल करो। हाँ थोड़ा वो होता है, बट आप दोस्तों के साथ रहते हो, कलीग्स रहते हो ऑफिस में, तो थोड़ा मैनेज हो जाता है। ठीक है कभी डांट सुन लो फिर भूल जाओ, बट अपना काम कंटिन्यू करो, आप नई नई चीजें सीखते जाओ, वो जरूरी। और थोड़ा
1: मतलब दिल से नहीं लगाए डांट को।
0: एग्जैक्टली।
1: और वो ये ध्यान रखें कि हमें ये बेहतर बनाएगा,
0: बेहतर बनाएगा। कभी मतलब बॉसेस को खुद से वो नहीं करते, वो तो उनको मतलब और ज्यादा ये बढ़ाने के लिए, वो
1: हमें आगे बढ़ाने के लिए।
0: हाँ आगे बढ़ाने के लिए।
1: ओके अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, जैसा कि कम्युनिकेशन आजकल कहते हैं बहुत जरूरी है, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हम बात करते हैं जब हम जाते हैं जॉब्स के लिए,
0: राइट।
1: तो क्या आपको लगता है कि कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए, या कम्युनिकेशन क्या मदद करता है हमें?
0: ओके कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आप प्रैक्टिस में जाओ या फिर जॉब में जाओ, तो आपको वहाँ पे जैसे अगर प्रैक्टिस में जा रहे हो तो आपको क्लाइंट को एक्वायर करना है, नए क्लाइंट्स को की सर्विस देना है, तो उनको आपको प्रॉपर कम्युनिकेट करना जरूरी है, तभी जाके आप वो न्यू क्लाइंट को एक्वायर कर सकते हो और उनको कंटिन्यू रख सकते हो। प्रॉपर कम्युनिकेशन जरूरी है। आप ऑफिस में जा रहे हो और आजकल आप देखोगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आर हायरिंग फॉर द गुड पोजिशन इन द फॉर्म कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में आप कोई कोई तो सीईओ सीएफओ लेवल पे चार्टर्ड अकाउंटेंट आज पोजीशन में है, तो वो पोजीशन में आप बैठे हो तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल तो बेसिक चीज है, वो होना ही चाहिए।
1: तो ये धीरे धीरे डेवलप होता है जब आप फील्ड में उतरते हो।
0: यस यस हाँ, जब आप फील्ड में उतर रहे हो मतलब आप आर्टिकलशिप कर रहे हो तो आपको क्लाइंट से कम्युनिकेट करना है, बॉसेस से कम्युनिकेट करना है, कलीग से कम्युनिकेट करना है, कभी कभी इंटर ऑफिसेस होते हैं उससे कलीग कनेक्ट करना है, तो वहाँ पे आप वो चीजें सीख जाते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स।
1: कि आपको भाषा कॉन्फिडेंस होना, आपकी भाषा अच्छी होना, और सम्मान देना
0: रिस्पेक्ट देना,
1: ये बहुत ज्यादा जरूरी है,
0: बहुत ज्यादा जरूरी होता है
1: जी। तो दोस्तों बिल्कुल आप इस मामले में अगर आप जानकारी रखते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करें हमारे व्यवहार में सम्मान सभी के प्रति जरूर हो, भाषा हम जितना हो सके पढ़ें सुनें, और साथ साथ आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आप कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में, हमें आगे बढ़ना है तो, और धीरे धीरे होता है, ये ना सोचें अभी नहीं है तो अरे क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे सीखते हैं आगे बढ़ते हैं। जैसा आपने बताया कि आर्टिकलशिप हुई आपकी, अब फाइनल फिर कैसे?
0: हाँ मैंने तो शुरुआत में फिर आर्टिकलशिप के एक साल तो मजे में ही चले गया, ये नहीं मतलब ऑफिस में जा रहे, बस ऑफिस में जा रहे और ये कर रहे, मतलब मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया था फाइनल का, बट फिर बाद में मैंने क्लासेस वगैरह लेना स्टार्ट कर दी और ऑनलाइन क्लासेस करता था मैं, पेन ड्राइव लेक्चर्स आते हैं अच्छे अच्छे बेस्ट फैकल्टीज के, आप गूगल करके आपको अच्छे अच्छे फैकल्टीज के हर सब्जेक्ट वाइज लेक्चर्स मिल जाएंगे,
1: ठीक है,
0: वो मैंने ऑर्डर करके फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया आफ्टर वन ईयर। वैसे आप भी वैसे कर सकते हो मतलब मैगजीन,
1: कहाँ से ऑर्डर करते हैं exactly?
0: हमने तो गूगल उनके वेबसाइट्स पे जाके, क्योंकि अभी काफी सीएज है जो पढ़ाते हैं,
1: अच्छा,
0: तो उनसे आप लेक्चर्स ले सकते हो,
1: ठीक है,
0: मतलब वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट के 8 लेक्चर्स लेके आप वो पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, लैपटॉप में आप वो पेन ड्राइव क्लासेस आते हैं, आपको मटेरियल भी प्रोवाइड हो जाता है क्लासेस से, और आप फिर पढ़ना स्टार्ट कर दो।
1: ओके
0: प्रत्येक हर सब्जेक्ट को 8 सब्जेक्ट के क्लासेस कंप्लीट कर लो। तो मैंने फिर वो क्लासेस करना स्टार्ट कर दिया, फिर आर्टिकलशिप मतलब सुबह मैं एक क्लास कर लेता था, शाम को एक क्लास कर लेता था, ऐसे 2-2 घंटे 3-3 घंटे का, ऐसे 3-4 घंटे अप्रोक्सीमेटली क्लास कर लो, फिर दिन भर ऑफिस कर लो, तो वैसे मैनेज करना पड़ेगा आपको,
1: ठीक है,
0: फिर क्योंकि आपको फिर लास्ट में जब आपकी एग्जाम है उसके 4 या 5-6 महीने 4-6 मंथ्स का मोस्टली ऑफिस में लीव मिलती, बस वही समय मिलेगा जिसमें आपको बस सेल्फ स्टडी करने,
1: जिसमें आपको पूरा समय सिर्फ पढ़ाई के लिए
0: करने, मतलब लेक्चर नहीं कर सकते, आपको लेक्चर ऑफिस मतलब कर रहे हो तो उसी ड्यूरिंग आप लेक्चर कर लो, फिर बाद में आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो।
1: ओके तो जैसा क्योंकि आपने बताया ग्रुप 1 ग्रुप 2 है, तो ग्रुप 2 का जब आपने क्लियर किया तो कैसा था, मतलब क्या लगा था आपको, क्या था आपके मन में उस वक्त? ग्रुप 2 जब आपका क्लियर हुआ, मतलब एकदम फाइनल एग्जाम जब क्लियर हुआ आपका,
0: ओके
1: तो कैसा लगा जब रिजल्ट आने वाला था, या जब रिजल्ट आया तो कैसा लगा?
0: वो तो शब्दों में तो नहीं बोल सकता, क्योंकि बेस्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ, बिकॉज द थिंग्स फॉर विच वी आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम लास्ट 4 मतलब 6 ईयर 4-5 टू 6 ईयर वी फाइनली अचीव इट,
1: 6 साल से आप एक ही चीज के लिए लगे मेहनत कर रहे हैं।
0: मेहनत कर जो संकल्प मैंने 9th-10th स्टैंडर्ड में लिया था कि आई हैव टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोफेशन में आना है, तो इतनी मेहनत की है, इतने सैक्रिफाइसेस किए हैं, फंक्शन सैक्रिफाइस, इवन आई विल से कि फाइनल का जब मेरा एग्जाम का प्रिपरेशन चल रहा था तो मैंने तो मेरा फोन तो मेरा फॉर 5 मंथ्स आया फोन स्विच ऑफ था मेरा, नो कनेक्शन विद नो फेसबुक नो सोशल मीडिया नथिंग, जस्ट ओनली पढ़ाई, बस बस पढ़ाई चल रही, सुबह उठ के बस वो जो सब्जेक्ट से वो पढ़ो, शाम को सोते वक्त भी वही पढ़ो,
1: बस वही,
0: कोई शेड्यूल नहीं, बिकॉज आपको फोकस रहना होता है, क्योंकि आप अगर सोशल मीडिया, फिर कैसे हुआ था शुरुआत में भी मैं थोड़ा इसमें मिस गाइड हो गया था कि मैं मोबाइल पे सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, इंस्टाग्राम चला रहा हूँ या फिर फंक्शंस अटेंड कर रहा हूँ, शादी में जा रहा हूँ, तो वहाँ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि आपको फुल फोकस्ड माइंड होना चाहिए, मतलब आपके माइंड को कोई नई चीज नहीं होनी चाहिए सोचने के लिए, देखने के लिए, तो आप देखो ही मत, सोचो ही, तो आप के पास कोई बुद्धि को सोचने के लिए, मन को सोचने के लिए कुछ होगा ही नहीं पढ़ाई के अलावा,
1: पढ़ाई बस पढ़ाई
0: बस पढ़ाई।
1: ओके,
0: तो वो आपको 45 मिनट्स मैंने पढ़ाई की थी, तो वो मुझे कभी कभी रोना भी आता था कि यार इतने दिन हो गए और कितना पढ़ना है, रिजल्ट पास आएगा फेल आएगा कैसे होगा क्या होगा, एग्जाम देने के बाद तो लग रहा था कि हाँ इस बार हो जाना चाहिए, बट शुरुआत में तो मेरा ये हो गया था, बट वही कि आपको कि मेहनत का रंग आ गया वापस, मतलब आप
1: बिल्कुल ऐसे मोमेंट को शब्दों में नहीं मैं
0: नहीं
1: कह
0: सकते,
1: आपके माता पिता और घर में भी सब लोग बहुत खुश हुए होंगे।
0: फर्स्ट टाइम मैंने पापा को रोते हुए देखा था, नहीं तो उनका कभी मैंने रोना नहीं सुना था, बट वो रो रहे थे, सभी लोग रो रहे थे, तो वो खुशी के आंसू थे,
1: बहुत प्राउड महसूस कर रहे।
0: एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा।
1: ओके, तो ये आपने कब क्लियर किया फाइनल एग्जाम सीए का, कौन से वर्ष में?
0: ये December 21 में मेरी एग्जाम हुई थी, अभी ये कोविड के ड्यूरिंग, फिर मेरा रिजल्ट 10th February आया था, वो डेट को तो मैं कभी नहीं भूल सकता लाइफ में, ड्यूरिंग माय होल लाइफ 10th February 2022
1: क्या बात,
0: तो रिजल्ट आया था और 1 बजे का समय था जब डिक्लेयर हुआ रिजल्ट, और मैंने लैपटॉप पे ओपन किया तो पास था, तो मेरे को तो आधे घंटे तक कुछ सूची, आई वॉज टोटल ब्लैंक, क्या हुआ मेरे साथ, मैं तो ऐसे शांत पड़ा था,
1: बिलीव नहीं हो रहा,
0: बिलीव नहीं हो रहा था। एग्जैक्टली,
1: बिल्कुल, आपने कड़ी मेहनत की है और आप डिजर्व करते थे, तभी आपको ये मिला है। और जैसा आपने बताया, कई बार हमें लग सकता है कि दूसरे लोग कुछ तो आराम कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो फल भी आपको मिलेगा।
0: एग्जैक्टली,
1: और दूसरे हो सकते हैं आज मस्ती कर रहे हैं तो उनको कल उनका कुछ और उन्हें करना हो, सबका जर्नी अलग अलग है, लेकिन आपकी मेहनत का फल आपको ही मिलता है। और डेफिनेटली बहुत कुछ आपने सैक्रिफाइस किया, डेडिकेशन से आपने एफर्ट किए, तब जाके आपने आप सीए बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने।
0: एग्जैक्टली, और उस दिन मुझे याद है कि उस दिन मैंने 400 से ज्यादा लोगों को रिप्लाईज किए कांग्रेचुलेशंस का, जो लोग मुझे जानते नहीं थे, जो बस मतलब ठीक है कोई नहीं ऐसे ही नॉर्मल है, मतलब कुछ वैल्यू नहीं है, उन सब लोगों का मैसेज आया कि कांग्रेचुलेशन, तो वो एक अलग सेटिस्फेक्शन रहता कि सब लोग याद कर रहे खुशी में।
1: राइट,
0: जब आप फेल होते तो कोई आपके साथ नहीं होता, 2-4 लोग होते बस, 2-4 फ्रेंड और फैमिली होती, बट आप पास हो जाते हो तो लोग क्राउड होते हैं आपके पास।
1: राइट, और यही ध्यान रखना होता है कि वो जो लोग साथ रहे हैं जब हमने नहीं कुछ अचीव किया था, वो उनका ध्यान जरूर रखना होता है।
0: Exactly,
1: हमेशा
0: हमेशा।
1: बहुत अच्छी बात है आपने कही, एंड मुझे लगता है हम अपने शो के अंतिम मोड़ पे भी आ गए। मैं आपको पूछना चाहूंगी कि इसके बाद आपके क्या प्लान्स हैं, और अगर आप सीए बन जाते हैं तो क्या होता है आगे?
0: ओके, सीए बनने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, तो मैं अगर आपको बताऊं तो हम फाइनल में जो 8 सब्जेक्ट पढ़ते तो हर एक सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइजेशन को ये करके आप उसमें और आगे पढ़ सकते हो, या फिर और आगे आप उसमें एक्सप्लोर कर सकते हो, वो एक ऑप्शन होता है कि आप कोई और डिग्री ले लो, जैसे MBA वगैरह कर सकते हो, या फिर अदर फॉरेन कोर्सेज भी वो भी कर सकते हो, मतलब आपको और कई और ऊंचे लेवल पे जाना है उसके लिए। लेकिन आपको करियर ऑप्शन बहुत अच्छे है, आप प्रैक्टिस में जा सकते हो, मतलब खुद का ऑफिस सेटअप कर दीजिए और आप वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट रिलेटेड प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, वो एक अच्छा ऑप्शन होता है। सेकंड ऑप्शन है जॉब कर सकते हो, जॉब की वैकेंसी काफी है इंडिया में या फॉरेन में भी, आज इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर किया जाता, तो ऑल ओवर इंडिया काफी वैकेंसीज है कंपनीज के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, तो वहाँ आप जॉब कर सकते हो। मेरे केस में मैंने जॉब का ऑप्शन लिया कि शुरुआत में मैं जॉब कर दो, फिर बाद में और समय है सोचने के लिए, जॉब्स काफी है, जॉब कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप अदर फील्ड भी ये कर सकते हो,
1: चूज कर सकते हैं। मतलब आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज
0: है,
1: लेकिन हाँ बस ये है कि आपको मेहनत करनी है, एग्जाम देने हैं, उसके बाद आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस
0: ऑप्शन। यस, मतलब आपको पढ़ते रहना है एक्चुअली, कोई भी प्रोफेशन में चले जाओ, जहाँ पे आप पढ़ना बंद करते हो तो आप नहीं बढ़ सकते, आपको पढ़ना ही पड़ेगा,
1: सीखना जरूरी है।
0: सीखेगा तो ही बढ़ेगा।
1: बिल्कुल। और यहाँ दोस्तों मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगी कि अगर आपको कोई जानकारी चाहिए इससे ज्यादा जो आपको नहीं मिल पा रही है ऑनलाइन, तो आप रेडियो मधुबन पर हमें मैसेज कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको वो जानकारी उपलब्ध कराने की। रेडियो मधुबन का नंबर है 94 14 15 14 15, यानी कि 9

0: कंट्रीब्यूट करने, खुद के लिए कंट्रीब्यूट करने, बहुत ही इंपॉर्टेंट समय होता है जिसमें आपको जो आपका हर एक कदम इंपॉर्टेंट है, आपको एक प्रॉपर स्टेप लेना चाहिए। आपका एक गलत कदम आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकता है या फिर उसको एक, क्योंकि आफ्टर 25-30 आप नहीं कर सकते चीजों को जो चीजें आप तब कर सकते थे जो 18-25-24 वाले पीरियड में। इसलिए ये समय में जो आप चीजें कर रहे हो तो आप एक बार खुद को पूछियो कि इज इट मेकिंग एनी वैल्यू एडिशन टू अस, मतलब कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है क्या
1: या हमारे जीवन में,
0: जीवन में वैल्यू एडिशन, या मतलब अपन कौन से रास्ते की तरफ जा रहे हैं। एक अच्छाई वाला रास्ता जहाँ पे फ्यूचर ब्राइट है, अच्छी अच्छा फ्यूचर है, वहां जा रहे, या फिर अपन खुद को डिस्ट्रॉय तो नहीं करे कि फ्यूचर में अपनी लाइफ कैसे, आप वो सोचिए कि आप 30-40 के बाद कैसे होंगे, आप सपने देखिए कि आपको 30-40 के बाद क्या होना चाहिए, आपको कुछ दिनों के बाद कैसे होना चाहिए। तो वो चीज़ों विजन रख के आप काम कीजिए, क्योंकि आपको फिर जिंदगी बहुत बड़ी है अगर अच्छे से जिन, और एक हर एक को एक वैल्यूएबल लाइफ मिली है, इसलिए वो पूरे जिंदगी को पूरा जीना ही सबसे बेस्ट होता है। आप कोई कुछ भी करो, जरूरी नहीं कि आप सीए ही करो या फिर डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आप कुछ भी करो, जो भी प्रोफेशन में आप हो, आप उसको फुल फ्लेज और प्रॉपर स्टेप लो, वो इम्पोर्टेंट है कि आप,
1: मतलब कल को ये ना लगे कि अरे ये कर लेते
0: exactly.
1: थोड़ी और मेहनत कर लेते
0: exactly. वो हमें भी कभी कभी लगता है कि कोई चीज हमने नई चीज या मिस आउट हो गई, तो अभी लगता है कि वो चीज कर लेना था, वो समय तो चलेगा, अभी तो कुछ नहीं है, क्योंकि आप जब फिर वो मेहनत करने के बाद जो हासिल करते हो उसका जो फ्रूट होता है, वो उसका एक्सपीरियंस जो होता है, मतलब आप मरते दम तक नहीं भूल पाओगे। और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करने का तो अलग ही महत्व होता है, वो चीजों को ध्यान रख के आप बस लाइफ को जो बाकी करना ही के
1: नहीं, बहुत आपने बहुत सरल तरीके से अपनी ये सभी बातें कही, और आपने साथ साथ मोटिवेट भी किया और प्रैक्टिकल बातें भी बताई कि हाँ ऐसा नहीं है कि आराम से हो रहा है, लेकिन हाँ आप मोटिवेटेड हो तो आप कर सकते हो,
0: लाइफ को जियो, भी मस्ती करो, दोस्तों के साथ घूमो फिरो, वो भी जरूरी है, क्योंकि वो उम्र तो वापस नहीं आने वाली, क्योंकि 25-30 के बाद आप दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाओगे लेकिन उतना आपकी हेल्थ साथ नहीं देंगी। वो सब करते हुए आप करियर को भी एक फोकस रख के आगे बढ़ो, तो वो बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी, युवा काल में बहुत जरूरी,
0: बहुत जरूरी है।
1: दोस्तों अपना रास्ता खुद चुने, और कई तरीके के रास्ते आपके सामने आएंगे, हो सकता है आपके दोस्त भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको चुनना है आपका भविष्य, और इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि कई युवा साथी हैं दोस्तों बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत उनके पास हुनर है, लेकिन कई बार नशे की आदत, कई बार इस तरह की आदतें पड़ जाती हैं युवा काल में, जो जीवन के ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पल हैं वो ऐसे ही गुजर जाते हैं। और दोस्तों वैसे तो कहते हैं कभी भी देर नहीं होती बदलाव के लिए, तो इसीलिए अगर आपको आज भी ये महसूस हुआ है तो आज ही ये बदलाव लेकर आइए अपने जीवन में, एक करियर, एक विजन, खुद से प्रश्न कीजिए, जैसा आपने कहा कृष्णा हमारे साथ हैं और उन्होंने कहा खुद से प्रश्न कीजिए कि आप अपना भविष्य कैसा देखना चाहते हैं, तो जवाब मिल जाएगा कि क्या जॉब किस तरह का आप करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं।
0: एग्जैक्टली,
1: थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड यूथ को गाइड करने के लिए, बहुत सरल तरीके से हमसे आपकी जानकारी शेयर करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू रेडियो मधुबन, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी यूथ से कनेक्ट होने के लिए, इसके लिए थैंक यू सो मच।
1: एंड थैंक यू आप सभी को भी दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रेडियो मधुबन 90.4 FM पर। अगर आप और भी जुड़ना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, तो रेडियो का नंबर है 94-14-15-14-15, यानी कि 9414151415। फिलहाल देते हैं आपसे इजाजत, रेडियो मधुबन 90.4 FM से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर। डायल कीजिए 101 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: अम्बे तू है जगदम्बे तू माँ। ये खूबसूरत गीत के बाद मैं मोना वापस आई हूँ।
1: अरे वापस नहीं नहीं, आज की खूबसूरत शाम शुरू करने आ चुकी हूँ।
0: गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। मैं हूँ आपकी दोस्त मोना, मेरे साथ है
1: रूहानी।
0: हम दोनों साथ ही लेकर आएंगे कुछ अमेजिंग जानकारी, फिर कहानी, सवाल भी पूछेंगे आपसे जिसका जवाब आप देंगे
1: 9414151515 पर।
0: साथ ही साथ कविता भी होगी और आपके लिए बेहतर से मजेदार सी हमारे जंगलों में घूमने फिरने जानवरों से जुड़ी कहानी। लेकिन छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त है और इस दौरान आपके लिए एक बेहतरीन सा गीत भी तैयार है। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,
1: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम।
2: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

राम सियाराम इस खूबसूरत गीत के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। आज विशेष दिन है, आज का दिन है 19 मई। और आज विशेष क्यों है? क्योंकि भारत के विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक घराने के टाटा समूह के संस्थापक का मृत्यु दिवस भी है। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में जमशेद जी ने जो योगदान दिया वो असाधारण और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने भारतीय औद्योगिक विकास का मार्ग ऐसे समय पर प्रशस्त किया जब उस दिशा में केवल यूरोपीय देश, विशेष तौर पर अंग्रेजों की कुशल समझ थी। इंग्लैंड की अपनी प्रथम यात्रा से लौटकर जमशेद जी टाटा ने चिम्पोकली में एक तेल मिल को कताई बुनाई मिल में परिवर्तित करके औद्योगिक जीवन का सूत्रपात किया। टाटा साम्राज्य के जनक जमशेद जी टाटा द्वारा किए गए अनेक कार्य आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं और विस्मित भी करते हैं। भविष्य को भापना, अद्भुत क्षमता के बल के साथ स्वनिर्भरता, औद्योगिक प्रबलता आदि सपना लेकर भारत को एक नई दिशा प्रमाणित किया, नई दिशा दी। उन्होंने वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराई और राष्ट्र को महाशक्ति के रूप में बनाने का मार्ग अग्रसर किया। मैं बात कर रही हूँ जमशेद जी टाटा की।

0: वेल दोस्तों, आज का सवाल,
1: भारत का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट मोनास्ट्री कहाँ पर स्थित है?
0: आपके सामने ऑप्शन है ए सारनाथ उत्तर प्रदेश, बी तवांग अरुणाचल प्रदेश, सी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। सही जवाब देना
1: 9414151515 पर देना।
0: चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हिंट थोड़ी देर बाद जरूर देते हैं।

0: महाप्रसाद कार के द्वारा निर्मित इस प्यारी सी गीत को हम आप तक पहुंचा रहे थे। लेकिन जमशेद जी टाटा के इन अभूतपूर्व कारनामे को एक कविता के तौर पर पहुंचा रहे। नमन उस दूरन देशी को जिसने था यह स्वप्न सजाया, भारत में उद्योग का सूरज जिसने पहले उगाया।
1: रंग भेद की चोट सही पर अपमान को हथियार बनाया, बदले में ताज बनाकर भारत का मस्तक ऊंचा उठाया।
0: सोचा था जो 100 वर्ष आगे वही नींव आज तक चलती है, लोहे इस्पात की इस भट्टी में भारत की तकदीर बदलती है।
1: दान वीरता और देशभक्ति का वह अनुपम उदाहरण थे, टाटा नाम के इस वृक्ष के वे ही असली कारण थे।
0: देश को विज्ञान और शिक्षा का जब जब उसने ज्ञान दिया, उस कर्मयोगी जमशेद जी को मेरा शत शत प्रणाम, रेडियो मधुबन का शत शत प्रणाम हम सब ने कर दिया। चलिए उस महान व्यक्तित्व को हम सैल्यूट करते हैं और इस कविता के साथ साथ आज का सवाल भी आप तक पहुंचाते हैं।
1: भारत का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कहां पर स्थित है?
0: आपके सामने ऑप्शन है ए सारनाथ,
1: उत्तर प्रदेश,
0: बी तवांग,
1: अरुणाचल प्रदेश,
0: सी धर्मशाला,
1: हिमाचल प्रदेश।
0: वेल, कहने को तो ये तीनों स्थान पर मोनेस्ट्री, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, लेकिन इनमें से एक ही जगह पर भारत का सबसे बड़ा मोनेस्ट्री विद्यमान है। झटपट जवाब दीजिए, ये जगह भारत के एकदम एक्सट्रीम पूर्वी प्रांत है। यदि सही जवाब का हिंट आपको मिल चुका है तो झटपट कॉल कीजिए, नंबर है हमारा
1: 9414151415 कीजिए
0: 9414151415 पर कीजिए। सुनते रहिए,
1: मुस्कुराते रहिए
0: और श्री गणेश श्री गणेश।

0: जयदेव जयदेव। आत्मदर्शन की बात है चंद्रशेखर आजाद की एक सुंदर सी कविता। चंद्रशेखर नाम सूरज का प्रखर उत्ताप हूँ मैं, फूटते ज्वालामुखी सा क्रांति का उद्घोष हूँ मैं। कोश जख्मों का लगे इतिहास के जो वृक्ष पर, चीखते प्रतिरोध का जलता हुआ आक्रोश हूँ मैं।
1: विवश अधरों पर सुगलता हुआ गीत हूँ विद्रोह का मैं। नाश के मन पर नशे जैसा चढ़ा उन्माद हूँ मैं। गुलामी का कफन उजला सपन स्वाधीनता का, नाम से आजाद हर संकल्प से फौलाद हूँ मैं।
0: आंसुओं को तेज मैं तेजाब का देने चला हूँ। जो रही कल का तक पराजय, आज उस पर जीत हूँ मैं। मैं प्रभंजन हूँ घुटन के बादलों को चीर देने, बिजलियों की धड़कने का कड़कता संगीत हूँ मैं।
1: सिसकियों पर अब किसी अन्याय को पलने न दूंगा, जुल्म के सिक्के किसी के मैं यहाँ से चलने न दूंगा। खून के दीपक जलाकर अब दिवाली ही मनेगी, इस धरा पर अब दिलों की होलियां जलने न दूंगा।
0: राजसत्ता में हुए मदहोश दीवाने लुटेरो, मैं तुम्हारे जुल्मों के आघात को ललकारता हूँ। मैं तुम्हारे दंभ को पाखंड को देता चुनौती हूँ। मैं तुम्हारी जात को, तुम्हारी जो कमजोरियां हैं इसको भी ललकारता हूँ। चलिए एक गीत आप तक पहुँचा रहे विशेष शहीद चंद्रशेखर आजाद।

0: वेल दोस्तों, पुनः आज का सवाल दोहरा देते हैं। आज का सवाल है,
1: भारत का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट मोनास्ट्री कहाँ पर स्थित है?
0: ऑप्शन है आपका सारनाथ, उत्तर प्रदेश, तवांग,
1: अरुणाचल प्रदेश,
0: धर्मशाला,
1: हिमाचल प्रदेश।
0: चलिए झटपट जवाब दीजिए। नंबर है हमारा
1: 9414151415 पर।
0: और साथ ही साथ ये विशेष जानकारी जरूर सुन लीजिए, नो टू टोबैको।
2: ये तंबाकू क्या होता है?
3: अरे तिकु नहीं पता क्या? इसमें पता है, लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
4: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
2: अच्छा तो फिर मेरे नंबर कम आए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
3: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
5: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।
6: माय नेम इज लेफ्टिनेंट जनरल दत्तात्रेय शिकटकर। मैं एक सैन्य अधिकारी हूँ, निवृत्त सैन्य अधिकारी। मेरा ये निवेदन है यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में कि माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, हमें मान्य है कि हम इस पूरी पृथ्वी को बगीचा नहीं बना सकते हैं। माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, बस कांटे ही कुछ कम कर दिए, निकले जिधर से हम। एक कांटा, एक कुरीति, एक कुप्रथा, एक गलत बात अगर यहाँ से निकल जाएगी तो ये माउंट आबू जो है, यहाँ का क्षेत्र है, पूरा राजस्थान है, ये स्वर्ग हो जाएगा। और यही मेरा निवेदन है, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना है।
0: वेलकम बैक दोस्तों। चलिए आज सुनाते हैं एक और कहानी, घमंडी जिराफ की। वैसे तुमने जिराफ देखा?
1: हाँ।
0: कहाँ पर?
1: टीवी में।
0: ये बात तो सच है। सचमुच भारत में जिराफ नहीं है, ये आपको बता देते हैं। हाँ, जू में शायद एक आध जू में हो, पर हर जू में भी नहीं है। और एग्जैक्टली जेब्रा का भी है, जेब्रा भी भारत में नहीं है। और सेम चीज यदि आप कहोगे कि अमेरिका वाले कभी शेर देखे, तो आपको बता दें उन्होंने कभी शेर नहीं देखा, क्योंकि अमेरिकन जंगलों में शेर नहीं पाए जाते। यस, ये बात आपको बता दिए हैं। और चलते हैं आपको अब कहानी सुनाते घमंडी जिराफ की।
7: में जा रहा था।
8: आज का मौसम बहुत ही सुहाना है, आज तो मैं तालाब पर जी भर के नहाऊंगा। मुझसे पहले तालाब पर जंगल के जानवर ना पहुंच जाए। अगर वो मुझसे पहले तालाब पर पहुंच गए तो वो तालाब का पानी गंदा कर देंगे, इसलिए मुझको जल्दी जल्दी तालाब पर जाना होगा।
7: और लंबू जिराफ जल्दी जल्दी तालाब की ओर बढ़ने लगा। दूसरी तरफ हाथी को बहुत तेज बुखार था।
8: बैदराज, मुझको बहुत तेज बुखार है, मैं बड़ी मुश्किल से पैदल चलकर आपके पास आया हूँ। अब मेरे पैरों में इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। इसीलिए बैदराज, मुझको ऐसी जड़ी बूटी दो जिससे मैं अपने पैरों पर चलकर जा सकूं और मेरा बुखार भी खत्म हो जाए।
9: आप चिंता मत करो गजराज, आप यहाँ से चलकर जाने की बात कर रहे हो, मैं तो आपको ऐसी जड़ी बूटी दूंगा जिससे आपका बुखार छू मंतर हो जाएगा और आप यहाँ से चलकर नहीं बल्कि दौड़कर जाओगे। शिष्य नंदू, तुम जल्दी जाओ काली पहाड़ी पर, वहाँ पर एक पौधा उगता है और उस पर इस समय नीले पुष्प लगे होंगे, तुम उस पौधे से दो नीले पुष्प तोड़कर ले आओ।
10: अभी लेकर आया बैदराज।
7: और नंदू नीला पुष्प लेने के लिए काली पहाड़ी की तरफ चल दिया। नंदू काफी जल्दी में जा रहा होता है और दूसरी तरफ से वो जिराफ भी नदी पर नहाने के लिए जल्दी में आ रहा होता है। जिराफ को दूर से नंदू चूहा आता दिखाई पड़ जाता है, लेकिन वो फिर भी उसे नजरअंदाज कर देता है और उसको एक जोरदार लात मारता है।
10: अरे मार दिया रे, कितनी जोर की लात मारी है, मार दिया।
7: और वो खड़ा होकर जिराफ के पास आया।
10: क्यों बेलंबू, तुझको दिखाई नहीं देता क्या? तूने मुझको इतनी जोर की लात मारी है, जरा सा जमीन पर देखकर भी चल लिया कर।
7: और जिराफ घमंडी आवाज में बोला,
11: अरे मेरी गर्दन आकाश को चूमती है, फिर भला मैं जमीन पर देखकर क्यों चलूं? ये तो तुमको ऊपर देखकर चलना चाहिए। क्या तुमको मेरा इतना बड़ा शरीर दिखाई नहीं दिया?
10: अरे दिखाई तो दिया था, लेकिन तूने मुझको लाज जानबूझकर मारी है। इसका बदला मैं तुझसे जरूर लूंगा किसी दिन, याद रखना मेरी बात को।
11: अरे तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को याद रखने की मुझको जरूरत नहीं है, भला तू मुझसे क्या बदला लेगा? तेरा पूरा शरीर मेरे पैर की ठोकर के बराबर भी नहीं है, और तू बात करता है मुझसे बदला लेने की। चला जा, वरना दूसरी ठोकर में तू अपने प्राण दे बैठेगा।
7: और नंदू वहाँ से चुपचाप चला गया।
10: एक दिन मैं भी इस लंबू जिराफ को अच्छा सबक सिखाऊंगा। इससे पहले मुझको गजराज के लिए वो नीले फूल लेकर आने होंगे पहाड़ी से।
7: और वो पहाड़ी पर पहुंचकर वहां से नीले फूल लेकर बैद्यराज के पास आ गया, और बैद्यराज ने हाथी को वो फूल खिला दिए।
10: बैद्यराज, जब मैं नीले पुष्प लेने के लिए जा रहा था, तब मुझको रास्ते में लंबू जिराफ मिल गया था, और उसने मुझको जानबूझ कर लात मारी थी। बैद्यराज, अब आप कुछ उपाय बताओ जिससे मैं अपना बदला पूरा कर सकूं।
9: नंदू, हमको बदला नहीं लेना चाहिए, बदला लेने से बेहतर है हम खुद ही बदल जाएं। अब तुम कभी किसी से भी बदला लेने के बारे में नहीं सोचोगे। हमारा काम बीमार जानवरों की सेवा करना है, ना कि बदला लेना।
7: वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी हाथी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है।
11: अरे बैद्यराज, देखो मैं तो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, अब मेरा शरीर भी ठंडा हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बैद्यराज, जो आपने मुझको उस तपती ज्वाला से बाहर निकाला।
9: हाँ, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे अब तुम 2 दिन तक ठंडे पानी से मत नहाना, नहीं तो बुखार अपनी वापसी कर लेगा। अब तुम पूरी तरह से ठीक हो और अब तुम जा सकते हो।
7: जिराफ पेड़ों से पत्ते खा रहा था। तभी वहां पर एक बकरी आई। उसने जिराफ को पत्ते खाते हुए देखा।
12: अरे सुनो जिराफ भाई, कुछ पत्ते मेरे लिए भी तोड़ दो, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं।
11: अरे भूखे हैं तो मैं क्या करूं? तेरे हाथ भी हैं और तेरे पैर हैं, तो खुद तोड़ ले। अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए जो मैं एक बकरी को पत्ते तोड़ कर दूं।
12: अरे जिराफ भाई, इसमें बुरे दिन की क्या बात है? अगर तुम मेरे लिए थोड़े से पत्ते तोड़ दोगे, तुम्हारा क्या घट जाएगा? मेरे बच्चे तुमको दुआ देंगे।
11: अरे दुआ और दवा की जरूरत तो तुमको है, उसे तुम अपने पास रखो और मुझे आराम से खाना खाने दो। यहाँ से चली जाओ, वैसे भी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला।
12: ये जिराफ सच में बहुत घमंडी है, एक दिन ऊपर वाला इसका घमंड जरूर तोड़ेगा।
7: और बकरी वहाँ से चली गई। एक दिन भालू काका बैद्यराज के पास आए।
10: अरे बैद्यराज, मैं आपसे कई बार बुखार की दवाई लेकर जा चुका हूँ, लेकिन मेरा बुखार ठीक नहीं हुआ है। जब तक आपकी बुखार वाली दवाई का असर मेरे शरीर में रहता है, तब तक बुखार शरीर से गायब होता है, और जैसे ही दवाई का असर खत्म हुआ, तभी बुखार अचानक हमला कर देता है, फिर पूरा शरीर आग में तपना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसी दवा दो जिससे मेरा बुखार उतर जाए और फिर कभी ना आए।
9: अच्छा हुआ तुम आज आ गए, पूरी रात मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मैंने तुम्हारी नाड़ी को पकड़ लिया है।
10: तो जल्दी बताओ, तुमने मेरी नाड़ी में क्या पता किया? कुछ समझ में आया तुमको क्या परेशानी है?
9: हाँ, मैं अच्छे से समझ गया। तुम्हारे शरीर में प्लेट कम पड़ रही हैं, इस वजह से तुमको बुखार आ रहा है। इसके लिए मैं तुमको एक फल बताता हूँ, तुम्हारी प्लेट पूरी तरह से बढ़ जाएंगी और फिर तुमको बुखार नहीं आएगा।
10: बैद्यराज, शीघ्र बताओ कौन सा है वो फल?
9: उस फल का नाम है कीवी।
10: कीवी? ये कैसा फल है? इसके बारे में तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मैंने तो ऐसा कोई फल नहीं खाया और न कभी देखा।
9: हाँ, ये बहुत कम पाए जाते हैं। हमारे जंगल में मुश्किल से पूरे जंगल में तुमको 10-5 पेड़ ही मिलेंगे, और इस फल के बारे में कोई जानता भी नहीं है। वैसे ये खासकर बीमारियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके बारे में हम वैद्य ही जानते हैं। इसलिए तुमको एक सुबह और एक शाम दिन में 2 कीवी फल खाने होंगे, फिर तुमको कभी बुखार नहीं आएगा और तुम्हारी प्लेट भी बढ़ जाएंगी।
10: ठीक है, अब मैं कीवी के फल की तलाश करता हूँ।
9: तुमको ज्यादा तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। जंगल में जो पुरानी पहाड़ी है, तुम उस दिशा में चले जाओ। वहाँ रास्ते में तुमको एक बड़ा सा वृक्ष मिलेगा, उस पर बहुत सारे कीवी लगे होंगे।
7: और भालू काका उस दिशा में चले गए, और काफी देर चलने के बाद उनको वो कीवी का पेड़ मिल गया।
10: यही है वो कीवी का पेड़, बैद्यराज ने इसी पेड़ के बारे में बताया था। अब मैं इस पेड़ से फल कैसे तोड़ूं? ये कीवी फल तो बहुत ऊंचाई पर लगे हैं, इसके लिए तो मुझको बहुत लंबे और बड़े जानवर की आवश्यकता पड़ेगी। एक काम करता हूँ, हाथी को ले आता हूँ, पर उससे तो लंबी जिराफ की गर्दन है। मैं जिराफ को ले आता हूँ, हाथी की तो वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है।
7: और भालू जिराफ को लेने के लिए चला गया।
10: अरे जिराफ भाई, तुम जरा मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, मुझे बहुत तेज बुखार है।
11: अरे तो तुम मेरे पास क्यों आए हो? तुम जाकर बैदराज के पास जाओ, वही बुखार की दवाई देते हैं।
10: दवाई तो उन्होंने बता दी है, बस उसको तोड़ कर लाना है, जिसमें मुझको तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम मेरी मदद कर दो तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा।
13: पहले तुम मुझको दवाई के बारे में बताओ, तब मैं सोचूंगा कि तुम्हारी मदद करनी है या नहीं करनी।
10: वो दवाई है एक कीवी फल, हमारे जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ है, ये उस पर लगता है।
13: पर मैंने तो कभी ऐसे फल के बारे में नहीं सुना है और ना अपने जंगल में ऐसा कोई फल देखा है।
10: हाँ, इस फल के पेड़ हमारे जंगल में न के बराबर हैं और उस फल के बारे में सिर्फ बैदराज को ही पता है, उन्होंने मुझे बता दिया। अगर तुम उस फल को तोड़कर मुझे दे दो तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा।
11: ठीक है, तुम मुझे उस फल के पास ले चलो।
7: भालू और जिराफ दोनों कीवी के पेड़ की तरफ चल दिए।
11: अच्छा तो ये पेड़ है उसका? अरे इस पर तो बहुत सारे फल लगे हैं, पहले मैं इसमें से एक फल को चख तो लूं, कैसा है?
7: फिर उसने उनमें से एक कीवी फल को खा लिया।
11: अरे भाई, खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट है। एक काम करता हूँ, अब मैं इस भालू को इसमें से एक भी फल नहीं दूंगा और सारे फलों को मैं ही खाऊंगा। ये फल एक बीमार जानवर को स्वस्थ कर सकता है, तो सोचो एक स्वस्थ जानवर को कितना ताकतवर बना देगा, इसलिए इस फल पर अब मेरा ही अधिकार होगा।
10: अरे जिराफ भाई, अब तुमने एक दो कीवी फल टेस्ट कर लिए हैं, जरा दो चार फल नीचे की तरफ तो दो, जिससे मैं अपनी बीमारी ठीक कर सकूं।
11: अरे भालू भाई, मैं किसी को फल तोड़कर देने वाला नहीं हूं, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो खुद तोड़ लो, वैसे भी मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं।
10: अरे जिराफ, तू इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है? तूने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझको फल तोड़कर देगा। देख, मैं बीमार हूँ और बीमारी में किसी के साथ मजाक नहीं करते। मुझे दो चार फल तोड़कर दे दे, जिससे मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझ पर थोड़ा सा तरस खा तू।
11: अरे इसमें तरस खाने की क्या बात है, मैंने तुमको कोई रोक रखा है? तुम खुद तोड़ लो, वैसे भी मैं तुमको तोड़कर देने वाला नहीं हूँ।
10: अगर मैं खुद तोड़ पाता तो मैं तुझको यहाँ पर क्यों लेकर आता? वैसे जिराफ, तू ये मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है। देख लेना, अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ ऊपर वाला जरूर बुरा करेगा।
11: अरे भालू, जरा अपनी आंखें और बड़ी करके देख, मुझसे ऊपर जंगल में कोई नहीं है, मैं ही सबसे ऊपर हूँ।
7: और भालू वहाँ से उदास होकर चला गया। और ऐसे ही एक दो दिन बीत गए और जिराफ अब प्रतिदिन सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम कीवी फल खाने लगा, जिससे जिराफ का शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब उससे ज्यादा चला भी नहीं जा रहा था और वो एक जगह बैठ गया।
11: अरे ये मुझे क्या हो गया, अब तो मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? कोई है जो मेरी मदद कर दे, इस जंगल में कोई है जो मेरी मदद कर दे, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, कोई मेरी मदद करो।
7: उसकी दर्द भरी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी।
11: कोई मेरी मदद करो, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, कोई मेरी मदद करो।
10: अरे गजराज, ये जंगल में किसकी दर्द भरी आवाज गूंज रही है? मानो जैसे कोई काफी बीमार हो या कोई जख्मी हो। चलो, हमको देखना चाहिए।
11: हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, हमको देखना चाहिए, हो सकता है किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। चलो भानु भाई।
7: और वो दोनों वहाँ पर पहुँच गए जहाँ से दर्द भरी आवाज आ रही थी।
10: अरे यहाँ पर तुम बैठे हो, पता नहीं इस ओर से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, तुमको पता है कौन चिल्ला रहा था?
11: वो आवाज मेरी ही थी। मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया है और मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ।
10: तुम रुको, अभी मैं बैदराज को लेकर आता हूँ। गजराज, अब तुम इसका ध्यान रखना, बैदराज को लेने जा रहा हूँ।
7: और भालू बहुत जल्दी में बैद्यराज के पास आया।
10: बैद्यराज, आप जल्दी चलो, जिराफ की हालत बहुत ज्यादा खराब है।
7: बैद्यराज और भालू काफी जल्दी में जिराफ के पास आए। बैद्यराज ने जिराफ को इधर उधर से देखा तो उन्होंने उसकी बीमारी का पता लगा लिया।
14: अब तुमको रोने की जरूरत नहीं है जिराफ, मैं आ गया हूँ, मैं अभी तुम्हारी बीमारी का पता लगाता हूँ। अरे जिराफ, तुम्हारा तो शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है और तुम्हारा खून भी बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया है, जो तुम्हारे दिमाग तक नहीं पहुंच पा रहा है। अगर तुम्हारा आज इलाज नहीं किया गया तो तुम्हारी कल मृत्यु हो सकती है।
10: बैद्यराज, आप इस रोग की शीघ्र दवाई बताओ, मैं उसको तुरंत लेकर आऊंगा।
14: इसके लिए तुमको नदी से हरे रंग के पुष्प तोड़कर लाने होंगे। उन पुष्प को खाते ही जिराफ एकदम से ठीक हो जाएगा। तुम जल्दी जाओ, तब तक हम जिराफ का यहाँ ख्याल रखेंगे।
7: और भालू जल्दी नदी पर जाकर दो हरे रंग के पुष्प ले आता है।
10: बैद्यराज, मैं पुष्प ले आया, आप इनको जल्दी से जिराफ को खिला दो।
7: फिर बैद्यराज ने जिराफ को वो हरे रंग के पुष्प खिला दिए और कुछ ही देर में जिराफ अपने पैरों पर खड़ा हो गया।
11: तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज तुमने मेरी जान बचा ली। मैं बताता हूँ बैद्यराज, मेरी ये तबीयत किस वजह से खराब हुई है। मैंने बहुत ज्यादा कीवी फल खा लिए थे। मुझे लगा था कि ये बीमार जानवर को ठीक कर सकते हैं, तो मुझको तो ये बहुत बलशाली बना देंगे। इसी लालच में मैं बहुत सारे कीवी फल खा गया। मुझको आज अफसोस हो रहा है कि मैंने भालू को एक कीवी फल भी तोड़ कर नहीं दिया और आज उसने मेरी इतनी सेवा की है। मैं खुद की नजरों में ही बहुत शर्मिंदा हूँ।
14: तुमको इतने कीवी फल नहीं खाने चाहिए थे। इन्हें दिन में ज्यादा से ज्यादा एक या दो फल खाए जाते हैं और तुमने इनको तीनों टाइम भरपेट खा लिया। इससे तुम्हारी बॉडी का शुगर काफी बढ़ गया। अब तुम एक साल तक कीवी फल नहीं खाओगे। अगर तुमने कीवी फल को एक साल से पहले गलती से भी खा लिया तो तुम्हारी बीमारी वापसी कर लेंगी। इसलिए तुम कीवी फल से दूर रहना, इसी में तुम्हारी भलाई है।
11: हाँ, मैं कीवी फल से बहुत दूर रहूंगा, लेकिन मैंने भालू की मदद नहीं की थी। आज मैं भालू की मदद करूंगा।
7: और फिर उसने एक एक कीवी फल तोड़कर भालू और हाथी को दिया।
11: भालू काका, जब तक आपकी दवा चलेगी तब तक मैं आपको हर रोज एक कीवी फल तोड़ कर दूंगा और मैं सभी जंगल वासियों से विनम्रता के साथ बात करूंगा और कभी भी घमंडी अंदाज में नहीं रहूंगा। और आज से मैं अपने घमंड का त्याग करता हूँ।
14: अच्छा हुआ तुमने अपने घमंड और अहंकार का आज त्याग कर दिया, नहीं तो तुम्हारा घमंड तुमको एक दिन इससे भी ज्यादा बुरी हालात में धकेल देता। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुमने समय रहते अपने घमंड को स्वीकार कर लिया और उसको त्याग भी दिया। इसके लिए मैं सभी जंगल वासियों की तरफ से तुमको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और अब से पूरा जंगल तुमको घमंडी जिराफ नहीं।

0: वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़े हैं उड़ान कार्यक्रम के साथ। और अभी आपने कहानी मस्त भरी सुनी, और अब कुछ गीत से पहले एक और बात। 19 मई को एक और ऐसे शख्सियत की का जन्म हुआ जिसने विशेष किताब लिखा, और वो किताब थी भारत की, जिन्हें साहित्य अकादमिक पुरस्कार भी मिला, साथ ही साथ पद्मश्री और पद्मभूषण से भी सम्मानित किया गया। कवि तो थे ही, कहानीकार, सूत्रकार और साहित्यकार भी रहे। मैं बात कर रही हूँ रस्किन बॉन्ड की। जंगलों में की बातें करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था, और जंगल हमारे जिम कॉर्बेट के आसपास ये रहते हुए बहुत सारी कहानियाँ इन्होंने भारत में ही लिखी, और जो आज फिल्म के तौर पर भी जानी जाती है। रस्टी या अंकल केन के नाम से ये चरित्र पार्थ, जो इन्होंने मशहूर चरित्र इन्होंने लिखे, और साथ ही साथ इनके उपन्यास रूम ऑन द रूफ बहुत प्रचलित है, साथ ही साथ उपन्यासकार, संस्मरण और कविताएं भी इनकी बहुत बहुत बहुत पसंद चर्चित है। तो चलिए, आज इनका बर्थडे है तो सेलिब्रेट करते हैं इनका बर्थडे और इन्हें शुक्रिया अदा करते हैं, और सवाल पूछते हुए आगे अगले गीत की तरफ चलते हैं। सवाल है,
1: भारत का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट मोनास्ट्री कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है सारनाथ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद

0: पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए, मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: वेल दोस्तों, जाने का वक्त हो गया, लेकिन उससे पहले आज के सवाल का जवाब देने का भी वक्त आ चुका है। भारत का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री कौन सा है? आपके सामने हमने ऑप्शन रखा था, ए सारनाथ उत्तर प्रदेश, बी तवांग अरुणाचल प्रदेश और सी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। जाते जाते एक श्रोता का कॉल जरूर आ गया, सुन लेते किन्होंने कॉल किया। नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार, दीदी जी, मदन लाल बोल रहा हूँ।
1: हाँ मदन लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाते जाते ही सही, लेकिन आप अभी जुड़ चुके हैं रेडियो मधुबन के उड़ान कार्यक्रम में। बताइए सर, आज के सवाल का कौन सा जवाब है?
2: जवाब हिमाचल प्रदेश।
1: हिमाचल प्रदेश धर्मशाला
2: जी।
1: बट क्योंकि आखिरी वक्त है तो इसी कारण मैं आपको बता दूं, नहीं, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में नहीं। हालांकि सबसे बड़ी संख्या में तिब्बत से बुद्धिस्ट और इवन जो हमारे दलाई लामा जी हैं वो भी वहां पर आकर सेटल हुए, लेकिन उत्तर अरुणाचल प्रदेश तवांग में भारत का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री बनाया गया। तो सही जवाब तवांग है। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है कल भी आप हमारे साथ रहेंगे। उड़ान कार्यक्रम आप सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, थैंक
2: यू, आवाज बहुत अच्छी है दीदी जी, ओम शांति।
1: थैंक यू। चलिए दोस्तों, आज जाने का वक्त आ चुका है, कल मिलने का वादा है ठीक शाम
3: 6 बजे।
1: तब तक के लिए उड़ान से कहना चाहेंगे
3: गुड बाय,
1: सुनते रहो,
3: मुस्कुराते रहो
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर हमें बहुत खुशी मिलता है क्योंकि अपना गांव और अपना अंचल पूरा मगरा हो चाहे नाड़ी हो चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज सभी वर्ग से मिलते हैं क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा और सामुदाय के लिए। थेमरा रेडियो थेमर द्वारा और थेमर वास्ते एक कार्यक्रम होता है क्योंकि सरकार का जो मंच है आसपास गांव में जो गतिविधि हो रहा है सबको खुशी शांति आनंद ज्ञान मिले। तो इस कार्यक्रम को लेकर हम जब भूला में पहुंचे, भूला ग्राम पंचायत जो कि पिंडोरा ब्लॉक में आता है, तो सभी वर्गों से मिलने के पश्चात आज हम वंदे मातर माता और बहनों को भी मिले, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे जो हमारा लीडर है भाई साहब है तो उनको स्वागत करते हैं। भूला का एक निवासी है जो कि सभी को परिचय दे। सर आपका परिचय दीजिए।
1: मेरा नाम मीठा लाल है।
0: अरे वाह, मीठा भाई हमारा, मीठा लाल भाई। आज तो मीठा बनाएगा हमारा कार्यक्रम को, मीठे बच्चे का हमारा मीठा लाल भाई हमारा साथ इस कार्यक्रम को सजा रहे हैं। मीठा भाई आप अपना बताइए, आपका परिचय दीजिए, कहाँ से और कितना दिन से ये लोग को देखभाल करते हैं।
1: मेरा नाम मीठालाल है और ये काम 12 मार्च चालू हुआ था और आज 28 मार्च तक ये चालू है।
0: जी जी, बहुत अच्छा। और ये कार्यक्रम खासकर जो सरकार का जो मंच है सबका हाथ में काम मिले, कोई पलायन नहीं करे गांव छोड़ के, क्योंकि गांव को डेवलपमेंट करने के लिए सरकार का जो मंच है पूरा गांव में जो भी कार्य होता है समाज सेवा व जनहित में वो काम होता है। तो मैट इस कार्यक्रम को सजाते हैं और बहुत सारे माताएं आते हैं, उनको रोजगार देते हैं, उनका नामांकन भी करते हैं और हाजिर भी भरते हैं और उनका पैसा ठीक टाइम पर मिले, इस तरह कार्यक्रम में सभी सहयोग लेते हैं। माताओं का आवाज सुनेंगे। पहले हमारा जो मीठालाल भाई, गांव का भूला गांव का बड़ा नाम बहुत इतिहास प्रसिद्ध है जहाँ एक बार विदेशी लोग को भगाए थे, भूला का इतिहास है ना, तो उसका ऊपर में थोड़ा बताइए क्या जानते हैं।
1: सर ये अपने 1900 की बात है, 1921 की। उस टाइम अंग्रेजों के खिलाफ भीलों ने लड़ाई लड़ी थी, लगान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो कम से कम 150 के आसपास भील शहीद हो गए थे यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ। तो अंग्रेजों को फिर भीलों के सामने वो टिक नहीं पाए और भीलों ने लगान नहीं दिया और यहाँ से भागना पड़ा भूला छोड़कर।
0: ये बहुत, जब मैं आ रहा था रास्ता में उसका यादगार एक स्टेच्यू बना है।
1: हाँ,
0: विषम डकिया नाम है उस
1: शहीद स्मारक। शहीद स्मारक, शहीद स्मारक लीलूडी बदली अपने तेजाराम भील और उसियाराम भील ने लड़ाई लड़ी थी, उनके नेतृत्व में लड़ी अपन लड़ाई बहुत पुरानी 1921 में लड़ी गई थी और भीलों ने एकीकरण आंदोलन चलाया था।
0: तो ये इतिहास और इसको जब सुनते हैं पूरा उसका जो गांव प्रति, हमारा गांव में हम सरकार, गांव में हम सरकार है, चाहे विदेश कितना भी हो लेकिन अपना सरकार का मानना पड़ा और वो लोग भागना पड़ा और उसका इतिहास आज स्मारक के रूप में जैसे अपना मीठालाल भाई मीठे शब्द में बताए। और ये जो भूला गांव कभी भूल नहीं पाएंगे, उसका नाम जैसे रखा भूला कोई अबूला में आएगा तो भूलेंगे नहीं। और हमें बहुत खुशी लगा और माताओं का आवाज सुनेंगे, अभी पानी फानी पी रहे, अपना गला को साफ कर रहे और अच्छा लगेगा क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो सामुदायिक का आवाज न हो। और इनको कोई पूछने के लिए नहीं आता, आज मीडिया वाला आए उनका बात को रख रहे। मीठा लाल भाई हमारा मीठे मीठे शब्द में पूरा यहाँ का गांव का इतिहास। और इस गांव में कौन सा समाज है, जैसे भील तो होंगे ही और कौन सा समाज?
1: भील और गरासिया,
0: दोनों भील और गरासिया दोनों का लगभग समाज का एक ही जैसे त्योहार वगैरह शादी ब्याह में सब एक ही जैसे ना, थोड़ा अलग
1: एक ही जैसा है,
0: एक ही जैसा,
1: एक ही जैसा है,
0: कोई अंतर नहीं,
1: कोई अंतर।
0: तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारा मीठे लाल भाई को। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अच्छा, सभी को नाम का साथ धन्यवाद।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमें बहुत खुशी लग रहा है, आज माताओं का आवाज नहीं हो तो नौरागा में आए तो हमारे आए लोग गीत गाएंगे, सभी साथ देंगे, एक ही नहीं सभी गाएंगे, सबको नाम का साथ धन्यवाद देते हैं। चलिए हमारा साथ इस कार्यक्रम को सबको धन्यवाद जो कि हमें इस कार्यक्रम को सजाने के लिए, हमारा साथ एक बहन जी भी है तो उनको स्वागत करते हैं। बहन हम साथ देंगे, आपका साथ हम है और एक गीत गाएंगे, जो भी आपको पसंद है एक गीत बोलेंगे।

बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजा सभी। सुंदर प्रस्तुति के लिए अचानक में आए, कोई सूचना नहीं था, फिर भी माताओं के पास जो भाव है, भावना है, सही में देखने को मिलता है, जो भोलापन है, मासूम अच्छा लगता है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति होगा, लेकिन अल्प विराम के बाद।

0: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा साथ एक बहन जी भी है, तो उनको स्वागत करते बहन और एक गीत गाएंगे।
2: मैं ओ ने मोरू

0: ఒకటే
1: ఒకటే.

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें, धन्यवाद।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: बहुत बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं। नाम तो मुझे मालूम नहीं, फिर भी नाम जो गाए हैं, आपका नाम बताओ, क्या नाम है?
1: लेला।
0: और आपका? थावरी। अरे वाह, थावरी देवी और थावरी देवी और थावरा थावरी, बहुत सारे नाम हम सुनते हैं, तो थावरी भी हमारा देवी इस कार्यक्रम सजा। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। ये तक भूला का जो नारी की आवाज, माताएं बहन अपना आवाज को रखे, सीता देवी भी इस कार्यक्रम को सजाए, सभी को एक एक नाम का साथ धन्यवाद देते हैं। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय, सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।

0: नमस्कार, प्रणाम, आदाब और एक बहुत ही खूबसूरत मखमली शाम की राम राम मेरे सभी प्यारे श्रोताओं को। सूरज दादा अब ढल चुके हैं अरावली की पहाड़ियों के पीछे और मौसम में एक हल्की सी ठंडी रंगत घुलने लगी है। मई का यह महीना, ढलती हुई है शाम और आपका ये पसंदीता रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। इसमें शाम को और भी हसीन और भी यादगार बनाने के लिए आपका दोस्त, आपका हम सफर आपके साथ जुड़ चुका है, लेकर आपका अपना बेहद चहेता शो खुशी के नगमे दिल की बातें। कहते हैं कि दिन भर की भागदौड़ और थकान के बाद अगर शाम को कुछ बीते जमाने के सुरीले तराने और दिल को छू लेने वाली बातें मिल जाए तो दिल का कोना कोना खुशी से चहक उठता है। आज 19 मई की इस महफिल में मेरे तरकश में मोहम्मद रफी साहब की मखमली आवाज भी है, किशोरदा की मस्तानी शरारत भी है और लता दीदी के सुरों का वो जादू भी है और साथ में हमारे कॉलर भी है, सुनते हैं उनसे। हेलो,
1: हेलो जी, नमस्कार बाबू जी।
0: नमस्कार बुरीलाल जी, कैसे है?
1: बात मत पूछो, गर्मी से बेहाल है।
0: क्या बात है, गर्मी ने तो बड़ा बेहाल कर रखा है।
1: गर्मी में तो जिंदा जिंदा रहना भी मुश्किल है, लेकिन जो भी हवा खाते हुए।
0: हाँ, लेकिन अब शाम
1: की मजे में महलों की रानी बन करके और पंखे की आवाज लगा करके बैठ करके मजे ले रहे हैं। सर,
0: क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। तो अभी हल्की हल्की हवा शुरू हो गई है ना, अभी हल्की हवा शुरू हो गई शाम होते ही।
1: आपका प्रोग्राम का भी मजो ले रहे हैं।
0: सही है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया।
1: प्रोग्राम में गाना हो जाएगा?
0: बिल्कुल हो जाएगा।
1: आप मान कर जो हमारी सारी गर्मी दूर हो जाएगी। सुनने वाले सुनाने वाले की सबकी गर्मी उठ जाएगी।
0: तो कौन सी फरमाइश है आज आपकी सुनने की?
1: अरे गाना तो मान मत पूछो, गाने के लिए मैं भी हाजिर हूँ, मेरे घर वाले भी हाजिर हो और आप भी हाजिर हो।
0: ठीक है, चलो फिर
1: ढूंढ के लाता हूँ।
0: हाँ,
1: बात मत पूछो, बात मत पूछो।
0: चलो ठीक है, मैं बात ही नहीं पूछता हूँ फिर तो, मैं बात पूछता ही नहीं हूँ।
1: घर का क्या कह रहे हैं आपको सुनाना है उसको।
0: गाने के बोल क्या है?
1: गाने के बोल है, दो साल पहले
0: सौ साल पहले
1: तुमको प्यार था।
0: हाँ,
1: हमको तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा।
0: वाह, क्या बात है, बोलिए कहाँ से गाने ढूंढ।
1: क्या कह रहे हैं, क्या गाने के बोल है। ऐसे बोल सुन करके मेरा दिल खुश हो जाता है और सभी साथियों का भी दिल खुश हो जाएगा।
0: तो ये गाना मुझे बताइए भूरीलाल जी, किसके लिए गाना चाहते हैं, मतलब किसकी फरमाइश के लिए आपने फरमाइश की है, किसकी खास ऐसा कोई
1: घर वाले मेंबर है ना?
0: हाँ,
1: ये सब अपने खुशी की लहर में घूमते हैं।
0: क्या बात है, वाह वाह वाह।
1: घूमने के साथ में सुनते हैं,
0: क्या
1: सुनने के साथ में क्या खाना बाद में खाते, पहले गाना सुनते हैं।
0: वाह, क्या बात है,
1: क्या करो मैं, और रस लोग नहीं बनाई है आपको, खाना भी तो भी आ रहे हो लेकिन रस लोग नहीं छोड़ करके फिर पहले खाना खाने के लिए आ रहे हो। क्या सुनीता मुनिका और यशु यश कलाल है या मेरा भांजा है और मेरा वो बच्चा है, उसका बच्चे का नाम है नीलेश है, खेलीलाल है।
0: हाँ,
1: ये सभी मेरे साथी मेरे बच्चे परिवार है ना।
0: हाँ,
1: ये सुनने के लिए इतने आतुर है की आप ऐसे ऐसे नजमे सांस से ला करके ढूंढ के निकाल के देते हो और तुम्हारा साथी होता कौन है वो गाना सुना देता है।
0: चलो फिर तो जितने भी हमारे रेडियो में सुन रहे हैं, आपके घर वाले बच्चे सब जो भी सुन रहे हैं, सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार और आपका भी ये जो हाँ चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच बुरिया जी, आपकी ये फरमाइश का गाना हम जरूर से प्ले करेंगे, कोशिश करेंगे आपका ये गाना बजाने के लिए।
1: ठीक है सर, ठीक है सर।
0: जी हाँ, तो ये थे हमारे बुरीलाल जी। तो हम कहाँ थे, जी हाँ हम ये थे कि कहते हैं कि दिन भर की भागदौड़ और थकान के बाद अगर शाम को कुछ पीते जमाने के सुरीले तराने और दिल को छू लेने वाली बातें मिल जाए तो दिल का कोना कोना भी खुशी से चहक उठता है। जी हाँ, आज 19 मई की महफिल में मेरे तरकश में मोहम्मद रफ़ी साहब की मखमली आवाज़ भी है, किशोरदा की मस्तानी शरारत भी है और लता दीदी की सुरीले वो जादू भी है जो सीधे आपकी रूह में उतर जाएंगे। तो बस अपने दिल की रेडियो को ट्यून कर लीजिए सिर्फ और सिर्फ रेडियो मधुबन पर। आज बातें होंगी दिल से दिल तक और गूंजेंगे वो नगमे जो आपके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान सजा देगा। चलिए आज के सुरीले सफर का आगाज करते हैं सुनहरे दौर के इस बेहद खूबसूरत तराने के साथ। एंजॉय कीजिए ये अगला नगमा सिर्फ रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं, तो पूरी दुनिया आपके अनुकूल हो जाएगी। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम बीती बातें, पुरानी यादें और गुजरे हुए कल में, कल के पछतावे में इतना खो जाते हैं कि सामने खड़ी सुनहरी मंजिल हमें दिखाई नहीं देती। इसलिए तो किसी ने क्या खूब कहा है कि शीशा पीछे देखने के लिए होता है, लेकिन रास्ते हमेशा सामने की ओर होते हैं। बात जब सुनहरे दौर की हो तो साल 1955 की फिल्म श्री 420 का जिक्र जरूर होता है। शंकर जयकिशन जी का संगीत और हसरत जयपुरी साहब का वो जादुई बोल जिन्हें सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, इस गाने की सबसे बड़ी खूबसूरती फिल्म में ये गाना नंदीरा जी पर फिल्माया गया था, जो राज कपूर साहब को एक नई चकाचौंध भरी दुनिया की तरफ बुला रही थी। लेकिन अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो ये गाना हमें हिम्मत देता है कि पीछे मुड़कर मत देखो, बस आगे बढ़ते रहो। और इस गाने की ये पंक्तियां मुझे बहुत सुकून देती है। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। जी हाँ, आए गए मंजिलों की निशान, लहरा के झूम चुका आसमान, लेकिन रुकेगा ना ये कारवा। कितनी बड़ी बात है, मंजिल आती जाती रहेगी, आगे पीछे लोग मिलते बिछड़ते रहेंगे, पर ये जिंदगानी का कारवा कभी नहीं रुकना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो इसी तरह से प्यारे भरे, मतलब पुराने गानों की अगर हम बात करते हैं तो कितनी कुछ सीखी होती। हम इससे पहले भी मैंने कहा कि पुराने गाने और आज के ज़माने के गाने, तो पुराने मतलब आज के ज़माने गाने तो कहीं कुछ है ही नहीं इसके सामने। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। जो अगला सेगमेंट, अगला जो गाना है वो है हमारे भूरीलाल जी की पसंद का। उन्होंने जो फरमाइशें दी है अपने घर वालों के लिए, सुनते ही वो प्यारा सा नगमा, 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था। जी हाँ, रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

लोग ये कहते बिन बेटे के कैसे वंश चलेगा, पर मैं कहता बिन बेटी के दूल्हा कैसे बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित मनीष शर्मा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते।

वेलकम बैक दोस्तों। इस दिल के तारों में मधुर झनकार तुम्ही से है और ये हसीन जलवा ये मस्त बहार तुम्ही से। कितनी प्यारी लाइनें हैं दोस्तों। जी हाँ, अगर हमारे इस रेडियो शो को सुनने वाले श्रोता हो तो ये सारी मस्त बहार आप ही से है। जी हाँ बिल्कुल, और मधुर झनकार भी आप ही से है। बहुत ही प्यारा अभी हमने ये नगमा सुना, फिल्म जब प्यार किसी से होता है, इसके म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन जी, इसे लिखा था हसरत जयपुरी साहब ने, इसे गाया था हमारे प्यारे लता मंगेशकर, सुर मलिका और मोहम्मद रफ़ी साहब जी ने। जी हाँ दोस्तों, अब अगले नगमे की तरफ बढ़ते हैं और अगला नगमा है बहुत ही प्यारा, जो है सन सन सन वो चली हवा। चलिए सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

सन सन सन वो चली हवा, लुक चुप कान में कुछ कहा। जी हाँ, 1959 का मास्टरपीस कागज के फूल। जी हाँ, ये वही गाना है आशा भोसले जी जब गाती है सन सन सन वो चली हवा लुक चुप कान में कुछ कहा। कितना प्यारा इमेजिनेशन है ना, एक तरफ हवा की सरसराहट है, दूसरी तरफ दिल में उठते नए अरमान, जैसे कि इन बोलों में लिखा है, नए अरमान जागे, नए तूफान जागे। ये गाना हमें बताता है कि जब दिल में नई उम्मीदें जागती है तो बाहर का मौसम भी साथ झूमने लगता है। इस गाने की एक और लाइन बहुत गहरी है, धोखे पे धोखा खाया जाए, यानी दिल चाहे कितने भी ठोकर खा ले, लेकिन जब ये मस्ती भरी हवा चलती है तो पुरानी सारी बातें भूल कर ये फिर से मुस्कुराने लगता है। और सच तो यह है कि जब तक दिल में अरमान जिंदा है तब तक हम भी जिंदा है। बिल्कुल, क्या ही मतलब, कितना कुछ कह जाती है ये लाइनें जब इसे गीतकार लिखते हैं अपनी अंदाज में, तो ज़िंदगी के बड़े बड़े सबक सिखा जाती है ये गाने। चलिए दोस्तों, वक्त है अगले नगमे की ओर बढ़ने का। जो अगला नगमा है, बैक टू बैक दो सॉन्ग हम बजा रहे हैं हमारी फरमाइशों के। एक तो है हमारे मदन लाल जी जो कल गाना गा रहे थे, हस्तू हरदम खुशिया या गम। जी हाँ, ये हम प्ले करेंगे। और हमारे सुरेश जी ने जो बहुत ही प्यारा एक नगमा हमें पेश किया, नफरत की दुनिया को छोड़कर। जी हाँ, बहुत ही भावुक ये सॉन्ग है दोनों। तो चलिए सुनते हैं ये बैक टू बैक दो नगमे और मज़े लेते हैं गानों के।

वेलकम बैक दोस्तों। अभी हमने बहुत ही प्यारे प्यारे दो गाने बैक टू बैक सुने हैं, नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में, और एक और गाना जो है हस्तू हरदम। दोनों ही जिंदगी के सबब को इतना अच्छी तरह से सिखाते हैं। पहला गाना जो हमने सुना हस्तू हरदम खुशिया गम, फिल्म लुटमार का ये गाना, राजेश रोशन जी इसके संगीतकार थे, गीतकार अमित खन्ना, गायक थे किशोर कुमार साहब। जी हाँ, हस्तू हरदम मूवी की अगर हम जो हमने अभी गाना सुना उसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो छोटे से बच्चे के ऊपर फिल्माया गया था जिसके लिए ये बोल लिखे गए थे, जहाँ पे हमारे देवानंद साहब जी इस बच्चे को ये गाना सुना रहे हैं, गीत सुना मतलब गा करके बता रहे हैं कि तू हमेशा हंसता रहे जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि उस मतलब जब फिल्माया गया था, जब बताया जाता था कि लड़के ने अपनी माँ के खून को होते हुए देखा था और बड़ा घबरा गया था, इसलिए वो देवानंद जी उसे हौसला दे रहे हैं कि किसी से भी तुझे घबराना नहीं है, डर डर के तुझे जीना नहीं है, बिल्कुल हिम्मत से आगे बढ़ते रहना है। बहुत ही प्यारी सीख गाने के रूप में एक बाप अपने बेटे को दे रहे। दूसरा गाना हाथी मेरे साथी मूवी का गाना, म्यूजिक डायरेक्टर इसके लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, गीतकार आनंद बख्शी साहब, और इसके गायक थे मोहम्मद रफ़ी साहब। और मोहम्मद रफ़ी साहब की ये जो दर्द भरी आवाज़ जब इस गाने में आई है तो हर कोई इस में रोया है। जी हाँ, जब ये मूवी में ये जब गाना बजता है तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके आंखों में से आंसू ना निकला हो। जब गाने के इसके एक बोल है जहाँ पे लाइन है कि जब जानवर को इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में वैशी उसे सारे, फिर जब एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है तो चुप क्यों है संसार। कितना इसमें समझने की बात है, क्योंकि आज के समय पर हम भी कई ऐसे जगह है जहाँ पर हम जानवरों की हत्या कर देते हैं, है ना, लेकिन उसके लिए कोई कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन अगर कोई जानवर गलती से भी किसी इंसान को मार दे तो उसे क्या कहते हैं, वैशी कह देते हैं। तो बहुत ही प्यारी लाइनें हैं, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। चलिए दोस्तों, बहुत ही प्यारे गाने अभी हम सुन रहे हैं, और आज के सारे ही गाने हमारे जिंदगी को कुछ ना कुछ ऐसी सबक देने लायक बने हैं। तो रेडियो मधुबन का ये जो शो आज हम कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कहीं ना कहीं हम अगर इसे कुछ ना कुछ लोग जो सुन रहे हैं इनको कुछ ना कुछ सीखने को मिले, कुछ इससे वो प्रेरित हो, तो हमारा ये शो सफल है। बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर, क्योंकि यहाँ पे अब थोड़ा सा प्यार की बातें भी हो रही है। चलिए सुनते हैं अगला गाना, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं, एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवरलास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: दोस्तों, आज के दौर में जब प्यार का इजहार करने के लिए हजारों इमोजीज और मैसेजेस हैं, तब भी रूह को सुकून वही पुराने अंदाज देते हैं जहां हुजूर कहकर बात शुरू होती है। एक ऐसे ही पाक और पाकीज़ा नगमा आज मेरी यादों के संदूक से निकलकर बाहर आया था। साल 1962 की फिल्म थी सन ऑफ इंडिया। निर्देशक महबूब खान साहब की इस फिल्म में नौशद साहब का संगीत था और बोल लिखे थे शकील बदायूं ने। जब ये तीनों दिग्गज साथ आते थे तो समझ लीजिए कि इतिहास रच जाना तय था। गीता दत्त जी की आवाज़, लता मंगेशकर जी भी है इस गाने में, लता मंगेशकर जी ने भी और मोहम्मद रफ़ी साहब जी ने भी इसमें आवाज़ दी है। जब गीता दत्त की आवाज़ थी, मेरे हुजूर तुमसे प्यार है, तुम्हारे इश्क का खुमार है, तो ऐसा लगता है मानो हवाओं में मोहम्मद गुल गई हो। इस गाने में जो इज्जत और तहजीब है, वही तो उस गोल्डन एरा की असली पहचान है। इस गाने की एक ये लाइन मुझे बहुत पसंद है, नज़र नज़र में एक सुरूर है, नज़र नज़र में एक सुरूर है, तुम्हारी सादगी का नूर है। वाकई प्यार में चेहरे की चमक से ज़्यादा सामने वाले की सादगी मायने रखती है। तो अगर आप भी अपने किसी खास के साथ ये शाम बिता रहे हैं, तो इस गाने से बेहतर तोहफा और क्या होगा। चलिए दोस्तों, वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। फिर हम कल मिलेंगे आपसे इसी समय ठीक 8 बजे। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो मधुबन, क्योंकि अगला जो कार्यक्रम है वो है सहज स्वास्थ्य। तो आप सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। हम लेते हैं आपसे विदा। गुड नाइट, शबा खैर, थैंक यू सो मच।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। स्वास्थ्य को सहज बनाने की मुहिम इतनी कठिन नहीं है। अनेक लोग ये सोचते हैं कि स्वास्थ्य साधना एक कठिन साधना है, खासकर तब जब स्वास्थ्य व्यक्ति को देता है, तब उस स्वास्थ्य में वापस लौट आने के लिए, खोए हुए स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने के लिए बड़ी मशक्कतें करनी पड़ती है। बेहतर तो यही होगा कि अगर हम अपने स्वास्थ्य को खराब होने ही न दें। सहज स्वास्थ्य कार्यक्रम में हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने और बिगड़े हुए स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए क्या आसान उपाय किए जा सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी, जो भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में इनका लंबा अनुभव है। पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं और भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्र आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर इनके परिवार के अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ लेने के और स्वास्थ्य लाभ देने के इस क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिए हैं। आइए आज बातचीत करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, हम पिछली कड़ी में बात कर रहे थे कि व्यक्ति वाष्प स्नान यानी स्टीम बाथ लेता है तो उसके क्या फायदे होते हैं और कब कब इसे करना चाहिए, ये बात समझ में आती है। आजकल ये एक शब्द जो प्रचलन में आता है, लोग स्पा ट्रीटमेंट्स इत्यादि के लिए जाते हैं और वहां पर ये स्टीम बाथ लेके आते हैं, और प्राय युवाओं में भी बड़े शहरों में ये चीज देखने को मिलती है। स्पा में जाके ऐसे वापस निकलते हैं वहां से जैसे वो तरोताजा होके नव तरुण बनकर बाहर आ रहे हैं, ऐसा आभास वो लोगों को बताते भी हैं। और खासकर सोशल मीडिया पे ऐसे रील्स और इत्यादि पोस्ट जब देखते हैं तो लोगों को लगता है कि वाह, सही इतना फायदा करता है। आजकल इस स्टीम और स्पा में जो ट्रीटमेंट्स मिल रही हैं, जो वेलनेस चीजें कहते हैं लोग, उसमें स्टीम के साथ एक और चीज कही जाती है, वो है सोना। तो आज मैं सोना में गया था, जब पहली बार मैंने सोना शब्द सुना था, मैंने बोला सोना सोना क्या होता है, या तो ये सोने का सोना है या सोना चांदी वाला सोना है। बोलते नहीं नहीं, तुम नहीं जानते ये सोना क्या होता है, तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
1: सोना बात का जो आविष्कार है वो फिनलैंड में हुआ था, क्योंकि वहां पर माइनस में टेम्परेचर रहता था, और इसमें क्या है, एक बंद कमरे में, लकड़ी के कमरे में पत्थर को गर्म किया जाता था, और उस पत्थर से जो गर्मी में निकलती थी उससे आप उस कमरे में बैठते थे और आपका पूरे शरीर को गर्मी लगती थी। जहां टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है, वहां इसका प्रयोग शरीर से पसीना निकालने के लिए किया जाता था। अब मॉडर्न युग में लकड़ी का चेम्बर बनता है और उस कमरे में पत्थर रखे जाते हैं और उस पत्थर को एक किसी भी गर्मी के स्रोत से गर्म किया जाता है। तो सोना एक ड्राई हीट रूम है, जबकि भाप नहान एक गीली हीट देने की प्रक्रिया है। तो सोना हमेशा एक कमरे में दिया जाता है, एक चेम्बर में दिया जाता है, और इसके भी अधिकतर लाभ वही हैं जो भाप नहान से होते हैं, और ये विदेश में ज्यादा प्रचलित है, और अब ये धीरे धीरे इसका प्रचलन हमारे पूरे भारतवर्ष में हो रहा है।
0: जैसे आप सोना बाथ के बारे में ये बात कह रहे थे कि भारत में इसका प्रचलन कम है, हम भारत में एक ट्रॉपिकल देश में रहते हैं, एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां हमारे देश में ज्यादातर हिस्सों में गर्मी तो होती ही है, सर्दी गर्मी के मौसम होते हैं, मगर ज्यादातर हिस्सा ऐसा होता है जहां पर व्यक्ति दिन भर में तापमान ठीक ठाक रहता ही है, व्यक्ति को पसीना आता ही है। क्या ये जो स्टीम बाथ के बारे में तो हमने डिटेल में सुना, ये सोना बाथ में जब हम वास्तविकता में गर्मी में हैं तो ऐसे समय पर सोना बाथ लेने की क्या कोई आवश्यकता है? अक्सर लोग कहते हैं कि भैया बाहर तो सोना बाथ चल रहा है जब गर्मी के दिन होते हैं, तो क्या इसे एक चिकित्सा के रूप में जो समझा जाता है वो क्या इसकी सही समझ है, वो बात समझ में आए।
1: देखिए, इतने सवाल में एक लाइन बोला कि जब बाहर ही सोना बना हुआ है तो हमें सोना लेने की क्या जरूरत है। तो ये बना उनके लिए है जो अपने शरीर से पसीना नहीं निकाल पा रहे हैं, दूसरा उनके लिए जिनका पसीना कम आ रहा है और उनको उसका फायदा जल्दी चाहिए। जैसे हमें पानी उबालना होता है और अगर हम उसको ढक दें तो वो जल्दी उबल जाएगा, इसीलिए एक बंद कमरे में जब बहुत गर्म है तो जल्दी पसीना आपका निकलेगा, आपका जल्दी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, जल्दी आपके जो स्वेट ग्लैंड हैं, सेबेशियस ग्लैंड हैं, वो खुलेंगे। तो जो फायदा आपको 15, 20, 25 मिनट में मिलने वाला है वो आपको 5 मिनट के अंदर ही मिल जाएगा। ऐसे देश में इसका आविष्कार हुआ जहां पे टेम्परेचर माइनस में रहता है, तो वहां पसीना निकल ही नहीं रहा है, तो पसीना निकाला कैसे जाए। मैं भैया फिनलैंड के जो कैपिटल है हेलसिंकी घूमने गया था, और वहां हर होटल में सोना बाथ था, और लोग ये बोलते हैं कि जितनी फिनलैंड की पॉपुलेशन है उससे ज्यादा वहां पे सोना बाथ है, क्योंकि हर व्यक्ति ने अपने घर में बना रखा है, छोटा सोना बाथ, बड़ा सोना बाथ, होटल में 3-4 सोना बाथ है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जितने नागरिकों की जनसंख्या है उससे ज्यादा तो वहां सोना बाथ है, और वो इसलिए है क्योंकि वो अपने शरीर से पसीना निकालने में इसका प्रयोग करते हैं।
0: अब एक और चीज मैं समझना चाहता हूं डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि वहां पर विदेश में इन चीजों का इस्तेमाल है, तो आज जो भारत में इसका प्रचलन बढ़ रहा है, लोग फिटनेस सेंटर्स में या वेलनेस क्लिनिक्स वगैरह में इन सब चीजों को दिखा रहे हैं कि भाई ये सोना करने जा रहे हैं, तो इसका सही इस्तेमाल समझा जाए, जैसे आपने स्टीम बाथ के लिए कहा था कि भाई हमें स्टीम बाथ लेना है तो हमें कैसे लेना है ये पता होना चाहिए, ऐसे ही क्या सोना बाथ लेने जाने से पहले भी हमको पता होना चाहिए कि भाई क्या तरीका है, कैसे सोना लिया जाता है?
1: पानी पी के जाना चाहिए, उतनी देरी रहना चाहिए जितनी देर आपको सर दर्द या कुछ घबराहट न महसूस हो रही हो। अगर आपको चक्कर आने लगे, घबराहट होने लगे, तो तुरंत बाहर आना चाहिए और ठंडे पानी से नहाना चाहिए। फिनलैंड में, रशिया में, और इवन अभी मैं कजाकिस्तान गया था, वहां तीनों जगह पहले सोना लिया और उसके बाद उन्होंने दरवाजा खोला और दौड़ते ही बर्फ में गड्ढा कर रखा था, उसमें एक डुबकी लगाई। तो ये अपने बॉडी को टेम्परेचर शॉक देने की वजह से है, जिससे टॉक्सिन्स जल्दी बाहर आए। लोग कहते हैं इसको करने से इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है, मगर आप अगर सिर्फ सोना लेंगे और स्टीम लेंगे और उसके बाद ठंडे पानी से भी नहा लेंगे, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। तो लेने के लिए पानी पीजिए, जितना आप अगर ले सकते हैं उससे 1 मिनट कम ही ली, और निकलने के बाद फिर से थोड़ा सा पानी पीजिए और ठंडे पानी से नहाइए। यही सावधानियां आपको अपने लिए रखनी चाहिए।
0: जैसा आप ये कह रहे थे, ये अनेक चीजें हम मीडिया में भी देखते हैं, कहीं टीवियों पर, कहीं सोशल मीडिया पर भी हम देखते हैं कि लोग, जैसे ध्रुवीय प्रदेशों के लोग हैं जो ऐसे ठंडे देशों में रहते हैं, वो अचानक से मतलब एक दिन सारे लोग पानी में, ठंडे पानी में नहाने जा रहे हैं, तो वो देख के ऐसा लगता है बाप रे इनको ठंड नहीं लगने वाली, ऐसे कैसे कर रहे हैं। ये बात समझ में आती है कि ऐसा करने से ये जो शॉक आप कह रहे थे टेम्परेचर का जो अंतर है उससे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, आपने ये बात कही। ये बात हम बेहतर तरीके से समझें कि जब आप कहते हैं कि इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, तो यहाँ तो लोग अक्सर ये कह देते कि नहीं नहीं बाहर नहीं जाओ, ठंड नहीं लग जाएगा आपको, अभी भी नहा है, ये नहीं करो, वो नहीं करो, अनेक चीजें ऐसे सुनने को मिलती हैं। ऐसे में इसकी सही अंडरस्टैंडिंग क्या है, सही समझ क्या है, कैसे ये काम करता है?
1: भैया जब हम गर्मी में रहते हैं तो हमारा रक्त संचार हमारी त्वचा की तरफ आता है, क्योंकि वो हमारे शरीर के जो जो पसीने की ग्रंथियां हैं उनको ज्यादा काम कराता है। और पसीना क्या है? पानी ही है जो हमारी त्वचा पे आता है, वो हमारी त्वचा को ठंडा करता है और त्वचा को बचाने का काम करता है गर्मी से। अच्छा, जब रक्त संचार बढ़ता है तो हमारी मांसपेशियों के अंदर ज्यादा रक्त जाता है, वो पूरे डीप क्लीनिंग करता है, पूरी मांसपेशियों के अंदर लबालब रक्त भरता है, तो सारे टॉक्सिन्स को निकाल के वो त्वचा पे लाता है, जो पसीने के साथ वो बाहर चले जाते हैं या उन टॉक्सिन्स को ब्लड के थ्रू मूव करा के उसमें से सारे टॉक्सिन निकाल देता है। अब हम जैसे ही ठंडे में जाते हैं तो जो रक्त जो ऊपर त्वचा में चल रहा है वो तुरंत वापस अंदर जाता है, तो जिस वेग से वो त्वचा के ऊपर दौड़ रहा है वो उससे ज्यादा वेग से हमारे जो कोर है, हमारे शरीर का जो बीच का हिस्सा है, उसमें वापस जाता है। तो जब वो जाता है तो और सारे टॉक्सिन्स को खींच के अपने साथ लेके जाता है, और एकाएक बॉडी को लगता है यार ये क्या हो गया, इतनी ठंडक से इतनी गर्मी में क्यों हम चले गए। वो शरीर में जो हमारे रक्त है वो इम्यूनिटी सेल्स को हमारे शरीर में हमारा बोन मैरो ज्यादा छोड़ता है, तो इससे हमारी इम्यूनिटी बेटर हो जाती है। अब जो आपने पूछा कि गर्मी में घर के बाहर मत जाओ या ठंडक में बाहर मत जाओ, हवा लग जाएगी, हमें आपने कहा हम लोग एक ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं और हमारे लिए एक्सट्रीम वेदर चेंजेस हमारी एक अच्छाई है हमारे देश की कि हम चारों ऋतुओं का यहाँ पे आनंद ले सकते हैं। ठंड भी है, गर्मी भी है, बहुत बारिश भी है और पतझड़ भी है। तो जब हम चारों ऋतुओं का मजा लेते हैं तो हमारा बॉडी भी एक छोटे टेम्परेचर के बीच में अपने आप को मेंटेन करने की आदत डाल लेता है। इसीलिए एक्सट्रीम टेम्परेचर का जब चेंज आता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए घर वाले कहते हैं बहुत धूप में मत निकलो क्योंकि तुम बीमार पड़ जाओगे, बहुत ठंड में बाहर मत निकलो तुम बीमार पड़ जाओगे। दूसरी चीज, व्यक्ति अब एक आर्टिफिशियल क्लाइमेट में रहने लगा है, जैसे जो हमेशा एक टेम्परेचर मेंटेन करके रख रहा है, ना वो पूरी तरह से वर्जिश कर रहा है, ना वो स्वास्थ्य प्रिय भोजन कर रहा है, तो वैसे ही इम्यूनिटी खराब है। तो इसीलिए जब वेदर चेंज आता है तो आदमी बीमार ना पड़ जाए, इसीलिए घर के लोग कहते हैं कि अपने आप को बचा के।
0: जैसे ये बात समझ में आती है कि आज हम इस धारणा को लेकर चल रहे हैं, ये जो सिस्टम्स बने हुए हैं स्टीम बाथ के, सोना बाथ के इत्यादि चीजों का, अब सोना तो एक ऐसी चीज है, जैसे आपने स्टीम बाथ के लिए कहा कि ये तो घर में भी हम कर सकते हैं कि भाई घर में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सोना तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो भारतीय परिवेश में स्वाभाविक रीति से अवेलेबल हो, क्या इसके लिए भी कोई घरेलू उपाय है कि भाई घर में हम सोना जैसा कुछ करके उसका लाभ लें या कहीं और ही जाना चाहिए?
1: जैसे भैया भाप का चेंबर बन रहा है, अब बहुत सारी इंडियन कंपनीज और विदेशी कंपनियां भी आपके कमरे में एक टेलीफोन बूथ जितना बड़ा कमरा बना देती हैं जिसमें आप भाप ले सकते हैं, या आप सोना का कमरा भी उतना बड़ा आपके घर में बना सकते। जो रेगुलर इसका इस्तेमाल करें प्लीज उनको ही अपने घर में इसको लगवाना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने मरीजों को देखा जो घर जाके बहुत सुंदर सुंदर जैकूजी लगवा लेते हैं, वाटर प्रेशर मसाजर अपने घर में लगवा लेते हैं, स्टीम रूम बनवा लेते हैं, सोना रूम बनवा लेते हैं और उसका इनॉग्रेशन करते हैं और एक दो दिन इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उसका इस्तेमाल कभी नहीं होता और उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने इष्ट मित्रों को दिखाने के लिए होता है और भीड़ में बात करने के लिए होता, अरे मेरे घर में भी सोना है, मेरे घर में स्टीम रूम है, और ये बोला था कभी किसी संडे को आना साथ में लिया जाएगा, और वो कभी नहीं होता। तो आप घर में जरूर लगा लें अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, अगर आप रेगुलर नहीं इस्तेमाल करते तो कहीं भी जाके इसको ले सकते हैं। और अब भारत में मुंबई, दिल्ली, कैलकटा, हर बड़े शहर छोड़िए हर छोटे शहर के भी होटल्स में एक स्टीम रूम बन चुका है, और बहुत सारे स्पा और सेंटर जिम वाले भी अपना एक स्टीम रूम और सोना रूम बना चुके हैं। तो आप इसका इस्तेमाल किसी एक योग्य व्यक्ति के देखरेख में इसका इस्तेमाल करें, और ज्ञानी व्यक्ति होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं जो कह दे अरे आप बैठ जाइए आपका वजन कम हो जाएगा और पता चला उसने पूछा ही नहीं कि आप बीपी के मरीज हैं कि आपके लिए ठीक है कि नहीं। जिनको एपिलेप्सी है, सीजर्स आते हैं, जिनको मिर्गी का दौरा पड़ता है, उनके लिए एकदम मना है, ये सब नहीं लेना चाहिए। तो एक योग्य व्यक्ति की देखरेख में ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए,
0: यानी एक सही परामर्श के साथ जो एक वेल ट्रेन्ड पर्सन है जो क्लिनिकली या स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्ञान रखता है उसके साथ मिलकर ये करना फायदेमंद हो सकता है। अब आखिरी चीज मैं ये पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब की, बहुत सारे लोग स्टीम बाथ और सोना बाथ इन शब्दों को सुन रहे हैं और जैसे आपने कहा कि अभी वो एक दिखावे की चीज बन गई है, बहुत सारे लोग उसे एक स्टेटस सिंबल के रूप में कहते हैं कि आज मैं सोना जा रहा हूं और आज मैं स्टीम बाथ लेके आया और ये चीजें ऐसे बताते हैं, मगर एक व्यक्ति को नॉर्मल कोर्स में कितने समय पर इन चीजों का लाभ लेना चाहिए? अगर जैसे हम जाते भी हैं कहीं कहीं स्पा में जाते हैं या कोई इन चीजों को ट्रीटमेंट कराने जाता है, उसके लिए पैसे भी लगते हैं, तो व्यक्ति सोचता है कि भाई क्या ये अनिवार्य सी चीज है या इसका घर में भी कोई पर्याय निकल सकता है कि उससे भी हम काम चला सकें?
1: ये कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ है वो उसको ले सकता है। आप इसको हफ्ते में एक बार भी ले सकते हैं, महीने में चार बार भी ले सकते हैं, महीने में छह बार भी ले सकते हैं, महीने में आठ बार भी ले सकते हैं, पर अगर आपको जरूरत है तो। बिना जरूरत के आप इसको हफ्ते में एक बार ही इस्तेमाल करिए। जो स्टीम बाथ और सोना बाथ दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, सोना बाथ ड्राई हीट है और स्टीम बाथ वेट हीट है। एक में सिर्फ गर्मी है और दूसरे में नमी के साथ गर्मी। सोना बाथ का टेम्परेचर या उसका तापमान ज्यादा रहता है, करीब 70 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके करीब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है उस कमरे का टेम्परेचर। और जबकि भाप नहान में ये करीब 40 से 50 डिग्री के बीच में ही रहता है। तो जिनको ज्यादा परेशानियां हैं उनको सोना नहीं लेना चाहिए। जिनको ज्यादा मतलब घबराहट होती है, ब्लड प्रेशर की परेशानी, उनके आंख में कोई परेशानी है, तो उनको सोना तो एकदम नहीं लेना चाहिए। वो भाप नहान ले सकते हैं मगर कम समय के लिए। अच्छा, और इसको लेने से पहले पानी पीना चाहिए और निकलने के बाद नहाना चाहिए। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए। सोना महीने में एक बार बहुत अच्छा है, भाप महीने में 3 से 4 बार बहुत अच्छा है हमारे देश के लिए। अगर आप बहुत ठंडे देश में रह रहे हैं तो वहां सोना ज्यादा लेते हैं लोग बनस्पत भाप के।
0: अब ये एक ऐसी चीज है जो आपने उदाहरण के साथ प्रस्तुत किए हैं तो समझ में आती है बात। ये भारत में और कई ऐसे देशों में इन चीजों का प्रचलन देखने को मिलता है या लोग सुनते हैं इन चीजों के बारे में, जहां पर लोग कहते हैं कि हॉट स्प्रिंग्स हैं, लोग कहते हैं कि वहां प्राकृतिक रूप से गर्म पानी निकलता है और पानी से भाप निकलता हुआ नजर आ रहा होता है, और लोग समझते हैं कि भाई वहां पर अगर आप गए हुए हैं तो वहां पर स्नान करना चाहिए, खासकर ऐसे शहर जो इन हॉट स्प्रिंग्स के आसपास हैं, तो लोग रेगुलरली वहां जाना पसंद करते हैं। क्या ये जो फायदे आपने अभी गिनवाए, ये जो हॉट स्प्रिंग्स में स्नान करने इत्यादि लोग जाते हैं, क्या उसका भी यही फायदा होता है, खासकर जैसे ट्रॉपिकल कंट्रीज में, थाईलैंड में, मलेशिया में, जापान में, और यहाँ भारत में भी हम उत्तराखंड में अनेक जगहों पर, यहाँ मुंबई में भी अनेक जगहों पर ऐसे हॉट स्प्रिंग्स के बारे में सुनने को मिलता है, ये क्या है, ये भी क्या सिमिलर सी बेनिफिट्स देते हैं?
1: ये नॉर्मली सल्फर स्प्रिंग इनको बोला जाता है, और जो सबसे फेमस सल्फर स्प्रिंग हम लोगों ने देखा है वो बद्रीनाथ में है, जहाँ उतनी ऊंचाई पे भी गर्म पानी निकल रहा है, और एक लोगों ने अपना वो बनाया है कि पहले उसमें स्नान करते हैं और फिर बद्री विशाल का दर्शन करते हैं। ये दोनों से अलग है, ये भाप नहान से भी अलग है और सोना बाथ से भी अलग है, क्योंकि आप इसमें गर्म पानी में नहा रहे हैं। और जैसे मैंने पहले बोला था कि गर्म पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, उसके बाद वो पानी भाप बन जाता है, तो इसका टेम्परेचर पहली बात तो उससे कम है। दूसरी चीज, किसी भी कम्युनल स्नान में थोड़ा सा सफाई के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे आप नहा रहे हो, कैसे दूसरे वहां पर स्नान कर रहे हैं। इसके फायदे स्टीम बाथ और सोना बाथ से त्वचा के लिए थोड़े से कम है, क्योंकि ये आपकी त्वचा में जो कहा जाता है कि सल्फर एंटीसेप्टिक का काम करता है, इसीलिए वो बहुत सारी त्वचा के रोगों में आपको अच्छा करता है। और गर्म से नहाने से पक्का थोड़ा सा आपका जो तेल है शरीर का सेबेशियस ग्लैंड से वो जरूर निकलेगा, थोड़ा सा स्वेट ग्लैंड से वो जरूर निकलेगा, बट ये स्टीम बाथ और सोना बाथ से एकदम अलग है। ये जैसे कि आप गर्म पानी में लेटे हुए हैं वैसा अनुभव है और कुछ नहीं।
0: बहुत ही खूबसूरत आज की ये चर्चा रही, जैसे आपने कहा कि गर्म पानी के कुंड में लेटे हुए हैं, मुझे जगजीत सिंह की गजल में वो बीच में एक जोक सुनाते हैं कि एक सरदार जी 3 स्विमिंग पूल बना लेते हैं घर पे, एक गर्म पानी का स्विमिंग पूल, एक ठंडे पानी का स्विमिंग पूल, और तीसरा पूल होता है जिसमें कोई पानी नहीं होता। तो किसी ने सरदार जी से पूछा, सरदार जी गर्म पानी और ठंडे पानी का तो समझ में आता है, ये जो तीसरा जो खाली है इसमें पानी भी नहीं है, ये किस लिए? उन्होंने कहा, देखो सर्दियों के दिन में जब गर्म पानी में नहाने का दिल करे तो गर्म पानी में, गर्मियों के दिन में जब ठंडे पानी में नहाने का दिल करे तो ये ठंडे पानी में, और जिस दिन नहाने का दिल ना करे तो उस दिन ये खाली पूल में। और मैं जब भी जगजीत सिंह जी गजल के बीच में ये चीज सुनाते थे मैं खूब हंसता था, मैंने बोला गजल जैसी चीज के बीच में भी हास्य को कैसे ले आते हैं।
1: भैया प्राकृतिक चिकित्सा में उष्ण नहान एक इलाज है जिसमें गर्म पानी के टब में एक व्यक्ति को लेटाया जाता है, और ये स्लीप डिसऑर्डर्स में और इम्यूनिटी के डिसऑर्डर्स में इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है और ये एक नॉर्मल सेटअप में सर बाहर निकाल के व्यक्ति को इसमें 10 से 15 मिनट तक पूरे शरीर को लेटाया जाता है। जो भाप नहा नहीं ले सकते हैं, जिनका बीपी बहुत फ्लक्चुएट करता है, उनको उष्णसान देने की कोशिश की जाती है। और दूसरा, आर्थराइटिस की महिलाएं या पुरुष जिनके सब जोड़ टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं, उनमें उष्णसान का बहुत अच्छा रोल है। जिनके बहुत ज्यादा जोड़ों में दर्द होता है, उसमें इसमें थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट या मैग्नीशियम सल्फेट डाल के लिटाया जाता है, जिससे उस जोड़ों में सूजन कम हो जाए और दर्द कम हो जाए। और जिन व्यक्तियों को नींद की समस्या बहुत ज्यादा रहती है, उसमें इसको इस्तेमाल करके उससे लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो सल्फर स्प्रिंग का जो मजा आदमी लेता है, वो हमारे प्राकृतिक चिकित्सालय में, या जो हॉट स्प्रिंग का मजा लेता है, वो हमारे यहाँ एक तालाब तो नहीं है, मगर एक टब जरूर है, जिसमें हम उसको लेटा कर उसको वो थोड़ा सा मजा दे सकते हैं।
0: बहुत ही खूबसूरत आज की ये चर्चा रही है डॉक्टर साहब। बातों बातों में कितनी सारी नई चीजों पर आज जानकारी मिली है। वक्त कहता है कि यहाँ पर विदा लेना होगा, वरना सवाल और भी हैं। दोस्तों, आप बताइए कि स्टीम बात और सोना बात के बीच के अंतर को आपने समझा? सोना बात किस लिए लिया जाता है, उसके फायदे क्या हैं, वाष्प स्नान यानी स्टीम बात के फायदे क्या हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज हमें जानकारी हासिल हुई है। इन चीजों का सही लाभ लेने के तरीकों के बारे में भी आज डॉक्टर साहब ने हमें सही जानकारी दी है। आज इसी मोड़ पर लेते हैं विदाई। कल फिर होगी मुलाकात सहज स्वास्थ्य में। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से डॉक्टर राहुल मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब।
1: धन्यवाद।
0: दोस्तों, आप सुन रहे कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। अपने स्वास्थ्य को सही बनाए रखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो मनुष्य अपने घर में कर सकता है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी, उसे स्वस्थ रखने के लिए भी हम चीजें कर सकते हैं। स्टीम बात या सोना बात लेने के तुरंत बाद ठंडे पानी से नहाने की बात क्यों कही जाती है, ये भी बात समझ में आती है। तो दोस्तों, इसी मोड पर कहते हैं अलविदा। कल फिर होगी मुलाकात। तब तक सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 एफएम।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: हेलो बच्चों, चलो चलो चलो, घड़ी ने बजा दिए हैं 9:30, यानी कि समय हो गया है सपनों की सैर कार्यक्रम का। और आ गए हैं आपके लिए
3: परी और मनी दीदी। सूरज ऊर्जा का स्रोत है, ये विषय को लेकर के।
2: हाँ बच्चों, और पिछली कड़ी में हमने जाना था कि सूर्य से तो रोशनी और गर्मी मिलती है, और धूप से विटामिन डी मिलता है जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है।
3: हाँ, और ठंडी में सूरज की धूप अच्छी लगती है, गर्मियों से हम दूर भागते हैं। और पेड़ पौधे भी तो भोजन सूरज की रोशनी से ही तो बनाते हैं।
2: मतलब बच्चों, सूरज के बिना पौधे भी नहीं उगेंगे।
3: बिल्कुल बच्चों, और पौधों के बिना हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा।
2: तो देखा सूर्य का महत्व।
3: तो मनी दीदी, आज इसके बारे में और क्या जानकारी मिलने वाली है?
2: आज हम बातें करेंगे सोलर ऊर्जा के बारे में।
3: अच्छा मनी दीदी, जब सूरज की किरणों से बिजली बनाई जाती है तो उसे सोलर ऊर्जा कहते हैं।
2: तो देखा बच्चों, यानी कि इससे हम सूर्य की किरणों से हम खाना भी बना सकते हैं।
3: हाँ, सोलर कुकर भी तो आता है बच्चों, आपको पता होगा।
2: हाँ, और घर पर भी तो सोलर पैनल लग सकते हैं।
3: हाँ, जिससे गीजर के बिना सोलर एनर्जी से आप पानी गर्म कर सकते हैं।
2: हाँ, बिजली बना सकते हैं और इससे प्रदूषण भी कम होगा।
3: तो देखा बच्चों, कितने सारे फायदे हैं सूरज के।
2: तो चलो बच्चों, देखो भाई, आज तो हमने जान ही लिया कि सूरज जो है वह बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। हमारे लिए भी विटामिन डी, पौधों के लिए भी भोजन बनता है, और यदि उसे ऊर्जा में कन्वर्ट कर ले तो हम भी भोजन बना सकते हैं।
3: हाँ बच्चों, तो चलो मनी दीदी, अब सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।
2: सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,
3: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर,
2: सपनों की

0: Hi, this is Gracie Singh, and you are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling.
1: चलो बच्चों, बैठो जल्दी से रेडियो के पास. अब शुरू हो रही है आज की कहानी. बच्चों चलो, आज चूहे की कहानी सुनेंगे, और वो भी एक नहीं, दो दो चूहे. एक चूहा गांव का और एक चूहा शहर का. जो गांव का चूहा था ना, वो तो खेत में रहता था, और शहरी चूहा उसका मित्र था, वो शहर में रहता था. एक दिन गांव के चूहे ने शहरी चूहे को खाने पर निमंत्रण किया. उसने अपने शहरी मेहमान को मीठे मीठे बेर, मूंगफली के दाने, कंदमूल सब खिलाए. लेकिन बच्चों, शहरी चूहे को गांव का सादा भोजन अच्छा नहीं लगा. उसने गांव के चूहे से कहा, भाई सच्ची बात कहूँ तो तुम्हारा ये देसी खाना मुझे पसंद नहीं आता. ये बड़ा घटिया किस्म का खाना है. बच्चों, गांव के चूहे ने शहरी चूहे का निमंत्रण स्वीकार किया, और एक दिन वो शहर पहुंच गया. उसके शहरी मित्र ने तो उसको अंजीर, खजूर, शहद, बिस्किट, मुरब्बा, कितना कुछ उसको खिलाया. भोजन तो बड़ा स्वादिष्ट था, लेकिन शहर में वो दोनों चैन से भोजन नहीं कर पाए. वहाँ बार बार एक बिल्ली आती थी. चूहों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता था. बच्चों, शहरी चूहे का बिल भी बहुत छोटा था. तो बच्चों, गांव के चूहे ने कहा, तुम्हारा जीवन तो बड़ा दुखी है. मैं तो घर लौट जाता हूँ, वहाँ मैं कम से कम शांति पूर्वक खाना तो खा सकता हूँ. तो देखा बच्चों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? शांति और निर्भयता में ही सच्चा सुख है. है ना बच्चों? कभी भी डर से जीवन जीना, इसमें मजा नहीं है. इसीलिए डर कब लगता है? जब हम कुछ गलत काम करते हैं. तो आप भी कभी कुछ गलत नहीं करना, सच्चे रहना, तो आपको कभी डर नहीं लगेगा. तो चलो सुनते हैं अब ये प्यारा सा गाना. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की.

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें, धन्यवाद।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: तो चलो बच्चों, आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। मनी दीदी आ गई है लेकर किताब तेनाली रामा की, और हम पढ़ रहे हैं व्यक्ति परिवेश और परिधान की कहानी, जिसमें तेनाली राम को ये सिद्ध करके बताना है कि उचित अवसर पर उचित परिधान आवश्यक होता है। और इसी संदर्भ में महाराज के यहाँ उनके पिता श्री के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, और इसीलिए महाराज ने कई विशेष अतिथियों को विशेष आमंत्रण पत्र देकर भी बुलाया था, और सभी अतिथि सज धज कर राजभवन के द्वार से प्रवेश कर रहे थे, जहां पर उनको पुष्पमाला डालकर अभिवादन करके बहुत ही ससम्मान अंदर बुलाया जा रहा था। लेकिन तभी अचानक कहीं से शोर सुनाई दिया, और एक भिखमंगे को रोकने के लिए जो प्रहरी थे वो प्रयासरत थे, और उस भिखमंगे ने कहा कि भाई मैं भिखमंगा नहीं हूँ, मैं महाराज का आमंत्रित अतिथि हूँ, मेरा निरादर मत करो, मेरे साथ उचित व्यवहार करो। बच्चों फिर आगे क्या हुआ, चलो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। शोर सुनकर महाराज स्वयं राजभवन से बाहर आए और उचटती सी दृष्टि उस व्यक्ति पर डाली तथा प्रहरियों से कहा, इस आदमी को थोड़ा भोजन देकर यहाँ से दूर भगाओ, अतिथियों के आने का समय हो रहा है। शोर करने वाले व्यक्ति ने महाराज की ओर देखा और मुस्कुराया। चांदनी के उजाले में महाराज को उसकी मुस्कान पहचाने सी लगी, मगर महाराज आयोजन की हड़बड़ी में थे, इसलिए उस

बात सिद्ध कर पाएगा कि उचित अवसर पर उचित परिधान की आवश्यकता तो होती है, जैसे कि इस भिकमंगे का भी, जो स्वयं को काव्य शास्त्र का ज्ञाता कह रहा था, उसका भी रहस्य अवश्य उजागर होगा। तो चलो भाई, अभी सुनते हैं ये प्यारा सा गाना और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों

बाल संसार सुनिए हर शनिवार दोपहर 12:30 पर। कल्पना कीजिए एक ऐसा कार्यक्रम जहां बच्चे, शिक्षक और माता पिता एक साथ जुड़कर सीखें और खेलें। जी हां, हम बात कर रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम बाल संसार की। तो फिर इंतजार किस बात का? हर शनिवार दोपहर 12:30 पर रेडियो मधुबन 107.8 FM पर बाल संसार सुने और अपने परिवार के साथ एक यादगार पल बिताएं। सुनिए, मुस्कुराइए और सीखिए बाल संसार।

0: बच्चों चलो आ जाओ रेडियो के पास, फिर से पहेली शुरू हो रही है। पिछली कड़ी में परी ने पूछा था, याद है ना, जल्दी से अपना जवाब टैली कर लो। दिन में दिखे, रात को छिपे, धरती को रोशन करे और सबको सुख दे।
1: हाँ बच्चों, और सही जवाब तो आप जान ही गए हैं, क्योंकि अभी मौसम ही ऐसा है जो उसकी रोशनी छिपती ही नहीं है, तो सही जवाब है सूरज। और अभी तो सूरज भी अपने फुल फॉर्म में है, इतने ज्यादा चमक रहे हैं दिन में भी कि हमें अंदर रहना पड़ता है।
0: हाँ, और हमने पिछली कड़ियों में भी सूरज दादा के बारे में जाना कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है।
1: हाँ बच्चों, तो चलो भाई परी, आज का सवाल क्या है भाई?
0: बच्चों नोट कर लो आज का सवाल। पंख फैलाकर उड़ता आसमान, रंग बिरंगी दिखे जहान, फूलों पर बैठ

0: रस पीती, बताओ वो कौन है।
1: हाँ बच्चों, ये तो बहुत सुंदर सुंदर चीज है और बच्चों को तो खासकर इसके पीछे पीछे दौड़ना अच्छा लगता है। और परी, इसके पीछे पीछे चलना दौड़ना कितना अच्छा लगता है ना।
0: हाँ बच्चों, तो चलो हमें 94 14 15 14 15 पर जल्दी से इसका जवाब भेजो। और करना क्या है पता है ना?
1: अभी तो हमें लिखना है चिट्ठी, पता है किसको? अपने खुदा दोस्त को।
0: हाँ, और चिट्ठी लिखकर उनकी गोदी में सो जाना है।
1: हाँ, और अपने दिल का हाल सारा हमें खुदा दोस्त से शेयर करना है। तो चलो फिर,
0: आंखों में सपने सजाकर सो जाओ, दिल में खुशियों को बसाकर सो जाओ।
1: कल फिर नई शुरुआत होगी, आज की थकान मिटाकर सो जाओ।
0: गुड नाइट,
1: स्लीप टाइट, गुड बाय।
0: सुनते रहो,
1: मुस्कुराते रहो,
0: रेडियो मधुबन
1: 107.8।

नमस्कार, मैं हूं सिंगर साईराम अय्यर और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते
1: सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। समझदारी और सूझबूझ से काम करते हैं तो सफलता भी मिलती है और परिस्थितियों का सामना भी कर सकते हैं। कैसे वो तो आप आशियाना सुनेंगे तभी जान पाएंगे। अगर तेली त्वचा है तो देंगे आपको बहुत ही सुंदर नुस्खे। और जी हाँ, जिंदगी आसान नहीं, आसान बनानी पड़ती है, वो भी आप आशियाना सुनिए। आपसे चर्चा जरूर करेंगे और कुछ बनाएंगे खास, तो वो खास रेसिपी क्या बनाने वाली हूँ वो भी सस्पेंस रहेगी, अभी नहीं बताऊंगी। और आपको टंग ट्विस्टर पूछने वाली हूँ, तैयार हो ना सभी, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास न करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, ध्यान से सुनेंगे। आपकी समझदारी और सूझबूझ से काम करते हैं तो सफलता भी मिलती है और परिस्थिति का सामना भी कर सकते हैं। समझदारी और सूझबूझ से काम करते हैं तो सफलता भी मिलती है और परिस्थिति का सामना भी कर सकते हैं। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार एक कहानी के साथ करना चाहूँगी कि अवलदीन और उसकी माँ बहुत ही गरीब थे। उनका निर्वाह बहुत ही कठिनाई से होता था। कभी कभी तो उनके पास दो वक्त की रोटी तक का जुगाड़ भी नहीं हो पाता था। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, एक दिन अवलदीन दिन भर काम ढूंढता रहा, परंतु उसे कोई काम नहीं मिला। शाम को थक करके जब वह घर पहुंचा, तब माँ ने उसे बताया कि घर में अब चावल दाल थोड़ा ही बचा है। दोनों ही चिंता में पड़ गए कि कल भी काम नहीं मिला तो निर्वाह कैसे होगा। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। दोनों चौंक पड़े कि कहीं कोई अतिथि तो नहीं। अवलदीन ने दरवाजा खोला तो सामने एक वृद्ध व्यक्ति को खड़े पाया। वृद्ध ने पूछा, क्या मुस्तफा दर्जी का घर यही है? अवलदीन ने कहा, जी हाँ, आप कौन हो? मैं तुम्हारे पिता का भाई हूँ। कई वर्ष पहले मैं विदेश चला गया था, अभी अभी लौट रहा हूँ। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? वृद्ध ने पूछा। अवलदीन की माँ ने उत्तर दिया, उनकी मौत को तो कई वर्ष हो गए, बस यही एक बेटा है, घर की हालत बहुत खराब है। वृद्ध ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, बेटा अवलदीन ये लो पैसे और बाजार से कुछ खाने को ले आओ। उस रात सबने पेट भर करके खाना खाया। सोने से पहले परस्पर बातचीत करते हुए मुस्तफा के भाई ने कहा कि मैं पर्याप्त धन कमा करके आया हूँ और आपके साथ ही रहूँगा। हाँ, कल सुबह अवलदीन को कुछ काम से बाहर ले जाऊँगा, हम लोग संध्या होने से पहले ही लौट आएंगे। वास्तव में वह मुस्तफा का भाई नहीं था, एक जादूगर था। प्रातः होने पर वह अवलदीन को लेकर के शहर से बाहर एक जंगल में पहुँच गया। वहाँ एक गुफा थी जिसका मुंह एक भारी पत्थर से बंद था। दोनों ने मिलकर के पत्थर को हटाया। वृद्ध ने भीतर एक रास्ता दिखाते हुए कहा, नीचे उतर करके सीधे अंदर चले जाऊं, वहां एक दीपक पड़ा होगा, उसे उठा लाना। अवलदीन गुफा के भीतर चला गया। भीतर एक कोठरी थी जिसमें घुसते ही उसकी आंखें चौंधिया गई। वह आश्चर्यचकित होकर के इधर उधर देखने लगा। कोठरी हीरे मोती और तरह तरह के रत्नों से भरी हुई थी। अवलदीन ने उनमें से कुछ रत्न उठा करके जेब में भर लिए और कुछ अपनी झोली में डाल लिए। इतने में उसे अपने चाचा की आवाज़ सुनाई दी, जल्दी से दीपक मुझे पकड़ा दो। अब अवलदीन का ध्यान दीपक की ओर गया। वही कोने में एक पुराना दीपक पड़ा था जिस पर धूल जमी हुई थी। अवलदीन ने दीपक उठाया और गुफा के द्वार पर पहुंचा। चाचा जी, मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर खींच लीजिए, उसने कहा। पहले दीपक मुझे पकड़ा दो, वृद्ध ने कहा कि भाई पहले दीपक मुझे पकड़ा दो। अवलदीन अपनी बात पर डटा रहा और जादूगर अपनी बात पर। इस तरह कुछ समय बीत गया तो जादूगर को गुस्सा आ गया और बोला, अच्छा तो फिर यही रहो। उसने गुफा के मुंह पर भारी पत्थर रख दिया और स्वयं वहां से चला गया। अवलदीन बहुत चिल्लाया परंतु किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। थक करके वह जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ में दीपक था। दीपक को किसी तरह रगड़ लग गई और एक जिन्न उसके सामने प्रकट हो गया। अवलदीन भय से कांपने लगा। इतने में ऊंची आवाज में वह जिन्न बोला, बोलिए मालिक, क्या आज्ञा है? अवलदीन ने कांपते हुए स्वर में पूछा, तुम कौन हो? जिन्न ने उत्तर दिया, मैं इस दीपक का सेवक हूँ। जिसके पास ये दीपक रहता है वही मेरा स्वामी होता है। अब अवलदीन की जान में जान आई। वह बोला, मुझे मेरे घर पहुँचा दो। जिन्न ने पलक झपकते ही अवलदीन को उसके घर पहुँचा दिया। अवलदीन ने जिन्न से कह करके एक बहुत बड़ा महल बनवाया और अपनी माँ के साथ उसमें सुख से रहने लगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर समझदारी और सूझबूझ से काम करते हैं तो सफलता भी मिलती है और परिस्थितियों का सामना भी कर सकते हैं। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार जिस पर जरूर ध्यान देंगे। और आइए सुनेंगे गीत, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: मैं हूं चांद मिश्रा, आप सुन रहे रेडियो मधुबन। सुनते रहे, सुनाते रहे, जन जन तक प्यार बरसाते रहे।
1: आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आपको देंगे बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। अगर तेली त्वचा है तो क्या करेंगे, यदि त्वचा इतनी तेली हो कि मेकअप भी नहीं ठहरता हो, तो बर्फ का टुकड़ा दूध में भिगो करके चेहरे पर होले होले मलिए। इस क्रिया से त्वचा का चिकनापन दूर होगा और चेहरे पर ताजगी का अनुभव करोगे। मेरी प्यारी बहनों, फिर से दोहरा रही हूँ कि यदि त्वचा इतनी तेली हो कि मेकअप भी नहीं ठहरता हो, तो बर्फ का टुकड़ा दूध में भिगोइए, फिर उसको चेहरे पर होले होले मलिए। ऐसा करने से त्वचा का चिकनापन दूर होगा और चेहरे पर ताजगी का अनुभव होगा। तो जिसके भी तेली त्वचा है तो इस नुस्खे को आजमा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि भाई त्वचा, वो कहते हैं ना कि चेहरे का ध्यान सभी रखते हैं। अब चेहरे पर पिंपल निकल आते हैं, झाइयाँ हो जाती है, दाग धब्बे होते हैं, तो अच्छे नहीं लगते हैं खुद को। ऐसा नहीं कि सामने वाले को क्या पड़ी है भाई, सामने वाले को तो सभी अपने अपने में व्यस्त रहते हैं ना, लेकिन खुद को ही अच्छा नहीं लगता है कि ये क्या चेहरे पर झाइयाँ वाइयाँ हो गई है। तो इस नुस्खे को आप आजमा सकते हो। अगर शुष्क और रूखी त्वचा है तो फिर आप आधी कटोरी कच्चा या गुनगुना दूध में एक स्वच्छ रुई का टुकड़ा भिगो करके चेहरे, गर्दन, हाथों, इन सब मतलब इन अंगों पर आप 5-10 मिनट तक फेरिए नरमी से। आप देखेंगे कि रुई कितनी मेली हो गई है। 20 मिनट के बाद ठंडे या गुनगुने पानी से धो दीजिए। दुग्ध स्नान से त्वचा स्निग्ध बनती है। दूध के रोज प्रयोग से मुहासे, चेहरे की झाइया, दाग धब्बे, झुर्रिया और खुरदरापन, ये सब दूर होता है, ठीक हो जाता है, और मुख मंडल की शोभा और कांति बढ़ती है और रंग भी निखरता है। कितने सारे फायदे, खाली एक चीज दूध बस, लेकिन कितने सारे फायदे हैं। फिर से दोहरा रही हूँ, इस नुस्खे को ध्यान से सुनेंगे कि आधी कटोरी कच्चा या गुनगुना दूध में एक स्वच्छ रुई का फोहा डालना है, ठीक है? फोहे को भिगो करके चेहरे, गर्दन, हाथ या सभी को आपको मलना है, ठीक है? भले खाली चेहरे को मलिए, वो आप पर छोड़ा है कि आप कहाँ कहाँ दूध लगाते हैं, वो आप पर छोड़ा है। आप देखेंगे कि रुई, अगर हम इस तरह फोहे से दूध लगाएंगे तो फोहा तो मेला हो ही जाएगा। 20 मिनट के बाद ठंडे या फिर गुनगुने पानी से धो लीजिए। तो ऐसे करने से चेहरे की झाइया, मुहासे, दाग धब्बे, झुर्रिया और खुरदरापन, यह सब ठीक हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, मुखमंडल की शोभा और कांति बढ़ेगी और रंग निखरेगा। तो बहुत सारे फायदे हैं। और लास्ट नुस्खा यह है कि देखिए, त्रिफला तो आप सभी जानते हैं, त्रिफला का पाउडर होता है ना, उसको आप पानी में गर्म कर दीजिए। गर्म करके फिर आप ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद ये, इस पानी को छानना नहीं है, डायरेक्ट इस पानी से चेहरे को धोइए, ठीक है? और चेहरे को धो करके 5 मिनट बाद आप स्वच्छ पानी से चेहरा धो लीजिए। बस आपकी ये तेली त्वचा होगी ना, उसमें तुरंत ही फर्क पड़ेगा। आप तुरंत महसूस करेंगे, 2-3 दिनों में आप कहेंगे कि वास्तव में तेली त्वचा, जो बार बार पिंपल हो जाते थे, क्योंकि तेली त्वचा में बार बार पिंपल हो जाते हैं, चेहरे पर दाग धब्बे हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि चेहरे पर शाइनिंग भी आएगी, दाग धब्बे भी खत्म हो जाएंगे और पिंपल जो निकलते होंगे वो बंद हो जाएंगे। त्रिफला का पाउडर लीजिए। पाउडर को पानी में उबालना है। आपको क्या करना है, रोज रोज ये नहीं कर सकते हो ना, तो आप इकट्ठा ऐसे करके बोतल में भर दीजिए और बस खाली चेहरा धोना है, ठीक है? और चेहरे पर ज़्यादा पानी तो चाहिए नहीं, खाली एक बार आप एक कटोरी में निकाल दीजिए, आधी कटोरी से चेहरे को धो लीजिए, उसके बाद आप 5-7 मिनट रहने दीजिए और फिर स्वच्छ पानी से चेहरा धो लीजिए बस। तो इससे चेहरे पर शाइनिंग आएगी, तेली त्वचा की वजह से पिंपल्स निकलते होंगे वो भी नहीं निकलेंगे, निकलना ही बंद हो जाएगा, और झाइयाँ, किल, मुहासे, दाग धब्बे, ये भी सब छूट जाएंगे और चेहरा एकदम चमक उठेगा, ठीक है? तो ये सारे ही नुस्खे लाजवाब हैं, आप आजमा सकते हो। इसमें कोई मोटा मोटा खर्चा भी नहीं है, और ऐसे कुछ टिप्स हम आजमाते हैं तो उसके लिए कोई डॉक्टर को पूछने भी नहीं जाता है, वो अपने आप करते रहते हैं, तो इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। अब मैं आपको टंग ट्विस्टर सुना रही हूँ, जो आपको बोल के सुनाना है। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई। ये टंग ट्विस्टर है। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई। तो आप जरूर टंग ट्विस्टर बोल करके सुनाएंगे। हमारे नंबर हैं 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और टंग ट्विस्टर सुना सकते हो। आइए बढ़ते हैं एक गीत की ओर। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

0: आप हो रे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेजियो ने मुस्कुराता रेजियो।
1: जिंदगी आसान नहीं, आसान बनानी पड़ती है। जिंदगी आसान नहीं, आसान बनानी पड़ती है। कुछ सब्र करना पड़ता है तो कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है और बहुत कुछ नज़रअंदाज करना पड़ता है। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में ये विषय आपके सामने रखा है जिस पर आप जरूर चर्चा में अपनी राय व्यक्त कर सकते हो। हेलो,
2: जय माता दी, जय श्री हरि।
1: हाँ जी, जय श्री हरि। नमस्कार सुरेश भाई, कैसे हो आप?
2: हम अच्छे हैं। सभी दोस्तों को, सुनने चाहने वाले सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार
1: जी।
2: और बहुत ही सुंदर खुशनुमा जीवन के विचार लेके आए हो और सुविचार भी बहुत ही सुंदर था
1: जी। थैंक यू।
2: कितनी तारीफें करें, कुछ शब्द ही नहीं है। मतलब शब्द कम पड़ गए, क्या तारीफ करें। इतना सुविचार तो बहुत ही सुंदर था
1: जी।
2: और मैं खुशनुमा जीवन के बारे में बात करना चाहूंगा तो देखिए, जिंदगी मतलब ऐसी है कि इसको वो आसान नहीं होती, आसान बनानी पड़ती है। कोई भी कार्य अपन जैसे कि कोई कार्य करते हैं तो वो ऑटोमेटिक ही आसान नहीं बनेगा, उसको करना पड़ेगा, मन लगाएंगे, उसको आसान अपन को करना है
1: जी। कैसे?
2: तो जैसे कि देखिए, कोई भी अपन कार्य कर रहे तो उसको मन लगा के करना पड़ेगा
1: जी।
2: तो वो जरूर आसान हो सकता है, परंतु आप बेमन से कोई भी कार्य करोगे तो वो बिगड़ने वाला है, वो मुश्किलें खड़ी करेगा
1: जी।
2: हाँ, तो मैं यही मतलब कहीं पे कोई भी हो, मतलब कहीं पे मतलब झगड़ा हो रहा है या कुछ भी उलझे हुए हैं तो वहां भी अपन कुछ शांति देना चाहे तो मतलब अपने को पहले मन से दोनों को समझाने की कोशिश, शांति से पहले अपन को शांत होना पड़ेगा
1: जी।
2: तो अपन दूसरों को शांत करेंगे तो उनका मतलब झगड़ा निपटाने में अपन आसानी पैदा कर सकते हैं, नहीं तो अपन खुद ही शांत नहीं होंगे तो वहाँ मुश्किलें बढ़ सकती है
1: जी।
2: तो इसीलिए कहते हैं ना कि कोई भी कार्य करते हो तो अपने मतलब सोच कर अपने मन से दिल लगा के करना चाहिए
1: जी। जी जी, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई, बहुत अच्छी तरह आपने स्पष्ट किया इसके लिए। और विषय बहुत ही अच्छा है कि जिंदगी आसान नहीं, आसान बनानी पड़ती है। कुछ सब्र करना पड़ता है तो कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है और बहुत कुछ नजर अंदाज करना पड़ता है। तो ये आज का विषय है जिस पर आप जरूर चर्चा में अपनी राय व्यक्त कर सकते हो। और आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही सुंदर है, जो लगभग आपने पहले भी सुना होगा, क्योंकि अक्सर जब महफिल जुड़ती है तो इस तरह की बातें, इस तरह के टंग ट्विस्टर सुनाए जाते हैं। तो मैं सुना रही हूँ आपको, आप ध्यान से सुनना। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई। तो मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, थोड़ा सा घेप लेकर के आप लिख भी सकते हो। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई। बहुत ही सरल है, आप इजी वे में जवाब दे सकते हो। तो नंबर हमारे हैं 9914-1415-1415, 9414-1415-1415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के विषय में भी आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हो और टंग ट्विस्टर भी बोल करके सुना सकते हो। तो जैसे कि आज का विषय रखा है कि भाई जिंदगी आसान नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, जिंदगी आसान नहीं है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको वो बचपन से जब गुजरता है तो बहुत ही इनोसेंट होता है, उसको ऐसा लगता है कि कितना अच्छा है और ये जीवन इसी तरह चलता रहे। लेकिन जब वो बड़ा होने लगता है तो पढ़ाई की टेंशन होने लगती है, पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आए तो टेंशन, आ जाए अगर अच्छा तो और भी उम्मीदें बढ़ जाती है कि भाई इस बार 80% आए तो अगली बार 85% लाने ही है, फिर 90, फिर 95, आकांक्षाएं बढ़ती जाती है पेरेंट्स की भी और बच्चे की। फिर भी कोशिश करते हैं, लाते हैं, फिर जिम्मेवारी आती है बड़े होते, कुछ पढ़ाई पूरी होने के बाद जब जो जो भी करते हैं शादी ब्याह होता है, बहुत सारे वो कहते हैं कि परिस्थितियां आने लग जाती हैं। कभी कभी तो पैसे टकों से भी आती है, तो कभी कभी लोगों के द्वारा आती है, संबंधों के द्वारा आती है, व्यवहार बिगड़ने लगता है, बहुत सारी बातें आ जाती है जिंदगी में। हम ना चाहते हुए भी किसी न किसी से तकरार हो जाती है और ऐसा लगता है कि पता नहीं ये सुलझेंगे भी या नहीं, या रिश्तों में ऐसा ही चलता रहेगा। हेलो,
3: हाँ दीदी नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
1: हाँ जी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग जी। बिल्कुल अच्छे, आप सुनाइए।
3: बस हम भी अच्छे हैं और अच्छी बातें हो रही हैं, अच्छा रिश्ता भी है, दोनों विषय अच्छे हैं, दोनों बात अच्छी है
1: जी।
3: एक जिंदगी की बात कही, जिंदगी आसान नहीं होती है, लेकिन उसके लिए हमको कुछ करके आसान करना पड़ता है।
1: हाँ जी,
3: कैसे करें ये भी सही बात है, और कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है कि जीवन में हम जो रिश्तेदार में रहते हैं, संबंध में रहते हैं, रिश्तों को भी निभाना पड़ता है, और रिश्तों को भी कहीं ना कहीं आज देखते हैं कई रिश्ते टूट रहे हैं
1: जी।
3: और हमारे थोड़ी सी सहन शक्ति भी करनी पड़ती है
1: जी।
3: तो जिंदगी आसान बनाने के लिए दीदी पहले तो एक बात है कि हम ऐसा कोई काम ना करें कि हमको कुछ प्रॉब्लम आए
1: जी।
3: और आसान बनाने के लिए भी दीदी क्या है कि आसान इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और कुछ कहते हैं हमारे गुजराती में कुछ गड़ी पी जाना पड़ता है, जाने पे कुछ सहन करना पड़ता है
1: जी जी जी।
3: और सहन करके सहन किए भी करना पड़ता है, लेकिन सहन की जो हद होती है ये भी सही है। कई बार हम सहन करते हैं तो सहन करते करते करते हम खुद
1: थक जाते हैं
3: कि हमारा भी बेहाल हो जाता है, ऐसा ना हो
1: जी।
3: हम कुछ ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन भी आसान हो जाएगा और हमारे रिश्ते भी बना रहेगा, और हमारे कुछ बर्दाश्त करके भी हम आसानी से रिश्तेदारी निभा सकते हैं। अब देखते हैं, मैं बताऊं दीदी कि जो हम शादी का कुछ मौसम होता है घर पे, और कई रिश्तेदारों को तो इतना मनाना पड़ता है, इतना मनाना है। हमारा कुछ
1: जी,
3: नहीं है, हमने कुछ किया भी नहीं है
1: जी,
3: फिर भी मनाना पड़ता है। इसी वक्त ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तो हमको खुद वहां जाना पड़ता है और कहते हैं कि भाई चलो भाई हमारी कोई भी भूल हो हम बर्दाश्त कर लेते हैं
1: जी जी,
3: और आप आइए और हमारे शामिल हो जाइए हमारे शादी में या कुछ प्रसंग में।
1: बिल्कुल, भले हम इजी वे में उनके यहाँ जाते हो, लेकिन कभी कभी कोई कोई रिश्तेदार थोड़े भाव खाते हैं।
3: हाँ ऐसा होता है दीदी, जो अच्छे लोग हैं तो ऐसा करते नहीं कभी, चाहे कुछ भी हो जाए आसानी से चले जाते हैं।
1: जी जी जी, जाना है तो जाना ही है।
3: कई लोग
1: जी,
3: कई लोग तो दीदी ऐसे ही होते कि जब ऐसा मौका मिला तो यही मौका लेते कि चलो भाई मौका मिल गया है, जो हम कुछ करेंगे तो उसको हम कहेंगे तो करना पड़ेगा, ऐसा लोग कई लोग ऐसे होते हैं। तो बस जिंदगी तो आसान नहीं होते, लेकिन हमको कुछ आसान करना पड़ता है, तो इसी वजह से
1: जी जी जी।
3: ठीक है दीदी, और आपने जो सेना आया है तो मैं बताऊं आपको।
1: हाँ जी,
3: चंदु की चाची ने चंदु के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई।
1: क्या बात है,
3: वो गाना बना दिया मैंने।
1: हाँ जी हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका। जी जी नमस्कार। तो टंग ट्विस्टर देखिए, सुरेश भाई ने भी बोल के सुनाया है, आप भी सुना सकते हो, बहुत ही सरल आपको दिया है, आप आसानी से बोल के सुना सकते हो, शर्माने की कोई जरूरत नहीं। रेडियो मधुबन एक अपना

परिवार है, पूरा ही परिवार रेडियो मधुबन से जुड़ा हुआ है, तो हम सभी परिवार के सदस्य ही हुए, तो इसमें हिचकिचाने की तो बात ही नहीं है, बहुत ही सरल है, मैं सुना रही हूँ, आप जरूर सुनाइएगा। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई, तो बोल करके जरूर सुनाएंगे। हमारे नंबर है 94-1415-1415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज का टंग ट्विस्टर सुना सकते हो। आइए सुन लेते हैं एक गीत, फिर से इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: जिंदगी हंसने खाने के लिए है, पल दो पल इसे खोना नहीं।

0: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में भाई खुशनुमा जीवन की बात चल रही है कि जिंदगी आसान नहीं, आसान इसको बनाने पड़ती है, कुछ सब्र भी करना पड़ता है तो कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है और बहुत कुछ नजरअंदाज भी करना पड़ता है। हेलो, हाँ जी नमस्कार कंचन भाई, कैसे हो आप?
1: बस बहन जी थोड़ा बाहर निकला हूँ बाइक लेके, तो आपका प्रोग्राम अभी बदल सुना तो साइड में रख के बाइक बात कर रहा
0: हूँ। जी जी, तो टंग ट्विस्टर सुनाएंगे आप?
1: हाँ वो तो सुना, सुरेश भाई ने सुनाया, लेकिन मुझे थोड़ा नहीं, अभी थोड़ा बाहर ही हूँ, हाईवे पे साइड में गाड़ी रख के बात कर रहा हूँ।
0: हाँ जी हाँ जी, आपने फोन लगाया तो हम पूछ रहे हैं, आप हाँ, सुनाना चाहो तो भले सुनाइए, नहीं तो कोई बात नहीं।
1: और आज क्या क्या है आपका?
0: आज का विषय नहीं सुना आपने?
1: नहीं सुना तो था, लेकिन रेडियो तो सुनता था, लेकिन बाइक

0: कोई सगे संबंधी है, कोई उग्र स्वभाव का हो तो हमें शांत से पेश आना पड़ता है। घर परिवार में समाज में सबका स्वभाव देख के हमें रहना पड़ता है।
1: जी जी जी, बहुत बहुत आभार आपका कंचन भाई। जी
0: जी बहन जी, थैंक यू
1: जी। तो बहुत ही ये सुंदर विषय है कि देखिए जिंदगी आसान नहीं होती, जो दिखाई देती है लोग हमेशा खुश दिखाई देते हैं, लेकिन उनके अंदर झांक करके देखेंगे तो कुछ न कुछ टेंशन परेशानियां उनके जीवन में भी है। और सुरेश भाई ने बहुत अच्छी बात बताई है कि अक्सर लोग रंग कब दिखाते हैं, जब हमारे घर में प्रसंग आता है, प्रोग्राम आता है, तब लोग भाव खाएंगे, आना है, ऐसे नहीं कि उनको नहीं आना है, लेकिन कुछ लोग क्या है, वो चाहेंगे कि यही मौका है कि इन लोगों से थोड़े से मनुहार कराई जाए, ये लोग थोड़े हमारे सामने हाथ जोड़े, पैर पड़े, फिर देखेंगे। बहुत जनों की आदत होती है, कोई कारण नहीं होता है, कोई भी कारण नहीं, और जब घर में इस तरह शादी ब्याह या कुछ प्रोग्राम आता है और उनको न्योता देने जाते हैं कि भाई ये प्रोग्राम है और आइए, तो उस समय अच्छी तरह बात नहीं करेंगे, फिर पुरानी बातें कुछ हुई होगी, भले गलती उन्हीं की होगी तो भी दोहराएंगे, उस वक्त ऐसा हो गया वैसा हो गया। बहुत सारे ऐसे मैंने देखा है कि वो कहते चोरी और सीनाझोरी, उस समय भी झगड़ा उन्होंने ही किया, फिर भी इस समय भी वो इस तरह नखरे दिखाते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्कार।
1: हाँ जी नमस्कार, रामा भाई बोल रहे हैं? हाँ जी रामा भाई नमस्कार, कैसे हो?
2: ओम शांति। ओम शांति और मजे में।
1: हाँ जी ओम शांति। तो आज का टंग ट्विस्टर सुनाएंगे?
2: आज का विचार भी अच्छा बहुत है। ये उल्टा बोलना है कि ऐसे ही बोलना है?
1: नहीं, सीधा ही बोलना है, जैसे मैंने बोला वैसे ही बोलना है। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई।
2: तो चंदू की चाची ने चंदू के चाचा ने चांदी की चमची से चटनी चटाई।
1: एक शब्द का फर्क पड़ गया, कोई बात नहीं चलेगा, अच्छी कोशिश की है।
2: फिर बताइए।
1: कोई बात नहीं चलेगा। और विषय के बारे में आप क्या कहेंगे, आपके खुद के अनुभव कैसे रहे हैं, जिंदगी के अनुभव थोड़े सुनाएंगे? आपके
2: अनुभव ऐसा है कि जो मेहनत तो सभी को करनी पड़ती है और मेहनत का फल होता है सभी को।
1: इसमें मेहनत की बात नहीं है, इसमें यह है कि जिंदगी में बहुत कुछ हमको नजरअंदाज करना पड़ता है, जिंदगी आसान नहीं है, सब्र करना पड़ता है, तो धैर्यता रखनी पड़ती है, बर्दाश्त करना पड़ता है, नजरअंदाज करना पड़ता है, क्या कहेंगे आप?
2: तो ये रखना ही पड़ता है, ये आपने सभी ने बोला, यही मैं कहता हूं और क्या।
1: जी जी, हाँ जी, आभार आपका। तो बहुत ही ये सुंदर विषय है कि अक्सर, जैसा कि मैंने आपको कहा है, सुरेश भाई ने भी सुनाया है कि जब घर में प्रोग्राम आते हैं तब लोग जरूर उस समय कोई ना कोई रंग जरूर बताएंगे, अपना असली रंग। हेलो, उस समय वो चाहेंगे कि मनुहार करे, और करते क्या करे, क्योंकि आज का समय तो थोड़ा चेंज हो गया। आज का समय में तो आज की युवा पीढ़ी क्या कहती है। हेलो,
3: गुड मॉर्निंग दीदी।
1: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
3: विजय कुमार बोल रहा हूँ दीदी।
1: हाँ जी विजय कुमार जी, स्वागत आपका, कैसे हो?
3: ठीक है, आप कैसे हो?
1: हम भी अच्छे हैं।
3: काफी दिनों बाद बात हो रही है दीदी। प्रॉब्लम हो गया था, मेरा फोन तो खराब हो गया था, और दूसरी बात कि मेरा फोन जो लिया दूसरा तो उसमें ये स्टेशन नहीं पकड़ रहा था, तो काफी मकसद के बाद ये सब किया।
1: अच्छा अच्छा, चलिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
3: यही तो आप जो आज का सब्जेक्ट है जिंदगी के बारे में, तो जिंदगी का तो यही विषय है कि मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि जिंदगी में कोशिश करते रहो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है।
1: लेकिन यहाँ पर तो परिवार की बात है कि जिंदगी आसान भी नहीं होती, सब्र भी करना पड़ता है, बर्दाश्त भी करना पड़ता है, और नजरअंदाज भी करना पड़ता है।
3: सब कुछ करना पड़ता है, परिवार पालना है तो कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है, कुछ सहन भी करना पड़ता है।
1: जी जी जी, अपनों का ही
3: जो मतलब जो आज का जो आपने किया वो चंदू के चाचा वाला जो बताया आपने।
1: हाँ जी,
3: तो उसमें क्या है कि बताओ आप।
1: खाली उसको आपको दोहराना है, टंग ट्विस्टर है,
3: स्पीड से कि स्लो में,
1: मीडियम बोल सकते हैं।

0: आप बहुत स्लो नहीं, बहुत फास्ट ही नहीं, मीडियम बोल सकते हैं। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई।
1: चंदू के चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई।
0: वाह वाह, क्या बात है। बहुत बहुत आभार आपका विजय भाई।
1: हाँ ये दीदी, ये जो पहेली है ना, ये जो अभी है, और वो पके पेड़ पर पका पपीता, और वो सभी हम जब पढ़ते थे तभी ये सब ट्राई करते थे।
0: जी जी जी बिल्कुल, ये बचपन की बातें फिर से याद आ रही है।
1: हाँ, बचपन की, आज आपने बचपन याद दिला दिया। थैंक यू।
0: हम भी बचपन में इस तरह का एक मतलब फ्रेंड्स के साथ चिट चिट करते थे इस तरह बोल बोल के।
1: हाँ यही तो नहीं, आज आज जो आपकी जो पहेली जो आपने दोहराई ना, इसके हमें बचपन याद आ गया था। आज मंगल दीदी को फोन लगा था, दीदी से बात करते हैं।
0: बहुत बहुत आभार आपका,
1: बचपन की याद दिलाने के लिए धन्यवाद।
0: ओहो ऐसा। ओके जी, आभार आभार।
1: ठीक है दीदी।
0: तो बहुत ही सुंदर बात है कि देखिए आज की युवा पीढ़ी थोड़ी चेंज हो चुकी है। आज की युवा पीढ़ी की सोच क्या है, अगर वो आएंगे तो हम भी उनके याद जाएंगे, अगर वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, लेकिन हम हाथ नहीं जोड़ेंगे, मनहार नहीं करेंगे। हम भी इजी वे में जाएंगे, और एक बार प्यार से बुलाया तो वो भी इजी वे में आवे। तो सही है, सही भी है, क्योंकि समय के साथ परिवर्तन जरूरी है। और आज की युवा पीढ़ी अब अभी की लाइफ क्या है, हमारी एकदम फास्ट लाइफ हो चुकी है। पहले तो लोग बाग इतने बिजनेस में मतलब खेती बाड़ी में इनमें ही लगे रहते थे, अब तो आज बच्चे भी बाहर रहते हैं, अच्छी अच्छी जॉब करते हैं, अब उनको इतना समय नहीं कि वो अपनी जॉब छोड़ करके छुट्टियां लेकर के आए और रिश्तेदारों के मनवार करते फिरे, उनको समय नहीं मिलता। पहले तो लोगों के पास काफ़ी समय मिलता था, पहले शादी ब्याह में भी तीन तीन चार चार पाँच पाँच दिन पहले मेहमान आना शुरू हो जाते थे, लेकिन आज तो जैसे कि अभी ये विधि चल रही है तो विधि के कोई 10 मिनट पहले आएंगे, कोई 1 घंटा पहले आएंगे, ऐसा हो गया है। इसलिए समय के साथ परिवर्तन हुआ है। मेरे को याद आ रहा है कि मेरे एक रिश्तेदार है, उनके यहाँ पर प्रोग्राम था और कुछ रिश्तेदार उनसे बिना कारण ही नाराज़ थे। उन्होंने एक बार प्यार से उनको घर पर जाकर के उनकी मनहार की कि भाई ये इस तरह का प्रोग्राम है, ये विद्या आपको आना है। बोले कि देखेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद वो नहीं आए तो दूसरे रिश्तेदारों ने कहा कि अरे आपके वो रिश्तेदार नहीं दिखाई दे रहे, फ़ोन कर दो। वो बोले नहीं, फ़ोन अब मैं नहीं करूँगा, अब मैं अपने घर में विधिया है तो उन विधि को मैं संपूर्ण करूँगा या मैं फ़ोन करता फिरूँगा, अगर वो नहीं आए तो कल मुझे भी नहीं जाना है। और नहीं आए वो ज़बरदस्ती नाराज हो गए तो वो भी फिर उनके प्रोग्राम में नहीं जाते, तो ऐसा हो रहा है। इसलिए बर्दाश्त ठीक है, एक हद तक सभी बर्दाश्त करते हैं, सब्र भी करते हैं, नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं कि चलो जाने दो जाने दो जाने दो, भले वो बोल रहे हैं, भले उल्टा सुल्टा सुना रहे हैं, काफ़ी कुछ बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं, नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर आ जाता है तो लोग थक जाते हैं, फिर यही या तो रिश्ता टूटता है या फिर उनके सामने पूरे ही दंडवत हो जाते हैं, झुक जाते हैं कि भाई आना ही है आपको, कोई भी गलती नहीं है तो। लेकिन समय के साथ चेंज आया है तो अब ऐसा है कि मैं आपके यहाँ आऊँगी, अगर आप मेरे यहाँ आओगे तो मैं भी आऊँगी, बिना मनुहार आपको भी आना है, बिना मनुहार मैं भी आऊँगी। अगर मनुहार किया तो आजकल कोई मनुहार नहीं करते, वो लोग क्या है ज़बरदस्ती नहीं आए, उन्होंने सोचा कि ये लोग फिर से एट ए टाइम आएंगे और हमारे हाथ जोड़ेंगे, वो इंतज़ार करते रहे, इन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई हमने कभी कोई गलती नहीं की, इनके यहाँ पर जो भी प्रोग्राम थे हम इजी वे में गए तो आज हम हाथ क्यों जोड़े, वो भी आओ सरलता से आ जाओ, उनका ही कार्य है आकर के अपने हाथ से करें। लेकिन नहीं आए तो वो प्रोग्राम तो हो गया, उसके बाद लोगों ने बातें की कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो बोले कि हमारी मनवार नहीं की। सामने वाले को पूछा तो बोले कि भाई मनवार जब मैंने कभी करा ही नहीं तो मैं क्यों करूँ, मैं भी आराम से जा रहा था, वो भी आ जाते हैं, नहीं आए तो कोई बात नहीं, कल से मैं भी नहीं जाऊंगा। तो आजकल तो ऐसा ही है जैसे को तैसा, इसलिए ध्यान रखे, बर्दाश्त की हद होती है, बर्दाश्त जो बर्दाश्त की सीमा टूटती है, सब्र की सीमा टूटती है, नज़रअंदाज की सीमा टूटती है तो रिश्ते बिखर जाते हैं। अब इसको संवारना है या बिखेरना है वो अपने हाथ में है, ठीक है। और आज का टंग ट्विस्टर है कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सरल है, चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई। बहुत सरल है, आप जवाब दे सकते हो, बोल के सुना सकते हो। हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो। और आइए फिर से सुनेंगे एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: मैं हूं जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष इंडियन आर्मी, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिए, आज बनाएंगे आशियाना के किचन में बालूशाही। तो बालूशाही आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। इसको आप बना करके 8-10 दिन भी स्टोर कर सकते हैं, खा सकते हैं, 8-10 दिन की इकट्ठी भी बना सकते हैं। तो सामग्री आपको लिखवा रही हूँ। बालूशाही के लिए मैदा लेना है 1 किलो, घी ले लीजिए 1.5 किलो, चीनी भी 1.5 किलो, और दही 100 ग्राम, खाने वाला सोडा थोड़ा सा, मीठा सोडा बोलते ना जिसको, वो। फिर से सामग्री दोहरा रही हूँ। बालूशाही के लिए मैदा लेना है 1 किलो, घी 1.5 किलो, चीनी भी 1.5 किलो, और दही 100 ग्राम, फिर खाने वाला सोडा थोड़ा सा। अब मैं आपको बनाने का तरीका भी साथ ही साथ सिखा रही हूँ कि मैदे को छान लीजिए, छान करके फिर बराबर का घी डालिए मैदे में, ठीक है, और सोडा भी डाल दीजिए, और फिर दही डाल करके अच्छी तरह मथिए। मैदे को इस तरह आपको गूंद लेना है, फिर छोटी छोटी उसकी गोलियां बना लेनी है। उंगलियों से बालूशाही का आकार दे करके इसको थोड़ा सा दबाइए। अब आप कढ़ाई में घी डालिए, घी गर्म हो जाए तो हल्की आंच पर आप बालूशाही को तल लीजिए। अगर ये दोनों तरफ से लाल हो जाए तो फिर निकाल दीजिए। फिर 3 तार की चाशनी बनानी है, उसमें थोड़ी देर तक डुबोइए बालूशाही को, उसके बाद निकाल दीजिए। तो ये बन गई बालूशाही। बहुत स्वादिष्ट लगती है बालूशाही भी, और अक्सर राजस्थान में तो देखा है कि प्रतिभोज होते हैं ना, उसमें बालूशाही बनती है। तो फिर से मैं आपको तरीका सिखा रही हूँ कि मैदे को छानिए, छान करके ये इसमें बराबर का घी डालिए मोवन के तौर पर, फिर सोडा भी डाल दीजिए, दही को मथ लेना है, और फिर मैदे में डाल करके अच्छी तरह गूंदना है, ठीक है। फिर छोटी छोटी इसकी गोलियां बना लीजिए, और उंगलियों से बालूशाही का आकार दे करके दबाइए हल्का सा। अब आप घी रखिए, कढ़ाई में डालिए, गरम करिए, और हल्की आंच पर बालूशाही को तल लीजिए। दोनों तरफ से लाल लाल हो जाए उसके बाद निकाल दीजिए। इस तरह सारी बालूशाही तल लीजिए, और आपको दूसरे गैस पर चाशनी बना देनी है 3 तार की, और बालूशाही को उसमें डालना है, और डुबो डुबो करके उसको निकालना है, ठीक है, थोड़ी सी देर ही उसमें रखना है, फिर निकाल देना है। इस तरह सारी बालूशाही आपको बना लेनी है। तो बहुत ही सरल तरीका, आराम से आप बना सकते हो, और इजी वे में बना करके खा सकते हो। बहुत ही तरीका इसका सरल है, और स्वादिष्ट मिठाई है ये, तो आराम से आप बना सकते हो। चलिए अभी तो एक गीत सुनेंगे, उसके बाद फिर से एक आपको एक रेसिपी खाऊंगी। तो आज का ट्विस्टर आपको सुना रही हूँ। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई, ये टंग ट्विस्टर आपको बोल के सुनाना है। नंबर हमारे है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो, और आज टंग ट्विस्टर सुना सकते हो। अब बढ़ते हैं फिर से गीत की तरफ। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: मैं हूं वर्षा उसगांवकर और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बन रहा था बालूशाही। अब आपको सिखा देते हैं बेसन की खट्टी पूरी, भाई नमकीन और मीठा दोनों के जोड़ा कहलाता है ना, कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो मीठा हो और नमकीन ना हो तो भी मज़ा नहीं आएगा, नमकीन हो और मीठा ना हो तो भी मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए, बेसन की खट्टी पूरी के लिए मैं आपको सामग्री लिखवा रही हूँ। 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल लेना है, 200 ग्राम लेना है बेसन। फिर आप लीजिए चुटकी भर हींग और 1/4 छोटा चम्मच कलौंजी ले लीजिए। हरा धनिया लेना है आवश्यकता के अनुसार, नमक, पीसी हुई लाल मिर्च, ये सब आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए। और 2 चम्मच आपको लेना है अमचूर और आवश्यकता के अनुसार तेल। फिर से दोहरा रही हूँ सामग्री को, ध्यान दीजिएगा। 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल लेना है सबसे पहले तो, फिर 200 ग्राम बेसन ले लीजिए, चुटकी भर हींग लेना है तो 1/4 छोटा चम्मच कलौंजी लेना है, हरा धनिया, नमक, पीसी हुई लाल मिर्च पाउडर, ये सब आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। और 2 चम्मच अमचूर लेना है, आवश्यकता के अनुसार तेल ले लीजिए। अब बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ कि बेसन में 2 चम्मच तेल डाल करके अच्छी तरह मिला लीजिए, ठीक है, मोहन के तौर पर। और अब बेसन को पानी के साथ बहुत ही कड़क गूंदना है, आवश्यकता के अनुसार पानी डाल करके। फिर गूंदते समय सब सूखे व हरे मसाले मिला दीजिए और फिर छोटी छोटी लोई बना करके पूरी बना लीजिए और तेल में करारी करारी तल लीजिए। तो ये बन गए बेसन की खट्टी पूरी। फिर से आपको विधि बता रही हूँ कि बेसन को छानिए, छान करके इसमें जो 2 चम्मच तेल लिए है ना वो डालिए मोहन के तौर पर, अच्छी तरह मिक्स करिए। फिर इसमें सारे मसाले डाल दीजिए, हींग, नमक, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, कलौंजी वगैरह सब डाल देना है। डाल करके अच्छी तरह कड़क गूंद लीजिए, ठीक है। गूंद करके बस लुए बना करके पूरी की तरह बेल लीजिए और तेल में तल लीजिए। तो ये बन गई बेसन की खट्टी पूरी। तो बेसन की खट्टी पूरी तैयार है, बालूशाही तैयार है। तो बस देर किस बात की, लीजिए एक स्वच्छ थाली, थाली में दोनों ही सामग्री रखिए और भी कुछ आपने बनाया हो तो वो भी रख दीजिए। तुलसी पत्र और जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए, ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद अब आप पूरे परिवार सहित आनंद लीजिएगा बालूशाही और बेसन की खट्टी पूरी का, साथ ही साथ एक गीत का। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बन रहा था बालूशाही। अब आपको सिखा देते हैं बेसन की खट्टी पूरी, भाई नमकीन और मीठा दोनों के जोड़ा कहलाता है ना, कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो मीठा हो और नमकीन ना हो तो भी मज़ा नहीं आएगा, नमकीन हो और मीठा ना हो तो भी मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए, बेसन की खट्टी पूरी के लिए मैं आपको सामग्री लिखवा रही हूँ। 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल लेना है, 200 ग्राम लेना है बेसन। फिर आप लीजिए चुटकी भर हींग और 1/4 छोटा चम्मच कलौंजी ले लीजिए। हरा धनिया लेना है आवश्यकता के अनुसार, नमक, पीसी हुई लाल मिर्च, ये सब आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए। और 2 चम्मच आपको लेना है अमचूर और आवश्यकता के अनुसार तेल। फिर से दोहरा रही हूँ सामग्री को, ध्यान दीजिएगा। 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल लेना है सबसे पहले तो, फिर 200 ग्राम बेसन ले लीजिए, चुटकी भर हींग लेना है तो 1/4 छोटा चम्मच कलौंजी लेना है, हरा धनिया, नमक, पीसी हुई लाल मिर्च पाउडर, ये सब आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। और 2 चम्मच अमचूर लेना है, आवश्यकता के अनुसार तेल ले लीजिए। अब बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ कि बेसन में 2 चम्मच तेल डाल करके अच्छी तरह मिला लीजिए, ठीक है, मोहन के तौर पर। और अब बेसन को पानी के साथ बहुत ही कड़क गूंदना है, आवश्यकता के अनुसार पानी डाल करके। फिर गूंदते समय सब सूखे व हरे मसाले मिला दीजिए और फिर छोटी छोटी लोई बना करके पूरी बना लीजिए और तेल में करारी करारी तल लीजिए। तो ये बन गए बेसन की खट्टी पूरी। फिर से आपको विधि बता रही हूँ कि बेसन को छानिए, छान करके इसमें जो 2 चम्मच तेल लिए है ना वो डालिए मोहन के तौर पर, अच्छी तरह मिक्स करिए। फिर इसमें सारे मसाले डाल दीजिए, हींग, नमक, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, कलौंजी वगैरह सब डाल देना है। डाल करके अच्छी तरह कड़क गूंद लीजिए, ठीक है। गूंद करके बस लुए बना करके पूरी की तरह बेल लीजिए और तेल में तल लीजिए। तो ये बन गई बेसन की खट्टी पूरी। तो बेसन की खट्टी पूरी तैयार है, बालूशाही तैयार है। तो बस देर किस बात की, लीजिए एक स्वच्छ थाली, थाली में दोनों ही सामग्री रखिए और भी कुछ आपने बनाया हो तो वो भी रख दीजिए। तुलसी पत्र और जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए, ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद अब आप पूरे परिवार सहित आनंद लीजिएगा बालूशाही और बेसन की खट्टी पूरी का। साथ ही साथ एक गीत का, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो।

0: याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुना ही है, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा है। और आज का टंग ट्विस्टर था, चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई। तो जवाब आज सभी का सही रहा है। विषय में भी आपने बहुत ही अच्छी अपनी राय व्यक्त की है। सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, सुरेश भाई जोटाना से, जीतू भाई खेड़ ब्रह्मा से, और रामा भाई वासना से, विजय कुमार जी, कंचन भाई ने विषय पर चर्चा की लेकिन टंग ट्विस्टर नहीं सुनाया, बाकी सभी ने सुनाया। आप सभी के लिए ढेर सारी तालियां। और अब मैं एक प्यारा सा आपको भाव भजन सुनाऊंगी। आज का अनमोल वचन है कि बात सीधी सी है, आप कुदरत का ख्याल रखिए, कुदरत आपका ख्याल रखेंगे। और अब मैं आपको प्यारा सा भाव भजन सुनाऊंगी, कृष्ण भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन। जग

0: Hi, this is Ravina Tandon, and I take this opportunity to wish Brahma Kumaris with all the success in their love that they've been giving to the world and the social service that they have been spreading all over our planet. I wish you all the best, and I wish that more and more people become aware and follow this true path of what Brahma Kumari teaches of only love and peace. God bless humanity. God bless the Brahma.
1: Radio Madhuban 107.8 FM सुन रहे हैं आप. कार्यक्रम है Love You जिंदगी. और जिंदगी से प्यार हो तो भाई शायरियां बाहर आती हैं, क्रिएटिविटी बाहर आती है और बहुत सुंदर मोमेंट्स लाइफ के हम क्रिएट कर पाते हैं. वो गाना है ना लव यू जिंदगी का, मुझे कुछ लिरिक्स उसके बड़े ही अच्छे लगते हैं. जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय बाय. इतना आसान होता अगर हाय कहना जो अच्छा लगे और बाय कहना जो बुरा लगे, कितना अच्छा होता ना दोस्तों. चलिए इसे और अच्छा बनाते हैं और लाइफ में शामिल करते हैं, क्योंकि ये बात है एकदम प्रैक्टिकल. और हमारे साथ जुड़ गए हमारे एक्सपर्ट्स यानी कि कल्पना जी ग्लोबल अस्पताल से, जो कि साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं. दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है.
2: धन्यवाद आरुषि जी.
1: और हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीनिधि जी भी, जो कि रेडियो मधुबन के जाने माने आरजे भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं. आपका भी बहुत बहुत स्वागत है.
3: बहुत बहुत धन्यवाद आरुषि जी. कल्पना जी बहुत अच्छा लग रहा है वापस लव यू जिंदगी कार्यक्रम में आप दोनों से मिलके.
1: जी, और पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे थॉट्स को रेगुलेट करने के बारे में. बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई थी कि किस तरीके से अपने आप को व्यक्त करना बहुत जरूरी है, थॉट्स रेगुलेशन कैसे बेनिफिशियल है हमारे लिए, वो भी हमने समझा था. एक सवाल जरूर आता है, क्योंकि जब बात आती है ना कि क्या हम सच में थॉट्स रेगुलेट कर सकते हैं, तो कई बार जब लोगों के रिलेशनशिप में ब्रेकअप होते हैं, अलग हो जाते हैं रास्ते, लेकिन वो थॉट पीछा ही नहीं छोड़ता या वो व्यक्ति बार बार याद आता रहता है, तो ऐसे में अगर कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जो थॉट्स रेगुलेट कर पाए और वापस वहीं ना जाए बार बार, तो बड़ा फायदेमंद होगा. क्या ऐसा पॉसिबल है? श्रीनिधि जी आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में?
3: मैं समझता हूँ ये बहुत ही एप्ट विषय है, एक ऐसा विषय है जिस पर अनेक फिल्में बन चुकी हैं.
1: बिल्कुल.
3: और पिछले रोज कोई मेरे को ये बात सुना रहा था कि भाई एक फिल्म में यही घटना होती है कि लड़का और लड़की दोनों का ब्रेकअप हो जाता है और जिनके साथ उनका ब्रेकअप हुआ होता है वो लोग आपस में शादी कर रहे होते, तो इनको लगता है कि भाई हम इनको भूल नहीं पा रहे और ये शादी करने के लिए ऑलरेडी मूव ऑन कर गए. तो ये अक्सर देखने को मिलता है कि जो लोग अपने जीवन की धारा या अपने विचारों को बदल कर आगे बढ़ चुके हैं, उनके आगे बढ़े हुए चीज पर भी कई लोगों को तकलीफ हो सकती है कि इतने जल्दी आगे कैसे बढ़ गए, मूव ऑन कैसे कर. और वो शायद इसलिए तकलीफ में है क्योंकि उनसे वो खुद चीज नहीं हो पा रही है, वो खुद मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं. इसके लिए हम लोग अंग्रेजी में ये जो शब्द इस्तेमाल करते हैं मूव ऑन कर देना, यानी आगे बढ़ जाना, यानी इसका मतलब ये नहीं कि वो मूव ऑन कर जाने से आपका ही भला होने वाला है. अगर आप इस मूव ऑन को पीछे कर दे तो मूव बैक हो जाएगा, यानी पीछे. कोई भी व्यक्ति जीवन में पीछे नहीं जाना चाहता, जीवन में हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है और इसलिए भी संबंधों में भी रिलेशनशिप्स में भी मूव ऑन करना जरूरी है. आपने रिलेशनशिप्स की बात कही, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में है वो बात समझ में आती. कई बार दोस्तों के साथ भी ऐसा होता है, आप अच्छे दोस्त हैं मगर एक लेवल पर आकर आपको लगता है कि ये बहुत ही टैक्सिंग हो रहा है, या आपको लगता है कि नहीं अब हमें दोस्त बदलने की जरूरत है, या ऐसा लगता है कि भाई इसके लिए तो हमेशा मेरे को ही करते रहना पड़ता है और मुझे इन रिटर्न जो सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिलता है. तो ऐसे समय पर लोग दोस्तों से भी मूव ऑन कर जाते हैं. दे चूज न्यू फ्रेंड्स. नए लाइफ में आप गए हैं, जीवन में आगे बढ़े हैं, या आपकी नौकरी चेंज हो गई है, या आपका कोर्स बदल गया है, अब आप कॉलेज से आगे की लाइफ में आ चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में आ गए, आपके नए दोस्त मिल गए हैं. अब आप ये एक्सपेक्ट करें कि जो ग्रेजुएशन का मेरा दोस्त था, ग्रेजुएशन के दौरान वो मेरे से जितना टाइम स्पेंड कर रहा था, अब वो पोस्ट ग्रेजुएशन में, हालांकि वो डिफरेंट कोर्स कर रहा है और मैं डिफरेंट कोर्स कर रहा हूँ, दोनों की अलग अलग दिशाएं हैं, दो अलग अलग चीजें हम पढ़ रहे हैं, अब भी हम एक दूसरे के साथ उतना ही टाइम स्पेंड करें, शायद ये संभव नहीं है. और ये जानना जरूरी है कि जीवन के सफर में हर एक के स्टेशन अलग अलग हैं. हम में से कई लोग पूरे सफर साथ चलें ये उम्मीद पाल कर बैठे तो शायद हमारे लिए मुश्किल हो. और ये भी जानना जरूरी है कि हम सभी हम सफर हैं और हम जब तक एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, एक दूसरे के इस सफर में हैं, तब तक हम स्वीट मेमोरीज क्रिएट करें, इस सफर को अच्छा बनाने की कोशिश करें, एक दूसरे के लिए ये सफर सुहावना हो, सहूलियत भरा हो, इसकी कोशिश हम कर सकते हैं. कब इस ट्रेन की गाड़ी में किसका स्टॉप आएगा और कहां किसको उतरना होगा ये नहीं पता है.
1: नहीं पता.
3: और किसी ने दार्शनिक विचारधारा रखते हुए बात कही है कि स्टेशन आना और गाड़ी से उतर जाना इसका मतलब मौत ही नहीं है, वो व्यक्ति मर गया या उस व्यक्ति का देहांत हो गया ही नहीं है। कभी कभार व्यक्ति उस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर जाते हैं या किसी भी कारणवश हो सकता है, क्या शायद वो फिजिकल डिस्टेंसेस की वजह से हो सकता है। इसलिए बहुत बार लोग कहते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर पाना मुश्किल होता है लोगों के लिए, क्योंकि उस तरीके का इंटरेक्शन नहीं है। और इसकी वजह से अगर व्यक्ति किसी और व्यक्ति को चुन लेता है तो ये नहीं सोचना है कि इसमें आपकी गलती है, मगर साथ साथ ये भी सोचना है कि हम पॉजिटिवली, हमें भी मूव ऑन करने की जरूरत है क्योंकि हम सभी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो बार बार ये जो थॉट्स आते हैं कि हाँ मतलब वो मेरे को छोड़ के क्यों चले गए, मेरे में ही कमी थी, पता नहीं वो क्या चाहते थे मेरे से, मैंने इतना दिया फिर भी उनको, ये क्वेश्चंस नहीं पूछना है। ये क्वेश्चंस आते हैं आपके मन में और मैं समझता हूँ अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हम बीती हुई बातों पे चिंतन नहीं करना है। कहा जाता है कि बीती को चितो नहीं, यानी बीती की चिंता नहीं करनी। और बीती हुई बातों की अगर हम चिंता करते हैं तो हिंदी में और संस्कृत में ये बात कही जाती है, चिंता चितयोर मध्य बिंदु मात्रेण अंतरम, यानी चिंता और चिता के बीच में एक बिंदु मात्र का अंतर है। अगर आप चिता शब्द लिखते हैं और उसके ऊपर बिंदी लगा देते हैं तो चिंता बन जाती है, तो दोनों एक समान है, सिर्फ इतना ही अंतर रहता है। तो इसलिए बीती हुई बातों की चिंता नहीं करनी है और जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ और आगे के लिए हम ये सोच सकते हैं कि कोई बात नहीं, लाइफ की जर्नी है, उनकी भी आगे की यात्रा अच्छी हो, मेरी भी अच्छी हो, उन्होंने इतना समय मेरा साथ दिया, इतना समय उन्होंने मुझे स्नेह दिया, प्यार दिया, कंपेनियनशिप दी, सपोर्ट दिया, मेरे लिए उनके दिल में हमेशा ही अच्छी भावनाएं हैं, मैं हमेशा उनके लिए गुड विशेस और अच्छी चीजें ही भेजूंगा भेजूंगी और मैं अपनी लाइफ के लिए, अपने लिए भी आगे की ओर मैं कुछ नया करने के लिए, कुछ नई चीजों को आने के लिए अपने द्वार खुला।
1: ओके कल्पना जी, आपसे भी ये पूछना चाहूंगी, पास्ट में अगर अटक गए हैं, सेम थॉट्स पैटर्न रिपीट हुए जा रहे हैं, पता है कि हो रहा है लेकिन फिर भी उससे हम अपने आप को निकाल नहीं पा रहे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे, तो क्या कुछ तरीके हैं जो हम लाइफ में अपना सकते हैं?
2: श्री जी की बातें सुनते हुए मुझे दो गाने याद आ गए जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो
1: किसने जाना,
2: जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते,
1: फिर नहीं आते।
2: तो जब उनकी बातें मैं सुन रही थी, मैं सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रही थी अपनी ही लाइफ के ऊपर और कई सारी बातें मुझे रियलाइज हो रही थी उनकी बातों को सुनते हुए कि लोग हमारे लाइफ में आते हैं। और जब मैं अपने जीवन की तरफ देखती हूँ तो जन्म के साथ जो मेरा सफर शुरू हुआ, तो किसी कवि ने बहुत सुंदर बात कही है जो हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है, एकला चालो रे, शायद रविंद्रनाथ टैगोर की ये बात है, ये हमारा सफर अकेले का सफर है जो जन्म के साथ हमने शुरू किया। जन्म होने के बाद हमारे माता पिता उस सफर में वैसे ही जुड़ गए जैसे कि बिल्कुल शुरू के फर्स्ट लाइन में रनिंग करते समय हमारे साथ बहुत सारे साथी होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे भाई बहन मेरे सफर में जुड़ते गए, मेरा सफर आगे बढ़ा, मैं स्कूल गया तो वहां पर मुझे दोस्त और टीचर मेरे सफर में जुड़ गए, थोड़ी दूर उन्होंने भी साथ दिया, उनके भी साथ को मैंने इंजॉय किया, मेरे पीछे के भाई बहन माता पिता थोड़ा सा पीछे रह गए और मैं आगे अपने दोस्तों के साथ निकल गया। आगे चल के मेरे जीवन में एक लाइफ पार्टनर आया, उस लाइफ पार्टनर के साथ मेरा जीवन शुरू हो गया, परंतु केवल लाइफ पार्टनर ही नहीं मेरे सफर के साथ ही थे, उसके साथ बहुत सारे रिश्ते और जुड़ गए और उन्होंने साथ चलना शुरू किया। धीरे धीरे देखा कि पीछे के रिश्ते धीरे धीरे छूटते गए, आगे के रिश्ते आगे बढ़ते गए, कुछ लोग साथ रहे, कुछ ने साथ छोड़ा। और जीवन का यही सच्चाई है कि हमारे सफर में हम अकेले आगे बढ़ते हैं, लोग हमारे साथ जुड़ते जाते हैं। एक बहुत सुंदर पुरानी कविता है जो लमाण जाति के लोग होते हैं ना, लमाण जाति के लोग, वो लमाण जाति के लोग किसी एक जगह पर रुकते नहीं है ज्यादा लंबा समय तक, वो अपना सामान अपने जानवरों के पीठ पर लादकर एक जगह से दूसरी जगह पर सफर करते रहते हैं। हमारे जीवन का भी सफर ऐसा ही है, बहुत सारे लोग जुड़ते रहते हैं, छोड़ भी जाते हैं। अब इसमें ब्रेकअप की जहां तक बात है, वो व्यक्ति मेरे साथ कुछ समय रहा और कुदरतन उसका समय आया साथ छोड़ने का, वैसे ही मेरा कोई रिलेटिव, नजदीकी रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन, बेटा, उनकी अचानक डेथ भी हो सकती है। वो दुख भी ब्रेकअप से कई गुना ज्यादा होता है, क्योंकि एक व्यक्ति आपको हमेशा के लिए छोड़ कर गया। ब्रेकअप के बाद तो हमें पता होता है कि वो व्यक्ति जिससे हमने प्यार किया वो कहीं है और खुश है, इस बात की हमें खुशी होती है। लेकिन जो व्यक्ति हमें हमेशा के लिए छोड़कर जाता है, उसके दुख को भी ओवरकम करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्त हमारे छोड़कर चले जाते हैं तो वो भी ट्रॉमा हमारी लाइफ में हम आगे लेके चलते हैं। तो क्या ऐसे समय पर हम मूव ऑन, जो कहा श्री जी ने, वो एक फंडा अपने साथ यादें लेकर हम आगे बढ़े, ना कि ये सोचे कि वो व्यक्ति ही मेरे साथ हो सकता है, उस व्यक्ति के साथ बुनी हुई यादें लेकर मैं आगे बढ़ूं, शिक्षाएं मैं लेकर आगे बढ़ूं, सफर तो मेरे अकेले का ही है जो मुझे अकेले ही तय करना है।
1: लेकिन हम उन्हें मिस भी कर रहे होते हैं सफर में, उनके साथ जो हम, अब मान लीजिए सिंपल चीजें हैं, आइसक्रीम खाने गए तो फिर अकेले गए तो फिर वो व्यक्ति याद आ जाता है, या फिर कोई और मोमेंट्स में हम अकेला खुद को फील करते हैं, किसी ने हमारी केयर करी होती है, बहुत ध्यान रखा होता है तो वो याद आ जाता है, या उसने कुछ चीजें गिफ्ट की।
2: ऋषि जी, मुझे आपको सुनते हुए ऐसे लग रहा है मैं बच्चों को सुन रही हूँ। नहीं, आइसक्रीम खाते समय मुझे याद आता है। बिल्कुल बिल्कुल याद आता है, जिनके साथ हमने समय बिताया क्यों हम उनको भूले, उन्हें भूलना नहीं है। यही मैंने कहा कि उनके साथ बुनी हुई अच्छी अच्छी यादें हम अपने साथ लेके जाएं, तो हमारी यादों में तो वो है ना, उन्हें भुलाया तो नहीं जा सकता है, बट अच्छी अच्छी यादें हमें जो एंटरटेन करेगी। ये पॉसिबल तो नहीं है, समझो कि किसी माँ का एक बेटा अमेरिका में है, उनका प्यार कम नहीं होता है, वो हर वक्त कनेक्टेड रहते हैं लेकिन साथ नहीं है, फोन से या किसी और तरीके से वो कनेक्ट करते हैं। कोरोना में कई बार हमें मिलने को नहीं मिला कई लोगों से, बट उनकी दूरियां हमने महसूस नहीं की, वो हमारे पास थे, दूसरे कमरे में थे, 15-15 दिन हम नहीं मिले।
1: बिल्कुल ऐसा हुआ है।
2: सो ये हमें अपने आप को सिखाना होगा कि सफर तो मेरा अकेले का है, साथ में बहुत खूबसूरत यादें हैं और उन यादों के सहारे मुझे आगे बढ़ना है।
1: ओके, तो यादों के सहारे आगे बढ़ना है और मूव ऑन का भी हमने कॉन्सेप्ट समझा, जो हम बहुत आम भाषा में यूज करते हैं, जैसे दोस्त कहते हैं लेट्स मूव ऑन यार, अब तुम बहुत हो गया, मूव ऑन करो, या फिर इस जनरेशन में कई बार मानते हैं मूव ऑन इतनी बड़ी बात नहीं है, हम कर सकते हैं आराम से, लाइफ बहुत बड़ी है, उसे एंजॉय करना है तो मूव ऑन करना ही होगा। लेकिन जब हम थॉट्स रेगुलेशन के टॉपिक पे बातचीत कर रहे हैं तो यहाँ पे एक सवाल आता है, मैंने किसी को कहते हुए एक्चुअली सुना था कि जब मैं, मतलब वो व्यक्ति शायद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सुना रहे थे और वो 11th class या 12th class में होंगे, और उन्होंने बोला कि मैं अपनी चीजों में, हर चीज में रेगुलेशन पसंद नहीं करता बिकॉज इट ब्लॉक्स माय क्रिएटिविटी। अगर मैं उसको रैंडम जाने नहीं दूंगा थॉट्स को, या फिर लोगों को, या रैंडम एक्सपीरियंसेस नहीं करूंगा तो मेरी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाएगी, मेरी लाइफ कोई जो एक्सपीरियंसेस हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
3: जब कल्पना जी बात कह रहे थे तो मुझे ये लाइन याद आई कि दूरियों का मतलब फासले नहीं हुआ करते, मगर ये एक सिंपल सी लाइन में कितनी खूबसूरत सी बात कह दी गई है कि सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस होने की वजह से इसका मतलब ये नहीं है कि ये फासले हैं या हम बहुत जुदा जुदा हैं, इसका मतलब ये नहीं। और इसीलिए जब आप मूव ऑन कर भी रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, इसका मतलब आप किसी से दूर जा रहे हैं या फिर आप उनको भूल जाना चाहते हैं। इसके लिए एक बहुत सुंदर शेर की लाइन याद आती है कि याद रखना ही सब कुछ नहीं है मोहब्बत में, भूल जाना भी बड़ी बात। यानी हम लोग ये सोचते हैं कि हम यही सोचते आए हैं कि मोहब्बत का मतलब ये है कि हम हमेशा उनको याद रखें, हमेशा उनकी यादें हमें सतानी चाहिए, और हो सकता है बॉलीवुड में ऐसे गाने बने हुए हैं, तुझे याद न मेरी आए किसी से अब क्या कहना। अब ऐसे गाने सुनकर आपको लग रहा होगा कि हाँ हाँ ये तो एक्चुअल मोहब्बत तो ये है, मगर कवियों ने बहुत सुंदर तरीके से, न सिर्फ ठीक है फिल्मों के हिसाब से गाने बनाए गए क्योंकि वो सिचुएशन के हिसाब से कवियों को बोला गया था कि ऐसे गाने बनाओ, तो जावेद अख्तर साहब जैसे लोगों ने ऐसे गीत लिख दिए, मगर उन्होंने मार्मिक गीत भी लिखे हैं तो तार्किक गीत भी लिखे हैं, उन्होंने हमें समझानी देने वाले गीत भी लिखे हैं कि हम सही तरीके से अपने लाइफ को लीड कर सकें, उसके लिए भी हमें पॉजिटिव इंस्पिरेशन उन्होंने दिए हैं। और ये शेर व शायर यही काम करती, जहां पर हमको पता चलता है कि मोहब्बत के मायनों को समझें, ठीक है एक व्यक्ति हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, देयर इज नो डाउट अबाउट, बट उसका एक टाइम फ्रेम है, वो हमारे लाइफ का सिर्फ इतने ही चंक का हिस्सा बन सकते थे, अब वो किसी और के लाइफ का हिस्सा बन रहे हैं या उनकी आगे की जर्नी कहीं और लिखी हुई है, ये समझना आवश्यक है। बट मैं वो आइसक्रीम खाते हुए याद आए, अच्छी बात है याद आए, बट वो याद आएंगे तो हमें उदास नहीं होना है। उन यादों को आते समय याद दिलाना है अपने आप को

0: नो, आए मेरे साथ तो आइसक्रीम खाया, पता नहीं अब मैं अकेले आइसक्रीम खा रही, तो आप अपने लिए भी पेन क्रिएट कर रहे हैं और हो सकता है शायद उनके लिए भी पेन क्रिएट कर रहे हैं। और ये शायद भले कर्म के जो चीजें हम फिलोसफी में सुनते हैं आप उसके हिसाब से उस पर विश्वास रखें या ना करें, बट इन दिस मोमेंट आप क्योंकि उस चीज को पॉजिटिवली नहीं देख रहे हो, आप अपने लिए पेन क्रिएट कर रहे हो, इसलिए मूव ऑन करना जरूरी है कि आप अपने पेन को खुद क्रिएट कर रहे हैं।
1: खुद क्रिएट कर रहे हैं।
0: तो ये मेरे हाथ में है कि मैं अपने दर्द पर मरहम लगाना चाहता हूं या फिर उस दर्द को खुरेदना चाहता हूं बार बार। तो ये सेल्फ इंफ्लिक्टिंग हार्म है कि अगर मैं अपने आप को हार्म करता हूं तो ये चीज होता है। अक्सर घाव जब भर रहे होते हैं तो जब घाव सूखता है, चमड़ी सूखती है वहां पर, तो खुजली होती है और जितना आप जाएंगे उतना वो घाव फिर से खून बहने लगता है उससे। इसलिए डॉक्टर्स
1: जी
0: कहते हैं, जब इलाज करते हैं तो चिकित्सा कर्मी कहते हैं कि आपको स्क्रैच नहीं करना है,
1: नहीं करना है।
0: उसके ऊपर मरहम लगाइए। अगर आपको स्किन ड्राई होता है तो स्क्रैचिंग होता है, तो इसके लिए आप मरहम लगाइए उस पर, तेल लगाइए या कोकोनट ऑयल लगाइए, मॉइस्चराइजर। ये बोला जाता है, ये हमारे मन
1: बिल्कुल
0: के लिए भी है, हम फिजिकल इंजुरीज के लिए तो ऐसा करते हैं, बट अगर आपको मन के ऊपर भी ऐसे घाव हैं तो उसके लिए भी मरहम लगाना आना चाहिए और ये चीज सीखना पड़ेगा। और सेल्फ रेगुलेशन की जब आप बात कर रहे हैं, ये इसी प्रकार का हीलिंग है कि हम उन थॉट्स को क्रिएट करें जो हमें राहत दे, ऐसे विचारों को क्रिएट नहीं करें जो हमें और आहत करें। और आहत देना या राहत देना ये हमारा ही अपना मन कर रहा है, इसलिए रेगुलेशन करना बहुत आवश्यक है। अगर आप अनचेक्ड छोड़ देते हैं अपने मन को, जैसे आप कह रहे थे बहुत सारे लोग आर्टिस्टिकली अपने एक्सप्रेशन को देने के लिए कहते हैं कि नहीं हम रेगुलेट नहीं कर सकते, हमें अनचेक्ड रहने की जरूरत है। अनचेक्ड रहने की जरूरत तब है जब आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, मगर आप जब अपने जीवन के इन चीजों को डील कर रहे हैं वहां पर अगर आपके मन में कुछ ऐसे विचार आ रहे हैं तो वहां रेगुलेट करने की जरूरत है। और कवियों ने यही चीज की है, जो ये शेरो शायरियां मैंने अभी सुनाई है आपके सामने, ऐसा
1: जी
0: नहीं है कि उनके ब्रेकअप्स नहीं, उनके ब्रेकअप्स को भी उनने पॉजिटिव तरीके से उसके लिए चीजें लिखी। तो यहाँ ये बात पता चलती है कि वो क्रिएटिव जीनियस अपने मन के विचारों की दिशा को सकारात्मक ओर ले चले। मैं एक चीज कहना चाहता, मेरे भाई का लड़का है, मेरा भतीजा, और मैं अक्सर ये बात एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि उसकी
1: जी
0: स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, मेमोरी पावर अच्छी है, और वो इस लाइन को बार बार याद करता है। वो बोलता है, इफ यू हैव गुड मेमोरी यू शुड हैव गुड मेमोरीज। अगर आपकी स्मरण शक्ति अच्छी है तो आपके अंदर स्मृति में अच्छी चीजें होनी चाहिए। जीवन में
1: वाह
0: दुर्घटनाएं भी घटती हैं, मगर अगर आप उसे याद करते रहेंगे बार बार बार बार, तो वही चीज आपकी स्मृति पटल पर अंकित रहेगी। और जो चीज मैं बार बार बार बार करता हूँ वही आदत बन जाती है, वो छप जाती है। इसलिए अच्छी चीजों की आदत डालें, अच्छे विचारों की आदत डालें, अच्छे विचारों को बार बार रिपीट करें, यही सेल्फ रेगुलेशन है। नकारात्मकता से थोड़ा दूर हो जाएं, इतना ही तो करना है।
1: बहुत सुंदर लाइन है, मुझे लगता है याद रहेगी। इफ यू हैव गुड मेमोरी यू शुड हैव गुड मेमोरीज। तो वो अच्छी यादों को जीना जरूरी है, लेकिन उदासी के साथ नहीं, एक सेटिस्फेक्शन के साथ कि यू हैव एंजॉयड दैट। आपने वो समय भी एंजॉय किया, आगे भी करेंगे, अभी भी करेंगे। बहुत सुंदर, और मुझे लगता है बहुत नटशेल में आपने ये बात समझा दी है। कल्पना जी, क्योंकि हमारा जाने का भी समय हो रहा है इस एपिसोड से, तो मैं चाहूंगी कि कोई आपको क्लोजिंग रिमार्क या कोई ऐसी बात आप जो ऐड करना चाहें इसमें, साथ साथ क्या कुछ हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं प्रैक्टिकली मेडिटेशन के माध्यम से जो हमें हेल्प करे इस सिचुएशन में।
2: श्री जी की बातें सुनते हुए मुझे कुछ बातें याद आ रही थी। मेरी एक फ्रेंड से मैं मिली, उसने मुझे कहा कि माई लाइफ माई चॉइस, जो मेरा जीवन है मेरे जीवन की चॉइसेस भी मेरी अपनी होनी चाहिए। मैंने बोला कैसे? कहा कि मेरी लाइफ में जो भी लोग आते हैं मैं उनको वेलकम करती हूँ, और जो जाते हैं उनको कह भीड़ कम हो गई, जिनकी मेरे जीवन में आवश्यकता नहीं थी वो मेरे जीवन से चले गए। आओ तो वेलकम, जाओ तो
1: भीड़ कम।
2: हाँ, आवश्यकता नहीं है, कोई और जुड़ जाएगा। यस, लास्ट में हम यही याद रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं कि मेरा जीवन मेरी चॉइसेस होनी चाहिए, और मेरी चॉइसेस में जैसे कि श्री जी के भतीजे ने कहा कि अगर मेरी मेमोरी अच्छी है तो मेरी मेमोरीज में अच्छी बातें होनी चाहिए, अच्छी मेमोरीज होनी चाहिए। दिस इज वंडरफुल, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी और मैं इसे याद रखूंगी और अपने साथ लेकर चलूंगी। आइए 1 मिनट के लिए हम रुक जाते हैं, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते हैं आज के सेशन पर, और जो कुछ बातें हमने की जरा उन

0: को हम रिवाइज करते हैं, रिवाइंड करते हैं कि बहुत सारी सुंदर बातें निकली। हमने ब्रेकअप के बारे में बात किया, ब्रेकअप के बाद कैसे मूव ऑन करना है उसके बारे में बात किया, एंड देन रिश्तों में कैसे नई ताजगी लानी है उसके बारे में हमने अच्छे अच्छे विचार किए। मेमोरीज जो हमें साथ ले जानी है, जो लोग आते हैं उनको कैसे अपने लाइफ में ऐड करना है और जो जाते हैं उनको कैसे गुड बाय कहना है। तो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर कोई मेरे रिश्ता टूट जाता है या कोई ऐसी डेथ हो जाती है, मेरे अपनों की मृत्यु हो जाती है, सो एक बहुत सुंदर अभ्यास है कि ऐसे समय पर हम एक गुड बाय लेटर बहुत प्यारा सा उनको लिखें, चाहे वो किसी की मृत्यु भी हुई है, चाहे कोई रिश्ता भी टूट गया है या ब्रेकअप भी हुआ है। तो एक बहुत सुंदर गुड बाय लेटर लिख के उनसे मिले, प्यारा सा लिखा हुआ लेटर उनको दे, खुद पर्सनली उनके सोशल मीडिया पर पोस्ट करे और उनको बहुत खुशी से अलविदा कहे। अलविदा कहे, आज सुबह मैंने किसी को अलविदा कहा। एक सिस्टर आए थे इज़राइल से, जहां पर अभी युद्ध चल रहा है, वो यहाँ काफी समय रहे और अब जाते समय उनको दुख हो रहा था इस स्थान को छोड़कर जाते वक्त। सो जाना तो पड़ेगा ही, परंतु अलविदा कहना बहुत जरूरी है। सो अलविदा दोस्तों, आप भी अपने जीवन में खुश रहे, आबाद रहे, न बिसरे न याद रहे। ये कहावत है, न बिसरे न याद रहे। धन्यवाद दोस्तों।
1: बहुत सुंदर कहावत, बहुत सुंदर कविताएं और बहुत सुंदर इंग्लिश की कोटेशन। मुझे लगता है सब कुछ आज हमने बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में समझा। और अगर उसे याद रखें या अपने पास लिखकर भी रख लेना, तो एट मोमेंट जब हम ये चीजें भूल जाती हैं, हमें ट्रैक पे ले आएंगी ये वापस। एंड ये जो कॉन्वर्सेशन है, जितनी प्रैक्टिकल होती है उतनी आर्टिस्टिक भी होती है आप दोनों के साथ, वो बड़ा ही मजा आता है सुनने में और याद करने में भी आसान हो जाता है। तो इन सभी बातों के लिए, हमारे साथ हमें गाइड करने के लिए, हमें हेल्प करने के लिए, आप दोनों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि ये जो लव यू जिंदगी कार्यक्रम में हम हर एक अपनी जिंदगी को आसान बनाने के सफर में हैं और हम एक दूसरे का सफर आसान बनाए, बेहतर बनाए, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, और जिंदगी को बहुत ही प्यार से अगर कहना है, सच्चे दिल से कहना है कि लव यू जिंदगी, प्यार है मुझे तुमसे, तो इस कार्यक्रम को जरूर सुनिएगा, रेडियो मधुबन के साथ जरूर बने रहिएगा। फिलहाल लेते हैं इजाजत, रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

दिन की जगह रात ले लेती है और रात की जगह दिन। आते जाते दिन और रात कुछ न कुछ कहानी सुनाती हैं। दिन भर की कहानी दिल में बसी होती है, जिसे हम रात को याद करते हैं। पलकों की गलियों में नई पुरानी कहानी, कहानी जो सपनों को पंख दे, सात सुरों के गीतों में भी होती है स्टोरी। हर सप्ताह हम मिलते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में, और कार्यक्रम गुलदस्ता भी थीम के जरिए कुछ न कुछ नई स्टोरी आपको सुनाता रहता है। तो आज के प्रोग्राम में हम करेंगे क्या, आज के प्रोग्राम में भी आपके लिए है बहुत सारे सुहावने तराने, सुहावने गीत। गुलदस्ता कार्यक्रम आपके लिए आज विशेष लेकर आया है सोलफुल मैजिक, मैजिकल मेलोडीज, और इन मेलोडीज को सुनते हुए हम इन दिनों भारतवर्ष में जो भी चेंजेस आए चुनाव के कारण, और इस दौरान हमें कौन से एहतियात बरतने हैं, इस पर भी बातें होंगी। तो बहुत ही मजेदार कार्यक्रम है, दोनों मूड को साथ साथ लेकर हम चल रहे हैं। एक ओर प्यार भरे गीत, तो दूसरी ओर प्रैक्टिकलिटी, समाज का क्या है आज का, और यह प्रैक्टिकलिटी हमें क्या कहती है, कौन सी कहानी सुनाती है। बने रहिए स्वर्ण लता के साथ रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते हुए मुस्कुराते हुए।

0: मैं हूं जयप्रदा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: सोलफुल और मीनिंगफुल गीत सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में। आज है शनिवार और आपका फेवरेट कार्यक्रम लेकर आई हूं मैं स्वर्णलता। जैसे इस गीत को हम सुन रहे थे, सुनते हुए हमें यही एहसास हो रहा था कि जब हमें किसी का अपनापन, प्यार भरा साथ और विश्वास प्राप्त होता है तो वह जीवन निखर जाता है। ऐसे ही जैसे हमें मालूम है कि भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जनता द्वारा सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि चुने जाते हैं और ये प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं वो चुनाव से पहले बहुत वादे करते हैं, अपनापन दिखाते हैं और उसके बाद जब वो अपनी बात को जो है प्रूफ करके दिखाते हैं और उसे साबित करते हैं कि हाँ उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही है, वो करके ही दिखाएंगे, तो ऐसे में क्या होता है कि देश के शासन और कानून निर्माण में उनकी जो भूमिका है बहुत अहमियत रखती है। तो आज के कार्यक्रम में हम आपके साथ यही शेयर करना चाहेंगे कि भारत में जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है जिसमें हम वोट देते हैं, वोट के बाद रिजल्ट आ जाते हैं सामने और उसके बाद नागरिक का क्या कर्तव्य होता है, हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सी सेफ्टी मेजर्स अपनाने चाहिए, ये है आज का मुद्दा। बने रहिएगा। एक ओर गीत का मिजाज मिठास से भरा है तो दूसरी ओर प्रैक्टिकलिटी से भरा विषय, तो इन दोनों ही को बैलेंस में रखते हुए हम चलेंगे आज के कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप हो रेडिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।
1: कुछ सोलफुल म्यूजिक का हम मजा ले रहे हैं आज के प्रोग्राम में, और इसमें आपको डुएट सॉन्ग्स भी मिलेंगे तो सोलो सॉन्ग्स भी मिलेंगे। तो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आज हम आप सभी को यही कहना चाहते हैं कि जैसा कि हम सभी को मालूम है कि चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, तो ऐसे मोड पर हमारा क्या कर्तव्य है। तो पहले थोड़ा सा हम इसकी भूमिका थोड़ी और बांध दें कि इन दिनों भारतवर्ष के कई राज्यों में चुनाव का प्रचार प्रसार हुआ और सभी अपना कर्तव्य और कार्य की लिस्ट जनता तक पहुंचा रहे थे। प्रत्येक राजनीतिक दल के अपने लक्ष्य और अपना कार्य करने का तरीका होता है, पर सभी ने एक ही लक्ष्य रखा, देश व रहवासियों का विकास और उनकी उन्नति। वैसे चुनाव के रिजल्ट्स सामने आ गए हैं, तो ऐसे में हमारा कर्तव्य क्या है। हमारा वोट गुप्त है, इसलिए इसकी हम चर्चा किसी के साथ भी ना करें। जैसे कि हमें मालूम है कि हर 5 या 2.5 साल में जो भी बदलाव आते हैं, यह यही दर्शाता है कि कर्म तकदीर व समय का यह खेल है। किसी की बुराई या अच्छाई पर कहीं भी डिस्कशन न करें। ऐसा करने पर हम खुद के साथ और अपने अपनों के साथ क्या कर रहे हैं, सुरक्षा का कवच एक हम तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए अपने अपनों की सुरक्षा हमारे पास ही है। हम बिल्कुल ही उत्तेजित ना हो और ना ही किसी आर्ग्यूमेंट में या किसी भी डिस्कशन में ना जाएं। तो बने रहिए स्वर्णलता के साथ, राज के विषय में मशगूल भी रहें और गीतों को भी तल्लीनता से सुने। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपके खई बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर।
1: सावधान रहे, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।
2: सोलफुल मीनिंगफुल गीत सुन रहे हैं और ऐसे गीत खुशी के विचार उत्पन्न कर रहे हैं मन में, तो वीकेंड शो है, कार्यक्रम है गुलदस्ता, तो ऐसे में हम बहुत ही सुंदर गीत सुन रहे हैं मन को तरोताजा रखने वाले, और साथ ही साथ हम ऐसे विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं जो हमें सुरक्षित रखेंगे। जैसा कि वोट के रिजल्ट्स के बाद हम सबका कर्तव्य होता है कि हम किसी को भी नीचा न दिखाएं, व्यंगात्मक टिप्पणी करने से बचें। ऐसा करने से क्या होता है कि हम किसी की भावना से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो हम इन सभी चीजों से बचें और सबका सम्मान करें। वैसे आज कोई राजनीतिक दल सामने रहेगा तो कल कोई रहेगा, तो इन सब बदलाव की वजह से हम अपना जो आसपास का माहौल है उसको बिगाड़े नहीं। हम अपने घर में भी और समाज में भी जो सुरक्षित माहौल है, सुंदर स्वच्छ माहौल है, उसे हमें इंटैक्ट वैसे ही रखना चाहिए जैसे पहले था। तो आज के प्रोग्राम को आप ध्यान से सुन रहे हैं और गीतों को भी क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सुन रहे हैं अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, कोई ट्रेवल करते हुए तो कोई घर में बैठकर एंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो बने रहिएगा।

0: ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: प्यार भरे गीत या नगमे जो दो दिलों को जोड़े, प्यार भरे गीत जो मूड को तरोताजा कर दे, अपलिफ्ट कर दे, प्यार भरे गीत जो समय को सफल कर दे। ऐसे ही अभी जो समय है जिसमें कोई राजनीतिक दल ने आगे अपने वोट के कारण जो है अपना भाग्य आजमा रहे हैं, कोई फिर से अपना भाग्य आजमाएंगे, ऐसे में अपने विचारों को किसी पर न थोपें। कहा जाता है ना, सफ़े दिन होत ना एक समान। हर समय एक जैसा नहीं होता, हार व जीत पर ही यह दुनिया कायम है। राजनीतिक दल अपने अपने क्षेत्र में सक्षम हैं, देश के विकास व उन्नति के लिए वे भी तत्पर हैं। आज कोई आगे है तो कल कोई आगे होगा, इस पर बिगड़ने या बिगाड़ने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं। हमारा मुद्दा यही है कि हम सब प्यार से जिए और जीने दें, खुद जियो और उनको भी जीने दो, यही है ना हमारे इस प्रोग्राम का मकसद। तो यही शांति को फैलाने का मार्ग भी है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप हैं रेडियो मधुबन पर स्वर्ण लता के साथ, कार्यक्रम है गुलदस्ता।
2: मैंने कुछ खोया है

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खुद से सच्चा संवाद करें, क्योंकि दुनिया के सभी उत्तर आपके भीतर ही छिपे हैं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: मैंने कुछ खोया है, मैंने कुछ पाया है। कोई भी कर्म आप कीजिए, कोई भी कार्य कीजिए, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप अपनाने की कोशिश कीजिए, उसमें हार जीत है, उसमें सुख दुख है, उसमें खोना पाना शामिल है। तो यही बात अप्लाई होती है वोट के रिजल्ट्स पर। जब भी वोट के रिजल्ट्स या नतीजे सामने आते हैं, उस समय हमें क्या करना चाहिए? और अगर अभी अभी आपने रेडियो ट्यून किए हैं, तो आपको हम बता दें कि आज हम बातें कर रहे हैं भारतवर्ष में जो लोकतंत्र शासन प्रणाली है, उसके अंतर्गत जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा देश का प्रशासन चलता है, संचालित होता है। वोट के माध्यम से ही वो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो ऐसे में जब नतीजा सामने आता है, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है कि हम आपस में कोई भी डिस्कशन करके एक दूसरे के साथ मन मुटाव उत्पन्न न करें। इससे हम बचें, हम शांति से रहें, शांत रहें, और देश के लिए क्या अच्छा है या बुरा, क्या सर्वोत्तम है, यह उस समय की मौजूद चुनौतियां स्पष्ट करती हैं। वोट के जो रिजल्ट्स हैं, वह खुद ही खुलासा करती हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। तो बने रहिए स्वर्णलता के साथ, और आज के गीतों का आप आनंद भी लीजिए, और आज के मुद्दे पर जो है विचार विमर्श भी कीजिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें। वह स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद।

0: यार वो आएगी या नहीं?
1: वो आएगी कुकी, तू फिक्र क्यों करता, वो जरूर आएगी।
0: मुझे इतना विश्वास है कुसुम पर।
1: मुझे सुनीता की आवाज पर विश्वास है, वो आवाज मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती कुकी।

0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर हम सब आज सुन रहे हैं फ्रेश थॉट, फ्रेश फीलिंग क्रिएट करने वाले गीत। और आज का विषय यही कह रहा है कि अभी परिवर्तन का समय है और इस परिवर्तन के समय में हम पॉजिटिव बने रहें। हम जो हैं अपने द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि है उन पर विश्वास रखें, उन पर जो है पूरा भरोसा रखें, क्योंकि वे भी देश के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हमारी तरह। तो आज कोई आगे है तो कल कोई आगे होगा, आज कोई पहले जा रहा है तो कल कोई पहले जाएगा। तो इस सत्यता को, इस प्रैक्टिकलिटी को हम अपने मन में बिठा लें, इसे एक्सेप्ट करें और परिवर्तन की इस घड़ी में हम एक दूसरे को सहयोग दें। हमारा अपने पड़ोसी के साथ, परिवार वालों के साथ, दोस्तों के संग मैत्री संबंध कायम रहे, स्थायी रहे, इसी शुभ भावना के साथ स्वर्णलता आज इजाजत चाहती है। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी एक रौनक भरे विषय के साथ। सुनते हुए, मुस्कुराते हुए कायम रहे रेडियो मधुबन पर।

0: ख्वाबों की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज आपको मिलवाएंगे आबू के रहने वाले प्रवीणा जी राणा, जिनकी उम्र है 52 साल और जीवन के काफी अनुभवी है। आपने घर घर में काम किया है, झाड़ू पोछा लगाना, लेकिन अपने बच्चों को अच्छा जीवन दिया है। तो ऐसी मातृशक्ति से आज आपको मिलवाएंगे। प्रवीणा जी नमस्कार।
1: हाँ नमस्कार।
0: प्रवीणा जी कैसे हो आप?
1: बस मजे में।
0: आपके चेहरे की स्माइल देख करके बता रहे कि आप बहुत खुश हो।
1: हाँ दीदी।
0: अच्छा प्रवीणा जी, चलिए अभी वर्तमान के बारे में हम जरूर जानेंगे आपसे, लेकिन थोड़े समय के लिए आप अपने बचपन को याद कर लीजिए। आपका बचपन कहाँ पर बीता?
1: मेरा बचपन गुजरात में।
0: गुजरात में कहाँ पर?
1: पालनपुर।
0: ओ तो तमे गुजराती छो एम ने?
1: गुजराती छो।
0: सुवात छी है। तो पालनपुर तो अपने आबू के पास में ही है।
1: हाँ पास में ही तो है पालनपुर।
0: अच्छा तो पालनपुर में आप कितने भाई बहन, किस तरह आपका बचपन बीता थोड़ा बताएंगे?
1: मेरे 3 भाई थे और 5 बहनें थे। हम पिताजी ऐसे दारू वारू पीते थे, शराब वराब, फिर हम भी दुख से ही भाई बड़े हुए हैं। ससुराल में आए तो ससुराल में ही ऐसा ही हमारे को देखने को मिला।
0: जी जी, ससुराल की बात जरूर करेंगे, थोड़े से बचपन की खट्टी मीठी बातें याद कर लेते हैं। कि आप बता रहे थे आप 8 भाई बहनों।
1: 8 भाई।
0: आपका नंबर कौन सा बनता है?
1: मैं तो लास्ट में हूँ।
0: अरे वाह क्या बात है, आप सबसे छोटे हो, तब तो आपको सभी का प्यार मिला होगा।
1: नहीं नहीं, मेरे से छोटी और बहन थी, इससे बड़ी हूँ। 3 बहनें बड़ी थी हमारे से।
0: अच्छा तो आपका नंबर 7वें नंबर पर, 8 भाई बहनों में आपका 7वां नंबर।
1: 7वां नंबर। हाँ 3 भाई ऑफ हो गए मेरे
0: बचपन में ही।
1: नहीं बड़े होके, शादी शुदा होके, बच्चे बच्चे हैं इनके, 18 आ गए थे।
0: सॉरी, बात करेंगे आपसे इस बारे में भी, लेकिन पहले मैं पूछना चाहूंगी आपने पढ़ाई कहाँ तक की?
1: मैंने नहीं पढ़ाई करी दीदी।
0: आप 8 भाई बहन में आपका 7वां नंबर बनता है, तो कहते हैं कि भाई बहनों को भी रहता है ना, खुद पढ़ाई नहीं करते लेकिन छोटे भाई बहनों के प्रति रुचि रखते हैं कि हमारे छोटी बहन छोटे भाई पढ़ाई करे।
1: हाँ, तो बहुत करा इन्होंने पढ़ाने का, पर हम खेलने कूदने में रहे। ऐसा समझ में नहीं था कि हमारे को पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी।
0: कोई नॉलेज देने वाला नहीं मिला?
1: नॉलेज देने वाला नहीं मिला। मम्मी भी बिचारी, ये भी हमारे छोटे छोटे थे, खूब दुख सुख करके इन्होंने बड़े किए, वो हमारे तरफ ध्यान नहीं दे पा रही थी। हमारी मस्ती में मस्त थे, ऐसे जब पता नहीं था कि हमारे को कभी जरूरत पड़ेगी हमारे को पढ़ने लिखने की, इसीलिए हमने नहीं पढ़ाई करी। बहुत भेजा पर हमने पढ़ाई नहीं करी।
0: अच्छा तो मम्मी रुचि रखते थे पढ़ाई में?
1: हाँ ध्यान नहीं दे पा रही थी मम्मी, क्योंकि
0: 8 भाई बहन इसलिए।
1: हाँ इसीलिए नहीं दे पा रही थी ध्यान। ये दुकान थी हमारे सब्जी की, तो मम्मी तो वहाँ पे व्यस्त रहती थी।
0: अच्छा मम्मी सब्जी बेचते थे। और पिताजी?
1: पिताजी सर्विस करते थे, पर बाकी वो शराब पीते थे।
0: सर्विस किस में करते थे?
1: ये चपरासी की।
0: स्कूल में?
1: नहीं नहीं, ये हॉस्पिटल के अंदर चपरासी थे।
0: अच्छा तो आप 8 भाई बहनों ने मिलकर के आपके पिताजी को समझाया नहीं शराब के लिए, कि भाई नहीं पीना चाहिए?
1: छोटे छोटे थे, क्या समझावे, बड़े भी नहीं समझा पा रहे थे इनको, तो हम तो बहुत छोटे थे इनसे।
0: तो शराब पी करके घर में तो मारपीट नहीं करते थे?
1: नहीं ऐसे झगड़े टंटे होते थे, तो मम्मी बेचारी कहाँ कहाँ ध्यान देवे। ओ मजदूरी करके दुकान चला के सब्जी बेच के हमारा पेट भरने का लावे के हमारे में ध्यान देवे।
0: तो आपके पिताजी सारा पैसा शराब में उड़ा देते थे?
1: सारे पैसा उड़ा देते थे। तो फिर माँ को तो करना है कुछ न कुछ काम।
0: तो आपकी मम्मी को कोई मदद करते थे?
1: नहीं कौन करने वाला है मदद आजकल।
0: नहीं जैसे आपके भाई बहन, जैसे बड़े भाई बहन?
1: बड़े था भाई, पर भाई भी ऐसा ही था, झगड़ा हो एक नंबर का, ऐसा ही था व्यसन वाला।
0: पिताजी तो व्यसनी थे लेकिन भाई कैसे व्यसनी बने, आपके मम्मी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया?
1: भाई ने फिर थोड़े घड़ी पढ़ाई करी, फिर इसने नौकरी करी सरकारी, बड़ा साफ बन गया था ये तो। और इसने फिर कोई हमारी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया था। इसने, हम 5 बहनें थी, 3 भाई थे, तो फिर शादी शुदा हो गया, तो फिर इनका अलग से करने लग गया। फिर पिताजी ऑफ हो गए, रिटायरमेंट हुए, तो फिर इनकी पेंसिल वेंसिल आती थी तो मम्मी इन सबका टेका लेके सहारा लेके हमार को शादी करवाई। घर गृहस्थी वैसा ही हमारी।
0: अच्छा, आप सभी भाई बहन कैसे रहते थे? आपस में कभी झगड़ते थे या फिर खेल खेल में बचपन बीता?
1: बहुत अच्छे से रहे, बहुत अच्छी लाइफ जी हमने, पर पढ़ाई नहीं करी। हंसना खेलना कूदना खाना पीना बहुत अच्छे से खेल कूद करके हम बड़े हुए, कभी झगड़ा बगड़ा नहीं करा हमने कभी किसी से नहीं।
0: अच्छा, आपके मम्मी सब्जी का काम करते थे तो घर का काम कौन संभालते थे?
1: बहनें थी और हमारे से बड़े, हमारी दीदियां संभालती थी सारा काम। फिर ये शादी शुदा होके गए घर पे ससुराल, फिर हम लोग ने करा, हम छोटे थे तो हमने फिर संभाला। फिर मेरी शादी करी गई तो फिर मेरी और छोटी बहन थी, फिर इसने संभाल लिया काम। तो विधवा हो गई शादी करके ससुराल जाते ही, तो इसकी पेंसिल वेंसिल मिली, पैसे वैसे इसके सर्विस करता था आदमी, तो बैंक का ऑडिटर था, तो इसके पैसे वैसे केस बेस करा हम लोगों ने। फिर पैसे थोड़े घने मिले तब मम्मी के पास में ही है।
0: अच्छा, अभी भी आपके मम्मी के पास ही रहते हैं?
1: हाँ, मम्मी के पास में ही है। फिर मेरे भाई और मेरे भाभी जो आदिपुर में रहते थे, फिर वो भी जल के मर गए, तो इसके बच्चे इसके हवाले आ गए, तीन लड़कियां एक लड़का।
0: जल के मर गए?
1: तो फिर
0: कुछ हादसा हुआ क्या?
1: हाँ, ऐसे चक्कर आए, आग लग गई थी तो अंदर ही थे कमरे में, तो ये जल गए। फिर भाई भी टेंशन टेंशन में, ऐसा भाई को अटक आ गए। फिर तीन बच्चियां और एक लड़का, ये मेरी छोटी वाली बहन ने शादी करी, तीन लड़कियों की, अब भतीजे की शादी करके आई। सारा हमारा पियर में वही संभालती, भाभिया नहीं संभालती, हमारी छोटी लड़की संभालती है।
0: अच्छा, बहुत, देखो कहते हैं कि कहाँ से कहाँ नसीब लेके जाता है। तो प्रवीणा जी, ये सब बातें हुई तब आप वही थे या आपकी भी शादी हो चुकी थी?
1: नहीं, मेरी शादी हो चुकी थी, मैं ससुराल में थी, मेरे बच्चे थे, दो लड़कियां थी मेरे पास में।
0: अच्छा अच्छा, चलिए। और आपकी बहन जैसे बहुत कम एज में उनके हस्बैंड ने शरीर छोड़ दिया था, उनकी डेथ हो गई थी, तो दूसरी शादी नहीं करवाई?
1: नहीं, वो कहे के नहीं, मेरे को गिफ्ट दे के गए बोले भगवान। भाभी ऐसे ही बोलती थी के बोले ये बच्चे तुम्हारे को ही दे के जाऊंगा मैं, पर ऐसा मालूम नहीं था कि भाभी ऑफ हो जाएंगे, तो इसके ही हवाले आ गए सारे बच्चे। तो सबकी शादी कर ली इसने बहुत अच्छे से, जैसे माँ नहीं निभावे ऐसा इसने कार्य करा है, माँ से भी बढ़कर इसने करा है।
0: बच्चे भी रिस्पेक्ट देते?
1: हाँ, इसको ही मम्मी बोलते, मेरी बहन को बुआ को ही मम्मी बोलते, माँ को और सबको। घर गृहस्थी संभाल रही है हमारे पियर में, बहुत अच्छे से जिंदगी बिता।
0: वो कहते ना, त्याग उन्होंने भी किया ना,
1: इसने जीवन त्याग कर दिया। इसने शादी शुदा था, घनी शादी करने वाले तो आए इसके जीवन में, पर इसने मना कर दिया कि मेरा सुख संपत्ति यही है बच्चे। तो बच्चे बहुत इज्जत करते हैं इनकी, हमारे सारी पांचों ही फुआओं की इज्जत बच्चे बहुत करते कि नहीं हमारे मम्मी पापा यही है।
0: जी जी, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि चलिए बड़े अपना फर्ज निभाते हैं लेकिन छोटे भी उस बात को महसूस करते हैं, तब जाकर के मजा आता है रिलेशन में, कि रिलेशन मधुर बनते हैं। तो चलिए प्रवीणा जी, आपसे और भी बातचीत करेंगे, और भी अनुभव सुनेंगे, परंतु अभी ले लेते हैं एक ब्रेक। बने रहिएगा मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, वंदे मातरम कार्यक्रम अभी बाकी है, प्रवीणा जी हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन सुन लेते हैं गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: वंदे मातरम में पुनः आप सभी का स्वागत है। प्रवीणा जी राणा जो आबू के रहने वाले हैं और आपके बचपन के बारे में काफी अनुभव हमने सुने हैं और भी सुनेंगे, तो प्रवीणा जी फिर से आपका स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: अच्छा प्रवीणा जी, बचपन की बातें आपकी चल रही थी, कैसा लग रहा है बचपन की बातें सुन के?
2: बहुत बढ़िया लग रही है मेरे को, ये बचपन अभी भी याद आ रहा है मेरे को।
1: सही कहा, बचपन में लौट आए हैं तो बचपन लगता है कि जैसे बचपन ही बना रहे, बड़े होवे ही नहीं।
2: बड़े होके तो और जिम्मेदारियां पड़ जाती है अपने सिर पे, घर गृहस्थी की, सगे संबंधी की, सबकी।
1: जी जी, तो आप बता रहे थे कि 8 भाई बहनों, आपके मम्मी ने काफी स्ट्रगल किया और आपको बड़ा किया साग भाजी बेच बेच करके, तो और भी आपके परिवार में किसी का सहयोग मिलता था या आपके मम्मी सभी कुछ करते थे?
2: नहीं, ऐसे मेरे मम्मी करते थे, थोड़ा घना देते थे पापा, थोड़े घने पैसे बचा के ऐसे थोड़े घने लेके आ जाती थी मम्मी झगड़े करके, बच्चों को संभालने के लिए थोड़ा घना मम्मी ने करा।

0: वो सब कुछ करना था तो फिर हमने पढ़ाई भी नहीं करी, ना कोई कढ़ाई बुनाई करी, कुछ भी नहीं करा।
1: अच्छा, और आप कितने साल के थे और आपकी शादी हुई?
0: 15-16 साल की थी।
1: 15-16 साल की एज में आपकी शादी करवा दी?
0: तो
1: शादी करके आप सीधे आबू आए?
0: सीधे आबू आए।
1: तो शादी के बाद आपके जीवन में किस तरह के परिवर्तन आए?
0: बहुत झेलना पड़ा मेरे को, बहुत संकट का सामना करना पड़ा, पढ़ करके रही।
1: मतलब कैसे? जैसे आपके पियर में बहुत बड़ा परिवार था, ससुराल में कितना परिवार था?
0: ससुराल में थे पर कम परिवार था, पर धंधा रोजी नहीं थी। फिर मैंने काम धंधा चालू करा, मैं बंगलों घर घर में काम करती थी, झाड़ू पोछे बर्तन ऐसे करके मेरे बच्चों को बड़े करे मैंने।
1: तो आप शादी करके अपने ससुराल में आए, उस समय सभी साथ में रहते थे परिवार वाले?
0: नहीं, जेठ जेठानी अलग रहते थे, मेरा देवर मेरा ससुर ये हमारे साथ में रहते थे, ननद बनंद वो दोनों मियाँ बीवी अलग रहते थे।
1: और आपके हस्बैंड कुछ नहीं करते थे?
0: नहीं, दुकान थी किराने की, पर कहते हैं कि एक जना कमाने वाला होते, 100 जने खाने वाले होते तो कहाँ से चले। फिर जैसे तैसे करके इन्होंने फिर सप्लाई करी, माल करा, धंधा करा, अमूल्य के पे अहमदाबाद जाके पैकेट लेके आते थे, करा इन्होंने भी, और मैंने भी डट के सामना करा।
1: तो आप जैसे झाड़ू पोछा करने के लिए जाते थे, कभी पियर में भी किया आपने झाड़ू पोछा?
0: नहीं, वहाँ की बहुत अच्छी जिंदगी जीती मैंने, बहुत अच्छे से जीवन जिया मैंने वहाँ पर।
1: जी जी, तो यहाँ पर आप झाड़ू पोछा के आपको मतलब अंदर से आपको आई कि मुझे कुछ करना चाहिए, या परिवार वालों का दबाव था?
0: नहीं, मेरे को अंदर से कि मैं मेरे आदमी के साथ में कंधा मिला के चलूं। ऐसे ही झोपड़ा था, घर मकान नहीं था हमारे, झोपड़ा था ससुर का दिया हुआ, फिर इन्हों को मैंने बनवाया, बहुत ऐसे मैंने संकट से झीला है।
1: तो आपके जैसे पियर वालों ने देखा नहीं था आपका ससुराल?
0: नहीं देखा था इन्होंने, देखा था क्योंकि मतलब गरीब लोग है, मेरी बच्ची को रखेंगे ये लोग अच्छे से, पर मैं अब पियर वालों को हम नहीं बताते थे कभी कि मेरे को ये तकलीफें पड़ी, ये तकलीफें से सामना करना पड़ा। पियर वाले हमारे में हेल्प करते थे, मम्मी फिर मम्मी को दिखा कुछ कि बेटी मेरी तकलीफ में, तो फिर ये हेल्प करते थे थोड़ा घनी, हमारे को थोड़ी घनी कोई भी मेरी जरूरत के सामान थोड़ा घना देते थे, करते थे।
1: जी जी, तो इधर आपके कितना बड़ा परिवार था, जैसे आप कह रहे थे ना ननन देर सास ससुर सभी?
0: सास नहीं थे, ससुर थे, फिर ननद थी दो, फिर मेरा आदमी ने घर वाला ने सारा करा।
1: अच्छा, और किराने की दुकान अकेले आपके घर वाले चलाते थे? हाँ, दुकान अच्छी चलती थी?
0: नहीं चलती थी, फिर वो लॉस में आ गए थे, दुकान बंद पड़ी गई, लॉस में आ गए, फिर ऐसे ही छूटी मजूरी करी, धंधा कर, पेट पालने के लिए तो कुछ तो करना ही पड़ता है, इतने पैसे ही नहीं थे कि हम सामान डलवावे किराने के और दुकान खोले वापस, इतना कुछ था ही नहीं। बच्चे थे छोटे छोटे थे, मैं भी काम पे जाती थी, वो भी इनके काम करते थे, जैसे तैसे करके थोड़ी घनी बचत करके फिर ये मकान करवाया बनाया मैंने।
1: जी जी, तो जैसे आप फर्स्ट बार झाड़ू पोछा करने, तो शादी के कितने समय बाद आपने ये काम चालू किया?
0: मैंने 5-6 साल बाद।
1: अच्छा, 5-6 साल के बाद आपने ये झाड़ू पोछे का काम चालू किया। तो 5-6 साल आपने क्या किया घर के कामकाज?
0: छोटे बच्चे थे और घर का ही काम करके बैठी रहती थी।
1: और कहते हैं ना कि जैसे घर में कमाई नहीं आती है तो अक्सर तू मैं में होती है, क्योंकि कुछ न कुछ तो घर में चाहिए होता है रोजी। तो कभी आपके साथ भी ऐसा होता था, आपके हस्बैंड के साथ कभी झगड़ा?
0: हाँ, होता था, बहुत होता था, कोई सगे वाले आते थे करते थे, मैं बहुत तकलीफें सहन करती थी, फिर किसी को कुछ अच्छा से इनकी सेवा नहीं कर पाती थी तो मैं गुस्से होती थी, झगड़े करती थी कि भाई तुम ऐसा ला के नहीं देते। फिर मैंने किसी ने आप जैसे किसी ने मेरे को बताया कि ये बैठने से तो कुछ नहीं होगा, बोले काम धंधा पकड़ लो, बोले फिर मेरे को ऐसा लगा, फिर एक घर लिए दो घर लिए ऐसे करके मेरा भी कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता ही गया, करती होंगी 4-5 हजार का काम, 10-12 घरों में काम करती थी तो 4-5 हजार रुपये आते थे।
1: कितने रुपये से आपने शुरुआत की, फर्स्ट काम आपने क्या किया और कितने रुपये लिए मंथली?
0: 250 रुपये में झाड़ू पोछे बर्तन कपड़े कर रहे मैंने।
1: ये कितने साल पहले की बात होगी?
0: ये होगी दीदी

0: ज्यादा टाइम के
1: पर 250 रुपए में सारा ही काम।
0: एक 550 रुपए ऊपर नीचे के झाड़ू पोछे बर्तन कपड़े सारे करती थी मैं 550।
1: घर का सारा काम करना, उसके बाद बाहर का करने जाना।
0: फिर बाहर का करने जाती, बच्चों को रात को तैयार करके सोती करती। 1:30-2 बजे तक तो मैं रात का घर का काम करती थी मैं। वो काम करके बच्चों को सुला के, फिर बच्चों को ब्रश करवा के चाय पिला के, फिर बच्चों को स्कूल भेजती, फिर मैं काम पे जाती। तो शाम को 4:30-5 बजे घर पे आती तो बच्चे मेरे घर में ही खेलते रहते बंद करके, मैं काम करके आती।
1: जी, और परिवार में आपके अन्य सदस्य भी थे ना, ननंद दियर, फिर इनको कौन संभाल?
0: तो शादी हो गई थी दीदी, पर वो आते जाते रहते थे। इसके आदमी तकलीफें देते थे तो भाई के ही घर पे आवे ना, कहने का जा रहे। माँ बाप तो थे नहीं, तो भाई भाभी हम समझदार थे तो हमारे को ही रखना पड़ता था सबको। जेठ जेठानी ने कभी नहीं रखा इनको, मैं अभी भी मैं ही संभालती हूँ इनको। कोई भी तकलीफ आती करती तो मैं ही जाती हूँ, मैं ही संभालती हूँ दोनों बहनों को।
1: बहुत अच्छी बात है प्रवीणा जी, कहते हैं कि अगर हमारा व्यवहार अच्छा होता है तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। और आज आपकी काफी स्थिति चेंज हो चुकी है, इस पर भी जरूर हम गौर करेंगे। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक गीत, तो आइए और भी सुनेंगे आपके अनुभव। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

0: मैं हूँ वर्षा उसगांवकर और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम और प्रवीणा जी राणा हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीणा जी, जैसे आपने अपने जीवन के काफी अनुभव सुनाए हैं, आपने बताया है कि आप पालनपुर से शादी करके यहाँ आए, तो देखिए गुजरात के कल्चर और राजस्थान के कल्चर में काफी भिन्नता है, तो यहाँ आकर आपको अच्छा लगा या एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगा?
2: समय लगा था दीदी, मेरे को बहुत समय लगा था। ये हिंदी बोलना नहीं आता था और राजस्थान बोली नहीं आती थी मेरे को। अब मैं सारा में सेट हो गई हूँ।
1: जी जी, अब तो इतने साल हो गए। जो
2: मेरे को हिंदी बोलना नहीं आता था, मैं गुजराती में बातें करती थी। ये हिंदी क्या बोलते हैं क्या समझ में नहीं आ रही था मेरे को कि कैसे बोलते हैं हिंदी ये लोग। अब सब समझ गई हूँ।
1: वो कहते हैं कि एक पत्थर को भी पीट पीट करके मूर्ति बना देते हैं, उसको भी ठोक बजा गए तो इंसान तो फिर एक्टिव हो ही जाता है। लेकिन जब आप पहली बार इधर आए तो मतलब आपके पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया कि हमारी बच्ची गुजराती, मतलब हम गुजरात के रहने वाले राजस्थान में देंगे तो ये कैसे उस कल्चर को अपनाएगी, क्या करेगी? क्योंकि भाषा का ही ज्ञान नहीं है तो कौन क्या कह रहा है समझ में ही नहीं आता।
2: नहीं, मेरे पियर वालों ने ऐसा ही सोचा था कि धीरे धीरे सीख जाएंगे, अच्छे घर में जा रही मेरी बच्ची तो बोले धीरे धीरे सीख। फिर पिताजी शराब बरब पीते थे करते थे तो फिर मम्मी कहे कि मेरी इज्जत रह जावे। आजकल टाइम खराब है बोले बच्चिया, बोले मेरे पांच लड़कियां है, इसे करके मम्मी ने फिर जाता दे दी थी बेटियों को। देखा नहीं के बोले हमारी कास्ट में ही दी सब जगह पांचों बहनों के।
1: जी जी, वहाँ सब यही सोचते ना, पहले इतना ध्यान नहीं देते थे कि वहाँ चलो अपने आप जाएंगे तो घर में सब ठीक हो जाएगा, यही सोचा होगा।
2: तो हम अच्छे से ही रह रहे हैं पर तकलीफें तो घनी हैं।
1: जी जी, पर जैसे आप इधर आए है ना, तो फिर आप कैसे समझते थे? आपको हिंदी नहीं आती थी, आपको राजस्थानी नहीं आती थी, तो कोई कुछ कहता तो आप कैसे समझ पाते थे?
2: समझ आती थी, थोड़ी घनी आती थी, मैं ज्यादा जवाब नहीं देती थी इन लोगों को। ऐसे ही घूंघट में रहना, करना मान सम्मान से रहना, ये राजस्थान में बहुत मैंने देखा है यहाँ पर।
1: तो उस समय आपके हस्बैंड साथ देते थे आपका?
2: बिल्कुल साथ देते थे मेरे को।
1: तो कोई चीज अगर समझानी हो तो आपके हस्बैंड समझाते थे कि इसको ये बोलते? गुजराती आती थी उनको?
2: नहीं, वो थोड़ी घनी समझ में आती थी इनको। दुकान थी वहाँ पे, कोई गुजराती रहते थे थोड़े घने, तो उनकी लैंग्वेज इनको समझ में आती थी, फिर वो मेरी भी लैंग्वेज समझते थे कि मेरे घर वाली वो कहना चाहती है। फिर धीरे धीरे ऐसे करके मैं भी समझी, मेरे को समझे, मैं इनको समझी।
1: चले, आपके पारिवारिक तंगी थी, पैसों की तंगी थी, बाकी घर में शांति थी?
2: हाँ, पैसों की तंगी थी पर घर में शांति थी। फिर मेरे हस्बैंड के साथ में मैंने भी काम धंधा खूब करा।
1: तो जैसे आपने झाड़ू पोछा करने की सोची तो आपके हस्बैंड ने मना तो किया होगा कि नहीं करना है?
2: हाँ, मना करते थे पर कहते हैं कि एक बार इंसान को पैसे हाथ में आ जाते तो फिर इंसान को लालच सी पड़ जाती। मैं मेरे काम काज में इतनी मस्त थी कि किसी के सामने ध्यान नहीं देती थी, खाली मेरे बच्चों के अलावा कि भाई मेरे बच्चे पढ़ लिखे करे, इसके अंदर ही ध्यान देती थी, ज्यादा नहीं।
1: तो आप अपने बच्चों को छोड़ करके फिर इस तरह आपने शुरुआत की, तो आपके ससुर जी ने मना नहीं किया कि ये काम नहीं करना है, कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाया?
2: हाँ, ऑब्जेक्शन तो उठाए थे इन्होंने के बोले नहीं करना है ऐसा काम, बंगलों का काम तो इसमें क्या हो गया, कोई चोरी चिनाली तो कोई खराब धंधे तो करने जाते नहीं, करते अच्छे लोगों के मुंह ही लगते, अच्छे घर में जाते, अच्छे संस्कार पाते अपन, अच्छों के मुंह लगते था तो इसीलिए फिर हमने मैंने काम धंधा जारी रखा।
1: नहीं, कहते हैं ना कि भाई चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, लेकिन काम करना पाप नहीं है, काम छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता है, काम काम ही होता है।
2: काम काम ही होता है दीदी, इसीलिए मैंने काम को खूब अहमियत दी।
1: जी जी, मेहनत की आपने और मेहनत का फल तो मीठा ही होता है। तो आप मतलब पूरे दिन आप बाहर का काम करते थे, घर का भी काम करना, फिर बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, फिर आप रेस्ट कब करते थे?
2: 2-3 बज जाते थे सोते करते, सुबह फटाफट 7 बजे तो उठ जाना पड़ता था मेरे को, फिर बच्चों को नाश्ता वास्ता करवा के फिर स्कूल भेज के फिर 9 बजे में थोड़ा घर का काम करके फिर 9 बजे काम पे जाती।
1: सुबह 9 बजे?
2: सुबह 9 बजे तक तो मैं फ्री हो जाती थी घर का करके, तो 15-16 घर के काम करती थी
1: बहुत काम करते थे, तो कहते हैं कि भाई काम करने जाते हैं तो कोई किसी के यहाँ पर कोई फंक्शन है या फिर भोजन बनाया बच गया वो भी हेल्प मिल जाती है, बच्चों के कपड़ों की भी हेल्प मिल जाती है, तो आपने इस तरह की हेल्प ली कभी?
2: नहीं दीदी, मैंने पैसों की अहमियत दी, मैंने ऐसी हेल्प में कभी लेती ही नहीं थी। मैंने मेरे घर की मिर्ची रोटी खिलाई होगी पर मेरे घर की खिलाई है मेरे बच्चों को।
1: खुददारी से जीवन जिया,
2: दूसरे कोई देते बेचारे बापड़े करके मैंने जीवन नहीं जिया। मैंने सामना करा, काम धंधा करा, मेरे बच्चों को अच्छा खिलाया पिलाया, भले थोड़ा लाके खाते थे पर अच्छा खाते थे।
1: जी जी बिल्कुल, कहते ना ये भी अपना अपना स्वाभिमान होता है, काम करना गुनाह नहीं है लेकिन स्वाभिमान में रहना ये एक विशेषता है।
2: बस यही मेरा बड़पन है कि मैं मेरे ही स्वाभिमान में रही हूँ।
1: जी जी, तो आपके जैसे बेटियां भी है तो आप अपने बेटियों से क्या अपेक्षाएं रखती है, मतलब किस तरह की अपेक्षाएं रखते हैं? जैसे आपके तो पेरेंट्स में मतलब पिताजी तो शराब पीते थे, माँ बेचारे सब्जी का काम, इतने भाई बहनों की पालना करना, तो उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप क्या चाहते हैं? आपकी बेटियां पढ़ रही है?
2: नहीं, मेरी दो बेटियां ससुराल है और एक छोटी वाली ये मेरे पास है।
1: तो आपने अपने बच्चों को पढ़ाया? आपने तो पढ़ाई नहीं की पर आपके बच्चों को तो पढ़ाया, बेटियों को?
2: हाँ, एक सातवीं क्लास पढ़ी, फिर वो तकलीफें घर के अंदर, वो मकान बना दिया, फिर तकलीफें बहुत आई हमारे को, फिर बच्चियों ने दोनों बहनों ने स्कूलें छोड़ दी। फिर
1: घर के अंदर मकान बना दिया बोले तो?
2: नहीं, झोपड़ा था, मैंने मकान बनाया, थोड़ा कर्जा हो गया था, फिर बेटियों ने पढ़ाई छोड़ दी, फिर घर में तकलीफ देख रहे थे, तो फिर इन्होंने बिचारियों ने काम करा दोनों बहनों ने।
1: देखिए पढ़ाई का तो अभी गवर्नमेंट के इतने सारे नियम है कि गवर्नमेंट फ्री में पढ़ाई कराती है, तो बेटियों को तो शुरू से मेरे ख्याल से सरकारी स्कूलों में फीस नहीं लगती है।
2: नहीं, सरकारी स्कूल थी पर दीदी फिर पूरा नहीं जाता था घर में, सरकार इतना तो नहीं देती थी हमारे को कि हमारा पेट भरे, इसीलिए फिर बच्चियों ने फिर मम्मी कहे तुम्हारे साथ में लगूंगी काम धंधे पे, फिर ये हमारे साथ में हम तीनों माँ बेटियां काम करते।
1: अच्छा, बेटियां भी हेल्प कराने आते थे आपके?
2: छोटी थी तो ये मेरे हेल्प करवाने आते, फिर दिखने जैसी हुई, फिर सगाई करी, शादी करी, इनका घर गृहस्थी ये संभाल रही है। छोटी वाली थी, इसने आठवीं पास करी है, इसने छोटी वाली ने, वो भी फिर बहने शादी करके गई, तो फिर इनों को भी ऐसा लगा के भाई मम्मी अकेले बेचारे करते थे, इसने स्कूल छोड़ दी, फिर घर पे बैठ के एग्जाम दे रही थी, फिर वो दे ही नहीं पाई बापड़ी, काम धंधे के आगे पढ़ाई नहीं कर सकी।
1: अच्छा, तो अभी छोटी वाली बेटी भी मतलब पढ़ाई आठवीं तक पढ़ाई करके छोड़ दी और आपके साथ हेल्प करते?
2: हेल्प करती मेरे साथ।
1: तो अभी आप क्या करते हो काम?
2: अब बेटा कमाता है, थोड़ा घना चलता रहता है जैसे तैसे, बेटी अभी जाती थी काम पे, फिर इसने छोड़ दिया, छोरी कपड़ों की दुकान पे जाती, इसने छोड़ दिया अभी।
1: अच्छा, कपड़े की दुकान पर जॉब करते?
2: जॉब करती थी तो उसने छोड़ दिया, तो अभी ये अभी करने सोच रहे हैं भाई कहाँ कहीं अच्छा मिल जावे तो वापस लग जाऊं।
1: जी जी बिल्कुल, तो प्रवीणा जी और भी आपसे हम आपके अनुभव सुनेंगे, परंतु समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो ले लेते हैं एक ब्रेक। बने रहिएगा मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, वंदे मातरम कार्यक्रम में सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। प्रवीणा जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीणा जी, अपने जीवन के उतार चढ़ाव सारी बातें आपने बताई है कि किस तरह आपने स्ट्रगल किया है, बच्चों को बड़ा किया है। बच्चे बड़े होने के बाद आपको काम करने देते थे या फिर आपने काम छोड़ दिया?
3: नहीं, बच्चों ने मना करा कि मम्मी आपने बहुत संघट करा है, बोले अपनी अब मम्मी हम जाएंगे तुम खाओगे बैठ के, घर को संभालो। काम धंधे करने में कोई खराब नहीं है।
2: तो आपके हस्बैंड के बिजनेस सेट हुआ या नहीं हुआ?
3: नहीं, मेरा हस्बैंड तो ऐसा ही धंधा करता है, यही खुली मजदूरी ऐसे ही करते हैं। तो ऐसे कुछ मांगते हैं तो दे देते हैं, बाकी मैं जरूरी नहीं समझती। अभी बच्चे संभाल रहे तो मैं इनके पास ये इनका छो करते है, इसीलिए मैंने काम धंधा बहुत करा पर इज्जत की रोटी खाई मैंने। मैंने शान से जी हूँ, शान से ही वही रहना है मेरे को। इसीलिए मेरे बच्चे कह रहे हैं कि बोले नहीं काम धंधा, बोले मम्मी आपने खूब करा अब मत काम करो।
2: जी जी बिल्कुल, कहते हैं कि काम करने की शर्म नहीं है लेकिन इज्जत से रहना ये बहुत बड़ी बात है। तो आप बहुत सारे घरों में जाते थे काम करने के लिए, कभी आपके काम से किसी ने नाराजगी जताई?
3: नहीं, सब खुश थे, मेरे को देख के बहुत खुश हो जाते थे कि हमारे हंसमुख आ गई। मैंने कभी ऐसा दुख कभी मन पे ही नहीं लाई कि मेरे को इतनी तकलीफ है, मैं इतनी दुखी चल रही हूँ, सबके सामने हंस के सामने आई हूँ। तो सब काम वाले, सब बंगलों वाले, सब सेठानियाँ खुशी थी मेरे को, प्रवीणा प्रवीणा करके करती। ऐसे नहीं कि मैंने इज्जत की रोटी खाई है वहाँ पे भी, पूरा घर बार मेरे भरोसे छोड़ के जाते थे, कभी वहां से वहां नहीं हुई चीजें इनकी।
2: कहते खुश रहना सबसे बड़ा गुण है और हंसता हुआ चेहरा सभी को पसंद आता है, तो ये बहुत बड़ी विशेषता है आपकी कि सारे दुखों को अंदर दबा करके हमेशा चेहरे पर स्माइल रखी है और यही होना चाहिए सही मायने में। तो जैसा कि आपने बताया कि आपके बेटियों को सातवीं तक पढ़ाया और सबसे छोटे वाले को आठवीं तक पढ़ाया है ना, और बेटों को?
3: बेटा वो भी नौवीं तक पढ़ा है और एक बेटा अभी छोटा वाला है नौवीं में आया है। तो बस इसका एडमिशन कहाँ करावे, कैसे करे अभी सोच रहे, इसकी फीस भी जमा करनी है और सोच रहे वहां तक हाथ पैर मारेंगे भाई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बन जाएगा बंदोबस्त, फिर काम धंधा करके इनको तृप्त कर देंगे।
2: जी जी बिल्कुल, देखिए पढ़ना बहुत जरूरी है ना। आज आपको अफसोस होता है आपने पढ़ाई नहीं की जो?
3: बहुत अफसोस होता है, बहुत, कि खेल कूद में हम लगे रहे, पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया। मम्मी ने तो बापड़ी ने रिश्वत खिला के भी हमारे को पढ़ाने को भेजा, पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि पढ़ाई के ऊपर, कि पढ़ाई क्या चीज है, खेल कूद करने में खूब ध्यान दिया हमने।
2: इसलिए आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। बेटियां तो अब आपने छुड़वा दी, बाकी सबसे छोटी बेटी उसको तो आप पढ़ा सकते हो।
3: हाँ दीदी, तो दे रही है अभी, कह रही कि मम्मी देखती हूँ मैं एग्जाम दूंगी घर बैठ के। तो ऐसा थोड़ा घर में सही चल रहा है तो बोले मम्मी मैं करती हूँ, बोले एग्जाम दूंगी, लड़की कह रही है।
2: जी जी, और अभी आप वर्तमान में अपने घर के मकान में हो?
3: हाँ, अभी तो मेरे घर के मकान में ही हूँ, मैं मेरे घर के मकान में ही हूँ, मेरे बच्चों के साथ में हूँ, मैं मेरे बच्चों को लेके बहुत खुश हूँ।
2: बच्चे आपका कहना मानते?
3: बिल्कुल मेरा कहना मानते हैं, मेरे बच्चों के अंदर मेरी सारी खुशी मेरे बच्चों में ही है, इसीलिए मैं मेरे बच्चों के अंदर बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चों के अंदर भी बहुत खुश हूँ। इसीलिए मेरे को भगवान से कुछ नहीं चाहिए, बस एक इज्जत दे दे, दे न एक रोटी दे, दे दो टाइम इज्जत की, बस वही मेरे लिए काफी है।
2: जी जी, तो प्रवीणा जी आपके जीवन में काफी उतार चढ़ाव आए, आपको इससे क्या सीखने को मिला?
3: मैंने हर चीज को हंस के सामना करा, डट के कर रहा सामने, कभी हार नहीं खाई मैंने, अभी तक की भी टक्कर ले रही हूँ उससे ही, पर कभी दुख ऐसे नहीं समझा कि मेरे को तकलीफ हुई ऐसा हुआ ऐसा हुआ, मैंने कभी सोचा ही नहीं ऐसा।
2: तो हमारी जो बहनें सुन रही है उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
3: बस वही कि डट के सामना करो किसी भी चीज का, ऐसे नहीं समझने का कि छोटा बड़ा काम काज ही है, इसको छोटा बड़ा मत समझा करो, ऐसे डट के सामना करो, भगवान चाहेगा तो सब अच्छा ही होगा, मालिक चाहेगा तो।
2: जी जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम ही होता है, बस उसमें आप कहते हैं कि लगन से काम करते रहो और हमेशा खुद को खुश रखो, ये सबसे बड़ा गुण है। जैसा कि प्रवीणा जी के अंदर है कि कितने भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन आज भी इनके चेहरे पर हम भी देख रहे हैं, अभी जो इतना अनुभव इनका सुना है कि लगातार इनके चेहरे पर स्माइल ही रही, कहीं शिकन की बात ही नहीं। तो सचमुच जीवन में तो उतार चढ़ाव सभी के आता है, लेकिन स्वयं को दूसरों के सामने मुस्कुराहट के साथ पेश करना, ये सबसे बड़ा गुण है। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृशक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और इस तरह आप अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हो। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

0: हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखे और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाए और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ओम शांति। आज 20 मई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम्हें रूहानी अभिमानी बनना है। और रूहानी अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी या कर्म करते हुए देही अभिमानी बनना है। बाबा कहते, तुम बच्चों को इस समय आत्मा का यथार्थ ज्ञान है कि आत्मा मेल है, फीमेल नहीं। चोला जब धारण करते हैं तब कहते हैं कि हां मैं आत्मा फीमेल हूं, परंतु वास्तविक रीति से आत्मा मेल है। फीमेल चोले के आधार से अपना परिचय देते हैं। बाबा कहते हैं, जितना तुम देही अभिमानी होकर के बाप को याद करेंगे, उतनी तुम्हारी तकदीर ऊंचे से ऊंची बनती जाएगी। इसीलिए गायन भी है, तकदीर जगाकर आई हूं। तो बाबा का बनने के बाद हमारी तकदीर और श्रेष्ठ बनती जाती है, क्योंकि आत्मा जब बाबा को याद करते हैं तो विकर्म विनाश होकर के आत्मा पावन बनती जाती है। इसीलिए तकदीर श्रेष्ठ बनती जाती है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूं, देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है। आज की मुरली से प्रश्न है, तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं? उत्तर है, बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव। तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं। तुम आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। अब यही मेहनत व अभ्यास करो कि हम कैसे देही अभिमानी रहे, यही ऊंची मंजिल है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तकदीर जगाकर आई। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे अर्थात जीव की आत्माओं ने कहा कि हम नई दुनिया की तकदीर यानी स्वर्ग की तकदीर बनाकर रूहानी बाप के पास बैठे हैं। हम नई दुनिया की तकदीर यानी स्वर्ग की तकदीर बनाकर बाप के पास बैठे हैं। अब बच्चों को क्या बनना है? बाबा कहे, अब बच्चों को रूहानी अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनना है। बड़े से बड़ी मेहनत यह है, हर वक्त आत्म समझ करके कर्म करना या आत्म स्थिति में रहना, यही बड़े से बड़ी मेहनत है। क्योंकि अभ्यास पड़ा हुआ है देह अभिमान में रह करके कर्म करने का, उसमें से स्विच ओवर होना है आत्म अभिमानी स्थिति में, तो ये मेहनत लगती है। बाबा कहते, अपने को आत्मा समझो और ऐसे समझो, मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। कभी बैरिस्टर, कभी क्या बना हूं। आत्मा मेल है, सब ब्रदर्स है, न कि सिस्टर्स। आत्मा कहती है यह मेरा शरीर है, तो उस हिसाब से आत्मा मेल, ये शरीर फीमेल हो गया। चोला जैसा है वैसे अपना परिचय देते हैं, तो भले आत्मा मेल है लेकिन शरीर फीमेल हो गया। हर बात को अच्छी रीति समझना है। बाप बड़ी विशाल महीन बुद्धि बनाते हैं। बाबा का बनते ही बाबा हमारी बड़ी विशाल महीन बुद्धि बनाते हैं। अब तुम जानते हो,
मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में रहते हैं, उन संस्कारों अनुसार शरीर भी ऐसा मिलता है, सारा मदार आत्मा पर है। ये बहुत बड़ी मेहनत है। जन्म जन्मांतर लौकिक बाप को याद किया, अब पारलौकिक बाप को याद करना है, अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्मा ये शरीर लेते हैं, अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। यह है रूहानी ज्ञान। हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं, यह है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप देते हैं। पहली पहली मुख्य बात बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। देही अभिमानी हो रहना ये बड़ी ऊंची मंजिल है। बाबा कहते देही अभिमानी हो रहना ये बड़ी ऊंची मंजिल है। ज्ञान उच्च नहीं है, ज्ञान में मेहनत नहीं है, ज्ञान को समझना मेहनत नहीं है। सृष्टि चक्र को जानना, यह है हिस्ट्री ज्योग्राफी। ऊंच से ऊंच बाप है, फिर है सूक्ष्म वतन में देवता है। ये ज्ञान की बातों को समझना सहज है। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जाना, हिस्ट्री ज्योग्राफी, सूक्ष्म वतन के देवताओं को समझा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य सृष्टि में होती है, मूल वतन सूक्ष्म वतन में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। वह है शांति धाम, सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। यहां रावण राज्य में किसको शांति मिल नहीं सकती। ये सारे ज्ञान की बातों को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा कहते अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, हम आत्मा है ही शांति धाम में रहने वाली। ये ऑर्गन्स कर्म करने के लिए है, चाहे कर्म करे चाहे न करे, हम तो आत्मा है, हमारा स्वधर्म शांति है। कर्म योगी है ना, कर्म भी जरूर करना है, कर्म सन्यासी कभी हो नहीं सकते। यह भी इन सन्यासियों का पार्ट है। दुनिया में जो सन्यासी है उनका भी अपना एक पार्ट है। घर बार छोड़ जाते हैं, खाना नहीं पकाते, गृहस्थियों से भिक्षा मांगते हैं, फिर भी उन गृहस्थियों के पास खाते हैं ना। बाबा कहे गृहस्थियों से भिक्षा मांगते हैं, फिर भी उन गृहस्थियों के पास खाना खाते हैं ना। दरबार छोड़कर कर्म तो फिर भी करते हैं। कर्म सन्यास तो हो नहीं सकता है, भले कहलाते हैं सन्यासी, दरबार छोड़ा इसलिए, बाकी कर्म सन्यासी तो हो नहीं सकते। कर्म सन्यास तब है जब आत्मा शांति धाम में रहती है। कर्म धाम में है तो वहां न देह है न देह के कर्म, तो वहां कर्म सन्यासी होकर के रहते हैं। वहां कर्मेंद्रिया ही नहीं है तो कर्म कैसे करेंगे, इसको कर्म क्षेत्र कहते हैं। कर्म क्षेत्र पर सबको आना पड़ता है, वह है शांति धाम अथवा मूल वतन। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में आत्मा को लीन होना है, आत्माएं शांति धाम में रहने वाली है फिर यहां कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आती है। यह है डिटेल की बात। नक्शल में तो कहते हैं अपने को आत्मनिश्चय करो और बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। वास्तव में इनको योग भी नहीं, याद कहना चाहिए। बाबा कहते इस योग को योग भी नहीं, याद कहना चाहिए। याद में ही मेहनत है, इसमें ही मेहनत है। योगी बहुत कम बनते हैं। योग की शिक्षा पहले चाहिए, बाद में ज्ञान,
पहले पहले है बाप की याद। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, देही अभिमानी बनो। आज बाबा बार बार हमारा ध्यान खिंचवाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो। यह है रूहानी याद की यात्रा, ज्ञान की यात्रा नहीं, याद की यात्रा कहेंगे। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़े, याद की यात्रा में बहुत मेहनत करनी पड़े। कोई भी भल बीके कहलाते हैं, परंतु बाप को याद नहीं करते। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाते हैं। यह देह अभिमानी थे, बाबा कहते यह देह अभिमानी थे, अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। ब्रह्मा बाबा सहित आदि में जो भी सभी आए, सब देह अभिमानी थे। बाबा कहे फिर पुरुषार्थ किया देही अभिमानी बनने का। ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है, यह तो सब मनुष्य मात्र पतित है, पावन श्रेष्ठाचारी एक भी नहीं। आत्मा के लिए ही कहा जाता है पुण्य आत्मा पाप आत्मा। मनुष्य भी कहते हैं मेरी आत्मा को तंग नहीं करो, परंतु समझते नहीं कि मैं कौन हूं। जब कहते हैं मेरी आत्मा को तंग नहीं करो, तो समझते नहीं कि मैं कौन हूं। पूछा जाता है हे जीव की आत्मा, तुम क्या धंधा करते हो? कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर द्वारा फलाना धंधा करता हूं। तो पहले पहले यह निश्चय कर बाप को याद करो। यह रूहानी नॉलेज सिवाय बाप के कोई भी दे न सके। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि ज्ञान में कोई तीखे जाते हैं तो वह पक्के देही अभिमानी बने हैं। बाबा कहते ऐसे नहीं कोई ज्ञान में तीखे जाते हैं तो वह पक्के देही अभिमानी बने हैं। देही अभिमानी जो है वह ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं। जितना देही अभिमानी स्थिति होगी तो ज्ञान को भी अच्छी तरह से धारण करेंगे। बाकी तो बहुत है जो ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं, परंतु शिव बाबा की याद भूल जाते हैं। घड़ी घड़ी अपने को आत्म समझ बाप को याद करना है, इसमें जिन मुआफिक बनना है। याद की यात्रा में बाबा के जिन मुआफिक बनना है, जिन की कहानी है, बाप भी ये काम देते हैं। मुझे याद करो नहीं तो माया तुझे खा जाएगी। माया है जिन, जितना बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुमको बहुत कशिश होगी। माया उल्टा बनाकर तुमको बहुत तूफान में ले आएगी। बुद्धि में यही याद रहे कि हम आत्मा बाप के बच्चे हैं। बाबा कहते बुद्धि में यही याद रहे कि हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, बस इसी खुशी में रहना है। बे अभिमान में आने से माया चमाट लगाती है। देही अभिमानी है तो खुशी रहती है, देह अभिमान में आने से ही माया चमाट लगाती है। हातिम ताई का खेल भी दिखाते हैं, मुलहरा डालने से गुम हो जाते हैं, मुख में मुलहरा डालने से गुम हो जाते हैं। तुमको भी माया तंग नहीं करेगी अगर बाप की याद में रहेंगे तो, अगर याद का मुलहरा डाल दिया तो। इस पर ही युद्ध चलती है। तुम पुरुषार्थ करते हो याद करने का, लेकिन माया क्या करती है, लेकिन माया ऐसा नाक से पकड़ती है जो याद करने नहीं देंगी। बाबा कहते तुम याद में रहने का पुरुषार्थ करते हो, लेकिन माया ऐसा नाक से पकड़ेगी जो याद करने नहीं देंगी। तुम तंग हो सो जाएंगे, इतना माया से युद्ध चलेगी।
माया से युद्ध चलते चलते फिर जब थक जाते हैं तो सो जाते हैं। बाकी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मोस्ट सिंपल है, तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है। हमेशा समझो अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम जाते हैं बाप से मिलने। बाबा कहे तुम घड़ी घड़ी ये समझो, अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम जाते हैं कहां बाबा से मिलने। ये याद रहना ही मुश्किल है, बाकी किसको समझाना कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे नहीं हम तो बहुत अच्छा समझाते हैं, नहीं, पहली पहली बात ही है याद की। प्रदर्शनी में ढेर आते हैं, पहले पहले ये सबक सिखाना है, पहले पहले सबक यानी ये पाठ सिखाना है। कौन सा? कि अपने को आत्म

निश्चय कर बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। पहले लेसन ही यह देना है, पहला लेसन ही है आत्मा का। भारत का प्राचीन योग कोई सिखा नहीं सकते, बाप जब आकर सिखाए तब सीख सकते हैं, मनुष्य मनुष्य को राजयोग सिखा नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। सतयुग में तो है ही पावन, वहां तो प्रालब्ध भोगते हैं, वहां ज्ञान अज्ञान की बात ही नहीं। सतयुग में है ही प्रालब्ध, वहां ज्ञान अज्ञान की बात ही नहीं। भक्ति मार्ग में ही बाप को पुकारते हैं कि आकर दुख हरो सुख दो। सतयुग त्रेता में कोई गुरु गोसाई होते नहीं, वहां तो सदगति पाई हुई है। सतयुग त्रेता में तो हर आत्मा सदगति की अवस्था में है। सदगति का वर्षा 21 जन्म लिए तुम पा सकते हो, 21 पीढ़ी। कहते हैं ब्रह्मा कुमारी वह, कहते हैं ना ब्रह्मा कुमारी वह जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। ये भारत में ही गाया जाता है, भारत में ही तुमको 21 पीढ़ी का वर्षा मिलता है। वहां तुम एक ही देवी देवता धर्म वाले होते हो, दूसरा कोई धर्म नहीं। बाप आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, पवित्र होने बिगर हम वापस जा कैसे सकते हैं। यहां तो सब विकारी पतित है। जो जो धर्म स्थापक है वह फिर पालना करते हैं, उनके धर्म की वृद्धि होती जाती है। जो भी धर्म स्थापक है पुनर्जन्म लेकर के उस धर्म की पालना करते हैं, उनके धर्म की वृद्धि होती जाती है। वापस कोई भी जा नहीं सकता, एक भी एक्टर वापस जा नहीं सकता। सबको सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना ही है। ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। तो क्या सृष्टि में अकेला ही ब्रह्मा होगा? तारा कहते क्या सृष्टि में अकेला ही ब्रह्मा होगा क्या? अभी तुम ब्राह्मण कुल के बन रहे हो, तुम रात में थे अब दिन में जा रहे हो। तुमको समझाया है कि कितना समय पूज्यपन में रहते हो। तावक है तुम्हें ये स्पष्ट समझाया जाता है कितना समय पूज्यपन में रहते हो, कितना जन्म पुजारी बनते हैं। जब तक बाप न आए तब तक कोई भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन न सके। भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं, इसलिए इसको हेल कहा जाता है। हेल और हेवन दोनों में अगर दुख हो तो फिर तो उनको हेवन ही न कहा जाए, वो भी हेल हो जाए। जब तक पूरा समझे नहीं तो उल्टे सुलटे प्रश्न करेंगे। तुमको समझाना है भारत बहुत ऊंच था, जैसे ईश्वर की महिमा अपरंपार है वैसे भारत की भी महिमा अपरंपार है। भारत क्या था, ऐसा किसने बनाया? बाप ने, जिसकी महिमा गाते हैं। बाप ही आकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं, मनुष्य मात्र को दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं, शांति धाम में ले जाते हैं, जिसके लिए ही मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं। शांति धाम में मुक्ति धाम में जाने के लिए ही तो पुरुषार्थ करते हैं। उसको अटल सुख अटल शांति अटल पवित्रता कहा जाता है। वहां तुम सुख में भी हो शांति में भी हो और बाकी आत्माएं शांति में ही रहती है। मैक्सिमम जन्म तुम लेते हो, बाकी मिनिमम वाले अटल शांति में रहते हैं। वह जैसे मच्छर सदृश आए, एक आधा जन्म पाठ बजाया, ये क्या उनकी कोई वैल्यू नहीं? एक आधा जन्म पाठ बजाने की तो कोई वैल्यू नहीं।
मच्छरों के क्या वैल्यू है, रात को जन्मते हैं, रात को ही मर जाते हैं, इस समय बहुत करके शांति ही चाहते हैं, क्योंकि इस समय के गुरु लोग हैं शांति में जाने वाले, इसलिए वो हर एक को भी यही कहते शांति में जाना है। तुम यहां आए हो स्वर्गवासी बनने के लिए, स्वर्गवासी को शांतिवासी नहीं कहेंगे, शांतिवासी निराकारी दुनिया को कहा जाता है। मुक्ति अक्षर गुरुओं से सीखते हैं, माताएं व्रत नियम रखती है, वैकुंठपुरी में जाने के लिए कोई मरता भी है तो कहते भी है स्वर्गवासी हुआ, बाबा कहते कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, कोई होता नहीं है लेकिन भारतवासी हेवन को ही मानते हैं, समझते हैं भारत पैराडाइज था। शिव बाबा भारत में ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं तो जरूर यहां ही आएंगे और रचेंगे, स्वर्ग में तो नहीं आएंगे। कहते हैं मैं आता हूं स्वर्ग और नर्क के संगम पर, शिव बाबा कहते हैं भगवान उवाच, मैं आता हूं स्वर्ग और नर्क के संगम पर, कल्प कल्प के संगम पर आते हैं। उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है, कल्प का अक्षर भूल गए हैं, ये भी खेल बना हुआ है, फिर वही रिपीट होगा। इस अंतिम जन्म में तुम बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो, जैसे स्थापना होती है नंबरवार, सो अब तुम जानते हो ये सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही बना हुआ है। अभी तुम बाप द्वारा राज योग सीखते हो, बाप की याद से ही राज्य पाते हो, चित्र भी खड़े हैं ना, यह सब चित्र किसने बनाए, इनको कोई गुरु गोसाई तो है नहीं, अगर कोई गुरु होता तो भी गुरु को एक शिष्य थोड़ी होता, ब्रह्मा बाबा का अगर कोई दैहिक गुरु होता ये ज्ञान देने के लिए तो उसका कोई एक शिष्य थोड़ी होता, अनेक होते ना, ये नॉलेज सिवाय एक बाप के और कोई जान न सके। बहुत लोग पूछते हैं ये चित्र तुम्हारे दादा ने बनवाए हैं, ये तो बाप ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया है। हाँ, शिव बाबा भी स्पष्ट करते हैं कि दादा ने नहीं बनवाया, यह तो बाप ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया है, वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराया है, वहां कैसे स्कूल चलती है, क्या भाषा होती है, सब साक्षात्कार किए हैं। बच्चे भट्टी में थे तो बाबा बच्चों को बहलाते थे, कराची में सिर्फ तुम ही अलग रहे हुए थे, जैसे अपनी राजाई थी, अपनी तात अपनी बात दूसरा कोई समझ न सके, समझते थे ये खुदा प्रस्त है, बाहर के लोग भी समझते थे ये खुदा प्रस्त है, बाबा ने समझाया है तुम हो नंस नन बट वन, एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना, वह नंस क्राइस्ट को ही जानती है, उनके सिवाय कोई को नहीं। तुम जानते हो वर्षा एक शिव बाबा से मिलता है, शिव बाबा तो है बिंदी, वह भी कोई द्वारा ही समझाएंगे ना, बिंदी कैसे समझाएंगे, कोई के द्वारा ही समझाएंगे ना, प्रजा पिता ब्रह्मा तो जरूर यहां होगा, बाप कहते इनके बहुत जन्म के अंत के जन्म में पतित शरीर में प्रवेश करता, ब्रह्मा बाबा के बहुत जन्म के अंत के जन्म में पतित शरीर में प्रवेश करता हूं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया।
आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही अभिमानी बनना है। यही मेहनत है, यही ऊंची मंजिल है। इस मेहनत से आत्मा को सतोप्रधान बनाना है। दूसरी पॉइंट, जिन बनकर याद की यात्रा करनी है। माया कितने भी विघ्न डाले लेकिन मुख में मुलरा डाल देना है, माया से तंग नहीं होना है। एक की याद में रहकर तूफान हटा देना है, एक की याद में रहकर तूफान हटा देने। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षण में दृश्य अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते व देखते हो तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसे हैं जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग। इसलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना न हो। किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना न हो। साधन निमित्त मात्र है और साधना निर्माण का आधार है। इसलिए साधना को महत्व दो तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। इतनी सुंदर बात, साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। आज का स्लोगन है, किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। आज का व्यक्ति इशारा है, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, बुद्धि को एक ठिकाने पर टिकाने की जो युक्ति मिली है वह स्मृति में रखो। बुद्धि को एक ठिकाने पर टिकाने की जो युक्ति मिली है वह स्मृति में रखो। हिलने न दो, देह और देह की दुनिया से न्यारे बन। युक्ति क्या मिली है? देह और देह की दुनिया से न्यारे बन। मन बुद्धि के विमान से सेकंड में आकारी और निराकारी स्थितियों को अनुभव करो। बुद्धि को हिलने न दो, नहीं तो युद्ध में समय बहुत व्यर्थ जाता है। जैसे तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं वैसे अपनी एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो, तब भविष्य सिंहासन मिलेगा। एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तब भविष्य सिंहासन मिलेगा। अच्छा, ओम शांति।